Yeah.

No.

0: अभी आप सुन रहे थे नवल किशोर मलिक का गाया ध्रुपद में राग रामकली। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की

0: बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग शू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू शियान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
2: हमने reforms को लेकर एक clear roadmap बनाया। इस roadmap की प्रमुख दिशा रही है governance level के reforms हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ regulation नहीं बदल रहे, हम regulation की पूरी philosophy बदल रहे हैं।
1: The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying that the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth. Union Home Minister Amit Shah has lauded West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari for handing over 1,129 acres of land to the Border Security Force BSF and Sashastra Seema Bal SSB for fencing along the India-Bangladesh border in the state within 45 days of the new government coming to power. He said the request for the land required for the border fence had been pending since

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे संत कबीर के विचार।

एक बार संत कबीर एक गांव में सत्संग करने जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा गांव पड़ता था। कबीर जी ज्यों ही उस छोटे गांव से गुजरे तो वहां के एक निवासी ने उन्हें रोक लिया और कुछ खाने का अनुरोध किया। संत कबीर ने कहा कि अभी तो उन्हें भूख नहीं, आते समय जरूर वो खाना खाकर जाएंगे। खाने की बात नहीं है कबीर साहब, असल बात तो ये है कि आपसे कुछ पूछना था, इस वजह से आपसे कुछ समय चाह रहे थे, एक गांववासी बोला। क्या पूछना चाह रहे थे? अगर सवाल का जवाब जल्द दे सका तो जरूर बताता जाऊंगा, नहीं तो शाम को आते समय जवाब दूंगा, कबीर जी बोले। यही कि भगवान हैं या नहीं, और अगर हैं तो वो हमें नजर क्यों नहीं आते, वो गांववासी बोला। सवाल सुनकर कबीर जी सोच में पड़ गए। उन्होंने पलटकर उस गांववासी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? कबीर जी बोले, मुझे ये पता होता तो आपसे क्यों पूछता, वो बोला। ग्रामवासी का ये जवाब सुनकर कबीर जी ने पासी पेड़ की डाल पर उड़ती फुदकती चिड़िया की तरफ देखा और उस ग्रामवासी से कहा, तुम शाम तक इस चिड़िया की सारी हरकतों को देखते रहो और शाम को जब मैं यहाँ से गुजरूं तो मुझे इसका सारा वाकया सुनाना। ये कहकर कबीर जी सत्संग के लिए चले गए। वो ग्रामवासी दिन भर चिड़िया की हरकत को देखता रहा। चिड़िया दूर दूर से तिनके तोड़ तोड़ कर लाती और अपना घोंसला बनाती। कभी कोई बच्चा उस चिड़िया की तरफ पत्थर फेंकता, कभी उसकी अन्य सखी चिड़ियाएं उससे लड़ाई करती, तो कभी कोई कौवा आकर उसके घोंसले को बिखेर जाता। मगर शाम होते होते चिड़िया ने घोंसला तैयार कर लिया। ठीक शाम होते ही कबीर दास जी सत्संग खत्म करके

उस गांव से गुजरे और उस ग्रामवासी से मिले और पूछा, हाँ जी, आपने देखा चिड़िया दिन भर क्या कर रही थी? ग्रामवासी ने कबीर जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कबीर साहब, आप सचमुच संत हैं। दरअसल कल जो आंधी आई थी उसमें मेरा छप्पर उड़ गया था और इसी सदमे के कारण मैंने आपसे भगवान के होने न होने का कारण पूछा था। तो क्या आपको उत्तर मिल गया? कबीर जी ने पूछा। जी बिल्कुल मिल गया, वो ग्रामवासी बोला। अब अपना नया छप्पर बनवा लो। वैसे भी वो छप्पर पुराना हो चुका था, कभी भी गिर सकता था। शुक्र करो आंधी के समय कोई छप्पर के अंदर नहीं था। कहते हुए संत कबीर शाम के साए में डूब चुकी उस पगडंडी की ओर बढ़ गए। ग्रामवासी उन्हें दूर तक निहारता रह गया।

चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संत कबीर के विचार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 1:10 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आप सुनेंगे फिल्म चांदनी के कुछ चुनिंदा गीत, और दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार। इसमें आज हम सुनवाएंगे आपको कलाकार पेंटल पर फिल्माए गए कुछ गीत। इसके अलावा महिला कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12:10 पर, और अगर आप शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते हैं तो 11:30 पर आप सुन सकते हैं हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। 6:45 हुए जाते हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 25।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निःशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं, और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं, जो श्री राम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो। जो मन, वचन, कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो, क्या उसका त्याग किया जा सकता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आपने सुना अयोध्या कांड भाग 25 से। 6:55 होने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिष्काराः तस्य प्रशासनस्य कृते बाध्यता न, अपितु प्रतिबद्धता दृढ विश्वासश्च। तेनोक्तं यत् प्रशासनस्य नीतयः जनकल्याणपराः विकासोन्मुखाः प्रगतिवर्धकाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्येतत् मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनेन परिष्कारेभ्यः स्पष्टा योजना निर्मिता अस्ति, यस्यां प्राथमिकता शासनस्तरीय परिष्कारेभ्यः प्रदत्ता अस्ति। स उक्तवान् यत् देशस्य भविष्यं सुरक्षितं कर्तुं भारतं नीतिनिर्माणस्तरे नवपरिष्कारान् करोति।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त धारा की, सप्त शक्तियों की बात की है, और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनं केवलं नियमेषु परिवर्तनं न करोति, अपितु तेषां नियमानां पृष्ठे विद्यमानायाः सम्पूर्ण दृष्टेः परिवर्तनमपि करोति। सः उक्तवान् यत् पूर्वं नियमसम्बद्ध दृष्टिः अनुमति पर्यन्तं निषिद्धम् इति आसीत्, अधुना च प्रशासनं ताम दृष्टिं परिवर्त्य निषेध पर्यन्तम् अनुमतम् इति दिशि अग्रेसरति। भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितं ब्रिक्स पर्यटन मन्त्रिणाम् उपवेशनं ह्यः जयपुर घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्नम्। एतत् घोषणापत्रं ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये पर्यटनक्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं कार्ययोजना प्रददाति। घोषणापत्रे सहयोगस्य प्रमुखक्षेत्राणि निर्दिष्टानि सन्ति। एतेषु पर्यटनक्षेत्रे कृत्रिमबुद्धेः उपयोगः, स्थायी पर्यटनपद्धतयः, कौशलविकासः, अबाधितयात्रायाः सौविध्यानि च सम्मिलितानि सन्ति। उपवेशनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीयसंस्कृतिपर्यटनमन्त्री गजेन्द्र

0: सिंह शेखावतः राजस्थानस्य जयपुरे अकरोत्। अनेन सहैव अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितस्य ब्रिक्स पर्यटन कार्यसमूहस्य अपि समापनम् अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः पुनरुक्तवान् यत् अवैध प्रवासिनां विरुद्धं शून्य सहिष्णुता नीतिः निरन्तरं प्रवर्तिष्यते तथा अवैध प्रवासिनां परिचय निष्कासन निर्वासन सम्बद्धा प्रक्रिया कठोरतया क्रियान्विता भविष्यति। असौ उक्तवान् यत् देशात् प्रत्येकस्य अवैध प्रवासिनः निर्वासनं प्रति प्रशासनस्य प्रतिबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् जनसांख्यिकीय परिवर्तनं पूर्णतया निरोद्धुं प्रयत्नः करिष्यते। गृहमन्त्री ह्यः पश्चिमबंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे कावाखाली प्रांगणे भारतीय न्याय संहितायाः विषये षड् दिवसीय अवबोधन प्रदर्शनीम् उद्घाट्य एकां सभां सम्बोधयन् एतत् उक्तवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः आगामी मासस्य पञ्चमदिनांके नवदिल्ल्यां स्थिते विज्ञान भवने अष्टचत्वारिंशत् विद्यालयीय शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदास्यति। शिक्षा मन्त्रालयेन संसूचितं यत् विद्यालयीय शिक्षकाणां चयनं जनपदस्तरे राज्यस्तरे तथा राष्ट्रियस्तरे विद्यालय शिक्षा साक्षरता विभागेन त्रिचरणात्मक चयन प्रक्रियया कृतम्। चयनिताः अष्टचत्वारिंशत् शिक्षकाः सप्तविंशति राज्येभ्यः सप्त केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः अथ केन्द्रप्रशासनस्य षड् संस्थाभ्यः च सन्ति। चयनितेषु अष्टचत्वारिंशत् शिक्षकेषु षड्विंशतिः पुरुषाः द्वाविंशति च महिलाः सन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व मध्य प्रदेशे प्रचण्डात् अति प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। असम सिक्किम मेघालय नागालैंड मणिपुरम मिजोरम त्रिपुरा राज्येषु सोमवासरपर्यन्तं प्रचण्ड वृष्टेः संभावना वर्तते। अद्य दिल्ली पंजाब हरियाणा बिहार छत्तीसगढ़ पूर्वोत्तर प्रदेश ओडिशा उत्तराखण्ड हिमालयीय प्रदेशानां केषुचित् भागेषु अपि समान स्थितेः संभावना वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के 45 दिन के भीतर ये जमीन दी गई, जबकि सीमा बाड़ के लिए जमीन की मांग 2014 से लंबित थी। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। 2 दिन की इस बैठक में सीमा पार अपराध रोकने, बुनियादी ढांचे, सड़क और रेल संपर्क मजबूत करने तथा अतिक्रमण हटाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल और क्षमता बढ़ाने पर भी विचार साझा किए और इन मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुधांशु बहुगुणा और साथियों का गाया वृंदगान। इसके साथ ही संगीतिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर 7:30 हुए हैं। अब वक्त है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का, और आज गीतों भरे गुड मॉर्निंग में आपके साथ अगले आधे घंटे तक खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। जानते हैं कितनी खूबसूरत बात है, जीवन में साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगते हैं। तो आज दिन भर एक छोटी सी कोशिश कीजिए कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी खास व्यक्ति को या किसी अनजान व्यक्ति को किसी भी वजह से धन्यवाद कीजिए, या फिर किसी पुराने दोस्त को याद कीजिए और चेहरे पर एक मुस्कान बना रखिए। चाय का कप हाथ में ले लीजिए, क्योंकि बेहतरीन, बहुत बेहतरीन गीत मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। तो लीजिए, सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं खूबसूरत पहाड़ियों की वादियों में।

वाकई प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी भी कट जाती है, लेकिन आपको किसको कितना प्यार करना है ये कभी मत सोचिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। आपके चेहरे पर मुस्कान, आपकी आंखों में एक ऐसी संजीदगी जो किसी को भी अपना बना सकती है, और एक बार कोई आपका अपना बन गया ना, तो फिर देखिएगा कि तमाम उम्र वो आपके साथ रहेगा, भले ही आप उसको रोजाना मिलें या ना मिलें। और हाँ, आप देखना, यही तो कहेंगे

0: यही तो है वो,
1: वाकई यही तो है। अब हम क्या कहें, आप ही खुद समझ लीजिए। लेकिन इतना तो हम आपको बता देते हैं कि ये फिल्म थी 16 साल, देवानंद वहीदा रहमान की बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी। गीत मधुरू सुल्तानपुरी के थे, संगीत एस डी बर्मन का था और आवाज वही चिरपरिचित भाई मोहम्मद रफी। क्या खूब कहा है, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल खुद ब खुद कहता है हाँ यही तो है, और यही इस गाने की खूबसूरती थी। वैसे आज का दिन आपका कैसा रहेगा, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा प्लान कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आप किसी को ये तो कह सकें यही तो वो है दिन जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। बहरहाल एक और खूबसूरत गीत इस समय हम आपकी नज़र कर रहे हैं, और सुनिए, समझिए और देखिए कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं सिर्फ आप ही नहीं, हम भी हैं इस दुनिया में, और सिर्फ आप ही लोगों को मुस्कुराहट नहीं देते, हम भी देते हैं ना, तो बस दोनों मिलके दिन खूबसूरत बना लेते हैं।

वाकई आपने क्या किया कि लोग दिल को लगे थामने। और देखिए ना, आपने क्या कह दिया प्यार के नाम पे। कभी आपने सोचा है कि आपने किसी को कुछ ऐसा कहा हो जो उसको बहुत अच्छा लगा हो या उसके दिल में समा गया हो, और फिर आपको वो मिले और कहे, अरे आपको याद है ना, आपने वो कुछ कहा था, आज भी मुझे याद है। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातें, ऐसी ही मुस्कुराती हुई बातें आप एक दूसरे से किया कीजिए ना। कहते हैं किसी को जानने के लिए हमेशा बातचीत भी ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी आपकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है ना। कई बार ऐसा लगता है कि बस चुपचाप आप बैठे रहें और बस यूं ही देखते रहें, आंखें अपने आप ही कुछ कह देंगी।

किसी ने क्या खूब कहा है कि अपना उठना बैठना उन लोगों के साथ रखो जो दिल के बहुत साफ होते हैं, क्योंकि ये दिल के साफ लोग अगर कभी नाराज भी हो जाए ना, तो आपके किरदार और आपकी इज्जत पे कभी कोई कमेंट नहीं करते। तो अपने दोस्तों को थोड़ा खंगालिए, संभालिए और देखिए वो कौन है जिनके साथ आप सारी बातें कर सकते हैं।

दिल पे तीर आज सुबह से ही चल रहे हैं, इट्स नॉट गुड। बहरहाल वक्त मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है, लगभग लगभग 5 मिनट का वक्त बचा है, तो चलते चलते ये खूबसूरत गीत मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ और शायद सुबह के समय ऐसा खूबसूरत गीत ही हो सकता है जो आपके दिन को खूबसूरत बना सकता है। इजाज़त दीजिए, नवीन को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की दोपहर गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष मान्यता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा, ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स

0: कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
4: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति

0: देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन ज़ी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगू

0: पे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया। विदेश मंत्रालय ने कहा, सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstelveen this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
3: हमने reforms को लेकर एक clear roadmap बनाया। इस roadmap की प्रमुख दिशा रही है governance level के reforms हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
2: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations, but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier, the approach to regulations was prohibited unless permitted. Mr. Modi said the license raj under earlier governments contributed to unemployment, while his government's production-linked incentive model is creating new opportunities. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के

0: Kumar artist in All India Radio and went on to captivate viewers in Tamil, Telugu and Kannada films. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstel Wynn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इख्तदार में आने के 45 दिन के अंदर भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाकर बीएसएफ और एसएसबी को 1,129 एकड़ जमीन हवाले की। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजाम और सिक्योरिटी में बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने के अजम का इरादा किया है। ब्रिक्स के सियाहत के वुजरा ने पायदार सियाहत, मसनूई जहानत को हम आहंग करने और बिला रुकावट सफर पर तवज्जो देते हुए जयपुर एलामिया मंजूर किया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारत की जोड़ी चीन की जोड़ी से मुकाबला करेगी। और हॉकी आलमी कप में आज शाम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन के मकाम पर भारत की मर्दों की टीम अपने दूसरे मरहले के मैच में मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उसकी पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। कल शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने सरकारी एतबार से इस्लाहात पर खसूसी तवज्जो देते हुए इस्लाहात के सिलसिले में एक वाज़ह खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर नए दौर की इस्लाहात कर रहा है।
3: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
2: वजीर आजम ने वाजे किया कि उनकी हुकूमत महज जाब्ते तब्दील नहीं कर रही है बल्कि वो जाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि साबिका हुकूमतों के दौर में लाइसेंस राज ने बेरोजगारी में इजाफा किया था जबकि उनकी हुकूमत के पैदावार से जुड़े तरगीबी मॉडल नए मौके पैदा कर रहे हैं। वजीर आजम ने आलमी इक्तसादी माहौलियात के बारे में भी बात की और कहा कि वसाइल को आलायकार बनाना और बढ़ती हुई बदगुमानियां नए चैलेंजेस पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में भी भारत को पूरी दुनिया में तरक्की के एक दरख्शां मकाम के तौर पर देखा जा रहा है।
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: जनाब मोदी ने कहा कि बैनुल अक्वामी मालियाती फंड ने पेश

0: हुई की है कि भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई बड़ी मईशत रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे इकदाम कर रहा है जो उसकी तरक्की को नई जहत दे रहे हैं। मुल्क की सतह पर इस्तेहकाम के गहरे आलमी असरात को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर जबरदस्त एतमाद का इजहार किया कि मुल्क की तरक्की के सफर को महफूज बनाकर बैन अवी बिरादरी के लिए फितरी तौर पर ज्यादा इस्तेहकाम लाया जा सकेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इक्तदार में आने के 45 दिन के अंदर रियासत में भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के बाद 1129 एकड़ जमीन बीएसएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के हवाले की है। उन्होंने कहा कि सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन की दरख्वास्त 2014 से जेर इल्तवा थी। जनाब शाह कल मगरबी बंगाल की सिलीगुड़ी में रानीदंगा इलाके में सशस्त्र सीमा बल फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर दाखिला ने कहा कि खारदार तार लगाने के काम को मुकम्मल करना जरूरी है ताकि दरअंदाजी को रोका जा सके और कौमी सलामती का तहफ्फुज किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गैर कानूनी इमिग्रेशन के तई कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी जारी रहेगी।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: ब्रिक्स के सियाहत के वुज़रा की मीटिंग जो भारत की सदारत में मुनाकिद हुई थी कल खत्म हो गई। इसमें जयपुर ऐलामिये को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई जिसमें ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान सियाहत के शोबे में तआवुन को मुस्तहकम करने के लिए एक फ्रेमवर्क की गुंजाइश फराहम की गई है। ऐलामिये में सियाहत में मसनूई जहानत के इस्तेमाल, पायदार सियाहत के तौर तरीकों, हुनरमंदी की तरक्की और बिला रुकावट सफर की सहूलत फराहम की गई है। मीटिंग की सदारत राजस्थान के जयपुर में सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और 2026 में भारत की सदारत में ब्रिक्स टूरिज्म ट्रैक इख्तिताम पजीर हुआ। टूरिज्म ट्रैक का मौजू साबित कदमी, इख्तिरा और पायदारी था और इस मौजू को आगे ले जाया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि सियाहत 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत के सफर में एक अहम रोल अदा करेगी और भारत के पास इतनी सलाहियत है कि वो माशी तरक्की को बड़े शहरी मराकज से कस्बों, गांवों और दूरदराज के खित्तों तक लेकर जा सके। ब्रिक्स के सियाहत के वुज़रा के ऐलामिया 2026 को जयपुर ऐलामिया के तौर पर भी माना जाता है जो भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स सियाहत वर्किंग ग्रुप के जरिए किए गए काम की अक्कासी करता है और चार अहम तरजीहात पर तवज्जो देता है जिनमें मसनूई जहानत और सियाहत, पायदारी और जिम्मेदाराना सियाहत, सियाहत हुनरमंदी, सलाहियत साजी और सियाहत के तबादले और बिला रुकावट सफर की सहूलियात शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के वुज़रा की मीटिंग और ब्रिक्स के खेलों के वुज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के वुज़रा की मीटिंग आज होगी जबकि खेलों के वुज़रा की मीटिंग कल होगी। इन मीटिंगों की सदारत नौजवानों के उमूर के वुज़रा और खेलों के वुज़रा डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। खेलों के वजीर डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। नौजवानों की उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा खट्टे भी इन मीटिंगों में शिरकत करेंगी। नौजवानों की उम्र खेलों की वजारत के मुताबिक नौजवानों की उम्र के वुज़रा की मीटिंग में तालीम, हुनरमंदी का फरोग, सनतकारी, फलाओ बहबूद और पायदार तरक्की के साथ नौजवानों की तरक्की और तफवीज इख्तियारात में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू अगले माह की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली असातजा को नेशनल टीचर्स अवार्ड्स अता करेंगी। वजारत तालीम के मुताबिक अवार्ड्स के लिए स्कूल के टीचर्स को स्कूली तालीम और ख्वानगी के महकमे के जरिए जिला, रियासत और कौमी सतह पर 3 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबी अमल के जरिए मुंतखब किया गया है। ये 48 स्कूली टीचर्स 27 रियासतों, 7 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और मरकजी हुकूमत की 6 तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें 26 मर्द और 22 खवातीन टीचर्स शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजाम और सलामती के ताल्लुक से बाहमी तावुन को मुस्तहकम करने के अपने दो तरफा तावुन और अजम का इयादा करने से मुतालिक सभी पहलुओं का जायजा लिया। कल देहरादून में भारत नेपाल मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग के दौरान

0: کوئی زومی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے تئیں جاپان کی حکومت کے مسلسل عزم کی تصدیق کی. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے بھارتی وزارت خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ بھارت اور سنگاپور کے درمیان چوتھی وزارتی گول میز میٹنگ سنگاپور میں ہوئی, جس میں فریقین کے وزراء نے اعلیٰ درجے کی مینوفیکچرنگ, کنیکٹیویٹی, صحت و طب, ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری جیسے شعبوں میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لیا.
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اصلاحات مجبوری نہیں ہے بلکہ حکومت کے لیے ایک عزم اور یقین ہے. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی پالیسیاں عوام کے موافق اور ترقی پسندانہ ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال سرکار کی اس بات کے لیے تعریف کی ہے کہ نئی سرکار نے اقتدار میں آنے کے 45 دن کے اندر بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگا کر بی ایس ایف اور ایس ایس بی کو 1129 ایکڑ زمین حوالے کی. بھارت اور نیپال نے سرحدی انتظامات اور سیکیورٹی میں باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اور برکس کے سیاحت کے وزراء نے پائیدار سیاحت کو ہم آہنگ کرنے اور بلا رکاوٹ سفر پر توجہ دیتے ہوئے جے پور اعلامیہ منظور کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی.
2: ہم آکاشوانی دلی کے اندر پرستھ چینل سے بول رہی ہیں. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز پر 8:45 ہوئے ہیں. آئیے سنتے ہیں کاریکرم سواستھیہ پترکا ہماری صحت.
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत. स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन. स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार. श्रोताओं, बरसात के मौसम में नमी बढ़ने के कारण नाक, कान और गले के इन्फेक्शंस भी आम हो जाते हैं. वायरल इन्फेक्शंस, एलर्जी, गले में खराश, नाक बहना और कान में दर्द की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ सावधानियां और कुछ जानकारियां होनी आवश्यक है. सुनिए हमारी भेंटवार्ता, बरसात के मौसम में नाक, कान, गले की समस्याएं. विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रम वाधवा, ENT स्पेशलिस्ट, लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली. भेंट करता है रश्मि गुप्ता.
4: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
5: नमस्कार.
4: सर, ENT एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं, लेकिन आप अपने एंड पर क्या इस बारे में कहना चाहेंगे?
5: देखिए, ENT जो है वो तीन सेंस ऑर्गन्स का बेसिकली स्पेशलिटी है. इसमें हमारे 5 में से 3 सेंस ऑर्गन्स कवर होते हैं, सुनना, स्मेल करना और टेस्ट करना, और इसके अलावा हम जोड़ लें तो थ्रोट भी, मीन्स आवाज भी. तो 3+1 वाला हाँ इसमें है. अब सेंस ऑर्गन्स हैं क्या हमारे? सेंस ऑर्गन्स बेसिकली हैं जो हमारा को रिसीव करते हैं स्टिमुलस एनवायरनमेंट से. तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको बाहर की तरफ रखा है, बाहर की तरफ रखा है ताकि वो मैसेज ले सकें, परसीव कर सकें
4: जी.
5: और बाहर की तरफ रखा है तो जो बाहर हो रहा है उससे इफेक्ट भी जल्दी होते हैं वो.
4: बिल्कुल.
5: तो बाहर एनवायरनमेंट में अगर कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ चेंज आएगा या वेदर चेंज आएगा तो सर्टनली इनको भी सबसे पहले इफेक्ट करेगा
4: जी. जी.
5: तो हम ज्यादातर देखते हैं कुछ सीजन चेंज हुआ, स्पेशली गर्मियों के बाद तुरंत एक सम से मौसम के बाद चेंज हुआ और बारिश आई और हमारे गला खराब, कान में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू. ये बड़ी कॉमन परेशानियां आती हैं बिकॉज हमने उस समय ध्यान नहीं दिया. एक टेम्परेचर शिफ्ट हुआ है, एनवायरनमेंट शिफ्ट हुआ है और हमने अपने इन 3 जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा है.
4: डॉक्टर साहब, किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा इस मौसम में देखने को मिलती हैं?
5: देखिए, हम कान को लें, कान में एक फंगल इन्फेक्शन होता है, उसकी समस्या बहुत ज्यादा दिखने को मिलती है. फिर अगर कान में कुछ स्क्रैच आ जाए या कुछ स्क्रैच के बाद इन्फेक्शन हो जाए, इसको स्विमर्स ईयर बोलते हैं, वो बड़ी कॉमनली कान में दिखाई देती है. छोटे बच्चों में कान के भीतर वाला एक कान होता है, कान जो है ना 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं
4: जी, जी,
5: तो भीतर वाला कान में इन्फेक्शन होने का खतरा बच्चों में काफी ज्यादा रहता है. नोज में देखते हैं एलर्जीज बहुत बढ़ जाती है, जुकाम, खांसी बहुत कॉमनली दिखाई देता है और उसके बाद साइनोसाइटिस, उसके बाद इन पेशेंट्स को काफी होने के चांसेस होते हैं.
4: ओके.
5: गले में देखें, गले में खराशपन, थोड़ा बहुत वायरल इन्फेक्शन होने के बाद गला खराब होना वो कॉमन है
4: जी।
5: बट ये आवाज़ पे इफेक्ट डालना शुरू करता है तब हम ज़्यादा परेशान होना शुरू। तो ये सब परेशानियाँ इस सीज़न में एकदम से सडनली हमारे को अपने पेशेंट्स में दिखाई देती हैं और हमारे पास कॉमनली आती हैं परेशानियाँ।
4: सर जैसे लगातार छींक आती है।

0: या नाक बहती है,
1: जी
0: इसे हम एलर्जी मान के चलें या वायरल इन्फेक्शन, तो इन दोनों में से इसे कैसे पहचानें?
1: देखिए, बड़ा आसान है। वायरल इन्फेक्शन तो एक सडन एक्यूट एपिसोड है, मीन्स कि एकदम से आया है वो, पहले से आपको कोई लक्षण नहीं थे। अगर आपको पहले से लक्षण हैं, छींकें आपको आती रहती हैं और आपका जुकाम आपको रहता है काफ़ी ज़्यादा और नाक बंद रहता है और ये आपको सारा साल कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ऐसे लोग तो एलर्जिक डेफिनेटली हैं ही हैं। पर अगर सपोज अभी एक एपिसोड शुरू हुआ है और उसके साथ में हमें हल्का बुखार आ रहा है, बदन टूट रहा है थोड़ा सा, तो हम मान के चलें कि ये एलर्जी नहीं है, प्रॉब्ली ये हमारे को थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है। तो ये कॉमनली इन्फेक्शन तो सिर्फ एक वायरस से होता है, जिसको हम राइनो वायरस बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन उससे होता है।
0: जी,
1: तो ये इन्फेक्शन उसका है एंड इसको हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
0: ओके. तो धूल, नमी और फंगस की वजह से आपने बताया एलर्जी हो जाती है, तो क्या साइनस भी इसी का ही एक और समस्या है?
1: जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये अभी इस एनवायरनमेंट में हुआ क्या है। अभी तो इसमें अभी ह्यूमिडिटी बढ़ गया है, नमी
0: जी.
1: बहुत बढ़ गई है, दूसरा सनशाइन गायब हो गई है, तो एक स्टरलाइजेशन का जो काम सनशाइन का रहता है वो गायब हो गया है। टेम्परेचर हमारा देखिए बड़ा एडिक्वेट है, 37-38 डिग्रीज चल रहा है, जिसमें वायरसेस और बैक्टीरिया सडनली बहुत ग्रो करते हैं।
0: जी
1: ठीक है, तो अब इन्फेक्शन हमारे को सपोज हो गया है, सपोज एक किसी पेशेंट को, और वो ठीक होने लग रहा है, थोड़े टाइम के बाद वो दोबारा कंप्लेन करना शुरू करता है कि भाई मेरे को दोबारा से कुछ हेडेक हो रहा है और मेरा तबीयत फिर दोबारा से नासाज हो रही है। तो उसको ये मान लेना चाहिए कि लक्षण है, प्रॉब्ली मुझे साइनोसाइटिस नाम की बीमारी हो रही है। अब
0: जी
1: ये साइनोसाइटिस चीज़ क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
0: जी
1: हमारे जो फेस में कुछ एयर के पॉकेट्स हैं जो
0: ओके
1: हमारी स्कल को, हमारे फेस को लाइट रखते हैं और उसमें रेजोनेंस का काम करते हैं। अगर नोज की वजह से इनके छिद्र ब्लॉक हो जाएं, मीन्स कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद इनके छिद्र ब्लॉक हो गए, तो इनमें अपना ही स्वतः ही इन्फेक्शन आ जाता है, साइनोसाइटिस बन जाता है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: इन्फेक्शन इन साइनसिस को हम साइनोसाइटिस बोलते हैं।
0: ओके
1: यूजली ये पहले से कोई और इन्फेक्शन नोज में रहा होता है या पेशेंट को एलर्जीज रही होती हैं,
0: जी
1: उसके बाद ये बनते हैं साइनोसाइटिस।
0: ओके. अच्छा, जैसे आपने बताया कि तापमान अचानक से चेंज होता है इन दिनों में, हम गर्मी से कमरे में आते हैं, वहाँ एसी चल रहा है, हमारी बॉडी ठंडी होनी शुरू होती है, हम अपने मन में ये समझ लेते हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, हमें गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं वो हमारी किसी परेशानी का सब कारण बन सकता है. तो क्या एकदम से बाहर से अंदर आना, खासतौर पे बारिश के दिनों में, क्या ये सही नहीं है? साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों एनवायरनमेंट में बहुत नए नए वायरस आ गए हैं, खासतौर पे जब से हमने हमारी जो सारी दुनिया है कोविड से निकल कर आई है, तो ये नहीं पता चलता कि ये जो इन्फेक्शन है ये कोविड से जुड़ा हुआ है या ये आम फीवर या इन्फेक्शन की समस्या है या कुछ और है, इसे कैसे पहचाने?
1: ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन को 2-3 भाग में डिवाइड कर लेता हूँ।
0: जी
1: पहले भाग में हम बात करते हैं कि हम सपोज भीग गए हैं और हम वापस घर पहुँचे हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो यह है कि हमें तुरंत जाके एसी वाले कमरे में या एसी के सामने नहीं बैठना चाहिए। हम बाहर से यूजली आते हैं तो बाहर काफ़ी ह्यूमिड है, हमारा स्वेट जो बन रहा है वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, वो उड़ नहीं रहा है। अगर इवेपोरेट जब तक नहीं होगा, हमारी बॉडी कूल नहीं होगी।
0: जी
1: कूलिंग तभी होती है जब इवेपोरेशन होती है। अब इवेपोरेशन तो काम नहीं करा, तो
0: बिल्कुल
1: हमने क्या किया, हम एसी में गए और वहाँ जाके कूल होने की कोशिश की। बॉडी को हम कूल कर रहे हैं बाय जस्ट एसी।
0: जी
1: अब एसी का टेम्परेचर टोटली डिफरेंट है बाहर से। बाहर 37 डिग्रीज था, अब अंदर आपने 20 पे बैठे हैं, तो सडन जो शिफ्ट आया वो आपकी बॉडी को तो कूल लग रहा है पर आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी सप्रेसिव लग रहा है, उसको
0: ओके
1: दबा रहा है।
0: दबा रहा है
1: तो हम भीगे हुए हैं और हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, एनर्जी हमारी पहले से ड्रेन्ड आउट थी
0: जी
1: बिकॉज हम बाहर भीग कर आए थे, तो काफ़ी सारी एनर्जी हमारी ख़त्म हो गई थी। तो इस समय में तुरंत एसी चलाना सबसे बड़ी गलती है।
0: ओके
1: तो हमें ख्याल रखना है, या पहले हम कपड़े चेंज कर लें अपने और उसके बाद मे बी हम फैन के नीचे, या फिर एसी चलाएं तो उसका टेम्परेचर ऐसा रखें लाइक 27-28
0: ओके
1: थोड़े समय के लिए,
0: जी जी जी
1: ताकि हमारी बॉडी उस पर अडेप्ट कर पाए।
0: ओके
1: तो ये तो रहा पहले हिदायत की, भाई हम भीग गए तो हमें क्या करना है उसका। दूसरा भी है कि सपोज बाई चांस हमारे को इन्फेक्शन कैच ही कर ही गया, बिकॉज वायरसेज आपने से कहा कि बहुत सारे आ रहे हैं इस सीजन में, वो आते हैं, आपने बताया कोविड का नाम भी लिया, कोविड भी आ रहा है। अब कोविड भी एक नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया, हम उससे
0: जी
1: डील कर पा रहे हैं, एवरीबडी इज एबल टू डील विद इट। पहले एक बहुत भयंकर इन्फेक्शन हुआ करता था, आज की डेट में हम सब डील कर पा रहे हैं,
0: जी
1: हमें पता भी नहीं चल रहा है।
0: जी
1: पर कोई इन्फेक्शन 3 से 5 दिन से ज़्यादा चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, फीवर की स्पाइक्स ज़्यादा आ रही हैं, मीन्स कि 100 से ऊपर ज़्यादा बुखार जा रहा है, बॉडी एक्स ज़्यादा हो रही हैं, और साथ में कोई और सिम्टम जैसे नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है, या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सांस उखड़ रही है,
0: ओके
1: देन दिस माइट

0: ये सिम्टम कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: जी जी
0: आप घर
1: जी
0: पे बैठ के अपना इलाज नहीं कर सकते
1: जी
0: हैं, आप वेट नहीं कर सकते कि नॉर्मल इन्फेक्शन चला जाए, तो ये ख्याल रखना है।
1: तो सर क्या इनके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं इन्फेक्शंस के लिए, कौन से
0: नहीं
1: टेस्ट करवाने चाहिए इन दिनों?
0: देखिए, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। आप सपोज आप कान का इन्फेक्शन की बात कर लें,
1: जी
0: कान का इन्फेक्शन जो है पेशेंट को सबसे कॉमनली ऑटोमाइकोसिस हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: इची कैनाल्स, कान में खुजली होना,
1: जी जी
0: कान
1: सर
0: में खुजली जो होती है इस सीज़न में काफ़ी कॉमन है, पर अगर खुजली हद से ज़्यादा है और वो 2-3 दिन चलती रहती है और उसके बाद उसको थोड़ा सा डिस्चार्ज या मवाद आना शुरू हो जाता है
1: जी
0: और उसके बाद अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है उसके बाद उसको दर्द भी शुरू हो जाता है, ये 3-4 दिन के अंदर सब कुछ हो जाता है,
1: जी
0: दैट इज़ अ टाइम द पेशेंट शुड अंडरस्टैंड। उसको समझना पड़ेगा कि ये मुझे अपने आप नहीं ठीक हो सकता है, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा।
1: जी
0: डॉक्टर यूजली देखता है तो उसके अंदर फंगस होता है और फंगस को वो क्लियर करता है सक्शन करके या निकाल के, और अपनी एंटी फंगल ड्रॉप्स वगैरह देते हैं।
1: जी
0: तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर हम नहीं करेंगे तो आगे काफ़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं। मैं एक और
1: जी
0: भी
1: जी
0: ऐड करना
1: बिल्कुल
0: चाहूँगा
1: बिल्कुल
0: इसमें
1: बताइए जी
0: कि ओटाइटिस एक्सटर्ना एक स्विमर्स ईयर नाम की बीमारी भी होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: स्पेशली जो हमारे बच्चे ईयर प्लग्स लगाते हैं और काफ़ी समय के लगाते हैं इस
1: जी
0: मॉइस्चर वाले सीजन में, तो ये काफ़ी कॉमन है। स्क्रैच करने पर हल्का सा भी मॉइस्चर रिटेन अगर है अंदर तो पेशेंट्स को काफ़ी कॉमनली स्विमर्स ईयर हो सकता है।
1: तो सर उसके लिए क्या बचाव है?
0: देखिए, हम यंग जनरेशन की बात करें तो मैं तो इसमें कहूँगा इस सीज़न में ईयर प्लग्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए,
1: जी
0: बिकॉज़ ये मॉइस्चर रिटेन करते हैं अंदर,
1: ओके
0: बिकॉज मॉइस्चर बाहर इवेपोरेट नहीं हो। तो मैं एडवाइस करूँगा इसमें तो इस सीज़न में स्पीकर से बात करना ज़्यादा ज़रूरी अच्छा रहेगा
1: ओके
0: रादर
1: जी
0: देन ईयर प्लग्स को यूज़
1: जी
0: करें।
1: जी जी
0: अगर करना भी पड़ता है तो अपने यूज़ करें, पहली बात तो ये,
1: बिल्कुल
0: किसी से शेयर ना करें
1: जी
0: और लंबे पीरियड्स के लिए ना हो, हाफ एन आवर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है, जब सुबह हम नहा के निकलते हैं तो कान को ड्राई ज़रूर करें। जैसे हम यूजली पहले तो हमारी हैबिट थोड़ी सी रही है पहले कि हम कई लोगों की कि वो ईयरबड्स डाल के क्लीन करते हैं, एक साफ़ रुमाल लेके हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके उंगली से उसको बाहर बाहर से साफ़ कर लें, तो ये
1: जी
0: करना बहुत ज़रूरी है, जो पानी कान में गया हो वो बाहर निकल जाए और वो कान सूख जाए और हम रेडी हो जाएं पूरा दिन जो मॉइस्चर है उससे फेस करने के लिए।
1: अच्छा सर, ये आपने बताई बात कान की, यदि हम नाक की बात करें तो कुछ लोगों को नाक बंद रहने की समस्या जब होती है तो वो नेजल स्प्रे का प्रयोग करते हैं,
0: जी
1: इस ये कितना सुरक्षित है?
0: देखिए, नेज़ल स्प्रेज बहुत तरीके के आते हैं और मैं अभी आपके माध्यम से ये अपने श्रोताओं को बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हमें ओवर द काउंटर ड्रग्स को मिसयूज़ नहीं करना है। लोग हमारे पास आते हैं कई पेशेंट्स की जो नेज़ल कंजेशन वाली बीमारी है, नाक बंद रहने वाली बीमारी जो है, उसमें नेज़ल ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं, वो ड्रॉप्स लंबे समय से चल रही हैं। वो नेज़ल ड्रॉप्स जो हैं वो एक्चुअली एक दवाई होती है ज़ाइलोमेटाजोलिन, वो होती है, उसका एक इंडिकेशन है कि हम 7 दिन से ऊपर नहीं डाल सकते और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाएंगे। सो हमें अपने आप से दवाइयाँ नाक में डालने की नहीं यूज़ करनी है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही स्टार्ट करना है।
1: बारिश के मौसम में गले में खराश, आवाज़ का बदलना या आवाज़ का भारी होना और दर्द आम परेशानी है, जैसा कि अभी आपने कहा, तो इसके कारण भी आपने बताए, तापमान में एकदम से बदलाव। और लेकिन इस तरह की कोई भी परेशानी होती है तो लोग अपने आप से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, तो ये कितना सेफ है और क्या उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए?
0: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, नॉर्मली जो ये इन्फेक्शंस हैं सब वायरल इन्फेक्शंस हैं,
1: जी
0: 90% से ऊपर इन्फेक्शंस वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो हमें इसमें एंटीबायोटिक तो खानी ही नहीं है, पहली बात कोई असर ही नहीं आएगा।
1: जी
0: इनका अपना एक माइल्ड सा कोर्स रहता है, वो 3 to 5 days में वो ठीक हो जाते हैं।
1: ओके
0: अगर उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तब आप डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए कि मे बी मुझे कुछ और इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। उससे पहले आप घर पे क्या कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है,
1: बिल्कुल
0: सबको समझ आना चाहिए,
1: हाँ,
0: है
1: मतलब
0: ना?
1: जैसे आपने बताया कि 3 से 5 दिन में वो ऑटोमेटिकली ठीक हो
0: ठीक हो
1: जाएगा,
0: जाएगा।
1: तो उन 3 से 5 दिनों
0: बिल्कुल
1: में ऐसी क्या चीज़ें हम करें, क्या सावधानियां बरतें और किस तरह से हम घरेलू उपचार से उनका बचाव कर सकते हैं?
0: ठीक है, सबसे ज़रूरी है हमें रेस्ट करना है,
1: ओके रेस्ट इन
0: तक
1: द सेंस,
0: हमें एक तरह से बेड रेस्ट लेना पड़ेगा
1: अच्छा
0: ताकि हम अपनी बाहर की एक्टिविटीज़ कर्टेल करें। बेड रेस्ट का मतलब बाहर की एक्टिविटीज़ कर्टेल करना,
1: ओके
0: यानी हम लेटे हुए हैं, हम बाहर की एक्टिविटीज़ कर्टेल कर रहे हैं,
1: जी
0: जितना एक्सर्ट करेंगे वायरल इन्फेक्शंस उतना टाइम लगाएंगे ठीक होने। तो रेस्ट लेना इज नंबर 1,
1: ओके
0: आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। दूसरा, हमारा वायरस लोड जो है वो सारा नोज़ में और हमारे साइनस में, थ्रोट में है, उसको हम कम करें। कम कैसे कर सकते हैं? हम सलाइन नेजल ड्रॉप्स डाल सकते हैं, विच आर टोटली सेफ, 5-6 बार डाल सकते हैं।

0: हमारी कंजेशन भी कम होगा। तीसरा यह है कि हम स्टीम लें, स्टीम से हमारे साइनसेस काफ़ी सेफ रहते हैं, उनका जो क्लियरेंस पाथवे रहता है वो बना रहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। और अगर हमारे गले में थोड़ा इचीनेस हो रहा है तो हम सुबह शाम नमक के पानी के, गुनगुने पानी के गरारे भी कर सकते। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा जो हमारे पुराने नुस्खे थे, जैसे हम शहद में थोड़ा अदरक डाल के कुछ लेते थे, ये बहुत इफेक्टिव है। और कई पेशेंट मेरे आते हैं, मुझे बताते हैं कि सर हमने ऐसा किया तो हमें बड़ा बेनिफिट आया। तो मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, पर उनके एक्सपीरियंस से मैं समझाऊंगा एक्चुअली दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, जो हम पहले फॉलो करते आ रहे थे करना अच्छा रहेगा। साथ में कुछ विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट साथ पे लेंगे तो आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी।
1: सर एक सवाल छोटे बच्चों से जुड़ा मेरे मन में और आया है कि इन दिनों में अक्सर ज्यादातर ये जो ईएनटी इन्फेक्शन होता है छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देखकर हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए?
0: देखिए ऐसा है, बच्चों में हम दो प्रकार के इन्फेक्शन बड़े कॉमनली देखते हैं इस सीजन में। एक तो है कान का इन्फेक्शन, ये कान का इन्फेक्शन मतलब अंदर वाले कान का इन्फेक्शन, जिसको मिडलियर इन्फेक्शन बोलते हैं या ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिसमें एक्यूटली इन्फेक्शन हुआ मिडलियर में, इसमें इन्फेक्शन जो होता है नाक में और गले में इन्फेक्शन होने की वजह से ये कान में इन्फेक्शन चला जाता है। एक ट्यूब होती है इसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, मैं ये नाम दोबारा बोलना चाहूँगा, यूस्टेशियन ट्यूब। तो ये 3.5 सेंटीमीटर की छोटी सी ट्यूब है जो बड़ा अच्छा काम करती है एयर वेंटिलेशन करने का हमारे कान में, नोज और थ्रोट को कनेक्ट करते हुए। बट ये स्रोत भी बनती है, डक्ट भी बनती है जहाँ से इन्फेक्शन कान में ट्रेवल कर सके। तो बच्चे यूजली जो बहुत छोटे बच्चे हैं और जो मम्मी का अपने मदर का दूध का सेवन कर रहे हैं या बॉटल से दूध ले रहे हैं, अगर उनका पोजीशन ठीक नहीं है फीडिंग के टाइम पे, अगर उनका हेड का पोजीशन ऊपर नहीं है नीचे की तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो इन्फेक्शन इन बच्चों में आराम से कान में ट्रैवल कर सकते हैं। और प्लस इस उम्र में इन्फेक्शन ज़्यादा भी होते हैं। सेकेंड सब ग्रुप आता है पेशेंट, जो बच्चे हमारे स्कूल जाना शुरू करते हैं 4 साल 5 साल के बच्चे, वो बच्चे जो होते हैं वो सडनली अलग बाकी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पहले घर में थे अब बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो उन सब की जो वायरस लोड है बैक्टीरियल लोड है उनके साथ में इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तो उनका सडन स्पाइक ऑफ इन्फेक्शन आता है। इन्फेक्शन का लोड एक होने बड़े बढ़ने की वजह से उनमें इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो इन बच्चों में भी कान के इन्फेक्शन कॉमनली आते हैं।
1: बरसात के दिनों में इस दौरान ट्रैवलिंग के दौरान ईएनटी इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है, तो इस दौरान किसी भी व्यक्ति को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: देखिए अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, जो हमें करना भी चाहिए बिकॉज हम काफ़ी स्वस्थ रहते हैं उनसे, बिकॉज हमारी काफ़ी मूवमेंट हो जाती है, तो मैंने खुद देखा है कि जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो सेकंड ये है कि हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी क्राउडेड इन्वायरमेंट फेस करेंगे, हम एंटिसिपेट करेंगे, तो हमें उस समय मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस सीज़न में अगर आपको इन्फेक्शन पहले भी ज़्यादा होते रहे हैं और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, मास्क इज़ अ वेरी गुड आइडिया। तो मास्क आप डेफिनेटली यूज़ करें, उससे आपका संक्रमण जो है उस इन्फेक्शन का काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा, घर आके आप, मैंने जैसे बताया सलाइन नेजल ड्रॉप्स आप यूज़ कीजिए, घर वापस आके आप एक बार गुनगुने पानी से गरारे कर लीजिए, वो जो हमारा हमने सारा दिन का जो लोड लिया है वायरसेस का बैक्टीरिया का, वो सडनली वॉश आउट हो जाएगा।
1: गुनगुने पानी में नमक डालना जरूरी है या सादे?
0: हाँ जी, नमक डालना थोड़ा सा जरूरी है, तो वो डिहाइड्रेट करता है बैक्टीरिया को, तो उनको नष्ट करने में ज्यादा सहायक है, तो इसलिए हम वो एडवाइस करते हैं कि साथ में थोड़ा नमक भी डाल। तो ये करेंगे, अगर फिर भी संक्रमण हो रहा है विच इज नेचुरल, अगर हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो घबराएं नहीं, नेचुरल ये आराम से ठीक हो जाते हैं, 99% इन्फेक्शंस तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपने इतने सारे अच्छे अच्छे टिप्स दिए, बहुत सारी जानकारी दी, ईएनटी से जुड़े हुए हमारे बहुत से सवालों का जवाब दिया, जो मुझे लगता है हमारे जो लिसनर्स हमें सुनेंगे उनकी सभी क्वेरीज का समाधान हो गया होगा। लेकिन चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से मामले हैं जिन पर घर पर सामान्य देखभाल पर्याप्त है और कौन से मामलों में हमें तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए?
0: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमें कहाँ वेट नहीं करना है। देखिए एक तो कॉमन कोल्ड है, फिर एक फ्लू आता है, फ्लू थोड़ा एग्रेसिव फॉर्म इन्फेक्शन है। तो अगर फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्या, कि एकदम से बुखार जो है बहुत तेज से आ रहा है, हमारे को ज्यादा बुखार आ रहा है, बॉडी एक बहुत ज्यादा है और हम उठ नहीं पा रहे हैं, उसके बाद हमारा सांस भी उखड़नी शुरू हो रही है, ये सिम्टम्स हैं कि हमारे को नॉर्मल कोल्ड इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो राइनो वायरस वाला इन्फेक्शन नहीं है, ये हमारे को थोड़ा सिवियर वाला इन्फेक्शन है, इसमें हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि ऐसे पेशेंट जिनको हर साल इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है और वो एल्डरली हैं, साथ में वो डायबिटिक भी हैं, तो फ्लू शॉट उनके लिए कोई खराब

0: सलाह नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फ्लू का शॉट लेने से काफ़ी कम रहता है ऑफ कैच करने का एपिसोड आफ्टर टेकिंग दिस. तो फ्लू वैक्सीन्स आर अवेलेबल, वो हम ले सकते हैं, और स्पेशली एल्डरली एज ग्रुप्स में उससे ये प्रॉब्लम्स काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगे.
1: क्या इनसे जुड़ा कोई वैक्सीन या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है कि जो पेशेंट्स हैं उनको कुछ
0: यस,
1: फायदा हो?
0: अभी वैक्सीन्स बहुत सारी आ गई हैं रिसेंटली. अभी स्प्रे फ्लू वैक्सीन भी आ गई है, उसमें अभी जो हमारे लेटेस्ट लिटरेचर है उसमें वो 50 साल तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, इट्स नॉट फॉर दी एल्डरली एज. तो 2 साल से लेकर 50 साल तक सिर्फ नेजल स्प्रे फ्लू वैक्सीन भी अवेलेबल है मार्केट में.
1: तो वो किस तरह से काम करती है?
0: वो एक तरह से हमारा वायरस है जिसको बहुत ही शक्तिहीन कर दिया गया है, वो हम स्प्रे करते हैं. वायरस तो है, वायरस ही है, बॉडी रिकॉग्नाइज करती है वायरस है, बट वायरस खुद अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है. तो बॉडी अब उसके आने की वजह से अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है इम्यूनिटी को बढ़ा देती है. तो हम पहले से ही इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने की वजह से सिक्योर हो जाते हैं.
1: तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये सारी बातें हमारे लिसनर्स को इस मानसून में अपनी और अपने परिवार की ENT हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आप सभी का बहुत बहुत श्रोताओं, नवजात शिशुओं की देखभाल और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। नवजात में होने वाले रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उनके देखभाल मानकों में सुधार करने और विशेषज्ञों के बीच संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम करता है नेशनल नियोनेटल फोरम। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं NNF इंडिया के प्रेसिडेंट और JPCH हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली के शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर लल्लन के भारती।
2: NNF यानी नेशनल न्यूनेटोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया, यह भारत में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। NNF का उद्देश्य है कि देश के हर नवजात शिशु को जीवन की सुरक्षित और स्वस्थ शुरुआत मिले। इसके लिए हम डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं, नवजात देखभाल के मानक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, शोध को बढ़ावा देते हैं और सरकार तथा अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं, सो दैट कि न्यूनेटल मोर्टैलिटी कम हो। मिनिमम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर दिल्ली में पैदा हुआ तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले और कोई बच्चा बहुत दूर दरार गांव में हुआ तो वहां ना मिले। तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि हर एक जगह एक मिनिमम न्यूनेटल स्टैंडर्ड से बच्चों का देखभाल हो। NNF की सबसे महत्वपूर्ण पहल है न्यूनेटल रिसस्टेशन NRP, समय से पूर्व जन्मे शिशु का देखभाल, जैसे जिसका कि हमने अभी बताया KMC, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, इन्फेक्शन का रोकथाम के लिए काम करना और NICU की गुणवत्ता को सुधार करना। हमारा एक्रीडेटेड सेंटर है, हमारे पूरे देश में NNF का 300 से ज्यादा एक्रीडेटेड सेंटर है। इसका ये मतलब हुआ कि उस सेंटर में एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया मैंडेटरी क्राइटेरिया वो हॉस्पिटल फुलफिल कर रहा है तभी हम लोग उसको सर्टिफाइड करते हैं। तो उस सेंटर पर जाकर के लोग अपने बच्चे को रख सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो हमारा विश्वास है कि हर नवजात का जीवन अनमोल है और सही देखभाल सही समय पर सही हाथों से मिलनी चाहिए, यही NNF का संकल्प। NRP का पूरा नाम है न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है जन्म के समय हर नवजात शिशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार सही देखभाल मिले। अक्सर लोग सोचते हैं NRP केवल उन बच्चों के लिए है जो जन्म के बाद नहीं रोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 90% न्यूबॉर्न जन्म के बाद अपने आप रोते हैं और सामान्य रूप से सांस लेते हैं। NRP हमें यह भी सिखाता है कि ऐसे स्वस्थ बच्चे को भी एसेंशियल न्यूबॉर्न कैसे दिया जाए। इसमें बच्चों को गर्म रखना, मेंटेनिंग टेम्परेचर, देर से नाल काटना, दैट इज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जन्म के पहले 1 घंटे में माँ का दूध शुरू करना, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के साथ साथ इन्फेक्शन ना हो, वो सारी बातें भी NRP में सिखाई जाती है। यहीं पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि करीब 10% न्यूबॉर्न जन्म के समय नहीं रोते हैं, मतलब सांस नहीं ले पाता है, तो उसे हमें एयरवे, जिससे कि सांस हवा जाती है तो एयरवे को

0: बोलना या सांस देने में मदद करने की जरूरत होती है, तो वो भी हमें एनआरपी के थ्रू सिखाया जाता है। और लगभग 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिसे कि एडवांस एनआरपी की जरूरत होती है, जिसमें कि हमें चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ता है या मेडिकेशन देना पड़ता है, वो बहुत ही कम बच्चे हैं। सो यही कारण है कि एनआरपी केवल रिसस्टेशन ही नहीं सिखाता है, बल्कि हर न्यूबॉर्न के लिए सही, सुरक्षित और एविडेंस बेस्ड केयर देना सिखाता है, ताकि हर बच्चे को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत मिल सके। हमने 10 मई को एनआरपी डे फॉर द फर्स्ट टाइम मनाया, जो कि वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मना, और यह भारत की पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक नेशनल मिशन के रूप में एनआरपी डे हमने मनाया। एक ही दिन पूरे देश में हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोग्राम का ट्रेनिंग दिया हम लोगों ने। यह अभियान का उद्देश्य केवल ट्रेनिंग देना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि देश के हरेक लेबर रूम या डिलीवरी सेंटर में कम से कम एक एनआरपी ट्रेन पर्सन उपलब्ध हो, ताकि जरूरत पड़ने पर हर नवजात शिशु को जन्म के पहले ही मिनट में सही सांस दिया जा सके। यह अभियान पूरे देश में एक दिन में मनाया गया, वन डे वन नेशन वन मिशन के रूप में चलाया गया, जिसमें 11,000 से अधिक सेंटर्स, 2,000 से अधिक इंस्ट्रक्टर तथा 27,000 से अधिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेन किया गया। यह भारत में न्यूबॉर्न केयर के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पहल रही, और ये पूरे वर्ल्ड में कभी भी 27,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एक दिन में फिजिकल रूप से ट्रेनिंग नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं था कि ये ट्रेनिंग सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में दिया गया, देश के कोने कोने, अरुणाचल प्रदेश हो या कहीं भी, आप कोई भी शहर का नाम लीजिए, छोटे से छोटे शहर में जहां हमारा मेंबर्स है, वी आर हैविंग 15,000 मेंबर, उन्होंने इसका ट्रेनिंग दिया। और इस ट्रेनिंग में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉक्सी, सारे साथ मिलकर के हमें हेल्प किया। और ये ट्रेनिंग तो हमने अभी दिया, लेकिन इसका असर हमें 10 साल तक देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप NNF इंडिया के प्रेसिडेंट और JPC अस्पताल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी न्यू दिल्ली के शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललन के भारती से जानकारी प्राप्त कर रहे थे नेशनल न्यूनेटल फोरम के बारे में। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सबरस कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 11:10 पर, 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी होगा। इसमें हम आपको सुनाएंगे सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल, कलाकार होंगे ध्रुव। इसके अलावा आप सुन सकते हैं महिला कार्यक्रम 12:10 पर घर आंगन। दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे फिल्म चांदनी के कुछ चुनिंदा गीत। एक ही कलाकार कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 2:30 पर। इसमें आप सुनिएगा पिंटल पर फिल्माए गए कुछ गीत। ब्रजमाधुरी का समय रहेगा दिन में 3:00। दिन में 3:30 पर आप सुन सकेंगे नाटक बिरसा मुंडा। इसकी लेखिका हैं रेणुना राणा और निर्देशक और प्रस्तुति काजल सूरी की है। रोजगार समाचारों का समय रहेगा दिन में 4:30 पर। और इसके अलावा आप सुन सकते हैं कार्यक्रम लोक रंजनी दिन में 5:10 पर। खेल खिलाड़ी खेलों की जानकारी लेकर आएंगे सिमरन और हेमंत कुमार। वक्त रहेगा शाम 5:30 पर। इसके अलावा आप सुनेंगे 6:10 पर कार्यक्रम चहल पहल। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम संसार होगा 6:30 पर और 7:05

0: पर सुनिए का कार्यक्रम किसान वाणी। गजलों और कवालियों का कार्यक्रम का समय रहेगा 7:35 पर। और इसके अलावा हम आज आप सुन सकते हैं अखिल भारतीय विज्ञान पत्रिका का कार्यक्रम विज्ञान भारती रात 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS कोलकाता से 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत प्रोफेसर शेखर सी मांडे की यात्रा सुनाई जाएगी। इसके अलावा आप सुन सकते हैं रोबोटिक्स और कृत्रिम मानव पर बातचीत। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए आप सुनती हैं हमारा कार्यक्रम धरती आकाश।
1: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध तिवारी है। मैं एक विज्ञान लेखक एवं विज्ञान संचारक हूँ। मैनग्रोव एक झाड़ी या पेड़ होता है जो मुख्य रूप से तटीय खारे या कम खारे पानी में उगता है। मैनग्रोव भूमध्य रेखीय जलवायु में उगते हैं, आमतौर पर समुद्र तटों और ज्वारीय नदियों के किनारे पाए जाते हैं। उनमें अतिरिक्त ऑक्सीजन लेने और नमक निकालने के लिए खास तरह की अनुकूलन क्षमता होती है, जिससे वे कठिन मौसमी परिस्थितियों को भी सहन करने में सक्षम होते हैं। मैनग्रोव न केवल मुश्किल परिस्थितियों में जीवित रहने में कामयाब होते हैं, बल्कि मैंग्रोव इकोसिस्टम जीवों की एक अविश्वसनीय विविधता को भी सहारा देता है, जिसमें कुछ ऐसी प्रजातियां भी शामिल हैं जो केवल मैंग्रोव जंगलों में ही पाई जाती हैं। वैज्ञानिक अपने शोध से यह पता लगा रहे हैं कि मैंग्रोव दलदली क्षेत्र किस प्रकार मानव जगत के कल्याण और इस ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव शब्द का इस्तेमाल ऐसी प्रजातियों से बनी उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति के लिए भी किया जाता है। कई पौधों के परिवारों में अभिसारी विकास के कारण मैंग्रोव वर्गीकरण की दृष्टि से बहुत विविध होते हैं। मैंग्रोव पौधों के परिवार सबसे पहले क्रेटेशियस से पेलियोसीन युग के दौरान दिखाई दिए और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण बड़े पैमानों पर फैल गए। मैंग्रोव ताड़ के सबसे पुराने ज्ञात जीवाश्म 75 मिलियन वर्ष पुराने माने जाते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से सुंदरबन, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, तटीय संवेदनशीलता और कार्बन प्रबंधन के कारण इनकी खेती और इनका पुनरुद्धार अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मैंग्रोव पृथ्वी के सबसे अधिक उत्पादक और जैविक रूप से जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों में से हैं। यह जमीन और समुद्र को जोड़ने वाले एक पुल का काम करता है। हालांकि तटरेखा के साथ साथ ज्यादातर जगहों पर इनकी मोटाई कुछ मील से भी कम होगी, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में ये विशाल जलीय जंगल हैं। भारत की तटरेखा लगभग 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, जिसमें मैंग्रोव के विकास के लिए उपयुक्त विस्तृत मुहाने, डेल्टा, लैगून और कीचड़ भरे मैदान मौजूद हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी विशाल नदी प्रणालियां लगातार गाद जमा करती रहती हैं, जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देती हैं। समुद्र के किनारे रहने के कारण मैंग्रोव को लहरों और ज्वार भाटा के पास होने से उनके प्रजनन में मदद मिलती है। अधिकतर पौधों के बीज तब तक सुप्त अवस्था में रहते हैं जब तक कि वे किसी अनुकूल वातावरण में बिखर नहीं जाते, लेकिन मैंग्रोव के साथ ऐसा नहीं है। मैंग्रोव के नए पौधे अपने मूल पेड़ से जुड़े रहते ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। पौधों के प्रजनन की इस प्रक्रिया को विविपरी कहा जाता है। मैंग्रोव के फूलों में परागण होने के बाद पौधे बीज पैदा करते हैं जो तुरंत ही अंकुरित होकर छोटे पौधे का रूप लेने लगते हैं। इन छोटे पौधों को प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। राइजोफोरा जाति के प्रोपेग्यूल्स अपने मूल पेड़ से अलग होने के एक साल बाद तक भी बढ़ने की क्षमता रखते हैं, जबकि सफेद मैंग्रोव के प्रोपेग्यूल्स 24 दिनों तक तैर सकते हैं। हालांकि 8 दिनों के बाद उनमें जड़ पकड़ने की क्षमता कम होने लगती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से राष्ट्रीय तटीय मिशन, हरित भारत मिशन तथा एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए हैं। राष्ट्रीय तटीय मिशन के अंतर्गत मैंग्रोव और कोरल रीफ के संरक्षण पर प्रबंधन कार्य योजना, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा तटीय पर्यावरण और सौंदर्यीकरण प्रबंधन सेवा शामिल है। राष्ट्रीय तटीय मिशन योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 हेतु केंद्र सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हरित भारत मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय

योजना के 8 प्रमुख मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के वनों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और विस्तार करना है। 1950 के दशक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तटीय गांवों और समुद्र के बीच लगभग 5 मील का मैंग्रोव जंगल हुआ करता था। आज वे गांव बिल्कुल पानी के किनारे बसे हैं, जो आने वाले तूफानों का सीधा निशाना बन सकते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि मैंग्रोव जंगल तटीय तूफान से होने वाली मौतों की संख्या को लगभग 2/3 कम कर सकते हैं। उसी अध्ययन में यह उल्लेख किया गया कि जैसे जैसे मैंग्रोव की चौड़ाई कम हुई, तटीय तूफानों से होने वाले मौतों की संख्या बढ़ती गई। मैंग्रोव समुद्र और जमीन के बीच एक प्राकृतिक बफर के तौर पर काम करते हुए तटीय इलाकों को प्राकृतिक आपदाओं यथा चक्रवात, तूफानी लहर, तटीय कटाव तथा सुनामी से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैंग्रोव के जंगल हवा को रोकने वाली दीवार की तरह काम करके तेज चक्रवाती हवाओं के असर को कम करते हैं। इनके घने पेड़ों की ऊपरी परत और तने पवन ऊर्जा को सोख लेते हैं और उसे कम करते हैं। मैंग्रोव कई तरह की चीजें और सेवाएं देकर लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये कई तरह की मछलियों, झींगों और केकड़ों के लिए प्रजनन, पालन पोषण और भोजन करने की महत्वपूर्ण जगहें हैं, जिससे मछली पकड़ने और मछली पालन के काम को बढ़ावा मिलता है। मैंग्रोव के फूल मधुमक्खियों को रस देते हैं, जिससे शहद इकट्ठा करने और मधुमक्खी पालन के काम में मदद मिलती है। इनकी भरपूर जैव विविधता और सुंदर नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे इको टूरिज्म वन्य जीवों को देखने और मनोरंजन की गतिविधियों के मौके बनते हैं। कई मैंग्रोव पौधों में औषधीय गुण होते हैं और इनका इस्तेमाल पारंपरिक इलाज के साथ साथ दवाइयों से जुड़े शोध में भी किया जाता है। भारत की ब्लू इकोनॉमी, जिसे नीली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यह रणनीतिक रूप से मैंग्रोव को कीमती तटीय संसाधन मानती है, जो आर्थिक विकास, पर्यावरण की स्थिरता और समुदाय की भलाई में योगदान देते हैं। मैंग्रोव को फिर से लगाने, उनके संरक्षण की पहल से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जैसे नर्सरी बनाना, जहां पौधारोपण कार्यक्रमों के लिए पौधे तैयार किए जाते हैं, और इको रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, जिनमें प्राकृतिक आवास का पुनरुत्थान और लंबे समय तक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन करना शामिल है। ये प्रयास उभरते हुए कार्बन क्रेडिट बाजारों में भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि मैंग्रोव बहुत असरदार कार्बन सिंक होते हैं और बड़ी मात्रा में कार्बन जमा कर सकते हैं। मैंग्रोव जैव विविधता से भरपूर पारिस्थितिक तंत्र है, जो कई तरह की प्रजातियों जैसे मछली, केकड़े, मोलस्क, प्रवासी पक्षी, सरीसृप और कई अन्य समुद्री व जमीन पर रहने वाले जीवों के लिए जरूरी आवास, प्रजनन स्थल और आश्रय प्रदान करते हैं। ये सुंदरबन में बंगाल टाइगर जैसी लुप्त प्राय और खास प्रजातियों को भी सहारा देते हैं। जड़ों और वनस्पतियों का जटिल जाल एक ऐसा उत्पादक वातावरण बनाता है, जो तरह तरह के खाद्य जाल और पारिस्थितिक क्रियाओं को बनाए रखता है। जैव विविधता का उच्च स्तर पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ाता है, जिससे मैंग्रोव इकोसिस्टम तूफान, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, तापमान में बदलाव और अत्यधिक मौसम की घटनाओं जैसे जलवायु संबंधित तनावों का बेहतर ढंग से सामना करने और उनसे उबरने में सक्षम होते हैं। इसलिए जैव विविधता की रक्षा करने और स्वस्थ व लचीले तटीय इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए मैंग्रोव का संरक्षण जरूरी है। भारत सामुदायिक भागीदारी, वैज्ञानिक प्रबंधन और नीति समर्थन के माध्यम से मैंग्रोव की खेती और संरक्षण को मजबूत कर सकता है। पारिस्थितिकीय स्थिरता और लंबे समय की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मैंग्रोव के पुनरुत्थान की कोशिशों में स्थानीय मैंग्रोव प्रजातियों के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गैर कानूनी कब्जे, प्रदूषण और प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए तटीय नियमों को सख्ती से लागू करना जरूरी है। मैंग्रोव संरक्षण को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीतियों और कार्बन क्रेडिट सिस्टम के साथ जोड़ने से सुरक्षा और पुनरुत्थान की गतिविधियों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिल सकता है। जन जागरूकता अभियान और स्कूली स्तर पर पर्यावरण शिक्षा से आने वाली पीढ़ियों में तटीय इकोसिस्टम के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा हो सकती है। इसके अलावा सैटेलाइट मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मैंग्रोव जंगलों की मैपिंग, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट को बेहतर बना सकता है। भारत में मैंग्रोव की खेती में अपार पारिस्थितिक और आर्थिक तथा जलवायु संबंधी क्षमता है। ये अद्वितीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्र मात्र जंगल नहीं है, ये तूफानों से बचाव के लिए प्राकृतिक अवरोध, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण आवास, आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत और कार्बन को अवशोषित करने में अत्यंत कुशल है। वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करके मैंग्रोव जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान देते हैं, जबकि तटीय कटाव को कम करने, तूफानी लहरों से बचाव करने और बढ़ते समुद्री जल स्तर के अनुकूल ढलने की उनकी क्षमता जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन को बढ़ाती है। प्रभावी संरक्षण नीतियों, वैज्ञानिक पुनर्स्थापन प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी
और तकनीकी निगरानी।

0: के साथ मैंग्रोव भारत की दीर्घकालिक पर्यावरण और तटीय प्रबंधन रणनीति का आधार बन सकती है।
1: मेरा नाम सतीश चंद्र झा है। आज का टॉपिक है वायु प्रदूषण कारण एवं निदान। वायु जीवन का सबसे पहला और अनिवार्य आधार है। एक स्वस्थ व्यक्ति भोजन और पानी के बिना कुछ दिन जीवित रह सकता है, लेकिन हवा के बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना असंभव है। दुर्भाग्य से आज जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वह धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। पहले यह माना जाता था कि वायु प्रदूषण केवल दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों की समस्या है, लेकिन आज यह छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामीण इलाकों के आंगनों तक भी फैल चुका है। विकास की अंधी दौड़, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, सड़कों पर गाड़ियों की अंतहीन कतारें और कल कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएं ने मिलकर हमारी आबो हवा को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। स्वच्छ और शुद्ध हवा जो कभी प्रकृति का एक सहज उपहार हुआ करती थी, आज एक दुर्लभ और गंभीर चुनौती बन चुकी है। इस प्रदूषण के मूल कारणों की बात करें तो हमारी आधुनिक जीवन शैली और दैनिक आदतें इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। सड़कों पर दौड़ते लाखों पेट्रोल और डीजल के वाहनों हर सेकंड वातावरण में जहरीली गैसें और काले धुएं के बारीक कण छोड़ते हैं। बड़े शहरों में घंटों लगने वाले ट्रैफिक जाम वातावरण की सांसों को और भारी बना देते हैं। दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र में बिना आधुनिक फिल्टरों के चलने वाली फैक्ट्रियां और कोयले से बिजली बनाने वाले ताप विद्युत संयंत्र लगातार वायुमंडल में विषैला धुआं उगल रहे हैं। ग्रामीण और उपनगरीय इलाकों में भी खेती की कटाई के बाद खेतों में जलाई जाने वाली पराली और चौराहों पर सुलगता प्लास्टिक व ठोस कचरा हवा में ऐसा दमघोटू स्मॉग पैदा करता है जो मीलों दूर तक पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। इसके साथ ही शहरों में दिन रात चलने वाले निर्माण कार्य, सड़कों पर उड़ती अनियंत्रित धूल और घरों में चूल्हे का धुआं मिलकर वातावरण की सांसों को और भारी बना देते हैं। इस जहरीली हवा का सबसे सीधा और विनाशकारी असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आज हर दूसरे घर में कोई न कोई व्यक्ति गले की खराश, सूखी खांसी, आंखों में लगातार जलन या सांस की तकलीफ से जूझ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा बेरहम होता है। हवा में तैरते बेहद बारीक कण सांस के जरिए फेफड़ों की गहराई तक उतर जाते हैं और वहां से सीधे खून में मिलकर दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं। लंबे समय तक इस प्रदूषित हवा में रहने से लोगों की काम करने की क्षमता घट रही है और उनकी औसत उम्र भी कम हो रही है। यह केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, बाग बगीचे और मासूम पशु पक्षी भी इस दमघोटू माहौल में बीमार पड़ रहे हैं। पत्तों पर धूल की मोटी परत जमने से उनका विकास रुक रहा है और पर्यावरण का पूरा संतुलन डगमगा गया है। इस संकट से निपटने के लिए सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर बड़े नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसे मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के नेटवर्क को इतना मजबूत, सुलभ और किफायती बनाया जाना चाहिए कि लोग अपनी निजी गाड़ियों के बजाय इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित हों। इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा जैसी स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देना अब विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को कागजों से बाहर निकाल कर जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करना होगा। शहरों में खाली पड़ी जमीनों पर सघन हरियाली विकसित करनी होगी और को खुले में जलाने की प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जब तक करे नियम और ईमानदारी निगरानी एक साथ नहीं काम करेंगे तब तक बड़े स्तर पर हवा को साफ करना संभव नहीं होगा। नीतिगत स्तर पर बदलाव के साथ साथ हमें व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर भी अपनी सुरक्षा के मजबूत उपाय अपनाने होंगे। जब बाहर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो तो बेवजह बाहर निकलने से बचें और जरूरत पड़ने पर अच्छी बनावट वाला सुरक्षात्मक मास्क जरूर पहने। अपने घरों के भीतर हवा की गुणवत्ता बेहतर रखने के लिए स्नेक प्लांट, एलोवेरा और मनी प्लांट जैसे पौधे लगाएं, जो प्राकृतिक रूप से कमरे की हवा को ताजा बनाए रखने में मदद करते हैं। अपनी रसोई की पारंपरिक और प्राकृतिक औषधियों को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह की शुरुआत तुलसी, अदरक और शहद के सेवन से करें ताकि गले की सूजन और सीने की जकड़न में आराम मिले। रात को सोने से पहले गुनगुनाते दूध में चुटकी भर हल्दी का सेवन फेफड़ों को अंदरूनी मजबूती देता है। दिन भर की धूल और कफ को बाहर निकालने के लिए शाम को गर्म पानी की भाप लें और

0: के लिए गाड़ी निकालने के बजाय पैदल चलने की आदत डालेंगे तो अपने जन्मदिन या खास मौकों पर कम से कम एक नया पौधा लगाएंगे और कचरे को जलाने के बजाय उसके सही निपटारे के प्रति जागरूक होंगे, तभी बदलाव की वास्तविक शुरुआत होगी। स्वच्छ हवा किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बुनियादी और प्राकृतिक अधिकार है और इसे बचाकर रखना समाज के हर एक नागरिक का परम कर्तव्य है।
1: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। अभी आप सुने थे धरती आकाश में वार्ता जलवायु परिवर्तन एवं आजीविका सृजन में मैंग्रोव का महत्व। वार्ताकार थे श्री अनिरुद्ध तिवारी, विज्ञान लेखक, और वार्ता प्रदूषण पर पर्यावरण का प्रभाव श्री सतीश चंद्र झा। और श्रोताओं, अब समय हो गया है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।

0: ਅਬਿਦਾ ਪਰਵੀਨ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਾਏ ਇਸ ਸੁਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ।
1: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने बताया है कि संशोधित नियमों के तहत इस महीने की 20 तारीख तक कुल 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं। ये निवेश सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सूचना और संचार, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, डेटा केंद्र और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्रों के लिए है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवम्बर तक लागू रहेगी। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कल नई दिल्ली में अपना 32वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले उपस्थित रहेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 20 सेकेंड। और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।

हाँ, दिल चाहता है। ये बहुत ही खूबसूरत गीत दिल चाहता है फिल्म से है, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ में। और हमारा भी आज वीकेंड है, सैटरडे है, शनिवार है, तो भाई हमारा भी दिल चाहता है कि अपनी सुबह की शुरुआत जो है वो आराम से करें, शांति से करें और खुशी के साथ करें। और यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस वक्त यही सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर वो साथी जो आज छुट्टी पर हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अभी भी दफ्तर में होंगे, अपना कुछ काम कर रहे होंगे या चोरी छुपे हमें सुन रहे होंगे। तो उन सभी साथियों से यही कहेंगे कि अगर आप दफ्तर में कुछ काम कर रहे हैं और छुट्टी के मूड में नहीं है, तो आप काम करते करते हमारे इस शो को ज़रूर सुने। लेकिन जिन साथियों की छुट्टी है भाई, वो तो चाहेंगे ना कि आज उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, तो आज उनका दिल यही चाह रहा होगा भाई सुकून से इस शनिवार को, जो वीकेंड है, इसको अच्छे से हम मनाएं। तो आज सुबह के काम तो आपने धीरे धीरे अभी करना शुरू ही किया होगा, हो सकता है नाश्ता कर लिया हो या अभी करने की तैयारी ही हो। तो कोई नहीं, अगर नाश्ते का मूड हो रहा है तो आप अपने नाश्ते को तैयार करते करते और अपने साथी के साथ चाय की चुस्कियों के साथ सुने हमारा ये कार्यक्रम। तो वीकेंड के मूड को आपके 100% ऑन करने के लिए भी तैयार हैं हम, आपके साथी जी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा, लेकर आई हूं आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम फिल्म संगीत। तो आप तैयार है ना हमारी इस फिल्म संगीत की गाड़ी में सवार होने के लिए, क्योंकि देखिए ड्राइवर के मूड में मैं तो हूँ आपके साथ और लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत। उम्मीद करती हूँ आपके चेहरे पर वो गीत ज़रूर मुस्कान लाएंगे और पैरों को ज़रूर थिरकाएंगे, और ऐसे गीत भी आप सुनेंगे जो शायद हो सकता है कि आपने बहुत दिनों से ना सुने हो। तो शनिवार को और ज़बरदस्त बनाने के लिए आप इस सुरों के सफर में सवार हो जाइए और अपनी गाड़ी जो है उसको, उसकी जो लगाम है वो मेरे पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अब फुल टू एंटरटेनमेंट का जिम्मा मेरा है। तो पूरे 11 बजे तक आप मेरे साथ रहें इस सफर में। ipradiodelhi@gmail.com इस पर आप भेज सकते हैं अपने संदेश। और आज मैं आपसे पूछूंगी क्या सवाल, चलिए ये सोचती हूँ इस गीत के बाद, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। कोई वो पहले से ना मैसेज ना भेजे जो आपने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है हर प्रोग्राम में जो आप भेजते हैं, मैं चाहती हूँ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमें लगे कि आप सचमुच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको थोड़ा भी टाइम दे रही हूँ रिलैक्स होने के लिए, आप थोड़ा सा पहले ये गीत सुने अगला, जो कि बहुत ही खूबसूरत गीत है जब वी मेट फिल्म से। उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हमारे इस सफर में हो जाएं सभी सवार।

जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये। और इस गीत को सुनते सुनते मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं आज आपसे ऐसा हल्का फुल्का सा सवाल पूछूं कि शनिवार है, जैसे कि क्योंकि हर बार हम आपसे ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिससे मैं आपको सोचना पड़ता है, और वैसे तो आपके बहुत अच्छे जवाब भी आते हैं, हम जुड़ते हैं प्रोग्राम के साथ, लेकिन आज ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है आपसे। आज मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहती हूँ आपसे कि हफ्ते के 5 दिन तो आप काम करते हैं, लेकिन शनिवार की सुबह आपके चेहरे पर जो पहली मुस्कान आती है, जी हाँ, जो आपके चेहरे पर शनिवार की सुबह की जो पहली मुस्कान होती है, वो किस चीज़ को देखकर आती है? चाय का कप, छुट्टी का एहसास, या रेडियो पर चलता आपका कोई फेवरेट ट्रैक? अगर ऐसा कोई आपका इनमें से कोई चीज़ है, या कोई और अन्य काम जो आप सोचते हैं कि अच्छा आज छुट्टी है, आज शांति सुकून होगा, आज सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, या सबसे पहली चीज़ वो ही आप उठकर देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं ipradiodelhi@gmail.com पर। और भी शनिवार का दिन है तो आज बहुत सारी प्लान भी होंगे आपकी, बहुत सारी आपने परिवार के साथ घूमने फिरने की मौज मस्ती के बहुत सारे प्लान बनाए होंगे, तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि भाई अगर आपको लगता है कि कहीं किसी ने बुलाया है तो ज़रूर जाएं, आप उससे मिलें, क्योंकि ज़िंदगी आजकल इतनी व्यस्त हो गई है, किसी के पास समय नहीं है कि वो थोड़ा सा भी समय निकाल कर कोई दावत दे या बुलाए, तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई बुलाता है, आइए बैठिए, तो चुपके से चले जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि जो आज आपको बुला रहा है बैठने के लिए वो कल बुलाए भी नहीं, क्योंकि कहते ना आज का समय बहुत व्यस्त व्यस्त से व्यस्ततम होने वाला है, या लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना व्यस्त कर लिया है, ये तो सभी जानते हैं किस तरह से वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं या कैसे जीवन को चला रहे हैं, लेकिन हाँ हल्का फुल्का साझा हम कार्यक्रम करने वाले हैं, और जिसमें हमने आपसे बहुत ही सिंपल से सवाल पूछे हैं, और एक अगला खूबसूरत सा गीत है, मुझे बहुत पसंद है ये गीत, कृष्णा कॉटेज फिल्म से है, श्रेया घोषाल की आवाज़ में। उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत बहुत पसंद आएगा, लेकिन साथ में ये भी उम्मीद है मुझे कि आपकी मेल्स भी आएंगी और आप बताएंगे कि शनिवार की सुबह उठकर आपको सबसे पहले क्या करना पसंद है। बहुत ही खूबसूरत गीत है साथियों, जरूर सुनिएगा आप इसे, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके सुनेंगे तो शायद आपको और ज्यादा अच्छा लगे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत अपनी दोस्त सुषमा के साथ, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

बहुत ही खूबसूरत गीत, जैसे कि मैंने कहा श्रेया घोषाल की आवाज़ में है और कृष्णा कॉटेज फिल्म से ये गीत था। और दोस्तों ऐसे ही खूबसूरत गीत, जैसे कि मैंने आज आपसे कहा था कि आज की सफ़र में आप हमारे हम सफ़र हैं हमेशा की तरह, और आपको सुनवाएंगे हम बहुत ही खूबसूरत गीत हमेशा की तरह। और देखिए, जो हमने सवाल पूछा था दोस्तों से कि आप सुबह उठकर क्या करना पसंद करते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेना पसंद करते हैं, खुली खुली हवा में थोड़ा अच्छा सा भ्रमण करना चाहते हैं, या यूँ कहें कि सुबह का वॉक करना चाहते हैं, या फिर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, और भी बहुत सारे काम जो आप करना चाहते हैं, तो उसी में से हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, ये हैं मुक्काम से कालेगांव जाफराबाद से, और ये हैं डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख और श्री सुधाकर जी हैं जिन्होंने ये संदेश भेजा है अपने अन्य साथियों के साथ। ये लिखते हैं कि आज छुट्टी होने की वजह से हम संभाजीनगर महाराष्ट्र ज़िले में जो आता है वहाँ जागृत हनुमान मंदिर है जो कि खुला होता है, और अपने पोते के साथ हम हनुमान जी के दर्शन के लिए जाएंगे, और ये हर बार यही करते हैं जब भी शनिवार को छुट्टी होती है इनकी, और सुबह सुबह इन्हें सबसे अच्छा लगता है रेडियो पर प्रोग्राम सुनना, और इन्हें हमारा प्रोग्राम भी पसंद आ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें हमारा ये प्रोग्राम। सुदर्शन मुखी हैं, इन्होंने भी अपना संदेश भेजा है, और सुदर्शन जी आपको बता दें कि आज कुसुम जी नहीं बल्कि सुषमा है आपके साथ, और ये कहते हैं कि हम कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी पसंद, शनिवार को और रविवार को हम साथ रहते हैं, और ये कहते हैं कि हमें सफाई करना पसंद है, तो स्वस्थ रहो और स्वच्छ रहो, ये इनका मंत्र है। बिल्कुल सही, क्योंकि सुबह की शुरुआत जो है वो अधिकतर सुबह सुबह साफ सफाई से ही होती है, तो ये लिखते हैं कि आपका दिन भी शुभ रहे, तो आपका दिन भी अच्छा रहे, शुभ रहे, और

भी स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अगला संदेश मैं देख रही हूँ, ये है हरजिंदर सिंह भाटिया जी का। ये लिखते हैं कि मैं सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता हूँ हर रोज़, और दोस्तों से मिलकर बातें करते हैं और चाय की चुस्की भी लेते हैं। ये ऐसे लिख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। दोस्तों के साथ हमेशा मिलना मिलाना होता रहना चाहिए, दोस्तों से दूरी अच्छी नहीं। कहते ना कि अगर रूठ भी जाएं तो उन्हें मना लेना अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्त ही हैं जिनसे हम खुलकर दिल से, कहते ना खुलकर दिल की बात कर लेते हैं और दिल से भी बात कर लेते हैं, और जहाँ कहें तभी वो हमारे दोस्त एकदम से प्रकट भी हो जाते हैं। क्योंकि कहते ना कि दोस्ती निभानी है तो भाई चाहे अंदर से कोस लें, लेकिन जब एक बार दोस्त का फ़ोन आता है ना, या एक बार जरा सा भी कुछ मैसेज मिल जाए तो झट से चल पड़ते हैं। सुनील पाठक जी हैं, इन्होंने अपने पसंद का गीत सुनना चाहा है, अपने साथियों के साथ इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है। और अगले जो मैं देख रही हूँ मेल हमारे पास आई है, ये है ओम प्रकाश राय और उषा राय ने भेजा है, अमित कुमार राय हैप्पी, और नेवादा गाजीपुर से भेजा है प्रतीक राय जी ने, और साथ ही इनके और भी साथी हैं। ये लिखते हैं कि हम लोगों का शनिवार को सबसे पहला कार्यक्रम जो शुरू होता है वो होता है, रेडियो से शुरुआत होती है और चाय की चुस्कियों के साथ साथ हम रेडियो सुनते हैं। हम लोगों को बहुत ही मज़ा आता है जब हम रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं, तो बहुत बढ़िया। आप सुबह सुबह 7:30 बजे हमारा प्रोग्राम होता है, गुड मॉर्निंग जी हाँ गुड मॉर्निंग क्या क्या है वो गुड मॉर्निंग, ये तो आप जानते ही हैं अच्छे से। तो आपको बता दें कि हमारा जो गुड मॉर्निंग है सुबह का प्रोग्राम संगीत का, उसे आप सुन सकते हैं और उस कार्यक्रम के साथ साथ आप चाय की चुस्कियों का मज़ा ले सकते हैं। और भी साथी हैं जिनके बहुत सारी मेल्स आई हैं, लेकिन अगला गीत जो है उसको सुनवाने के बाद ही हम लेंगे अपनी और मेल्स को। ये गीत है अभिजीत की आवाज़ में आप सुनेंगे, अभिजीत भट्टाचार्य, ओले ओले या, जी हाँ 94 की मूवी है, बहुत ही मज़ेदार गीत है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा।

जब तक म्यूजिक आ रहा है तब तक एक मेल और ले रही हूँ, और ये है अनु बरजाथिया जी की। ये कहती हैं कि आज पहले होटल में लंच करूँगी, स्टफ परांठा का ऑर्डर करूँगी, फिर कुछ मीठा खाऊंगी और आखिर में ज्वेलर के पास जाकर ज्वेलरी खरीदनी है। भाई बड़ा अच्छा सा प्लान बना रखा है आपने तो। और सुबह का ब्रेकफास्ट का क्या हुआ, आपने सुबह की शुरुआत कैसे की, ये तो आपने बताया ही नहीं।

बहुत ही बढ़िया गीत, यादें ताज़ा हो गई होंगी ना आपकी। आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा। और मैंने पूछा कि शनिवार की सुबह उठकर सबसे पहले आपको क्या करना पसंद है, क्या क्या देखना पसंद है। अगर आपको लगता है कि सुबह सुबह मुझे बस बालकनी में खड़े होना है या आंगन में खड़े होकर ही मौसम का मज़ा लेना है, आसमान को देखना है, पेड़ पौधों को देखते हैं या उनको महसूस करते हैं, कुछ भी आप जो सुबह सुबह उठकर करना पसंद करते हैं आप हमें ज़रूर बताएं। और देखिए हमारा जो अब संदेश मैं देख रही हूँ बहुत सारे आ चुके हैं, और ये हमारे साथी हैं संदीप मक्कड़, भरत कमल मक्कड़, कमल साहिनी पिंगा वाला चौक से, गोराया जलंधर से इन्होंने संदेश भेजा। और ये लिखते हैं कि सुबह सुबह चाय का प्याला साथ में नेचुरल माहौल, मतलब खुले शायद ये वादियों की बात कर रहे हैं, और साथ में रेडियो, वाह जी वाह क्या बात है। तो भाई रेडियो को तो आप बिल्कुल ना भूलें, कहते ना रेडियो दिल का रेडियो, रेडियो के साथ तो सबका दिल लगता है। और जितने भी जो रेडियो को सुनना पसंद करते हैं ना, सच्ची बोलूं वो सबसे हैप्पी लोग होते हैं, सबसे खुश रहते हैं वो लोग, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि काम भी करते रहते हैं, उनका काम भी निपटता रहता है, और साथ न साथ मन भी उनका प्रसन्न रहता है और दिमाग भी शांत रहता है। इतने फायदे हैं रेडियो के देखो और साथ में इंटरटेनमेंट भी होता है ना, इतनी सारी जानकारियां भी मिलती हैं। अगर कोई अच्छा प्रोग्राम चल जाए तो कितनी बेशकीमती जानकारी सुनने को मिल जाती है। तो एक साथ इतना सारे फायदे, तो मैं तो यही करूंगी, अपने कहूंगी कि अपने घर में सबको आप रेडियो सुनाएं, और अगर हो सके तो अगली बार सबको गिफ्ट में भी ना रेडियो ही देना शुरू कर दें। आजकल बड़े अच्छे अच्छे से हैंडसेट्स आते हैं छोटे छोटे, तो रेडियो को आप आगे बढ़ाएं, और इसी तरह से हमारे स्टेशन का भी आप खूब प्रचार करें, क्योंकि जो भी प्रोग्राम आप सारा दिन भर सुनते हैं हमारे इस आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर, दिल्ली चैनल पर, तो आप इसके बारे में भी खूब अपने साथियों को बताएं और जुड़े हमारे साथ हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में। तो DKP परिहार जी हैं, इनका संदेश भी आ गया, और ये लिखते हैं कि इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इनको, और ये कह रहे हैं कि हम भी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट हैं और इसका मजा ले रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है, तभी मैंने आपसे कहा। तो हमें भी फील होता है कि अरे हमारे साथी हैं ना सुन रहे हैं, तो उनके लिए हमें प्रोग्राम करना है। और ये कहते हैं कि मैंने मैसेज भेजा है, अब शामिल नहीं हुआ। तो देखिए बहुत सारे संदेश हैं, कोशिश करूंगी कि आपका संदेश भी जो आपने लिखा है सुबह सुबह क्या करना आपको पसंद है या क्या करते हैं शनिवार की सुबह, उसे ज़रूर शामिल करूंगी। साथ ही सीताराम कांगड़ा जी हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा है एकता कॉलोनी रोहतक से अपने साथियों के साथ, ये सिर्फ अपना गीत पसंद का सुनना चाहते हैं, इन्होंने कहा किसी भी गीत में हमें शामिल कर लें। अनु बरजातिया जी का संदेश हम ले ही चुके हैं, इन्होंने मुंबई से ये संदेश भेजा था अपने साथी शमशुल खान अनुराज बेनारा के साथ, और ये लिखती हैं कि एक कप चाय साथ भीगे बादाम खाए हैं मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में। जैसे मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बड़ा अच्छा सा इतना टेम्पटिंग सा मेन्यू बता दिया, तो मेरी तो मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि सुबह से खाली पेट, देखिए मैं आपके लिए शो कर रही हूँ और आपने इतना अच्छा सी चीज़ें बता दी, तो मुंह में पानी आना लाजमी था ना मेरे। तो मैंने पूछा भाई आपने ब्रेकफास्ट किया है नहीं। और अगले जो साथी हैं ये हैं लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज, इन्होंने भी कोई अपनी पसंद का गीत तो नहीं, इन्होंने कहा किसी भी गीत में शामिल करें। मोहम्मद फरहान जी हैं।

इन्होंने भी संदेश भेजा है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने साथियों के साथ। लालगिरी हैं, इन्होंने संदेश भेजा है रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से अपने साथियों के साथ और अपनी पसंद का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। अनिल बुरांडे हैं, इन्होंने लिखा है कि ये भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं और इन्होंने ये संदेश भेजा है पांढर कवड़ा से। और ये क्या लिखते हैं, हाँ जी इन्होंने अपने साथियों के नाम लिखे हैं साथ में। मस्कीन जी का भी संदेश आया है हमारे पास और ये लिखते हैं कि ये लिख रहे हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका संदेश पढ़ा जाए। तो मस्कीन जी, हमने जो सवाल पूछा हम वे इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका संदेश, उसका मैं उससे संबंधित मैसेज आए हमारे पास, उसे हम शामिल करें। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से दिल्ली से इन्होंने संदेश भेजा तुलसी और वीना मस्कीन के साथ। सुभाष योगी जी हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। इन्होंने कृष्णा कॉलोनी हांसी से ये संदेश हम तक पहुँचाया है। धर्मेंद्र छिपा हैं, इन्होंने संदेश भेजा है और ये लिखते हैं, इन्होंने संदेश भेजा राजस्थान भोपालगढ़ से अपने साथियों के साथ और ये लिखते हैं कि इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है और गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और विषय भी इन्हें पसंद है, तो आप इसी तरह से कार्यक्रम का आनंद उठाएं। और ये लिखते हैं कि वैसे सुबह उठते ही ईश्वर को याद करते हुए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ परिवार और दोस्तों के साथ भी वक्त बिताते हैं। जी बहुत बढ़िया, ये एक सबसे अच्छी बात कि आप परिवार और दोस्तों के साथ अपना सुबह का समय बिताते हैं, क्योंकि आजकल यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपने परिवार के साथ समय कम और इंटरनेट या यूं कहें कि आभासी दुनिया के साथ समय ज्यादा बिताते हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह सब लोग चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं या तो, और साथ साथ में रील्स, साथ में इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया साइट्स पर सबकी नजर होती है। साहिल डार हैं, ये भी लिखते हैं कि हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं श्रीनगर में डल लेक में, तो बहुत अच्छा लगा आपका श्रीनगर से संदेश आया है। और ये कह रहे हैं कि उर्फी जान के साथ मैं ये शो सुन रहा हूं, तो बहुत बहुत आपका स्वागत और अपने और साथियों को भी आप जोड़ें हमारे इस कार्यक्रम को जो कि हर रोज होता है सुबह 10:10 से लेकर 11 बजे तक। और ऐसे ही हम इंतजार करते हैं कि हमारे साथी जो दूर दूर बैठे हैं देश के हर कोने में और विदेशों में भी हमें सुन रहे हैं, उनके संदेश हमारे इस कार्यक्रम में जरूर आए। राजू अग्रवाल है, केशव दक्ष चौधरी वास हिसार से इन्होंने देश भेजा है और ये अपनी पसंद का फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। नितेश देवांगन है, इन्होंने भी भेजा है संदेश और ये लिखते हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल करें और छुट्टी है तो मन में खुशी होती है। ये इनका कहना है कि जब भी छुट्टी होती है तो मन में खुशी होती है। पलारी छत्तीसगढ़ से इन्होंने ये संदेश भेजा है। चरण दास है, इन्होंने संदेश भेजा है अपनी साथी प्रीति निर्मला चौधरी के साथ, राजू अग्रवाल जी के साथ भी इन्होंने संदेश भेजा। दिनेश वर्मा ने भी रिंगनी छत्तीसगढ़ से संदेश भेजा है अपने साथियों के साथ। संदीप मक्कड़ हैं, इनका संदेश हम शामिल कर चुके हैं। इन्होंने वैसे लिखा है कि चाय का सुबह सुबह चाय का प्याला नेचुरल माहौल, और जी हाँ जैसे कि आपने आपका मैसेज हम ले चुके हैं मक्कड़ जी, और साथी गुस्सा हो जाएंगे हमसे कि आपका संदेश हमने ले लिया दो बार और उनका नहीं लिया। मसरूर हसन है, इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से इन्होंने ये संदेश भेजा है और सुरेश नारंग जी ने भी संदेश भेजा है हमें सहारनपुर से ही, सोनाली और सुरेश नारंग के साथ। चरणदास जी का संदेश हम शामिल कर चुके हैं, और भी साथी हैं जिनके संदेश अभी हम और शामिल करेंगे। और उस तब तक दोस्तों आप सुने एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत, हिमेश रेशमिया की आवाज में रेडियो फिल्म से ये गीत है। और एक गीत को सुनवाते सुनवाते एक और संदेश पर मेरी नजर पड़ी है, ये है उत्तम सिंह जंघेल जी, इन्होंने ये संदेश भेजा है कोहका भिलाई से, आर्यनगर कोहका भिलाई से। और ये लिखते हैं कि हम रोजाना सुबह 3 बजे उठकर खुद चाय बनाकर पीते हुए दोस्तों को मैसेज करते हुए 5 बजे यूट्यूब से भक्ति संगीत सुनते हैं और 6 बजे आकाशवाणी से जुड़ जाते हैं, ये रोजाना का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही आप हमें सुनते रहें तो आपको भी जय जोहार। और अगला संदेश मैं देख रही हूँ, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से वेरडी नाना जी ने भेजा है संदेश अपने साथियों के साथ। ही लिखते हैं, सुबह से उठकर हम खेत में जाने की तैयारी करते हैं और मन का रेडियो, रेडियो के साथ हमेशा अपना साथ बनाए रखें, उसे अपना दोस्त बनाए रखें और अपनी

की हर एक बात आप रेडियो के साथ साझा कर सकते हैं, जी सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। सिर्फ रेडियो के अंदर जो बोलते हैं, रेडियो से आवाज आती है, उन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें आप महसूस कर सकते हैं, अपने पास पा सकते हैं। मन का रेडियो।

हाँ, रेडियो का साथ तो ऐसा ही है। रेडियो के साथ एक बार जुड़ जाएंगे ना तो सच में, और हर एक पल को, हर एक बात को आप जिएंगे। जैसे हमने कहा, बहुत सारी जानकारियों का भंडार रेडियो के पास है, और एक ऐसा खजाना है रेडियो, जो उसके साथ जुड़ेगा ना वो सच में माला माल हो जाएगा। और देखिए, फिलहाल हमारी जो साथी है ना, वो थोड़े थोड़े गुस्सा भी हो रहे हैं, क्योंकि कईयों को लग रहा है कि भाई हमने बहुत सारे मैसेज भेजे और अभी तक हमारे संदेश शामिल ही नहीं किए, और उसमें से एक दो साथियों के नाम तो मैं ले चुकी हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका संदेश जो है वो जाना चाहिए। अब देखिए, अब मैं लेती हूँ कि कौन सा संदेश आज हमारे पास नए साथी का आया है। ये डोल राणा जी हैं, आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार जुड़े हैं। ये तो ये लिखते हैं कि नमस्कार, तो आपको भी नमस्कार। पेड़ पौधों में पानी देना और पक्षियों की चहचहाट सुनना और प्रकृति को निहारना, जिससे मन मस्तिष्क को सुकून मिलता है, ये मैं सुबह सुबह करता हूँ। और ये नेहरू विहार दिल्ली से संदेश भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आबासी जी का भी आया है संदेश, ऊपर कोट मोहल्ला चुखंडी से, बुलंदशहर से इन्होंने संदेश भेजा है। निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन और सुहान अरजान अबान और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ जगदीश जी हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा और ये अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है, हाँ, अपनी पसंद का ही लिखना सुनना चाहते हैं ये गीत। SP गोयल।

जी हैं, इन्होंने लिखा कि निश्चल मन और अच्छी भावना हर बिगड़ा काम बनाती हैं, कड़वाहट भरे इंसानों में भी यह प्रेम का दीप जलाती है। दौलत से भले ही छोटे रहो पर दिल का अमीर होना सीखो, सच्ची भावना ही तो जग में असली इंसान बनाती है। और इन्होंने ये संदेश भेजा है रोहिणी से। तो बहुत अच्छा आपने ये लिखी है लाइनें, बहुत गहरा मतलब है इनका, और सच्ची भावना हमारी भी है, आप तभी हम जुड़ते हैं आपके साथ, और आपकी भी है तभी आप अच्छा सा, देखिए एकदम से आपने संदेश हमें भेजा है। और अगले जो हमारे साथी हैं धर्मेंद्र छिपा जी, इनका संदेश तो हम ले ही चुके हैं अपने साथी का, कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी साथी छूटे नहीं। अनिल मोहन जी हैं, उनका संदेश आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। देव शंकर तुमरिया जी हैं, इनका संदेश आया है हमारे पास कबीर रेडियो श्रोता संघ ढिंडोली छत्तीसगढ़ बलौद से, ये संदेश भेजा है इन्होंने, और अपनी पसंद का गीत इन्होंने सुनना चाहा है।

0: साथियों, ये गीत आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो जानकारी छोटी होती है लेकिन बहुत काम की होती है, और आपको सतर्क रखने के लिए ही हम ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। और अब आप सुनेंगे गीत अपना मनपसंद, जो कि आप पहले भी सुन रहे थे। उस गीत के साथ साथ ही हम अपने कुछ साथियों की मेल्स हैं उन्हें भी शामिल कर रहे हैं, जैसे कि योगिता गुप्ता, गजेंद्र, अंजलि और वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी ने हमें संदेश भेजा गेंदा टोला छत्तीसगढ़ से। और एक और हमारे साथी हैं बिट्टू भाटिया झज्जर हरियाणा से, इन्होंने संदेश भेजा रीटा, रजत और मयंक भाटिया के साथ। राशिद हुसैन जी हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा जैन मंदिर वाली गली कुरावाली से अपने साथियों के साथ, और ये इन्होंने जगह का नाम कुरावली ही लिख के दिया है। देखिए, नवी हसन जी और बब्बल जी का संदेश हम ले चुके हैं। बब्बल जी ने भेजा मोहाली पंजाब से, और ये लिखते हैं कि दीदी जी, सुबह हम सफाई की ओर ध्यान हमारा होता है, इस काम के बाद हम चाय का आनंद लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं। उषा मोहन है, उन्होंने भी संदेश भेजा पीटीआई संसद मार्ग, जो कि बिल्कुल हमारे रेडियो के पास ही है। तो इन अनिल मोहन के साथ इन्होंने संदेश भेजा है, कार्यक्रम इन्हें पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।

स्वर्ण सिंह जी हैं, उन्होंने भी लोहगढ़ ठाकुरावाला से अपने साथियों के साथ संदेश भेजा है और उम्मीद हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे और साथी हैं जिनके संदेश हमारे पास आए हैं उनको हम लें। तो देखिए तुलसी मस्किन जी का जो संदेश उन्होंने भेजा था वो मिल गया। ये कहते हैं कि हम आपको देखिए आप मस्किन जी आपका संदेश हमने कोशिश की सर्च करने की, हमें अभी तक नहीं मिला, वही संदेश मिल रहे हैं जो आपने हमें बार बार भेजे। मंगेश नरवाड़ी हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा और आवासी जी का भी आ चुका है संदेश। सतीश अनेजा जी ने भी संदेश भेजा और इसके साथ साथ रमेश चौहान जी का भी संदेश हमारे पास आया और ताज मोहम्मद जी ने भी हम तक अपना संदेश पहुंचाया है। मल्होत्रा टीडी जी ने भी मोहाली से भेजा है और साथ ही साथ कुछ एक और साथी हैं जिनके संदेश हम तक पहुंचे हैं, जैसे कि सिद्धार्थ गोंडाने हैं और इसके साथ साथ हमारे वैसे भारत भूषण साथी हैं, इन्होंने बेंगलुरु फील्ड से हमें संदेश भेजा है। इसी के साथ दोस्तों आपसे चाहते हैं विदा इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप कुछ ही पलों में सुनेंगे हमारे इस स्टेशन पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच AI पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। खाड़ी देशों में नियमों का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पेश आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 मार्च से 13 जुलाई के बीच बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को अलग अलग मामलों में खाड़ी देशों से निर्वासित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिकी क्षेत्र है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता चाहता है। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ट्रंप के दावों को खारिज किया है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडेम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 11:10 हो चुके हैं और अब समय हुआ है सबरस का। सबरस में आज आप सुनेंगे भारती सिंह का गाया गीत, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में गज़ल, साथ ही रूमा लैला और भारती सिंह की आवाज़ में गीत और गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे गुरदास मान की आवाज़ में ये पंजाबी गीत। आप सुन रहे थे सबरस। और श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमंजरी।

0: सुरमंचरी कार्यक्रम है। अभी आपने सुना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुव वेदी से राग अलैया बिलावल में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सप्तक शर्मा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया, इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India has raised with Somalian authorities the issue of hijacking of 2 foreign-flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ रेनू,
2: और मैं हूँ अमित कमल। तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं दोस्तों आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: तो अमिता, शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। वो मिले तो दुनिया खिल जाए, न मिले तो मन मुरझाए, दे हौसला जो मेरे इरादों को, वो सुकून जिसकी बातों में,
2: बिना कुछ कहे जो मुझे समझे, मेरी खामोशियों को सुने, लड़े झगड़े रूठे भी पर ना हो खफा कभी दिल से,
1: ना खत्म हो रूठने मनाने का ये सिलसिला, हर मौसम में दोस्ती का रंग रहे यूं ही खिला। जी हाँ, बात है दोस्ती की, दोस्तों की। तो अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि आज का हमारा सवाल है दोस्ती पर। तो आपकी नजर में दोस्ती क्या है, और किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले आप उनकी कौन सी खूबियां देखते हैं? जी हाँ, बताना है आज आपको यही।
2: और तो दोस्तों, लिख भेजिए हमें fmgoldg@gmail.com पर। हमें रहेगा बेसब्री से आपके मेल्स का इंतजार।

0: लेजेंडरी मूवी शोले से आपने ये गीत सुना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ में। और रेणु, क्या बताने वाली थी हमारे दोस्तों को आप?
1: देखो अमिता, हम लोग दिन विशेष की बात अपने कार्यक्रम में ज़रूर करते हैं, तो आज है 22 अगस्त, यानी कि आज जयंती है हिंदी व्यंग के उस महान लेखक की, जिन्होंने हमें सिर्फ हंसना नहीं सिखाया बल्कि हंसते हंसते अपनी कमियों को देखना और उस पर गंभीरता से सोचना सिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी की।
0: जो सिर्फ एक महान व्यंगकार ही नहीं थे रेणु, बल्कि वो एक संवेदनशील कहानीकार, गंभीर संपादक और जागरूक सामाजिक चिंतक भी थे। इन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा में अपनी कलम चलाई और हर विधा को एक नया आयाम दिया।
1: बिल्कुल, तो उन्हें याद करते ही अक्सर चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है अमिता। लेकिन उनका व्यंग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि एक व्यंग उनका जो था वो एक विचार था, एक उद्देश्य था। और उनसे पहले, परसाई जी से पहले जो व्यंग था, सटायर का अर्थ सिर्फ मजाक या मनोरंजन से लिया जाता था, लेकिन उनके व्यंग लेखन ने बताया कि व्यंग पाखंड, भ्रष्टाचार और समाज के दिखावे के विरुद्ध एक बड़ा हथियार भी हो सकता है।
0: परसाई जी को हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक लेखक माना जाता है। इनके मुख्य व्यंग संग्रह हैं सदाचार की ताबीज और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
1: और अमिता, उनकी रचनाएं पढ़ते हुए हम हंसते तो हैं, लेकिन हंसी जो है वो तुरंत एक विचार में बदल जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और परसाई जी स्वयं कहते हैं कि व्यंग जीवन से साक्षात्कार करना सिखाता है, जीवन से भागना नहीं। परसाई जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी समाज के ढोंग पर कोई तीखा कटाक्ष होगा तो उनकी कलम हमेशा जिंदा रहेगी। आज उनकी जयंती पर हम सब उनके अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें अपनी विनम्र
0: श्रद्धांजलि
1: श्रद्धांजलि अर्पित
0: अर्पित करते
1: करते हैं।
0: हैं।

0: ये गीत आपने सुना शिकारी फिल्म से, आवाज़ थी लता जी और मोहम्मद रफ़ी की। और अमिता, देखो हमने जो सवाल पूछा था अपने श्रोताओं से, तो मेल सानी उनकी शुरू हो गई हैं, और ये पहला मेल जो है हमारे पास आया है नवीन भाटिया का। और भाई इनको, इनके बारे में तो मानना पड़ेगा कि जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं या कार्यक्रम से, सबसे पहले इनका मेल आ जाता है और ये जुड़ते हैं हमारे साथ सबसे पहले,
1: हमारे
0: और
1: रेगुलर श्रोता
0: श्रोता
1: हैं।
0: भी हैं। हाँ, तो इन्होंने लिखा है कि दोस्ती इबादत है, दोस्तों में सच्चाई और दोस्ती निभाने की चाह होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही, दोस्ती तो निभाने का ही नाम है, क्योंकि दोस्ती जब निभाई जाती है तभी
1: तो
0: वो
1: दोनों
0: दोस्त,
1: तरफ से होनी चाहिए
0: बिल्कुल
1: दोनों।
0: दोनों तरफ से होनी चाहिए, और निभाने का नाम ही दोस्ती है। और ये जो दूसरी मेल एक और है मेरे हाथ में, ये है अफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से, और ये लिखते हैं कि दोस्ती सिर्फ मदद करने का नाम नहीं, दोस्तों में अपनापन झलकना चाहिए। दोस्ती में जब तक अपनापन नहीं, दोस्ती नहीं चलती। बिल्कुल सही
1: बिल्कुल
0: बात
1: सर, जब तक
0: है।
1: अपनापन नहीं लगेगा तो दोस्ती कैसे
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोई
1: लगेगी।
0: अपना लगता है तभी तो वो दोस्त लगता है। बिल्कुल सही बात कही। और देखो अमिता, अब ये एक और मेल जो तुम्हारे हाथ में है, ये कौन है, ये कौन कहाँ से जुड़े हैं?
1: ये योगराज सहगल जी हैं और ये लिख रहे हैं, इन्होंने ये तो नहीं लिखा है ये कहाँ से लिख रहे हैं, पर इन्होंने लिखा है, नमस्ते रेणु जी और अमिता जी, मैं सिमरन सहगल, मतलब योगराज सहगल की मेल आईडी से सिमरन सहगल जी ने लिखा है, मैं आपका प्रोग्राम अपने पापा के साथ रोज सुनती हूँ। आज मेरे पापा ने बताया कि आज का टॉपिक दोस्ती के ऊपर है। मेरा मानना है कि दोस्ती बहुत खूबसूरत चीज़ होती है अगर वो दोनों तरफ से हो।
0: बिल्कुल सही बात है, एक तरफा कोई चीज़, कोई रिश्ता नहीं चलता, और दोस्ती का तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्त अगर कोई है तो वो ज़रूर आपको निभाएगा, जैसे कहते हैं एक कदम आपने बढ़ाया तो दूसरा कदम वो भी बढ़ाएगा,
1: और
0: तभी दोस्ती चलती है।
1: बिल्कुल रेणु, और एक और मैसेज आ गया है हमारे पास चरण दास जी का, ये लिख रहे हैं, रेणु जी अमिता जी नमस्कार। नमस्कार आपको चरण दास जी, और ये राजू अग्रवाल केशव विवेक चौधरी वास हिसार से लिख रहे हैं, पैदा होते सभी रिश्ते बने हुए हमें मिलते हैं, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खुद बनाना पड़ता है, और दोस्त वही है जो आपका दर्द समझे, झूठी हमदर्दी दिखाकर, आपकी बात सुनकर, दूसरों के सामने मजाक बनाए, ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए, ये कह रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी सीख और अनुभव है, दे रहे हैं ये।
1: और अब बात कर लेते हैं रेणु डेज ऑफ द डे की, और हम बात करेंगे मद्रास स्थापना दिवस की। जी हाँ, मद्रास जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसकी स्थापना 22 अगस्त 1639 को हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे ने स्थानीय नायक शासकों के साथ भूमि अनुदान पर हस्ताक्षर किए थे, और कोरोमंडल तट पर स्थित इस भूमि ने फोर्ट सेंट जॉर्ज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था, जो आगे चलकर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और

0: प्रशासनिक केंद्र बन गया। सदियों से मद्रास अपनी संस्कृति, वास्तुकला और समृद्ध व्यापार के लिए प्रसिद्ध एक जीवंत शहर के रूप में विकसित हुआ।
1: बिल्कुल अमिता, मद्रास दिवस केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है बल्कि शहर की पहचान का जश्न मनाने का अवसर भी देता है। ये चेन्नई की परंपरा, आधुनिकता के अनूठे संगम की याद दिलाता है, कर्नाटक संगीत और भारतनाट्यम से लेकर आईटी पार्क और फलते फूलते फिल्म उद्योग तक।
0: और ये उत्सव शहर की उत्पत्ति को सम्मान देने के लिए ऐतिहासिक नाम मद्रास का उपयोग करता है। हालांकि शहर का आधिकारिक नाम 1996 में बदलकर चेन्नई कर दिया गया था, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये आयोजन अपनी विरासत को उजागर करने के लिए पुराने नाम का ही इस्तेमाल करता है।
1: बिल्कुल अमिता, और आज के दिन यहाँ विरासत यात्रा निकाली जाती है और इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी 2004 से।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी चरित्रहीन और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और अमिता, देखो लगातार हमारे श्रोता हमसे जुड़ते जा रहे हैं अपने मेल के माध्यम से, और ये जो एक मेल हमारे सामने है ये है राजेश शर्मा गाजियाबाद से, और ये लिख रहे हैं कि हमने दोस्ती की, अपने दोस्तों में कोई खास खूबी नहीं देखी, बस दोस्ती हो गई।
1: ये
0: और
1: भी अच्छी
0: दोस्त
1: बात
0: बिल्कुल
1: है
0: अच्छी बात है,
1: रे।
0: सही बात है, दोस्ती सोच समझ के नहीं की जाती, ये भी अच्छी बात, मतलब ये दोस्ती की पहचान होती है। और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा लगता है जब हम तीनों दोस्त क्लास 6ठी से लेकर ग्रेजुएशन तक साथ में रहे, और हम तीनों अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी और में पढ़ाई के बाद अलग हो गए हैं, अपने अपने व्यवसाय और अपने अपने शहरों में चले गए हैं, लेकिन आज तक दोस्ती कायम है और कभी कभी हम आपस में मिल लेते हैं।
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात
0: बिल्कुल सही
1: है।
0: बात है, अगर दोस्ती है वास्तव में तो दोस्त निभाने का तरीका यही है कि आप लोग मिलते जुलते रहें, और दोस्ती तो मन से होती है, दिल से होती है।
1: और है ना दोस्तों, आप भी हमें मेल कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी fmgoldga@gmail.com तो हमें रहेगा आपके संदेशों

0: का इंतजार। और रेणु, एक और मैसेज आ गया है गौरी शंकर जी का, आप दोनों बेटियों को राम राम। तो हमारी तरफ से भी गौरी शंकर अंकल आपको राम राम। उम्र के साथ कितने ही दोस्त हैं जो चले गए, अभी यादें बाकी हैं, ये लिख रहे हैं। और अगर दोस्त समझदार हो तो मुसीबत में काम आता है, यानी कि रोते हुए को हंसा देता है।
1: बिल्कुल सही बात कही है, देखो अमिता इन्होंने, क्योंकि दोस्ती का तो नाम यही है कि जब आप पे कोई मुसीबत आए या किसी पर

0: वो जो अपने होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, वो आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते, बल्कि और करीब आते हैं और आपकी समस्या का समाधान करने में आपका सहयोग करते हैं। तो देखो, दोस्ती की तो बात होती रहेगी, लेकिन अभी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अटल टिकरिंग लैब की। टिकरिंग का मतलब है कुछ नया करना या नया सोचना, आविष्कार करना। अटल टिकरिंग लैब नीति आयोग की ऐसी ही एक कमाल की पहल है, जिसमें स्कूल की वो चार दीवारें जहाँ सिर्फ कॉपियाँ और किताबें होती थी, अब एक ऐसी जगह में बदल चुकी है जहाँ रोबोट्स बनते हैं, 3D प्रिंटर से जादुई चीजें छपती हैं और बच्चे आसमान में ड्रोन उड़ाते हैं।
1: जी हाँ, यही है अटल टिकरिंग लैब, जिसमें हमारे देश के 6ठी से 12वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चे जाकर कोडिंग सीख रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम कर रहे हैं और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं सोच पाते हैं। रेणु,
0: बिल्कुल अमिता, और एक बच्चा जो गांव के स्कूल में पढ़ता है, वो खुद एक ऐसी ऑटोमेटिक लाइट बना रहा है जो रात को तो जलती है और सुबह अपने आप बंद हो जाती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये ATL लैब का कमाल है।
1: यहाँ रटना
0: रटना
1: मना
0: मना है,
1: है या
0: करके
1: सिर्फ
0: सीखना
1: इतना
0: चलता
1: चाहता है,
0: है।
1: और छात्रों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर डू इट योर सेल्फ यानी DIY के जरिए विज्ञान और तकनीक सिखाना और बच्चों की सोच को समाधान केंद्रित इनोवेटिव बनाना ही तो इस लैब का उद्देश्य है। रेनू,
0: बिल्कुल, तो युवाओं से अपेक्षा है कि अपनी क्लास से निकलकर उस लैब में जाएं और अपने न्यू न्यू आइडियाज को हकीकत में बदलें।

0: परजाई फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: और अमिता देखो, श्रोता हमारे जुड़ते जा रहे हैं और अपनी दोस्ती के किस्से हमें बयां कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने दोस्ती को याद करते हुए बता रहे हैं। तो अभी जो मेल हमारे सामने है, ये महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ हरियाणा से लिख रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और जिसके पुराने दोस्त होते हैं वो लोग बहुत ही दिल से पक्के और दिल के सच्चे होते हैं। तो भाई सही बात है, और दोस्ती का जो संबल होता है उसकी वजह से तो आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास आता है और उस आत्मविश्वास के सहारे आप जो है बहुत कुछ कर गुजरते हैं, और सफलता जब आपको मिलती है तो सबसे पहले खुश होने वाले आपके दोस्त ही होते हैं।
0: और साथ ही सोनीपत से हमारे साथ सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने हमें लिखा है, आदरणीय रेणु और अमिता जी सादर प्रणाम। दोस्त वो नहीं होते जो तस्वीर में आपके साथ खड़े होते हैं, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं। बहुत ही सुंदर
1: क्या
0: बात
1: सुंदर
0: कही
1: बात कही,
0: है।
1: सही बात है कि दोस्ती वही है जो तकलीफ में साथ दे।
0: और
1: और
0: अब बात कर लेते हैं सफलता की कहानी की, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है घर आंगन कार्यक्रम में, एक सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें हम एक ऐसी सफलता की कहानी की बात करते हैं जो आपको प्रेरणा देती है कुछ कर गुजरने का। ऐसी ही कहानी आज के आपके साथ साझा कर रहे हैं रेणु। समय के साथ समाज की सोच जो है वो ज़रूर बदल रही है, लेकिन आज भी कई ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में महिलाओं के लिए जीवन आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भी कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। हालांकि इन्हीं परिस्थितियों के बीच कुछ महिलाएं अपने हौसले और मेहनत से नई मिसाल कायम कर रही हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी रामपुर नैकिन के भरतपुर गांव की गुड्डू रावत की भी है।
1: बिल्कुल, अमिता और गुड्डू रावत की शादी जो है महज 14 साल की उम्र में हो गई थी और कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आ गई थीं। तो इन विपरीत परिस्थितियों के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था उनके लिए। ऐसे में गुड्डू ने भी परिवार की मदद के लिए खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया और कई बार पुराने जो पूरे दिन उन्हें खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद मजदूरी के रूप में सिर्फ 4 किलो गेहूं ही मिल पाता था। सोचो क्या उनकी हालत थी घर की, और इतनी कम आमदनी में परिवार की ज़रूरतें पूरी करना तो भाई बहुत मुश्किल, बहुत कठिन था उनके लिए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
0: और रेणु इसी दौरान भरतपुर गांव में आजीविका मिशन के तहत हथकरघा और दस्तकारी सहकारी समिति की शुरुआत हुई और समिति प्रबंधक के मार्गदर्शन में गुड्डू रावत की इस समिति से जुड़ गई और यहां उन्हें हथकरघा से कपड़ा बुनने का प्रशिक्षण दिया गया। शुरुआत में उन्होंने सामान्य धागों से कपड़ा सीखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस काम में महारत हासिल कर ली।
1: बिल्कुल अमिता, क्योंकि ये विधा जो है वो उसमें बिना बिजली के हाथों से करघे पर धागों को पिरोकर कपड़ा तैयार किया जाता है, और गुड्डू ने इस कला को इतनी लगन और मेहनत से सीखा कि आज वे कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। वर्तमान में गुड्डू रावत भरतपुर हथकरघा केंद्र में करीब 150 महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं।
0: और रेणु, गुड्डू रावत की मासिक आय अब 14 से 15 हज़ार रुपये तक पहुंच चुकी है। उनके द्वारा तैयार किए गए शुद्ध कॉटन के कपड़ों की मांग अब सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, भोपाल, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी उनके उत्पादों की अच्छी खासी मांग है।
1: बिल्कुल अमिता, तो गुड्डू रावत की ये कहानी बताती है कि अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिल जाए तो ग्रामीण महिलाएं भी अपने हुनर से अपनी जिंदगी बदल सकती हैं और बहुत कुछ अपने परिवार के लिए कर
0: कर
1: भी सकती
0: सकती
1: हैं।
0: हैं।

अभी आपने सुना ये गीत फिल्म रोजा से, और गायक की गायिका स्वर था मिनमिनी का। और हमारे पास एक मेल आ गया है रेणु, ये हैं डी राजेश्वर राव शकरपुर दिल्ली से। ये लिख रहे हैं, अ फ्रेंड इज़ अ पर्सन यू नो वेल लाइक एंड फील अफेक्शन फॉर समवन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ योर फैमिली बट विद होम यू शेयर ट्रस्ट केयर एंड म्यूचुअल सपोर्ट।

0: फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इज डीड। बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी बात लिखी
1: बिल्कुल
0: इन्होंने।
1: सही बात है कि दोस्ती में जो है वो भावनाओं की सर्वोपरि होती हैं, भावनाएं ज़रूरी होती हैं। और इसके बाद एक मेल और है हमारे पास, इद्रिस सैफी जी, ये भी हमारे रेगुलर श्रोता हैं। इन्होंने कहा है कि मेरी दोस्ती जूनियर हाई स्कूल में किसी से हो गई थी और वो सीनियर से हो गई थी और सीनियर से आज तक चल रही है। तो बिल्कुल सही बात है, जो को अमिता कहते हैं ना कि दोस्ती में उम्र की सीमा नहीं होती, बस दोस्त आपको अच्छा लगना चाहिए और दोस्त साथ निभाने वाला होना चाहिए, तो फिर वो दोस्ती जो है वो ताउम्र चलती है।
0: बिल्कुल। और रेनू, हम जब कार्यक्रम करते हैं तो हमारे इस सेगमेंट में कई सारी बातें हम करते हैं, तो हम कई चीज़ों के फ़ायदे भी अपने दोस्तों के साथ, अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। ऐसे ही फ़ायदे हम आज आपके लिए लेकर आए हैं शरीफा फल के विषय में। शरीफा, जिसे अंग्रेज़ी में कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है, पोषक तत्वों का भंडार और स्वाद में मिठास भरा होता है। देखने में शरीफा हरे रंग का होता है, जिस पर भूरे या काले धब्बे पड़े होते हैं। अंदर से शरीफे में सफ़ेद गुदा और ढेर सारे बीज होते हैं। आमतौर पर शरीफे को स्मूदी, शेक या आइसक्रीम के रूप में खाया जाता है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीफा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रेणु, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और इसके कौन से फ़ायदे हैं पता है तुम्हें रेणु, वो मुझे बताओ और हमारे श्रोताओं को बताओ।
1: बिल्कुल अमिता, तो आंखों की रोशनी बढ़ाने की अगर बात करें तो शरीफा जो है वो सबसे अच्छे फल माना जाता है, और ये विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर होता है, जो आपकी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करता है।
0: रेणु, ये जो फल है कॉपर और डाइट्री फाइबर से भरपूर होता है और ये आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम अपच संबंधित समस्याओं को ठीक करने और कब्ज को दूर करने में मदद करता है।
1: बिल्कुल अमिता, और ये विटामिन ए के उच्च स्तर के साथ शरीफे के का गूदा जो है वो अल्सर और फोड़े के इलाज के लिए भी काफ़ी प्रभावी होता है, और ये न केवल त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है बल्कि ये उसकी त्वचा की लालिमा और सूजन को भी कम करता है।
0: और साथ ही शरीफा मैग्नीशियम और पोटेशियम से भी भरपूर होता है दोस्तों, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो अपने दिल का ख्याल रखिए।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना पराया धन से, और कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। बिल्कुल अमिता, और देखो ना अब बात कुछ घूमने फिरने की हो जाए, क्योंकि घूमने
1: बिल्कुल
0: फिरने का असली मजा जो है वो दोस्तों के साथ ही होता है। तो अगस्त का ये महीना एक अलग सा अलग ही जादू बिखेरता सा मौसम, पेड़ों पर छाई हरियाली, तन मन भिगोती ये बारिश की बूंदें,
1: बूंदे
0: फूलों की बहार। जी हाँ, आपने सही सुना, फूलों की बहार इस सुहाने मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए सज चुका है देश का सबसे वीआईपी और खूबसूरत बागीचा अमृत उद्यान।
1: आजकल राष्ट्रपति भवन के इस ऐतिहासिक बगीचे में चल रहा है बेहद खास मॉनसून फ्लावर शो, समर एनुअल्स। वैसे तो हम सर्दियों या वसंत में यहाँ जाते हैं, लेकिन इस बार 16 अगस्त से अमृत उद्यान 15 सितंबर 2026 तक आम जनता के लिए खुल चुका है।
0: तो 15 सितंबर तक ये उद्यान मानसून के उन अनोखे फूलों से गुलजार होने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ इसी मौसम में अपनी छटा बिखेरते हैं। आसमान में काले काले बादलों के बीच रंग बिरंगे मानसून के अनगिनत फूल, बेबलिन ब्रूक, बोनसाई गार्डन और बाल वाटिका, ये है यहाँ के विशेष आकर्षण।
1: और हम आपको बता दें कि अमृत उद्यान के इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी आपकी, और फ्री एंट्री है आपकी। बस आपको राष्ट्रपति भवन के विजिटर पोर्टल पर जाकर अपना स्लॉट बुक कराना है और गेट नंबर 35 से फूलों की इस रंगीन दुनिया में कदम रखना है।
0: लेकिन अमिता, मैं ये भी बता दूं कि ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन इसका प्लान मत करिए जाने का, क्योंकि उस दिन ये उद्यान बंद रहता है। तो देर किस बात की, प्रकृति के इन रंगों को अपने में समेटने और अपने परिवार और दोस्तों के
1: के
0: साथ
1: साथ
0: इसका आनंद
1: आनंद
0: लेने
1: लेने की
0: जरूर
1: जरूर जाइए।
0: जाइए।

0: और रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं दो कलियां फिल्म से।
1: और अमिता, इसी के साथ घड़ी ने इशारा कर दिया है कि हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने को है, तो मुझे यानी रेनू को
0: और मुझे यानी अमित कमल को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना में सहयोगी गोरखा नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के अनुसार बैठक में लंबे समय से चली आ रही स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इसके बाद आज गृहमंत्री सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईबी, पुलिस तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही।

0: बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India has raised the issue of 2 hijacked foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board with Somali authorities. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate incidents of Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said all Indian seafarers are reportedly safe. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, in response to a query during his bi-weekly media briefing yesterday, also addressed growing safety concerns regarding Indian mariners operating in volatile waters, reiterating New Delhi's commitment to prioritizing the welfare of its seafaring community.

एक खूबसूरत सी फिल्म लेकर आते हैं आए हैं। कुछ फिल्में दोस्तों ऐसी होती हैं जो पर्दे पर कहानी नहीं कहती, बल्कि अपने गीतों, अपने किरदारों और अपनी खूबसूरत यादों के साथ दिल में बस जाती है। तो आज की जो फिल्म है वो भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रेम है, जुदाई है, इंतजार है और फिर रिश्तों को एक नया मुकाम देने की कहानी है। हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री श्रीदेवी, उनके साथ ऋषि कपूर और विनोद खन्ना। समझ चुके होंगे कि आज हम कौन सी फिल्म आपके लिए चुनकर लाए हैं, और अगर आप समझ ही गए हैं तो फिर इंतजार किस बात का, जल्दी से अपने जवाब मेल के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म से ये खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट सॉन्ग।

सिर्फ एक गीत और ढेर सारे सही जवाब। फिल्म ही ऐसी है कि आपको पहचानने में बिल्कुल देर लगनी ही नहीं थी। और जब भी हिंदी सिनेमा में निखरते प्यार, स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों और सफ़ेद शिफॉन साड़ियों की बात होती है तो दिमाग में बस एक ही मास्टरपीस नाम आता है, यश चोपड़ा साहब की सदाबहार फिल्म चांदनी। साल 1989 में रिलीज चांदनी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक एहसास थी। 80 के दशक में जब सिनेमा में सिर्फ एक्शन और डिस्को का दौर था, तब यश जी ने इस विशुद्ध लव स्टोरी से मोहब्बत का एक नया दौर शुरू किया और उस दौर ने, उस कहानी ने, उस फिल्म ने सफलता की वो ऊंचाइयां चूमी जिसकी यश साहब को भी शायद अंदाजा नहीं था।

याद आया ना आपको इस गीत को सुनकर वो भोला मासूम सा चेहरा जिसे निभाए था श्रीदेवी जी ने। जी हाँ, श्रीदेवी का चांदनी वाला किरदार मासूमियत, चंचलता और भावनाओं से भरा हुआ था। वही ऋषि कपूर ने रोहित का किरदार निभाया और विनोद खन्ना ने

ललित की भूमिका निभाई। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसका संगीत। फिल्म के संगीत ने चांदनी को सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक संगीतमय याद भी बना दिया। और आज भी इस फिल्म के गीत याद किए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। और इन गीतों को संगीत दिया था शिव हरि ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। जी हाँ, इस फिल्म में श्रीदेवी की अदाएं, उनकी चंचलता और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने गीत को, जितने भी गीत उनके ऊपर पिक्चराइज किए गए थे, वो उन सभी को यादगार बना दिया। चाहे आप इस गीत को ले लीजिए, जब भी चांदनी का जिक्र होता है तो ये गीत तो जहन में आते ही है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं, या तेरे मेरे होंठों पर, हर गाने में वो कशिश है जो आज की युवा पीढ़ी को भी आकर्षित करती है। इस फिल्म का जो माहौल था और इसके जो किरदार थे, वो इस इनकी जो भावनाएं थी उनको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाती है। और एक फैमिली फिल्म के रूप में आप कभी भी इस फिल्म को इंजॉय करते हैं। चांदनी में श्रीदेवी ने सिर्फ अभिनय नहीं किया था, बल्कि अपने हाव भाव, नृत्य और संवाद अदायगी से भी किरदार को जीवंत बना दिया था। उनकी सफ़ेद और हल्के रंगों वाली साड़ियों का जो अंदाज था, उस समय खूब लोकप्रिय हुआ चांदनी लुक। इसने फैशन में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी। यश चोपड़ा की फिल्मों में तो खूबसूरत लोकेशन आप जानते हैं कि होती ही हैं। संगीत और प्रेम कहानी का भी जो मेल होता है वो अद्भुत होता है, और यही सब कुछ चांदनी फिल्म में भी नजर आया था।

और अब हम आपको बताते हैं कि फिल्म चांदनी का जो आइडिया था वो यश चोपड़ा को आया कहाँ से। वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में दीवारों पर केवल खून खराबे और एक्शन फिल्मों के पोस्टर लगे देखे। लगातार कुछ एक्शन फिल्में फ्लॉप होने के बाद यश जी ने फैसला लिया कि वे अपने पसंदीदा जॉनर यानी कि एक शुद्ध और भव्य संगीतमय प्रेम कहानी बनाएंगे, और इस तरीके से चांदनी फिल्म की शुरुआत हुई। अब उनकी जो पहली पसंद थी वो थी रेखा, श्रीदेवी तो बाद में उन्होंने लिया जब रेखा ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी पिछली फिल्म सिलसिला में उन्होंने रेखा के किरदार को जब देखा था और जिस तरीके से रेखा ने इस किरदार को निभाया था तो वो उस किरदार का नाम चांदनी रखना चाहते थे। हालांकि रेखा ने कुछ कारणों से इस रोल को करने से मना कर दिया और फिर खुद ही उन्होंने श्रीदेवी का नाम सुझाया। इसके बाद ये रोल ऑफर किया गया श्रीदेवी को और ये उनके करियर का सबसे यादगार रोल बन गया। अनिल कपूर से भी पहले इस जो ऋषि कपूर साहब ने रोल प्ले किया था उसके लिए बात की गई थी। जब कास्टिंग चल रही थी उस समय ऋषि कपूर और अनिल कपूर दोनों फिल्म का हिस्सा होने वाले थे, लेकिन अनिल कपूर साहब को जो रोल दिया गया था वो बाद में ऋषि कपूर साहब ने निभाया। और अनिल कपूर व्हील चेयर पर बैठने वाले अपाहिज का किरदार नहीं निभाना चाहते थे, जिसे बाद में विनोद खन्ना साहब ने निभाया था, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बाद में यश जी ने ऋषि कपूर को रोहित का और दूसरा जो ललित का किरदार था वो विनोद खन्ना साहब को दिया। तो भाई ये थी कुछ खास बातें। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत आप सबका इंतजार कर रहा है।

और साथ ही साथ आपके जो संदेश हैं उनकी भी झड़ी लगी हुई है। वक्त अब आ गया है कि उन संदेशों को भी हम शामिल कर लें, लेकिन उससे पहले फिल्म से जुड़ी कुछ और भी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। चांदनी, जैसा कि नाम से है, यश चोपड़ा चाहते थे कि चांदनी फिल्म, पूरी फिल्म सफ़ेद रंग के कपड़े इसमें पहने जाएं, क्योंकि उनके लिए जो सफ़ेद रंग है वो पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक था। हालांकि श्रीदेवी इस बात से सहमत नहीं थी, उन्हें लगा था कि ये लुक स्क्रीन पर काफ़ी फीका और बोरिंग लगेगा। यहां तक कि श्रीदेवी की मां ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि सफ़ेद रंग को त्योहारों या और खुशी के मौके पर शुभ नहीं माना जाता। लेकिन यश जी के भरोसे पर श्रीदेवी मान गई। फिल्म रिलीज होने के बाद श्रीदेवी की वो सफ़ेद साड़ियां और चूड़ीदार सूट पूरे देश में एक बड़ा फैशन ट्रेंड बन गया था। इस फिल्म में कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म को, जहाँ तक कि कई सारी हीरोइंस से जब बात की गई थी, तो उनके दिमाग में यही था कि ये जो फिल्म है वो श्रीदेवी जी को ही केंद्र बिंदु उनको दिमाग में रखकर बनाई गई है, और शायद वो अगर इस फिल्म में कोई भी काम करेंगी तो वो इतना नाम नहीं कमा पाएंगी। एक छोटा सा केमियो रोल था, जिसके लिए यश जी ने माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी और माधवी जैसी बड़ी अभिनेत्रियों से संपर्क किया, लेकिन सबको पता था कि पूरी तरीके से यह फिल्म सिर्फ केंद्रित है तो श्रीदेवी पर, और वो किसी भी तरीके का छोटा रोल नहीं करना चाहती। लेकिन बाद में जूही चावला ने इस रोल को खुशी खुशी स्वीकार किया। यश जी ने उनके इस व्यवहार से इतने ज़्यादा वो प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म, जो कि 1993 में आई थी, फिल्म डर, उसमें जूही को मुख्य अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत और साथ ही साथ आपके संदेश भी।

तिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल, कौशल्या, हेमलता और डिंपल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम बागिया, शेख रहीम मुन्ना है। नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग जी पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। सिद्धार्थ गोणा ने, अनीता ताई, हेमरामणि शेंडे जी ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं। रितिका मिस्किन बाणी जी हमारे साथ पूरे परिवार के साथ सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। पिपरिया से कमलकांत, दीपा, रिमझिम गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हैं। बटिंग रोड मंडी मडवाली से राजेंद्र नागर, अंजू जी, मोहित जी हमारे साथ हैं। और हजिंदर सिंह भाटिया, एंजल जी हमारे साथ स्टेशन रोड जमशेदपुर से जुड़े हैं। मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ वरुण अमरावती महाराष्ट्र, वडोद अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांसा निर्मोहन उषा मोहन चिलू नायक जी हैं। नादेड़ से शंकरलाल जायसवाल, गणेश शुभम जी हमारे साथ जुड़े हैं। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव ज्योति रानी, गुरमीत हैं। और सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश पहाड़गंज मुल्तानी ढांसा निर्मोहन उषा मोहन जी का है। और अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या जी हमें सुन रहे हैं। अजीत भापसर जी हमारे साथ हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी के साथ। प्रमीला जी के साथ वीरन गांव गुजरात से जुड़े हुए हैं। बटिंग खेड़ा पंजाब से मिंचू टोमस, पिंकी लवली हमारे साथ हैं। और इब्राहिम सद्दाम हमें नाजिया सैयद मसरूर जी हमें सहारनपुर से सुन रहे हैं। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जी अपने परिवार के साथ हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवानगन जी हमारे साथ हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शहनवाज, सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। शिवा गोप, प्रेम गोप जी हमें पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से सुन रहे हैं। और ये संदेश हमारे पास बबलेश पवार जी का है। बबलेश जी, आपने भी बहुत बेहतरीन जानकारी हमसे साझा की है, शुक्रिया। ये गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से डेनी पमार और मनीष जी के

साथ हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश योगेश सर्व जी का है। सर्वा आशा जी ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी, और ये संदेश हमारे पास जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ प्रकाश जी का आया हुआ है। सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं। देवशंकर तामुरिया जी अदेव जी डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। फारूक अली खान हमारे साथ हैं मोहाली पंजाब से। गुरमीत तंगोरी जसवीर कौर जी हमें हैं जुड़े हुए हैं। संबलपुर काकेड़ से फागुन राम यादव ज्योति ओजस्वी यादव जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अब वक्त नहीं है और ढेर सारे संदेश हैं। अगर किसी का संदेश छूट गया है तो हम माफ़ी चाहेंगे। कुछ संदेश और ले लेती हूँ। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा जी हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी जुड़े हैं। नलवेश्वर नगर से पीएस नवानकर जी जुड़े हैं और सुरेंद्र खुराना जी न्यूमल्तान नगर दिल्ली से हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौर जी हैं और बाकी कुछ संदेश हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। और अब आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आज की एक खूबसूरत सी फिल्म उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर देखी होगी और अभी भी किसी कारणवश आप चूक गए हैं रह गए हैं तो वक्त निकालिए और उस फिल्म को ज़रूर देखिए। अगली मुलाकात फिर एक नई फिल्म के साथ होगी। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए 2:30 पर प्रोग्राम एक की कलाकार लेकर आपके बीच होंगी प्रीति त्यागी। अब मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: फिलहाल सुन रहे हैं पंजाबी चख।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व पद्धर ते देशां विचकार अविश्वास ते नवीं चुनौतियां दे बावजूद भारत नूं विकास ते उम्मीद दी इक वड्डी किरण वजों देखिया जा रहा है। सरकार ने अज 4 साल तो घट उम्र के बच्चों लिए क्लोरोफेनिरमाइन मैलेट और फिनाइल एफिन हाइड्रोकलोराइड कंबीनेशन वाली दवाइयां के निर्माण विक्री ते वंड ते पाबंदी ला दी है। भारत ने 22 भारतीय नागरिकों नूं लैके जा रहे 2 व्यापारक जहाजा के अगवा होने का मुद्दा सोमालिया के अधिकारियों नाल उठाया है। भारत और बरतानिया ने दोहां देशों की फौजा दरमियान सहयोग वधाउण ते सहमति जताई है। एम्सटेलविन मर्दां के FIH हॉकी विश्व कप के दूजे गेड़ में अज भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड्स नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुधार उन्होंने सरकार लिए मजबूरी नहीं सगों एक वचनबद्धता ने। उन्होंने कहा कि सरकार दी नीतियां लोगों के हितों से देश के विकास को ध्यान में रख के बनाई जा रही ने। नवी दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार न सिर्फ नियमों को बदल रही है सगों उन्होंने बनाने पिछे मानसिकता को भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत हुण उत्पादन नाल जुड़ी उत्साह योजना

0: PLI ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है और आज पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व पद्धर के स्रोतों को लेकर वध रहे तनाव अते देशों विचकार अविश्वास नवीं चुनौतियां पैदा कर रहा है। इसके बावजूद भारत को दुनिया में विकास से उम्मीद की एक बड़ी किरण वजह देखा जाता है।
1: साथियों, दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: भारत की G20 प्रधानगी के मंत्र एक धरती एक परिवार एक भविख का हवाला देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के सारे देशों का भविख आपस में जुड़िया हुआ है।
1: हर देश का भविष्य उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है। G20 की अध्यक्षता में इसलिए ही भारत का मंत्र रहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। शेयर्ड फ्यूचर की ये भावना और इसके साथ जुड़ा दायित्व बोध 21वीं सदी के इस विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान देता है।
0: उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति और इससे तेज 5G विस्तार का भी जिक्र किया। सरकार ने 4 साल तो घट उम्र के बच्चों लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफरिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सारे फिक्स्ड डोज कंबीनेशन के निर्माण विक्री ते वंड ते पाबंदी ला दी है। सेहत मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन राही इन दवाइयों बारे स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह दवाइयां 4 साल तो घट उम्र के बच्चों नहीं दी जा सकती। एक कदम छोटे बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुकया गया है। सरकार ने निर्माताओं को इन दवाइयों के लेबलों पैकेज निर्देशों और प्रचार समगरी से स्पष्ट तौर पर चेतावनी देने के निर्देश दिए ने। सरकार ने कहा है कि यह दवाइयां 4 साल तो घट उम्र के बच्चों लिए जोखिम पैदा कर दिया ने और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध ने। झारखंड के रामगढ़ जिले के मां श्रीमस्तका सीमेंट और स्टील पावर प्लांट में बीती रात एक टरबाइन में जोरदार धमाके तो बाद भयानक अग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियर की मौत हो गई जदों के एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतकों की पछाण रांची के संजीव कुमार केसरी बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे वजों हुई है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ MT ਸੀਬੂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯਮਨ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 16 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ MV ਲੁਤਫ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪੁੰਟਲੈਂਡ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਯੂਥ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। भारत ने सोमालिया के साथ दो गैर मुल्की परचमबरदार तिजारती बहरी जहाजों को हाईजैक किए जाने के मामले को उठाया है, जिस पर 22 भारतीय मल्लाह सवार थे। हुकूमत ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल तमाम फिक्स डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी हैं। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मुल्क के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मशरकी मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारत की खवातीन की डबल्स जोड़ी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद आज दोपहर सेमीफाइनल में चीन की जोड़ी ली शेंगशू और टैनिंग का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने सोमालिया हुक्काम के साथ दो गैर मुल्की परचमबरदार तिजारती जहाजों को हाईजेक किए जाने के मामले को उठाया है, जिनमें 22 भारतीय मल्लाह सवार थे। इन जहाजों को यमन और सोमालिया के साहिलों के नज़दीक अलग अलग वाकयात में मुसल्लह कज़ाकों ने हाईजेक किया था। 16 भारतीय मल्लाह MT सीबू में, जबकि 6

0: भारती मल्ला एमटी लुत्फ में सवार थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केनिया में भारतीय हाई कमीशन ने कहा है कि सभी भारतीय मल्ला महफूज बताए जाते हैं। कल वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने हफ्ते में दो बार होने वाली मीडिया गुफ्तगु के दौरान एक सवाल के जवाब में उन भारतीय मल्लाहों के तहफ्फुज से मुतालिक तशवीश के बारे में भी जानकारी दी जो ऐसे समंदरी इलाकों में काम करते हैं जहां शिद्दत से लहरें उठती हैं। उन्होंने मल्लाहों की बिरादरी के तहफ्फुज और उनकी फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह देने के भारत के अज़्म को दोहराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात कोई मजबूरी नहीं बल्कि उनकी हुकूमत के लिए एक अज़्म और पुख्ता यकीन का मामला है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ अवाम दोस्त, तरक्की पसंद और मुल्क की तरक्की के लिए हैं। कल शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने इस्लाहात के लिए एक वाज़ह रोड मैप तैयार किया है जिसमें बुनियादी तवज्जो हुक्मरानी के निज़ाम में इस्लाहात पर मरकूज़ है। उन्होंने कहा है कि भारत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर अगले सिलसिले की इस्लाहात कर रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: हुकूमत ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरमाइन और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल तमाम फिक्स डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। वजारत सेहत ने एक नोटिफिकेशन में लाजमी करार दिया है कि मस्कूरा अद्वियात पर वाज़ह इंतबाह दर्ज किया जाए कि उन्हें 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हरगिज इस्तेमाल न किया जाए। यह इकदाम कम उम्र बच्चों की सेहत और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की समत एक अहम कदम है। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों को हिदायत दी है कि वो मस्कूरा दवाओं के लेबल, पैकेज के अंदर मौजूद मालूमात और तशहीरी मवाद पर वाजह तौर पर यह वार्निंग दर्ज करें कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। हुकूमत ने कहा है कि इस तरह की अद्वियात का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए खतरात पैदा कर सकता है जबकि इसके मुकाबले में ज़्यादा महफूज मुतबादिल अद्वियात दस्तियाब हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग और ब्रिक्स के खेलों के उजरा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग आज होगी जबकि खेलों के उजरा की मीटिंग कल होगी। नौजवानों की उमूर और खेलों की वजारत के मुताबिक नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग में तालीम, हुनरमंदी के फरोग, कारोबार, खुशहाली और पायदार तरक्की पर तबादले ख्याल के साथ नौजवानों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाने में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स मुल्कों के वजरा और आला सतह के मंदूबीन के साथ आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के करीब वाक़ तारीखी थोटला कोंडा बुद्ध मत विरसे का दौरा किया। मंदूबीन ने बुद्ध मत के कदीम आसार और बाकियात देखे जिनमें महास्तूप, ध्यान मराकज, कुएं और बावरची खाना के इलाके शामिल हैं। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत थोटला कोंडा में एक पौधा भी लगाया। मरकजी वजीर ने थोतला कोंडा के शानदार बुद्ध मत विरसे की तारीफ की और कहा कि भारत का बुद्ध मत का विरसा पूरी दुनिया के लिए अहम है। ब्रिक्स के खेलों की वजरा की मीटिंग कल विशाखापट्टनम में मुनाकिद होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में दिन में शदीद बारिश होने का इम्कान है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, उत्तराखंड और भारत के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। इस दौरान मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और मशरकी राजस्थान में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। तफसील हमारे नामा।

0: मिसदार से।
1: मध्य प्रदेश में गिरदाबी हवाएं चलने और हवा के कम दबाव का हल्का बनने के सबब सख्त मौसमी निज़ाम फ़आल है। इसके नतीजे में पिछले दो दिन से रियासत के शिमाली हिस्सों में शदीद बारिश हो रही है और कई दरिया तुगयानी पर हैं। मौसमियात के महकमे ने आज सियोनी और बालाघाट में इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निज दतिया, भिंड, निवारी, तिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह समेत 12 जिलों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में कांग्रेस पर रिपब्लिकन कंट्रोल को बरकरार रखने की खातिर अपनी मुहिम के दौरान इंतखाबी जवाबित को मरकजी अहमियत देते हुए वोटरों के लिए तस्वीरी शनाख्त और शहरियत का सबूत लाजमी करार दिए जाने का अपना मुतालबा दोहराया है। सदर ट्रंप ने आज जनूबी कैरोलिना के मर्टल बीच पर एक रिपब्लिकन रैली के दौरान सेव अमेरिका एक्ट को मंजूर किए जाने की अपील की। सदर ट्रंप ने कहा है कि इस कानून के तहत हर वोटर को अपनी तस्वीर वाली शनाख्त पेश करना होगी और इस बात की तस्दीक करना होगी कि वो अमरीकी शहरी हैं। उन्होंने कहा है कि उनके इंतजामिया ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी हासिल कर ली थी, अगरचे उन्होंने कहा कि यह कानून इन शराइत को मुस्तकिल बनाने के लिए ज़रूरी था। BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खवातीन के डबल्स के सेमीफाइनल में आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चीन की ली शेंशू और टैन निंग की जोड़ी से मुकाबला करेगी। भारतीय जोड़ी कल चीन के चौथे मकाम की जोड़ी जेई फैन और जैंग शूजियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हुई है। इस जीत के साथ ही ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी ने भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी आलमी चैंपियनशिप में तमगा हासिल करने वाले भारतीय खवातीन की डबल्स की ऐसी दूसरी जोड़ी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा की पहली भारतीय जोड़ी थी जिसने 15 साल पहले लंदन में कांसे का तमगा जीता था। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने सोमालिया के साथ दो गैर मुल्की परचमबरदार तिजारती बहरी जहाजों को हाईजैक किए जाने के मामले को उठाया है जिस पर 22 भारतीय मल्लाह सवार थे। हुकूमत ने आज 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल तमाम फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के उजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मशरकी मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारत की खवातीन की डबल्स की जोड़ी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद आज सहपहर सेमीफाइनल में चीन की जोड़ी ली शेंगशू और टैन निंग का सामना करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस: Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years. India to host BRICS Youth Ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh this evening. India raises with Somalia issue of hijacking of 2 foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. IMD issues orange alert for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisa Jolly and Gayatri Gopichand to be up against China's Liu Shengshu and Tan Ning in semi-finals this afternoon. And now the news in detail. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations, FDCs, containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry, in a notification, mandated a clear warning that these medicines shall not be used in

0: सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे

0: ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिवू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
1: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
2: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवरस्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातु मार्ग जाम कर दिया। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
3: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर है और उन्होंने

0: पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बास बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
2: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फेन और झांगशु जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडेम में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 2:30 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ मैं, आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है एक ही कलाकार और आज मैं यही कहूँगी कि भाई आज अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी उदासी, थोड़ी सी भी शिकन है ना, तो बिल्कुल भी मत लाइएगा, क्योंकि आज का दिन है चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट को सजाने का। जी दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत से कलाकार आए जिन्होंने अपनी अदाकारी से हमें रुलाया, कुछ ने हमें डराया, लेकिन कुछ ऐसे नायाब नगीने भी हुए जो कि पर्दे पर अगर सिर्फ आ भी जाते थे तो उन्हें देखकर पूरे थिएटर में ठहाके गूंजने लगते थे। और इसी लिहाज से आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा के उसी बेताज बादशाह का जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से बाबरची में जहां सबको नचाया, वहीं रफू चक्कर में सलमा बनकर उन्होंने सबको लोटपोट किया। और अगर बात करें सत्य पे सत्ता की, तो उसमें बुद्ध बनकर उन्होंने हमारे दिलों में अपनी जगह एकदम से

पक्की कर ली। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे हैं, आज जन्मदिन है हम सब के चहेते कंवरजीत पेंटल साहब का, यानी कि पेंटल का, जिन्हें हम सब प्यार से पेंटल बोलते हैं। तो जो आज का हमारा ये सफ़र है, जो ये हमारा कार्यक्रम है एक ही कलाकार, इस कलाकार में आज हम बात करेंगे पेंटल साहब की ज़िंदगी और उनके फिल्मी सफ़र के बारे में, उनसे

0: सब कुछ ठीक।
1: जी हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, और बस आप सभी श्रोताओं का साथ चाहिए तो बिल्कुल सब कुछ यूं ही ठीक ठाक चलता रहेगा। तो कहते हैं कार्यक्रम को आगे की तरफ थोड़ा बढ़ाते हैं, हम बात करें पिंटल साहब की। पिंटल साहब जिनका जो शुरुआती जीवन था वो पंजाब में गुजरा, उसके बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया, और दिल्ली में अपनी पढ़ाई के दौरान जब वो पढ़ाई कर रहे थे उनका जो झुकाव था वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग की ओर था। वो थिएटर किया करते थे और स्कूल में भी स्टेज पे बहुत ज़्यादा वो काम किया करते थे, और अपनी इस कला को अपने इस झुकाव को समझते हुए जब वो कॉलेज में भी बड़े बड़े अपने नाटक किया करते थे और हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, मिमिक्री करते थे, और कॉमेडी जो कि भाई उनका स्पेशलाइजेशन है उसमें तो वो बेहद ही माहिर थे। अपने इस जुनून को देखते हुए, अपने इस अभिनय को देखते हुए उन्होंने अपने इस अभिनय को सही डायरेक्शन में ले जाने का फ़ैसला लिया, और इसी वजह से उन्होंने एडमिशन लिया फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII पुणे में। वहाँ उन्होंने एडमिशन लिया और सीखना शुरू किया उन्होंने एक्टिंग के गुरुओं को, और अपनी जो उनके अंदर प्रतिभा थी उसके दम पर वो अपने बैच के गोल्ड मेडलिस्ट बने। जी हाँ उन्होंने एक्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और उसी दौरान जब वो FTII में पढ़ाई कर रहे थे उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनके स्क्रीन पर जब वो आते थे तो किस तरह से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस होती थी और किस तरह से वो अपना प्रभाव छोड़ते थे, उन सब चीज़ों को देखा कुछ फिल्मी जगत के दिग्गज निर्देशकों ने, और उन्होंने जब ये नोटिस किया तो उसके बाद उनको काम

करना शुरू हुआ और उन्हें सबसे पहला जो बड़ा ब्रेक मिला वो मिला सन 1970 में आई फिल्म उमंग किसे। वो फिल्म ऐसी थी कि उसमें उनके साथ किशोरदा भी थे और ये फिल्म ऐसी थी जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग के जलवे को ऐसा दिखाया कि हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ किए बिना ना रह सका। तो लीजिए सुनते हैं दोस्तों उसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत महेंद्र कपूर और किशोर कुमार जी की आवाज़ में।

दोस्तों 1970 में फिल्म उमंग से मिला उनको फिल्मी दुनिया में कदम रखने का मौका, और उस फिल्म से ही वो पूरी तरह से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। उसके बाद उन्हें एक के बाद एक दिग्गज निर्देशकों के निर्माताओं की जो फिल्में हैं वो मिलनी शुरू हुई, और उसमें सबसे बड़ी एक फिल्म अगर हम बोलें तो वो थी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बावर्ची। और जवानी दीवानी में उनके काम को अगर हम देखें तो उस काम को बहुत ज़्यादा सराहा गया, और स्पेशली अगर हम बात करें बावर्ची फिल्म में निभाए गए उनके उस किरदार को, तो वाकई में एक सबसे ज़्यादा यादगार किरदार है उनके उस शुरुआती करियर की अगर हम बात करें तो, जिसमें पिंटल साहब ने गुरुदेव नाम के एक डांस टीचर का किरदार निभाया, जो कि घर की बेटी जया भादुरी को क्लासिकल डांस सिखाने आते थे। मतलब आप देख सकते हैं कि जया भादुरी जी और राजेश खन्ना जैसे बड़े कलाकारों के सामने भी उन्होंने उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हुए भी अपनी प्रेजेंस को बहुत बखूबी निखारा, और अपनी जो उपस्थिति है वो ऐसे दर्ज कराई कि उन दोनों बड़े और दिग्गज अभिनेताओं के सामने भी उनकी प्रेजेंस फीकी नहीं पड़ी। और हाँ, अगर हम बात करें इसमें गुरुदेव के पहनावे की, तो इस फिल्म में

उन्होंने धोती कुर्ता पहना है सिंपल सा, और चेहरे पर ऐसे गंभीर भाव उन्होंने लिए हैं कि उन गंभीर भावों को देख करके भी हंसी आ जाती है। और उस पर भी जब वो अपने कथक डांस के पोज बनाते हुए डायलॉग बोला करते थे तो वाह कमाल ही हो जाता था। मतलब हर एक सीन हंसने पर मजबूर करता था, यानी कि आप कह सकते हैं कि उनकी जो कॉमेडी थी, जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी, वो ऐसी थी कि उसमें किसी भी बेहुदा डायलॉग या बेकार शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो ही इस तरह के होते थे कि एकदम से वो अपनी प्रेजेंस को इस तरह से दिखाते थे कि हर कोई हंसने पर मजबूर हो जाता था। और वाकई में राजेश खन्ना साहब के बाद साथ जब उनकी जुगलबंदी बनी है इस फिल्म में, तो उसके बाद से ये बात साबित हो गई कि पेंटल साहब को अपनी छाप छोड़ने के लिए बहुत बड़ी, बहुत लंबी स्टोरी की या बहुत लंबी स्क्रीन टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि महज कुछ मिनटों की मौजूदगी में ही वो अपने उस कैरेक्टर में, अपने उस किरदार में जान फूंक देते थे।

जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंटल साहब के बारे में। और अगर हम बात करें पेंटल साहब की सबसे ख़ास फिल्म की, जो उनके फिल्मी सफ़र की सबसे ख़ास फिल्म मानी जाती है, या कहें कि जो उनके करियर का सबसे बड़ा माइल

स्टोन साबित हुई। वो फिल्म थी चला मुरारी हीरो बनने। इस फिल्म में पेंटल साहब ने कोई साइड कैरेक्टर या साइड कॉमेडियन का किरदार नहीं निभाया, बल्कि वो इस फिल्म में लीड एक्टर थे, यानी कि इस फिल्म के अहम किरदार को उन्होंने निभाया, यानी कि मुरारी का किरदार इन्होंने निभाया। और ये कहानी थी एक ऐसे छोटे शहर के सीधे साधे से लड़के मुरारी की, जो कि बॉलीवुड स्टार बनने का सपना लेकर पहुंचता है मुंबई में। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से मुंबई की फिल्मी दुनिया की चकाचौंध एक नए कलाकार का संघर्ष और उसके भोलेपन का लोगों द्वारा फ़ायदा उठाना। फिल्म में उनके ऑडिशंस, उनके स्ट्रगल के सीन, उनकी टाइमिंग इतनी कमाल की थी कि उनके इस किरदार की तारीफ जितनी की जाए वो कम है। इस फिल्म में उनके साथ थी बिंदिया गोस्वामी। और इस फिल्म की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पेंटल जी के लिए जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े किरदार हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, चाहे वो धर्मेंद्र हों, अमिताभ बच्चन हों, हेमा मालिनी, अशोक कुमार या फिर रसरानी, उन सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने इस फिल्म में कैमियो यानी कि स्पेशल अपीयरेंस दिया था, और ये सिर्फ और सिर्फ पेंटल साहब के लिए उनका प्यार, उनका सम्मान था। और इस फिल्म में उनके लाजवाब और दिल को छूने वाले इस अभिनय के लिए उन्हें 1978 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। और चला मुरारी हीरो बनने इस फिल्म ने यह साबित किया कि जो पेंटल हैं वो सिर्फ दूसरों के सीन में जान नहीं डालते, बल्कि वो एक ऐसे कलाकार हैं जो कि पूरी फिल्म को अपने कंधों पर चला सकते हैं। तो लीजिए सुनते हैं चला मुरारी हीरो बनने फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज़।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं पेंथल साहब के बारे में। हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम हमारे साथ जुड़े हैं कुमार हेड़ा सहारनपुर से, और सोमदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री और मोहम्मद आमीन जफर सादिक शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचा फारूक अली खान जी ने, गुलाब साबिर राही मेराज जहां हमारे साथ जुड़े हैं ताज मोहम्मद अंसारी जी के साथ, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि पेंथल साहब ने बहुत से फिल्मों में बेहतरीन काम किया और सीरियल महाभारत में निभाई गई उनकी भूमि

भूमिका भी बेहतरीन थी। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने महाभारत जो धारावाहिक था उसमें शिखंडी का किरदार निभाया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉमेडी के साथ साथ वो सीरियस कैरेक्टर भी बखूबी निभा सकते हैं। अगला संदेश हमारे पास है धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबूजी का, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में हैं मधु नायक जी। और दोस्तों अगला जो संदेश है उसको भेजने वाले हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गोड जी, अनिल मोहन जी पीटीआई संसद मार्ग से हमारे साथ जुड़े हैं, लोग गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता गोप हमारे साथ जुड़े हैं, पश्चिम सिंह, भूप चाईबासा झारखंड से, चिरमिरी कोरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश और कालिंद्री लहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। और दोस्तों जो अगला संदेश है उसको भेजने वाले हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश जो हम तक पहुंचा है स्वर्ण सिंह गिल जी का है। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए आप सभी श्रोता हम तक जुड़े, हमसे जुड़े, और हम बात कर रहे हैं पेंटल साहब के बारे में। और अगर हम उनके बारे में बात करें तो उनकी मशहूर एक ऐसी कॉमेडी थ्रिलर फिल्म का जिक्र हम ना करें तो भाई ये कार्यक्रम अधूरा है, और वो फिल्म है रफू चक्कर। जी हाँ दोस्तों, वो फिल्म जिसमें पेंटल और ऋषि कपूर साहब ने एक ऐसे म्यूजिशियन, ऐसे संगीतकार का रोल निभाया है जो अनजाने में एक मर्डर के गवाह बन जाते हैं, और ख़ासकर पेंटल साहब ने इसमें किरदार निभाया है सलमा नाम की एक लड़की का, जबकि वहीं ऋषि कपूर साहब बने हैं सीमा। लड़की के गेटअप में उनकी चाल ढाल, नज़ाकत और उनके बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल इतना नेचुरल था कि वाकई में। तो लीजिए सुनते हैं उसी फिल्म से ही खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हमने बात की पेंटल साहब के बारे में। फिर चाहे उन्होंने बावर्ची में गुरुदेव के बनकर कथक की ताल पर हमें हंसाया हो या फिर रफू चक्कर की सलमा बनकर सबको चकमा दिया हो, या फिर सत्ते पे सत्ता फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ बुद्ध जैसा मासूम अंदाज दिया हो, या फिर महाभारत जैसे कालजयी धारावाहिक में शिखंडी की गंभीर भूमिका उन्होंने निभाई हो, पिंटल साहब ने हर रूप में हमें सिखाया कि असली कलाकार वही होता है जो कि अपने अभिनय से, अपनी एक्टिंग से दर्शकों के

को छू जाए। और उनकी साफ सुथरी सहज कॉमेडी आज भी हमारे चेहरे पर एक नई ताजगी और मुस्कान ला देती है। तो दोस्तों, आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष में हम यही कहेंगे, ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि पेंटल साहब हमेशा यूं ही स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही हमें प्रेरित करते रहें। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। फिर से आपसे मिलेंगे फिर किसी रोज़ किसी नए कलाकार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपना ये फेवरेट चैनल। तब तक नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 3 बजने को है, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।
1: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे श्रोतान को मेरी यानी श्रुति बुरी की
2: और मेरी यानी वंदना जोहरी की राधे राधे।

0: श्रुति बहना, सावन में ब्रज को जो साहित्यिक रूप होवे ना, वो उभर के आवे। चाहे कोई उत्सव हो या मेला हो, छोटे छोटे पर्वन पे हो, परंपरागत गीत और जो खेल है ना, उनको प्राचीन रूप अविस्मरणीय है, अभी तक याद आवे।
1: हाँ जी, तो तुम सही कह रही हो वंदना। आजकल जो दंगल और कुश्ती जो खेली जाए ना, वो श्री कृष्ण और बलराम के समय से ही चली आ रही है। और अखाड़े में दंगल के जो पहलवान होयो करें हैं ना, वे लाल मिट्टी को लेप लगाए के कुश्ती लड़ो करें, पता है तुम्हें?
0: अच्छा, मतलब जाते फिसलन ना होए।
1: हाँ, फिसलन नाए हो जाते।
0: दंगल परंपरागत

0: नाव पेच, माटी की महक और अनुशासन को अनूठा संगम है। और श्रुति बहना, सावन में या कुश्ती दंगल के अलावा हो एक और दंगल होए, रसिया दंगल, जहाँ में गायक दल एक दूजे को लोकगीत और रसिया के माध्यम से चुनौती दे में।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, इनको मंचन भी कियो जाए है। और अलीगढ़ हाथरस में धार्मिक रसिया दंगल में ज्यादातर महाभारत के प्रसंग या फिर राधा कृष्ण की जो नोक झोंक हुई ना, बिनको वर्णन कियो जाए है। और ये सब सावन में मनोरंजन के प्रमुख साधन हो यो कने हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही है श्रुति बहना। हमने धार्मिक रसिया दंगल में सत्तो शर्मा और ब्रजेंद्र शर्मा को नाम खूब सुनो है। अब तो जे नाए हैं या लोक में, पर इनकी पार्टी आज हु खूब नाम कमाए रही है।
1: और वंदना, सावन में झूलन उत्सव को हु बड़ो साहित्यिक रूप देखवे को मिले है। मंदिरन में तो आजकल सुंदर सुंदर हिंडोला पड़ रहे हैं, बिनके दर्शन के संग ही संग झूलवे के पदहु गाए जा रहे हैं।
0: हाँ सच में, बिना सोने चांदी और फूलन ते बने हिंडोरे मन को मोह ले में, और श्रावणी पूर्णिमा तक प्रेम भक्ति और आनंद को जे अनूठा उत्सव मन भावन लगे है।
1: और ब्रज के गामन में पेड़न पे झूले झूलवे को बैठी ब्रज बालाएं जब सावन में मधुर मधुर गीत गावे तो आनंद की कोई सीमा ही ना रहवे।
0: सीरी सीरी बयार के संग लंबी लंबी पेंग और अलबेटा देते झूले आज हु याद आमे अविस्मरणीय है।
1: देखो वंदना, सावन के तो बहुत सारे गीत हैं, पर मल्हार सुनवे को और मल्हार गायवे को आनंदी कछु और है। तो
0: अच्छा।
1: चौना अपने श्रोतान को भी एक मल्हार गीत सुनवाई दियो जाए।
0: हाँ हाँ

0: तो प्यारे भैया बहनों, अभी आपने संवेश स्वरण में या मल्हार गीत का आनंद लियो। तो वंदना, देखो, ब्रज में सावन में तो जो गीत गाए जावे हैं वो तो मधुर हुए ही हैं, पर जो मल्हार गाई जावे हैं और मल्हार के वो कई रूप गाए जावे हैं
1: हाँ
0: सावन में, चाहे वो विलह को मल्हार होए, चाहे वो श्रृंगार को मल्हार होए, सरस मल्हार होए, मनिरा होए, हिंडोरा होए, कई ऐसे गीत हैं सावन में जो सावन आते ही ब्रज में जन जन के मुख पे अवतरित है जाए हैं।
1: हाँ
0: तो ऐसी ही एक ब्रजवासिन जो संगीत में PhD हुए हैं और जिनकी सावन पे बहुत ही आधिकारिक जानकारी है, वो आज हमारे संग स्टूडियो में आई भई हैं और जिनको हमारे श्रोता भली भांति जाने हैं। ये हैं डॉक्टर आरती श्रीवास्तव, और इनसे बात कर रही हैं वंदना आप, और या भेंट वार्ता का विषय है ब्रज की अनूठी मल्हार। तो चौनाब इनको स्वागत किया जाए और उनसे सावन के गीतन के बारे में जानकारी ली जाए।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर आरती जी, आपको हमारे ब्रज माधुरी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
0: जी
1: आरती जी, जो ब्रज को लोक संगीत है, वाकी अपनी मिठास है, वाको अपना माधुर्यमय संगीत जो मन को झनकृत कर दे। हर ऋतु को अपना अलग गीत है, अलग राग है, धुन है। तो सावन में जो गीत गाए जामे, बिनमें मल्हार पे आज हम चर्चा करेंगे।
0: जी
1: तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मल्हार को शाब्दिक अर्थ कहा है।
2: बहन, मल्हार केवल एक राग या गीत ही ना है, या में मन की लहर और ऋतु को भाव समायो है। अगर शाब्दिक अर्थ के ताई या को संधि विच्छेद करें तो मल और हार ये दो शब्द प्राप्त हुए। मल यानी के मैल गंदगी, और हार को मतलब है हरण करवे वालो
1: अच्छा।
2: यानी नष्ट करवे वालो। तो सावन की बारिश खेत शरीर और मन तीनों के मैल को धोवे है, या
1: अच्छा।
2: इसो या ऋतु गीत को नाम मल्हार है, जो गीत के द्वारा मन की सब बातें कह दे। अगर शास्त्रीय संगीत में राग मल्हार की बात करें तो वाको अर्थ हुई है मेघ की लहर वारो राग।
1: अच्छा,
2: मेघ
1: राग। अच्छा, मतलब मेघ मल्हार राग तो सुनो है हमने। आरती जी, जो राग मल्हार है और ब्रज की लोक शैली मल्हार में, दोनों में कहाँ समानता है और कहाँ भिन्नता है?
2: देखो वंदना जी, शास्त्रीय संगीत में राग मल्हार वर्षा ऋतु को एक गंभीर प्रकृति को राग है। राग मल्हार के कई प्रकार हैं, जैसे
1: अच्छा।
2: कि मेघ मल्हार, गौड़ मल्हार, मियाँ की मल्हार है, सूरदासी मल्हार है,
1: सूरदासी मतलब सूरदास
2: सूरदास जी के
1: द्वारा लिखी
2: द्वारा
1: गई।
2: रचित। हाँ
1: अच्छा।
2: हाँ और देखो, राग मल्हार और ब्रज की लोक मल्हार दोनों ही वर्षा ऋतु में ही गाए जावे हैं।
1: हाँ।
2: जहाँ राग मल्हार अपनी गंभीर मधुर स्वर संगति ते बादलन की गड़गड़ाहट और बारिश की अनुभूति करावे है, वहीं लोक मल्हार बादल के घिरबे पे ब्रजवासिन के मन की उमंग और श्री राधा कृष्ण के प्रेम और झूला पे झूलवे के आनंद को व्यक्त करे है।
1: और हमारे यहाँ जो सावन में झूले पड़े हैं, उन पे अलग अलग तरीके के गीत गावे।
2: हाँ बिल्कुल। और देखो, जहाँ राग मल्हार नियम स्वर ताल और समय के बंधन में बंध के गाए जाए,
1: हाँ,
2: वहीं ब्रज की लोक मल्हार तो हर बंधन ते मुक्त है,
1: अच्छा।
2: या के स्वर और ताल लोक के हिसाब से बदल जाए हैं। लेकिन राग में जहाँ सुर ताल ते भटके, वहीं
1: हाँ,
2: राग बिगड़ जाए।
1: अच्छा।
2: हाँ, और लोक मल्हार शैली तो देखो भाव प्रधान है, तो गलो सुरीलो हो या ना हो, जाए
1: मतलब
2: तो
1: गाना है।
2: हाँ जाए तो सब ही गाए सके हैं।
1: हाँ।
2: हाँ, और देखो, ब्रज की मल्हार केवल एक गीत ही ना है, जो तो ब्रजभूमि की सांस है। हाँ, या
1: बिल्कुल।
2: में शास्त्र ना है, बल्कि जीवन के अनेकों रंग हैं।
1: हाँ।
2: लोक मल्हार में जहाँ

0: प्रकृति के सौंदर्य के संग ही संग एक ओर मिलन और उल्लास है तो दूजी ओर विरह की भावना हुई आके द्वारा व्यक्त हुए है।
1: बिल्कुल। अच्छा जी, तो आपने करी राग मल्हार के प्रकार की बात और कहा लोक मल्हार के अलग अलग प्रकार हूँ मैं।
0: बिल्कुल हूँ मैं है, क्योंकि ब्रज की मल्हार कुन लोक जीवन से जोड़ के गामे हैं, या सो या में जीवन के सभी रंग जीवंत होए। और ब्रज में सावन एक मास ही ना है, जे तो आठ भावन को मेला है।
1: आठ भवन को मतलब
0: हाँ, मतलब संवेदना संयोग वियोग जे सभी रस जामे आ जाए।
1: अच्छा
0: हाँ, और देखो हर भाव को एक अपनो गीत है।
1: हाँ
0: तो भाव के आधार पे हमारे ब्रज के साहित्यकार ने मल्हार के आठ प्रकार करे हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, जामे पहली है झूलन मल्हार,
1: अच्छा
0: जो कि तीज ते लेके नाग पंचमी तक गाई जाए, और या में श्री राधा और कृष्ण के झूलवे के आनंद को भाव है।
1: अच्छा
0: जैसे कि एक पद बड़ो ही गाया जाए है मंदिरन में, प्यारी झूलन पधारो झुके आए बदराजे, तो आपने सुनो होएगो ना।
1: हाँ, हमारी
0: हाँ
1: आकाशवाणी को
0: हाँ
1: बड़ा
0: हाँ
1: प्रसिद्ध
0: और
1: गीत
0: देखो
1: है।
0: एक और पद है जो कि बहुत सुंदर लगे है, आप गाय के बताऊं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: बहुत सुंदर। और देखो, ज्यों पद खूब गायो जाए है के हिंडोरा कुंज वन डारियोरी झूला
1: झूलनाई
0: नाई
1: राधिका
0: राधिका प्यारी
1: रानी।
0: रे। और एक तो बहुत ही सुंदर है जो कि मंदिर में गाया जाए,

0: हो। आरती जी लग रहे हो है कि आपने म्यूजिक में पीएचडी करी है।
1: हाँ तो देखो मन तो उचक है गायबे को।
0: बिल्कुल उचक
1: हाँ
0: ना चाहिए।
1: और देखो ऐसे कई शास्त्रीय संगीत पे आधारित मल्हार के पद गाए गाए के मंदिरन में श्री राधा और कृष्ण को झूला झुलाया जाए है।
0: अच्छा तभी आपने यहाँ गीत में शास्त्रीय संगीत को फुट दियो है। और बहना मंदिरन में हूँ तो समाजी मल्हार के पद गायो करें,
1: हाँ
0: बड़े
1: बिल्कुल गाया
0: सुंदर
1: करें।
0: सुंदर। और मथुरा वृंदावन में कई जगह मल्हार संध्या को आयोजन हुए।
1: हाँ हमने तो बहुत सारी सुनी है मल्हार संध्या। बहन मल्हार को दूसरा प्रकार है टपकती मल्हार।
0: अच्छो मतलब वो
1: जाए
0: टप टप टप
1: हाँ
0: के।
1: जाए बूंदन में भीगो भयो विरह
0: अच्छा
1: गीत हूँ कह सके हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जैसे के छत पे ते बूंद बूंद टपके हैं वैसे ही विरह वेदना में भीगो भयो मन हूँ मानो टप टप टपकते
0: मतलब
1: लगे हैं।
0: आंखिन ते टप टप आंसू जो गए
1: हाँ
0: मैं।
1: हाँ तो देखो एक है निहाल दे बिनकी
0: अच्छा
1: एक प्रसिद्ध टपकती मल्हार है जाके बोले टपके बदरा टप टप टप रे भीगे मोरा आंगना। और ऐसी मल्हार को ब्रज की महिलाएं सावन की रात में एकांत में गायो करे हैं।
0: अच्छा और मल्हार को तीसरा प्रकार कहा है।
1: ब्रज में सावन भादों की संधि पे कजरी और मल्हार दोनों मिलके
0: हाँ
1: कजरी मल्हार कहलामे है बहन।
0: अच्छा मतलब कजरी अलग होए और मल्हार अलग होए और
1: हाँ
0: दोनों जब इनकी तर्ज मिल जाती तो कजरी मल्हार होए।
1: नाय नाय जी कजरी मल्हार तो वह नारी की विरह वेदना में डूबो भयो गीत है। जाए
0: हाँ
1: सावन में पिया के आयवे की आस लगी होए और भादों की कजरी मल्हार में वो आस हु टूट जाए।
0: अच्छा
1: ऐसा ही एक गीत की एक लाइन सुना रही हूँ आपको।

0: ऐसी दर्दीली मार्मिक मल्हार है। और कौन कौन से प्रकार के मल्हार हुए हैं आरती जी?
1: वंदना जी, चौथी मल्हार है घूमर मल्हार।
0: मतलब जो घूम घूम के गाई जाए।
1: हाँ, जे हरियाली तीज पे गाई जाए, और यह गामती भई ब्रज की नारियां आनंद मगन है के तेज लय में सामूहिक नृत्य करे हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, ऐसो एक गीत है, घूमर घूमर नाचे रे गोरी रे, और पायल बाजे छनन छनन, तो जामे नाचवे को भाव है।
0: अच्छा
1: और पांचवी भीगन मल्हार है।
0: भीगन मलार, मतलब
1: हाँ
0: जो भीगते हुए गाई जाती होगी।
1: हाँ बिल्कुल सही कहे हो आपने, या गीत में बरसात में भीगवे को ही भाव है।
0: अच्छा
1: हाँ, अभी जाको एक गीत है, रिमझिम बरस रही बादरिया कान्हा
0: भीग
1: भीग जाऊं रे,
0: जाऊं
1: रिमझिम बरस रही, रिमझिम बरस रही। और देखो छठी मल्हार है रसिया मल्हार, जो कि सावन के मेला में गाई जाए,
0: रे। अच्छा
1: और जे मल्हार रसिया की तर्ज पे गाई जाए।
0: रसिया हो, ऐसे जैसे होली में
1: हाँ
0: रसिया गाए जाए।
1: हाँ कछु तर्ज मिले है। और देखो या मल्हार में हंसी ठिठोली और मस्ती को भाव हुए है। और सातवीं बधाई मल्हार जब गाई जाए, जब बरसात के बाद किसानन के खेत में अच्छी फसल होए करे,
0: अच्छा
1: ऐसी एक मल्हार आपको सुनाऊं।
0: हाँ बिल्कुल।

0: अरे वाह, ये तो बड़ी मधुर मल्हार है, और हमने पहली बार बधाई मल्हार सुनी है।
1: हाँ देखो जी, गामन में गायो करें।
0: अच्छा
1: हाँ, और देखो वंदना जी, आठवीं मल्हार है बारहमासी मल्हार।
0: अच्छा जो
1: और
0: 12 मास गाई जाए।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: आरती जी, आपने तो मल्हार के बारे में बताए के हैं, उनके प्रकार के बारे में बताए के, बड़ी अमूल्य जानकारी हमारी श्रोतान को दी। एक प्रश्न और उठ रहा है मेरे मन
1: कहाँ
0: में। देखो, हमारी जो ब्रज की मल्हार हैं, उन्हें अनूठी मल्हार कहा जाए, तो मल्हार गायबे की परंपरा कितनी पुरानी है, मतलब जी कब से चली आई रही है?
1: यों तो ब्रज में मल्हार गायबे की परंपरा 500 वर्ष पुरानी है,
0: अच्छा।
1: पर या की जड़ें वात्यू गहरी हैं। वैदिक काल यानी के लगभग 1000 वर्ष पहले मल्हार को मूल प्राप्त हुए है वर्षा सूक्त और कृषि गीतन में। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और मतंग मुनि के ग्रंथ बृहदेशी में हूँ या को वर्णन वर्षा ऋतु के राग के रूप में प्राप्त हुए है।
0: अच्छा।
1: या के बाद आदिकाल के कयो कवि और रचनाकारन की रचना में वर्षा ऋतु के उल्लास के रूप में जे मल्हार पनपती रही है।
0: अच्छा।
1: हाँ, लेकिन भक्ति काल यानी के 15वीं और 16वीं सदी को यदि मल्हार को स्वर्ण काल कहो जाए तो गलत ना होएगा, क्योंकि
0: अच्छा।
1: वही समय स्वामी हरिदास और भक्ति कवि सूरदास और अष्टछाप के सभी कवियन ने मल्हार को श्री कृष्ण लीला ते जोड़ के गायो।
0: अच्छा।
1: और अष्टयाम सेवा के अंतर्गत मिन्ने मल्हार को गायन प्रारंभ कर दियो।
0: मंदिरन में।
1: हाँ, एक बात और भाई, के मध्य युग में मल्हार दो रूपन में बट गई।
0: कैसे?
1: एक ही दरबारी मल्हार, जामे के वर्षा ऋतु में शास्त्रीय संगीत पे आधारित मियाँ की मल्हार, गौड़ मल्हार, मेघ मल्हार, जे
0: जो
1: सब
0: दरबार
1: रात
0: में गाए जाते
1: हाँ जे
0: हैं।
1: सब दरबार में गाए जाए भी लगे।
0: अच्छा।
1: और दूसरो रूप हो लोक मल्हार, जाए गामन में नर नारी झूला गीतन के रूप में गायो करे।
0: अच्छा।
1: या के बाद आवे है मल्हार के विकास को अगलो कालखंड, यानी के 17वीं ते 19वीं सदी, निहाल दे को युग।
0: निहाल दे।
1: हाँ
0: जे निहाल दे कौन है?
1: जी, निहाल दे केलागढ़ की राजकुमारी ही,
0: अच्छा।
1: और अपने पति के विरह में जिनने अनेकों रचनाएं रची, विरह की मल्हार इन्हीं की देन है।
0: अच्छा जी,
1: विरह
0: तो
1: की

0: टपकती मलार।
1: सुनो तो है मुनि हल्दे की मलार।
0: हाँ।
1: पर आज पता चलो है हाँ। जे होई कहा है
0: जिन नई पहली बेर औरत के दर्द को मलार में पिरोए के टपकती मलार प्रारंभ करी।
1: अच्छा
0: जो बाद में ब्रज की हर नारी के मनोभाव व्यक्त करवे को माध्यम बन गई।
1: अच्छा
0: वह समय अनेकों मल्हारें रची गईं और तब से ही ब्रज की जो लोक धारा निरंतर बहती आ रही है।
1: अच्छा तो आरती जी वैसे तो जो लोक गायकी है वाको प्रमाण ना मिले पर जो मल्हार गीत गाए जामे इनके कहाँ रचनाकार रूप होते होंगे।
0: बिल्कुल हो देखो ब्रज की मल्हार के प्रमुख रचनाकार रहे हैं स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी, नरहरिदास, हित हरिवंश,
1: अच्छा
0: हित हरिवंश, अष्ट छाप के कवि या के अलावा अमीर खुसरो और मलिक मोहम्मद जायसी ने मल्हारन की रचना करी है।
1: अच्छा
0: संगई ब्रज के संत ग्वारिया बाबा, चंद्र सखी, भिखारी दास, घासी राम जी ऐसे अनेकों नाम है जिनके मल्हार आज हु गाए जा रहे हैं। निहाल दे और गांव की अनगिनत ऐसी लोक रचनाकार बैयर बानियां रही हैं जिनके नाम तो अज्ञात हैं,
1: हाँ
0: लेकिन मल्हार गीतन के भंडार में वृद्धि करवे में बिनको योगदान कम ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: या के अलावा ब्रज के लोक कवि लच्छी राम, रामदयाल शर्मा, मुन्नी देवी, गोरी देवी ऐसे अनेकों नाम है जिनको नाम मल्हारते जुड़ो भयो है।
1: हाँ तो इनमें लच्छी राम और रामदयाल शर्मा जी को तो नाम बड़ो प्रसिद्ध रहे हो है।
0: हाँ और देखो कई विद्वानों ने गांव गांव जाके अनेकों पुरानी मल्हार एकत्र करवे को सराहनीय कार्य करो है,
1: हाँ
0: जाते हमारी मल्हार की जो परंपरा निरंतर
1: बली
0: चलती
1: रहे।
0: रहे।
1: तो ब्रज की मल्हार वर्षा ऋतु और झूला के वर्णन के अलावा और कौन कौन से विषय पर आधारित हो मैं।
0: बहन चूंकि मल्हार एक लोकगीत शैली है तो या के माध्यम से ब्रज की महिलाएं अपने हर मनोभाव को व्यक्त करने में सक्षम भई हैं। अब देखो एक सखी कह रही है।

0: जी।
1: अच्छा
0: हाँ आरती जी, यह गीत को सुन के तो हमें हमारा बचपन याद आए गए। अच्छा आरती जी, हमने निहाल दे की बात करी, तो निहाल दे की मल्हार को एक झलक सुनाए सको आप?
1: बिल्कुल सुनाए सकें, क्यों ना है गढ़े हो।

0: और देखो बहन, एक चंदना की कथा को वर्णन कर, भाई मल्हार बहुत ही प्रचलित है।
1: अच्छा
0: हाँ, तीजन चर्चा एरी चंदना चले रही जी, जो तो आपने सुना होगा ना।
1: हाँ सुनाओ।
0: हाँ तो सुनो, नेक्स्ट वही गा रही हूँ।

0: और अब एक और गीत आप बता, मैं या गीत में एक सखी दूसरी सखी ते कहा समझा रही हो,
1: कहा
0: अरे बहना आवे गो तेरो भर तार सपनों तो सांची होए गो।
1: मन
0: देखो गीत के माध्यम से कैसे कैसे अपनी सखी को संभाल
1: के
0: रही है,
1: भाव प्रकट कर
0: हाँ
1: रही
0: मन के
1: है।
0: भाव प्रकट है रहे हैं। अब बन्ना बहन जाके अलावा गांव चौपाल चूल्हा चौकाते लेके सामाजिक समस्यान को लेके मल्हार रची गई हैं।
1: अच्छा आरती जी, आपने संगीत गायन में PhD करी है, तो गाती तो आप ही होंगी, कछु
0: हाँ
1: गुनगुनाए देव।
0: हाँ बिल्कुल गुनगुनाएंगे। और देखो क्योंकि बात मल्हार की चल रही है ना, तो एक मल्हार तो मैंने रची है,
1: अच्छा तो
0: हाँ
1: सुनवा दियो ना।
0: कोरोना महामारी के ऊपर।
1: अच्छा

0: मतलब पीहर की यादू आ रही है और आपने संदेश को दे दी और सावधानी की बात को कह दी। सच में गीत एक ऐसा माध्यम है जाको असर जनता पे न
1: हाँ
0: जल्दी है जाए। आरती जी, आज आपने मल्हार के बारे में जो अमूल्य जानकारी हमारी श्रोतान को दी है, वाकई ताई आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: ब्रज की अनूठी मल्हार या विषय पर अभी आप लोग ये भेंट वार्ता सुन रहे हैं। भेंट दाता ही डॉक्टर आरती श्रीवास्तव और भेंट करता ही वंदना जौहरी। और श्रोताओं, या के संग ही आज को हमारा ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं। मोए यानी श्रुति बुरी को और मोए यानी वंदना जौहरी को जाइबे की अनुमति दो। नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता विवेक कुमार तोमर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। लीजिए सुनते हैं नाटक बिरसा मुंडा।
3: आइए सुनते हैं नाटक बिरसा मुंडा। लेखिका रेणु राणा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
4: मम्मी मम्मी।
5: आई बेटा, एक मिनट।
4: आ जाओ आ जाओ आ जाओ
5: आ जाओ।
4: गुड आफ्टरनून मम्मी।
5: अरे वेरी गुड आफ्टरनून बेटा।
4: ये क्या, चेहरे पर ना कोई खुशी ना कोई मिठास है आवाज में। स्कूल में झगड़ा हुआ है क्या किसी से?
6: नहीं मम्मी, कोई झगड़ा नहीं हुआ।
4: तो फिर मूड ऑफ क्यों है?
6: अरे ये टीचर्स भी ना, पहले से ही इतना होमवर्क था, ऊपर से इतना सारा एक्स्ट्रा वर्क भी दे दिया।
5: अच्छा चलो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, जूस पियो। तो ये गुस्सा स्कूल टीचर्स पर निकल रहा है ना? जरा हम भी तो जाने ऐसा क्या एक्स्ट्रा वर्क दिया है आपको आपकी टीचर ने।
6: अब देखो ना मम्मी, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन करना टीचर्स की जिम्मेदारी है, पर वो चाहती हैं कि हम एक प्ले खुद लिखें।
5: वाओ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग वर्क है। इसमें मूड ऑफ करने वाली क्या बात है? हाँ,
6: मूड ऑफ है हमें दिए गए टॉपिक से।
5: वैसे चिकी बेटा, क्या टॉपिक मिला है आपको?
6: वो कोई बिरसा मुंडा जी के ऊपर प्ले लिखना है, लेकिन मुझे और मेरे क्लास के और बच्चों को उनके बारे में कुछ नहीं पता। मैं बहुत अपसेट हूँ मम्मी।
5: चिकी बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी काम को करने से पहले ही हार मानना या अनुत्साहित होना बहुत गलत बात है।
6: पर मम्मी, मैं बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ नहीं जानती, तो उन पर प्ले कैसे तैयार करूंगी?
5: जानती नहीं हो ये ठीक है, पर जान तो सकती हो ना। तुम अपने जीनियस पापा को कैसे भूल गए?

0: इंडियन हिस्ट्री में मास्टरी है उनकी।
1: ये तो मैं भूल ही गई थी।
0: अच्छा चलो अब हाथ धो लो, खाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, और वैसे भी कल संडे है, यानी समय का पूरा सदुपयोग।
2: चिकी भाई, तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम्हें बिरसा मुंडा जी पर

0: जो उन्होंने इस फंक्शन के लिए बिरसा मुंडा जी का नाम चुना।
1: आप दोनों के लिए मैं गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ। अच्छा सुनिए, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं भी इस जानकारी का हिस्सा बन सकती हूँ क्या?
0: अरे क्यों नहीं रजनी, बैठो। हाँ तो चुकी बेटा, शुरू करते हैं बिरसा मुंडा के जन्म से।
2: जी
0: बेटा, ये उन दिनों की बात है जब जंगल, नदियों, पहाड़ों, इन सब पर किसी का कब्जा नहीं होता था। बिरसा के दादा, परदादा, उनके भी परदादा अपने व अपने लोगों के रहने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते जंगलों में निकल जाते और जहां सही जगह दिखती वहीं खूंटा गाड़ देते। और वो आज जिसे हम छोटा नागपुर कहते हैं ना, वो बिरसा मुंडा के किसी परदादा के नाम पर ही है।
1: अच्छा।
0: हाँ, मुंडा जाति के लोग धरती को अपनी माँ और सिंबोड़ा को अपना देव पिता मानकर पूजते थे।
1: सिंबोड़ा, ये कौन से देवता हैं?
0: सिंबोड़ा यानी सूर्य, सूर्य देव। मुंडा आदिवासियों का पूरा जीवन जंगलों पर ही निर्भर था। खान पान, रहन सहन, दवा दारू, ये सब जंगल से ही तो मिला करता था उन लोगों को।
1: अच्छा।
0: लेकिन बिरसा के जन्म के भी कई वर्ष पहले बहुत कुछ बदल चुका था। अब मुंडा लोगों के जीवन में जमींदार, महाजन, ठेकेदार, सूदखोर, मिशनरी कानून, पुलिस, सड़कें, सूखा, गर्मी, गरीबी व बंधुआ मजदूरी जैसे शत्रु आ चुके थे। अब जंगलों पर मुंडा लोगों का कोई अधिकार ना था। बिरसा मुंडा के पिता सुगाना मुंडा, जो जंगल को अपनी मिल्कियत समझते थे, अब एक भिखारी बन गए। सुगाना मुंडा जमींदारों के खेतों में मजदूरी करके भी 2 जून का खाना तक नहीं जुटा पाते थे।
1: अच्छा।
0: मजदूरी पाने के लिए कभी कहीं तो कभी कहीं भटकते फिरते। इसी भटकाव की स्थिति में सुगाना मुंडा के कोमा और 2 बेटियां दासकिर और चंपा पैदा हुई।
1: अच्छा।
0: पूरी मुंडा जनजाति इस समय बंधुआ मजदूर बन चुकी थी। जमींदारों के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। मिशनरी प्रभाव मुंडाओं पर प्रभाव जमा रहा था, क्योंकि मुंडाओं की भूख मिटाने में मिशन ही सहारा था। और इसी माहौल में जन्म हुआ बिरसा मुंडा का।

0: अरे भैया सुगाना, तुम्हारी पत्नी ने, कर्मी ने बेटे को जन्म दिया है, मुबारक हो। बच्चे का मुख इतना सुंदर है कि क्या बताऊं, किसी मुंडा बच्चे का ना हुआ होगा ऐसा। देखो तो देखो कितना सुंदर है।
1: अरे जरा इधर तो लाओ बच्चे को, मुझे भी देखने दो।
0: लो लो,
1: हटो हटो, सब पीछे हटो। आ गया हमारा आबा, आ गया। अरे सुगाना, तेरे घर तो आबा जन्मा है, धरती का आबा, धरती का भगवान जन्मा है। ये इस धरती को शुद्ध करेगा, ये मुंडा राज लौटाएगा, सब दीकू जमींदार को मार भगाएगा।
2: ये आप क्या कह रहे हैं?
1: अरे भाई देख, इसका मुख देखा है पहले कभी? ऐसा मुख बरसों से सुनता आ रहा हूँ, धरती का आबा तेरे कुल में जन्मा होगा। देख आ गया आबा, ये मुंडा जाति का जीवन सुधारेगा, दीकू लोगों को मार गिराएगा, हमें आजाद करेगा।
0: चलो अब हमारे आबा का कुछ नाम तो रखो।
1: देखो भाई, मुंडा जाति की परंपरा के अनुसार आज विश्युतवार है। विश्युतवार को हमारे आबा का जन्म हुआ है, तो इसका नाम होगा बिरसा। बिरसा मुंडा,
3: बिरसा मुंडा,
1: बिरसा मुंडा,
3: हमारा आबा बिरसा,
1: बिरसा
3: मुंडा,
1: आबा बिरसा,
3: बिरसा मुंडा हो गया।
4: चिक्की बेटा, सन 1875 में उलीहातू, जो उस वक्त बिहार था, भाई अब जिसे तुम छत्तीसगढ़ नाम से जानते हो, वहां बिरसा का जन्म हुआ। भाई रजनी, सुगाना मुंडा के लिए परिवार को पालना बहुत कठिन हो रहा था। पूरे दिन जमींदारों के खेतों में मजदूरी करने पर दो जून घाटों ही मिल पाता था। सरकार के नुमाइंदे, जमींदार, ठेकेदार, पुलिस, इन सबको तो मुंडा लोगों का उत्थान करना ही नहीं था। वो तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूर ही बनाए रखना चाहते थे।

0: और जब कभी मुंडा लोग प्रशासन तक जाते तो उनकी मुंडारी भाषा को उलट पुलट करके वकील लोग उल्टा उन्हीं को दोषी ठहरा कर जेल में डाल देते।
1: अरे
0: हाँ, ताकि दूसरे मुंडा लोग शिकायत करने की हिम्मत ही ना जुटा सकें।
1: सचमुच अशिक्षा और अज्ञानता ही पतन का कारण होते हैं।
0: बिल्कुल सही, यही बात बालक बिरसा ने अपनी नन्ही सी उम्र में समझ ली थी।
2: बिरसा, ओ बिरसा, इधर आ।
3: आ रहा हूँ माँ।
4: ये ले बेटा, खाना खा ले।
3: थू, थू।
1: अरे क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाता?
3: मुझसे नहीं खाया जाता ये भीखा घाटो, नमक डालो तब खाऊंगा।
1: बेटा कहाँ से लाऊं नमक, हम तुम्हें भरपेट खाना नहीं दे पा रहे।
3: माँ चुप हो जाओ माँ। अच्छा सुनो माँ, मैं पढ़ाई करूंगा और फिर बड़ा होकर तुम्हें बोरा भर कर नमक ला कर दूंगा। तुम भी खाना माँ और लोगों को भी बांटना, ठीक है? ठीक है माँ।
1: अरे अरे रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है? तू तो आबा है, तुझे मैं कैसे रोक सकती हूँ?
5: चल बेटा चल, चल चल चल बेटा।
3: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो काका?
5: तुम्हारे पीछे ना आऊं तो कहाँ जाऊं आबा?
3: अरे तुम मुझे आबा क्यों कहते हो?
5: आबा
3: नहीं,
5: तुम हम सब मुंडाओं को आजाद करोगे, इन जंगलों को आजाद करोगे, हमारी धरती से दीकू लोगों को मार गिराओगे। हाँ
3: काका, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती हैं।
5: समझ जाओगे मेरे आबा, समझ जाओगे, जल्दी समझ जाओगे मेरे आबा। चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
1: तो पापा, क्या इतनी छोटी सी उम्र में बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान मान लिया था?
0: अरे चिक्की बेटा, नहीं, उसने खुद को भगवान तो नहीं माना था, पर वो इतना जरूर समझ गया था कि मुंडा लोगों की इस जर्जर हालत को सुधारना शिक्षा के बिना अधूरा है।
1: और बिरसा की पढ़ाई, उसका क्या हुआ?
0: इस समय देश में अंग्रेजी राज अपना प्रभाव जमा रहा था, मिशनरी धर्म इन गरीब आदिवासी लोगों को लुभाने में लगा हुआ था।
1: तो क्या बिरसा का स्कूल में एडमिशन हो गया?
0: हाँ बेटा, जयपाल नाग की पाठशाला में बिरसा ने पढ़ना शुरू किया।
1: अच्छा।
0: और बिरसा की लगन देखकर जयपाल नाग जितना जानते थे उसे सब पढ़ाया।
1: अरे वाह।
0: इसी बीच बिरसा की मौसी जॉनी का विवाह तय हो गया, क्योंकि वो बिरसा को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए विवाह के बाद अपने ससुराल खटंगा ले गई।
1: अच्छा।
0: यहाँ बिरसा दिन भर गायें चराता और जॉनी उसे खूब लाड़ प्यार देती, भरपूर खाने को देती। पर यूं तो बिरसा को यहाँ सब सुख चैन था, पर उसके और आगे पढ़ने की लालसा उसे बेचैन कर रही थी। बिरसा ने यहाँ से निकलने का मन बना लिया और वो अपने भाई कोमता के पास पहुंचा। कोमता की सहायता से उसे जर्मन मिशनरी में एडमिशन मिल गया, जहाँ उसने प्राइमरी शिक्षा 2 साल में पास कर ली।
1: अच्छा।
0: अब आगे की शिक्षा के लिए मिशन के अध्यापकों ने उसे चाईबासा जाने के लिए कहा।
1: तो क्या वो आगे की पढ़ाई कर पाए?
0: हाँ, पहले तो बिरसा के पिता सुगाना मुंडा ने उसे समझाया कि उच्च शिक्षा के लिए मुंडा लड़कों को आसानी से दाखिला नहीं मिलता, पर बिरसा के पढ़ाई के प्रति अथाह लगाव ने उन्हें मजबूर कर दिया चाईबासा जाने के लिए।

0: ओ बिरसा मेरे आबा, चल चल घर लौट चल, यहाँ कोई पाठशाला नहीं है, देख कितनी दूर आ गए हैं हम, चल चल घर लौट चल। देख देख मैं तुझे नई धोती दूंगा, हैं, अच्छा भोजन दूंगा, और हाँ तू लड़कों के साथ खेलना, चल बेटा चल चल चल।
1: वो देखो आबा, कितनी बड़ी पाठशाला दिख रही है, कितना बड़ा मकान, देखो देखो देखो देखो वो देखो वो देखो देखो देखो।
2: ए, किधर जाता है, चलो जाओ इधर से, यहाँ कोई एडमिशन नहीं होगा, टाइम खत्म हो गया।

0: लौटो। कोई जगह नहीं यहाँ पर।
1: कैसे जगह नहीं है?
0: गेट आउट।
1: कैसे जगह नहीं है? मैं बुज्जू के साहब से चिट्ठी लेकर आया हूँ।
2: बुज्जू के साहब से चिट्ठी? तुम लिखवा कर लाया है तो जाओ वहीं जाकर पढ़ो। इधर क्यों आया है?
1: वहां की पढ़ाई कर ली है, अब आगे पढ़ना है।
0: दिखाओ दिखाओ।
2: काफी दिमाग वाला हो तुम। चलो अंदर आओ।
3: बाबा अब तुम जाओ, मैं यहाँ खूब पढ़ाई करूंगा, फिर तुम्हारे लिए माँ के लिए खूब काम करूंगा। जाओ बाबा जाओ।
2: अच्छा बेटा, तू तो आभा है, तू सब करेगा, अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ बेटा।

0: सचमुच किसी काम की चाहत रखो तो ईश्वर भी सहायता करते हैं।
1: बिल्कुल, तुमने एकदम सही कहा रजनी। बिरसा यहाँ मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। वो अब काफी अंग्रेजी बोलना लिखना भी सीख गया था।
0: अच्छा,
1: यहाँ मिशनरी माहौल में उसका मानसिक विकास हुआ। और एक बार जब बिरसा अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने गए तो कुछ मुंडा लोगों से उनकी भेंट हुई, और उनसे बिरसा जी को एक बात पता चली।
0: क्या?
1: कि बाहर मुंडा लोगों पर साहब, कर्मचारियों, जमींदारों और अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके विरोध में मुंडा सरदार आंदोलन जोर पकड़ रहा है। पर सरदार आंदोलन को सही दिशा नहीं मिल पा रही। मुंडा जनजाति बाहर सुगाना मुंडा के बेटे बिरसा मुंडा, जिसे वो अपना भगवान मानते हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: तो ये सुनकर बिरसा मुंडा ने क्या किया?
1: बेटा, बिरसा बाहर मुंडाओं द्वारा हो रही उनकी प्रतीक्षा की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने फौरन तमाम मुंडा लड़कों को इकट्ठा किया और मिशन के साहब के पास पहुंच गए।
3: सर,
4: प्लीज कम इन। क्या काम है?
3: सर, ये एप्लीकेशन देनी है।
4: क्या है इसमें?
3: सर, छोटा नागपुर हम मुंडा लोगों का है। आप साहब हैं, हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए।
4: सुनो, उसके डॉक्यूमेंट मींस कागजात हैं तुम्हारे पास?
3: वो तो नहीं है सर, पर ये जमीन हमारी है, फिर कागज कैसे?
4: कागज नहीं है तो जमीन तुम्हारी कैसे हो सकती है?
3: वो तो दीकू लोगों ने, जमींदार लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है सर।
4: एनीवेज, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यू मीन आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट।
3: आप साहब हैं, सरकार भी साहब है। आप सरकार से कहकर हमें हमारे गांव वापस दिलवा सकते हैं? प्लीज दिलवाइए सर।
4: वेल, देखो, मैं इस मिशन का साहब हूं, मैं सरकार नहीं हूं।
3: अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें भी यहां नहीं रहना। हम सब मुंडा लड़के ये मिशन छोड़कर चले जाएंगे, यहां से।
4: रुको रुको बिरसा, तुम लोग ये जो बाहर की बातें सुनकर मिशन छोड़ने का सोच रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहां रहने पर सरकार तुम लोगों से खुश होगी।
3: क्या सरकार हमारी जमीन लौटाएगी?
4: हाँ, जो मिशन में रहेगा उसकी जमीन तो जरूर मिलेगी।
3: और बाकी मुंडा लोगों की जमीने?
4: तुम जानते हो, यू नो, वो बाहर सरदार आंदोलन चल रहा है, पर सब बेकार है। इट्स ऑल यूजलेस। वो जेल में है, समझ रहे हो? दे आर इन जेल। अब आओ, अपने साथियों को बुलाओ और उनको समझाओ कि वो मिशन ना छोड़ें। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस टू यू।
3: सर, मैं देखता हूँ सर, कोशिश करता हूँ।
4: प्लीज डू दैट।

0: तो क्या पापा बिरसा ने अपना इरादा बदल दिया?
1: नहीं चिक्की बेटा, अब बिरसा समझ चुके थे कि उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि मुंडा समाज की इस बिगड़ती स्थिति का कारण अशिक्षा और अज्ञानता ही है।
0: बिल्कुल।
1: और इन्हीं पौराणिक भ्रांतियों, रूढ़िवादी सोच के कारण मुंडाओं की प्रगति हो ही नहीं पा रही। सरदार आंदोलन की असफलता का कारण भी यही था। यह सब बिरसा को इस मिशन के प्रगतिशील माहौल के कारण पता चला।

0: और सन 1879 में मुंडा सरदार आंदोलन से जुड़े मुंडाओं ने सरकार को एक पत्र लिखा कि छोटा नागपुर उनके पूर्वजों की मिल्कियत है, जो उन्हें लौटा दिया जाए। मुंडाओं ने मिशन के पादरियों से भी मुलाकात की और इस बात की अपील भी की।
1: अच्छा।
0: पर जब कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अधिकतर मुंडाओं ने मिशनरी धर्म छोड़ना आरंभ कर दिया।
1: अच्छा।
0: उन्हें लगा कि उनकी ये दशा सिम्बोड़ा छोड़ने के कारण हुई है। अब उन्होंने कलकत्ता में रह रहे बैरिस्टर जैकब की शरण ली।
2: बिरसा, कम यहाँ, व्हाट इज दिस? ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ का माहौल सब खराब करते जा रहे हो।
3: और फादर, जो आप लोग कर रहे हैं क्या वो सही है?
2: तुम हमसे जबान लड़ा रहे हो बिरसा?
3: फादर, आप मुंडा सरदार लोगों को धोखेबाज कहते हैं, गाली देते हैं, क्या वो सही है?
2: चिल्लाओ मत, आई बीन लिस्टनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। हमारा खाते हो और हम ही पर चिल्लाते हो? वेरी शेमफुल। सब मुंडा धोखेबाज हैं, सब मुंडा बेईमान हैं। तुम मुंडा लोग नौकर बनने के ही लायक।
3: बस फादर, अब और नहीं सुनूंगा मुंडाओं के खिलाफ।
2: निकल जाओ, इस मिशन से निकल जाओ।
3: निकल जाऊंगा। देख लिया मिशन और आपकी सरकार को? हमारे ही घर में आकर के हमें ही डराते हो। धोखेबाज हम नहीं, आप हो, आपकी सरकार है। नहीं रहना मुझे इस मिशन में।
2: Just get out. You listen? Are you understanding what I'm trying to say?
3: समझ लिया मैंने, नहीं रहूंगा मैं यहाँ। तुम बड़े आदमी बनो।
4: बिरसा, ये तू क्या कह रहा है बिरसा?
3: मैं सही कह रहा हूँ, जमींदार बनना, बाबू बनना। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका, अब मेरी जरूरत मेरे मुंडा लोगों को है। मुझे उन्हें आगे बढ़ाना है, उनके आंदोलन को सही दिशा देनी है। मुझे अपने मुंडा लोगों को आगे बढ़ाना है। मुझे अपने मुंडा लोगों को आगे बढ़ाना है।
1: तो क्या बिरसा मुंडा ने सचमुच मिशन छोड़ दिया?
0: हाँ बेटा, यहाँ मुंडा विरोधी माहौल से बिरसा का मन घुटने लगा और वो अपने माता पिता के पास चालकाड़ लौट आए। इस समय लगभग सभी मुंडा दोनों मिशनों को छोड़कर अपने धर्म में लौट आए। फिर से वो सिम्बोड़ा यानी कि सूर्यदेव को पूजने लगे। बिरसा यहाँ लौटने पर भी विचलित सा रहा और बिरसा के मन की अस्थिरता ने उसे कृष्ण भगवान के निकट ला दिया और वो सनातन धर्म से प्रभावित हुआ। कृष्ण भगवान के समान उसकी बांसुरी की धुन भी सबको प्रभावित करती। तभी आसपास के कुछ मुंडा लोगों ने खबर दी कि 1878 में पास हुआ कानून अब लागू कर दिया गया है।
1: इस कानून में क्या था पापा?
0: बेटा, इस कानून के द्वारा सभी जंगलों, पहाड़ों, जमीनों पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार हो गया था। गांव के गांव उजाड़े जाने लगे। अब कोई व्यक्ति बिना सरकारी आज्ञा के जंगल से लकड़ी, पत्ते, जड़ी बूटी, फल फूल और वो शिकार नहीं कर सकता था। और बेटा, मुंडा और अन्य आदिवासी जनजातियों का जीवन तो इन जंगलों पर निर्भर था। ये जंगल उनके पूर्वजों की संपत्ति थे, ये जुल्म को कैसे सह सकते थे? बस ये सुनकर ही उनके तन बदन में आग लग गई और उन्होंने मुंडा लोगों को इकट्ठा किया और पहुंच गए सरकारी ऑफिस बड़े बाबू लोग और साहब लोगों से मिलने के लिए। ये देखो, अब ये काले अनपढ़ गवार लिखा पढ़ी भी करने लगे।
5: क्या करोगे अर्जी देकर?
3: हमारे जंगल हमें वापस दे दो।
6: जंगल अब सरकार के हो गए हैं।
3: हम किसी सरकार को नहीं जानते, ये जंगल हमारे पूर्वजों के हैं, इन पर हमारा अधिकार है, सिर्फ हमारा अधिकार।
2: ओह, देखो कैसे अकड़ रहे हैं।
3: अब कैसे अकड़ कर बात कर रहे हैं?
2: लगता है तू कुछ ज्यादा ही पड़ गया यार।
3: तुम इससे बात करो।
7: उन अंग्रेजों से तो साहब करके बात करते हैं,
3: जो दिक्कू हैं, बाहर से आए हैं
7: और हमें इंसान भी नहीं समझते।
0: ए, हमें मत सिखा तुमसे कैसे बात करनी है। चलो अब निकल यहाँ से, इस अर्जी वर्जी से कुछ नहीं होगा।
3: हमें अपना जंगल चाहिए, हमें अपना जंगल वापस चाहिए। सुन लीजिए, हमें अपना जंगल वापस चाहिए।
0: अरे यहाँ शोर मच।

0: खाने से कुछ नहीं होगा, इतना ही जोश है तो सात समंदर पार सरकार से मांगो अपने जंगल। हो सकता है तुम जैसे काले दानवों को देखकर सरकार डर जाए।
1: हसलो, हसलो, हसलो, एक दिन तुम्हें पछताना होगा। मैं जंगल वापस लेकर आया। ये मुंडा लोगों के जंगल है, ये मुंडा लोगों के जंगल है।
2: इस अपमान और मुंडाओं की दुर्दशा ने बिरसा को हिला दिया। वो जंगलों में भटकने लगा। उसे बचपन की बातें याद आने लगी कि वो आबा है, देवता है, भगवान है। मुंडा जाति को वो ही उबार सकता है। उसे लगता मानो जंगल रो रहा है, धरती उसे पुकार रही है। बस बस उसने ठान लिया कि वो चुप नहीं बैठेगा।
3: तो क्या सचमुच वो खुद को भगवान मानने लगा?
2: हाँ रजनी, मुंडा लोग तो उसे भगवान मान ही बैठे थे, पर बिरसा ने मुंडाओं को एकजुट करने के लिए उसे स्वयं को भगवान मानना पड़ा। उसने जगह जगह जाकर सभाएं करनी आरंभ की, मुंडाओं का आत्मविश्वास जगाया और उन्हें अब किसी की भी मजदूरी ना करने को बाध्य किया। अच्छा। अब मुंडा किसी के लिए बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे और सभी मुंडाओं ने अपने भगवान की इस बात को स्वीकारा।
3: इससे तो ठेकेदारों, जमींदारों और सरकारी बाबुओं में खलबली मच गई होगी।
2: बिल्कुल रजनी, बिल्कुल।
1: शांत हो जाइए मेरे प्यारे मुंडा लोगों। पहले मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम सबके लिए क्या करूं, कैसे तुम्हारा हक दिलवाऊं, पर इन दो सालों की जेल ने मुझे सब समझा दिया है।
4: तो बताओ आबा, हम क्या करें?
1: मुझे लगता था हमें बस जमींदार, जोतदार और ठेकेदारों से ही लड़ना है, इसलिए मैंने तुम लोगों को मजदूरी करने से रोका था। पर अब मैं समझता हूं हमारे असली दुश्मन वो बाहर वाले दीकू हैं, अंग्रेजी सरकार है, जिसने हमारी जमीनें, हमारे गांव, हमारे जंगल हमसे छीनकर जमींदारों और ठेकेदारों को सौंप दिए, मुनाफे के लिए दे दिए हैं। भाइयों, मुनाफे के लिए।
5: अब हमें क्या करना होगा आबा?
1: हमें ऐसी लड़ाई लड़नी होगी जो आज तक लड़ी ना गई हो।
6: क्या ये लड़ाई लड़कर हमारी जमीनें, हमारे गांव, हमें वापस मिल जाएंगे?
1: हाँ।
6: हमें क्या करना होगा बिरसा?
1: हाँ, ये जंगल, ये पहाड़, ये गांव सब हमारे हैं। हमें हमारे जंगल, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को बचाना है। इस लड़ाई में मुझे वही लोग चाहिए जो अपनी धरती माँ के लिए जान दे सके। बोलो तैयार हो मेरे मुंडा वासियों? बोलो एक आवाज में, बोलो तुम तैयार हो? सबसे पहले ध्यान से सुनो मेरे मुंडावासियों, मेरे प्यारे मुंडावासियों, मेरी बात को अपने दिल दिमाग से सोच के सुनो। सबसे पहले हम हमारे पूर्वजों के देवस्थान चुटिया और जगन्नाथपुर पर अधिकार हासिल करेंगे। ये लड़ाई अब पूरे देश में फैलेगी। हमें बाहरी दुश्मन को देश से बाहर निकालना है। हमारी इस लड़ाई का नाम होगा उलगुलान,
7: उलगुलान,
1: उलगुलान। हमारी इस लड़ाई का नाम होगा उलगुलान,
7: उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान।
3: पापा, उलगुलान से मुंडा लोगों को उनके जंगल मिल गए और अंग्रेज भाग गए?
2: नहीं बेटा, ये इतना आसान कहाँ था। पर हाँ, उलगुलान ने हर मुंडा में इतना साहस और चेतना भर दी थी कि वो अब गुलाम बनकर नहीं जिएंगे। ये युग उनका है। वीर साहितों ने चुटिया और जगन्नाथपुर के मंदिरों पर कब्जा किया, जानती हो रजनी, जहाँ उनका प्रवेश तक वर्जित था।
3: अच्छा, अरे इतना सब होने पर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया?
2: बिरसा आने वाली 25 दिसंबर को बड़ा हमला करेगा, इसकी खबर सरकारी अफसरों को लग चुकी थी। अंग्रेजी अफसरों ने सेना की एक बड़ी सी टुकड़ी मंगवा के रखवा ली और आदिवासियों के तमाम ठिकानों पर घेराव कर दिया। लेकिन एक बात थी रजनी, इधर मुंडा भी अब पीछे हटने वाले तो थे नहीं। बस इधर गोलियों की बौछारें शुरू हुई और उधर मुंडा लोगों के कुचला तीरों और बर्छों की वर्षा।
3: क्या बात, तो क्या इस लड़ाई में बिरसा मारा गया?
2: बिरसा मुंडाओं का आबा था, वो उसे कैसे मरने दे सकते थे। उन्होंने स्वयं आगे रहकर बिरसा को पीछे रखा। इस लड़ाई में करीब 400 मुंडा मर्द, औरतें और बच्चे मारे गए। इस नरसंहार का दोष

0: बिरसा पर मड़कर और अराजकता फैलाने के दोष में बिरसा को अपराधी घोषित कर दिया गया और पता है उस पर 500 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया।
1: तो क्या पुलिस से डरकर और रुपयों के लालच में उन्हें पकड़वा दिया गया?
0: हाँ बेटा, कहने को तो अधिकांश मुंडा जाति बिरसाहित हो गई थी, उलगुलान में उमड़ पड़ी थी, पर इन्हीं में से चंद मुंडाओं का ईमान 500 रुपए देकर डगमगा गया। और बेटा, कुछ 5-6 मुंडाओं ने अपने आबा, अपने भगवान को पकड़वा दिया और फिर उन्होंने बिरसा को बेड़ियों में जकड़कर एक अंधेरी उमस भरी कोठरी में रखा, जहां ना हवा, ना रोशनी और ना ही उचित भोजन, ताकि बिरसा समय से पहले ही मर जाए। बीमार पड़ने पर उनकी दवा पर भी रोक लगा दी गई। और फिर 9 जून सन 1900 की वो सुबह, जब यह खबर आई कि बिरसा की हैजे की बीमारी से मौत हो गई, बिरसा की देह को आनन फानन में जेल के कंपाउंड में ही साधारण आग में जला दिया गया। वो बिरसा जिसने आदिवासियों की आजादी का सपना देखा, जो बेस्वाद घाटों की जगह भात के सपने देखता था, चिरनिद्रा में सो गया और अपने पीछे छोड़ गया उलगुलान, उलगुलान का वो संदेश जिसने आजादी की लड़ाई का पहला बिगुल बजाया। वही उलगुलान 1857 की क्रांति बना और उसी क्रांति की आग में तपकर सन 1947 में हमें आजादी मिली थी रजनी। तो ये था चिक्की बेटा, उस महान वीर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जीवन गाथा का संक्षिप्त सा वर्णन।
1: पापा, आपने ये सब सुनाकर मेरी बहुत मदद की।
2: और चिक्की बेटा, कितनी परेशानी से हमें ये आजादी मिली है, इसलिए हमें इस आजादी की कद्र करनी चाहिए।
1: जी मम्मी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ना गलत करूंगी और ना गलत होने दूंगी।
2: वेरी गुड बेटा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलियट और फिनालेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने महास्तूप, ध्यान केंद्रों, कुआं और रसोई क्षेत्रों सहित प्राचीन बौद्ध अवशेषों को देखा। उन्हें स्थल के ऐतिहासिक महत्व और सदियों पहले यहां रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जीवन के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के अभियान के तहत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसमें 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स देशों के युवा मंत्रियों की बैठक आज शाम विशाखापट्टनम में होगी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्ड वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों

0: की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। अमरीका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमरीकी टैरिफ के से कनाडा के अमरीका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा की संभावना है। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने का अनुमान है। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से होगा। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today at a resort in Sukna, Siliguri. After the meeting, the Home Minister announced that a high-level committee to resolve the issues would be formed under the chairmanship of interlocutor Pankaj Singh, former BSF Director and Deputy National Security Advisor. Briefing media after the meeting, Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bista said that the meeting was very fruitful and that all the Gorkha leaders constructively presented their issues. After hearing the leaders, the Chief Minister Shubhendu Adhikari also expressed his views and commitment regarding concerned issues. GJMM Secretary Roshan Giri also briefed the media, stating that the meeting was very fruitful and satisfactory. Additionally, Harshvardhan Shringla emphasized that a solution of Darjeeling Hills, Tarai and Doars regions should be achieved within the constitutional framework, a point on which all leaders have agreed upon. Chief Secretary Manoj Agarwal, Interlocutor Pankaj Singh, IB Director Mahesh Dikshit, among others, were present in the meeting. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry in a notification mandated a clear warning that these medicines shall not be used in children below 4 years of age, in a significant step to safeguard the health and safety of young children. The government directed manufacturers to clearly display the warning, fixed-dose combination shall not be used in children below 4 years of age on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. The government said that the use of such combinations may pose risks to children below 4 years of age and that safer alternatives are available. The BRICS Youth Ministers meeting will be held in Visakhapatnam this evening. The meeting, chaired by Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandviya, will discuss ways to strengthen cooperation in youth development and empowerment, with a focus on education, skill development, entrepreneurship, well-being and sustainable development. The BRICS Sports Ministers meeting will be held in Visakhapatnam tomorrow, with discussions expected to focus on strengthening cooperation in sports. Inter has raised with Somalian authorities the issue of hijacking of 2 foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate

0: incidents of the of Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said, all Indian seafarers are reportedly safe. Yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal, in response to a query during his bi-weekly media briefing, also addressed growing safety concerns regarding Indian mariners operating in volatile waters, reiterating New Delhi's commitment to prioritizing the welfare of its seafaring community.
1: As we have said this time and again, and I would like to reiterate, the welfare and safety of our seafaring community is a matter which we take very seriously and we attach very high priority to this subject. Having said that, whenever there's an issue with our seafarer community, with our seamen, we take it up with relevant authorities.
0: The BJP today passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In a social media post, BJP President Nitin Naveen said that the party strongly condemned and unequivocally opposed Congress Working Committee's decision to sing only the first two stanzas of Vande Mataram in its party programs. He added that the BJP's resolve to reject every attempt to subordinate the national song to communal pressure, political appeasement, or narrow vote bank considerations. In Madhya Pradesh, heavy rain is continuing in several districts due to the monsoon trough, a cyclonic circulation and a low pressure area. Heavy rain has been lashing the eastern parts of the state for the past 2 days and several rivers are in spate. The Met Department has issued an orange alert for extremely heavy rain in Seoni and Balaghat today. In Orissa, flood situation is showing signs of improvement, but large pockets of north and coastal Orissa remain inundated, with about 14 lakh people affected across several districts. IMD has said heavy rainfall conditions are expected to prevail over north, northeast, east and central parts of the country during the next 2 to 3 days. And in BWF Badminton World Championships, India's women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will take on Liu Shengshu and Tian Qing of China in the semi-final in a short while. And that's the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 4:10 हुए हैं और वक्त हुआ है गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी का। थाना लोनी बॉर्डर से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम कुमारी प्रियंका शर्मा, पुत्री मदनलाल शर्मा। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके शरीर की बनावट इकहरा मजबूत जिस्म, कद 5 फीट 2 इंच, इनके गाल पर कट का निशान है। इनके बारे में कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक थाना लोनी बॉर्डर पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से। लोनी पुलिस स्टेशन से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति हैं ज्योति, पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी मंडोला विहार, प्लॉट नंबर बी। इनकी उम्र 28 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य, कद 5 फीट 2 इंच, सामने वाले दो दांत बाहर हैं हल्के से। इनके बारे में कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं रोहित चौहान उपनिरीक्षक पुलिस स्टेशन लोनी कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से। थाना लोनी से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है मयंक तोमर, पुत्र ब्रजपाल तोमर, निवासी न्यू विकास नगर लोनी गाज़ियाबाद से। आखिरी बार इन्हें ऋषिकेश के आसपास देखा गया था। इनकी उम्र 25 वर्ष, कद 172.5 सेंटीमीटर। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं आदर्श यादव उपनिरीक्षक थाना लोनी गाज़ियाबाद से। इनके विषय में अगर कोई सूचना आपको मिलती है तो पुरस्कार राशि भी 10,000 रखी गई है, आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7503729673। एक बार फिर से नोट करें 7503729673। थाना लोनी से मिली अगली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अमित। इनकी उम्र 23 वर्ष, कद 5 फीट 8 इंच,

आखिरी बार इन्हें बालाजी कोऑपरेटिव ऑफिस अंकुर विहार लोनी में देखा गया था। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं अपने निरीक्षक अनमोल कुमार, थाना लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद से। इनके मिलने पर या इनके विषय में सूचना देने पर 10,000 रुपये की इनाम राशि रखी गई है। पुलिस स्टेशन दयालपुर से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है शमद पुत्र अनवर। इनकी उम्र 9 वर्ष, कद 3 फीट, सफ़ेद रंग की कमीज, हरा पजामा और पैरों में हवाई चप्पल इन्होंने पहनी हुई है। घर से बिना बताए ये कहीं चले गए हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं SHO पुलिस स्टेशन दयालपुर, न्यू डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। पुलिस स्टेशन दयालपुर से ही मिली अगली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है वसीम पुत्र सलीम। इनकी उम्र 22 वर्ष, रंग गेहुआ, गोल चेहरा, शरीर पतला, लाल रंग की इन्होंने शर्ट पहनी हुई है, ग्रे कलर की पैंट है और पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई है। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं SHO पुलिस स्टेशन दयालपुर से। दयालपुर स्टेशन से ही मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है सुमाया पुत्री रतिखम। इनकी उम्र 25 वर्ष है, शरीर मध्यम, रंग सांवला, चेहरा लंबा, कद 4 फीट 8 इंच, हरे रंग का इन्होंने सूट पहना हुआ है। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं SHO पुलिस स्टेशन दयालपुर से। दयालपुर पुलिस स्टेशन से ही मिली अगली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है राबिया और ये है पुत्री मोहम्मद इनाम। इनकी उम्र 21 वर्ष, शरीर मजबूत है, कद 5 फीट 2 इंच। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं SHO पुलिस स्टेशन दयालपुर से। अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

0: in the Employment News. For eligibility, application performer and other details, kindly visit www.nihfw.ac.in. I repeat, it is www.nihfw.ac.in. The Northeastern Police Academy, NEPA, Ministry of Home Affairs, UMSAW, Meghalaya, invites applications for the post of Additional Director, General Central Service Group A, gazetted, non-ministerial, to be filled on deputation basis. Interested candidates should send their applications in the prescribed biodata format along with all relevant documents to the undersigned within 60 days from the date of publication of this advertisement. Detailed eligibility criteria, qualifications, experience and the application performer is available on the website. Do refer to www.nepa.gov.in. I repeat, it is www.nepa.gov.in. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, is inviting applications for 4 posts of Administrative Officer Group B, gazetted ministerial, in pay level 8 on deputation basis. The period of deputation will ordinarily not exceed 3 years. Eligible and willing candidates should apply through CADA controlling authority using the prescribed performer available on the hospital's website. Enclosing vigilance clearance and authenticated APAR dossiers of the last 5 years. Applications must be forwarded within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website at www.rmlh.nic.in. I repeat, www.rmlh.nic.in. Chandigarh Administration Department of Urban Planning Architecture Wing invites applications for 1 senior architect post in level 13 as per the 7th CPC on deputation basis, initially for 1 year, extendable as per requirement. Eligible officers from central, state government and UTA administrations should apply through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Details of age, qualification and deputation terms are available on the website. Kindly do refer to www.urbanplanning.chd.gov.in. I repeat, it is www.urbanplanning.chd.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। रक्षा उच्च तुंगता अनुसंधान संस्थान आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता, रिक्तियां हैं 16, अनुसंधान सहयोगी, रिक्तियों की संख्या है 2। योग्यता, आरक्षण, अध्येता वृत्ति आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 8 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET में भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित हैं निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर इन पदों के लिए। सीनियर कंसल्टेंट 1 पद, कंसल्टेंट ग्रेड 2 1 पद, कंसल्टेंट ग्रेड 1 4 पद, यंग प्रोफेशनल 7 पद, डेटा एनालिस्ट 2 पद, रिसर्च एनालिस्ट 2 पद और थीमेटिक लीड 2 पद। परफॉर्मेंस और संगठन की जरूरतों के आधार पर 2 वर्ष

0: अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष तक के लिए हो सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त 2026। आवेदन करने के लिए इस लिंक पर आप जा सकते हैं ncvet.gov.in/career-opportunities। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के लिए प्रोफेसर ऑफ लॉ के एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रतिनियुक्ति की अवधि, आयु सीमा आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.lbsnaa.gov.in/vacancy.php। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। टेक्नीशियन ग्रेड ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नीशियन ग्रेड ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पे लेवल 2। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.niot.res.in। इसके अतिरिक्त 15 से 21 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी आप आवश्यक जानकारी के लिए देख सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं देश दुनिया की खबरें, तो खबरों को समेटे कार्यक्रम परिक्रमा।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, स्वागत है आप सभी सुनने वालों का न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा में। कार्यक्रम में हम आप तक लाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज क्या उनके पास खास रिपोर्ट्स हैं आपके लिए, और खेल के मैदान की गतिविधियों और अर्थ जगत की सुर्खियों पर भी एक नज़र हम डालेंगे। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा, और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा। हेलो सायरा।
4: हेलो विशाल, नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा, वेयर वी ऑलवेज ब्रिंग यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर ऑफ कोर्स आर डिस्कशन सेगमेंट दैट ओपन्स द शो डेटलाइन इंडिया, सम रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। बट विशाल, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
3: जी जरूर।
4: Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years.
3: भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा।
4: India raises with Somalia issue of hijacking of 2 foreign-flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board.
3: अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर के जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही।
4: IMD shows orange alert for very heavy rainfall over east Madhya Pradesh today.
3: और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद और चीन की लियू शेंगशू और टेनिंग के बीच मुकाबला जारी है।
4: And to Vishal, as I had mentioned that we opened the show with our special segment Dateline India. Today we'll be discussing two topics, Vishal. The first topic will be International Day that commemorates the victims of acts of violence based on religion or belief. And the second topic is, of course, very interesting, India's coconut sector. तो पहले क्यों ना हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा उस पर बात करते हैं।
3: जी सायरा, कुछ दिन हमें जश्न मनाने के लिए कहते हैं और कुछ दिन हमें रुकने और

0: याद करने और सोचने समझने का मौका लेकर आते हैं। आज का जो दिन है वो धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन उन लोगों को याद करने के लिए समर्पित है जिन्होंने सिर्फ अपनी आस्था के कारण हिंसा, नफरत और उत्पीड़न का सामना किया है।
1: That's right, and a very, very, you can say, somber day indeed to remember the victims.

0: place of worship where people come seeking peace, it turns into a target. A festival that is meant for joy disrupts, is often disrupted by violence. So this is very, very tragic.
1: जी सायरा, किसी व्यक्ति को इसलिए धमकाया जाता है या उस पर हमला किया जाता है कि उसने क्या किया है, बल्कि कहा जाए तो कि ये भी इस बात के लिए भी धमकाया जाता है कि वो किस पंथ से जुड़ा है, किस धार्मिक विचारों को मानने वाला है। यहाँ एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि नफ़रत के माहौल में क्या कोई समाज शांतिपूर्ण रह सकता है?
0: बिल्कुल नहीं। और मेरे ख्याल से समाज शांतिपूर्ण क्या, आप खुद कभी भी शांति नहीं पा सकते। आप खुद कभी जिस खुदा में, भगवान में आप बिलीव करते हैं, वो भी आपको कभी प्राप्त नहीं होगा अगर आप उसी भगवान की बनाई हुई किसी और क्रिएशन से नफरत करते हैं। वेल ऑफ कोर्स एज आई सेड द आंसर इज नो, बिकॉज एन अटैक ऑन वन कम्युनिटी इज अल्टीमेटली एन अटैक ऑन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट वी ऑल शेयर। And we have seen this reality in different parts of the world, from attacks on churches, mosques, temples, and synagogues, to people being harassed online because of their religious identity.
1: जी बिल्कुल, नफ़रत फैलाने वाली पोस्ट या गुमराह करने वाले मैसेज भी बहुत बड़ी चीज़ बन सकते हैं। ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब ऐसे संदेश किसी को बलि का बकरा बनाने की भावना को बढ़ावा देते हों।
0: You're very right, Vishal. And a religious festival that brings together people from different communities, for a moment, differences become secondary. This is the everyday that everyday India that many of us know and we have grown up knowing. That spirit is beautifully captured even in our civilizational ethos of Vasudhaiv Kutumbakam, that the world is one family.
1: जी, भारत की ताकत जो है हमेशा से सायरा इसकी अद्भुत जो विविधता है वो रही है। अलग अलग धर्म, भाषाएं, परंपराएं और त्यौहार सभी एक साथ मनाए जाते हैं। दिवाली और ईद से लेकर क्रिसमस, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती तक हमारे त्यौहार ही अपने आप में अनेकता में एकता की कहानी कहते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और भाई, अगर एक घर में भी जब पांच लोग अगर रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है उन पांचों में नहीं बन पाती, बट दैट डजेंट मीन कि उन पांचों में मोहब्बत ख़त्म हो जाए। तो छोटे मोटे वो डिफरेंसेस होना लाजमी है, बट दैट शुडंट यू नो स्नोबॉल इनटू वायलेंस एट एनी कॉस्ट। एंड डाइवर्सिटी डज नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन विशाल, इट नीड्स रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर दैट मैटर। एंड एज महात्मा गांधी फेमसली सेड दैट All religions are true. We must remember that disagreement does not have to become hatred. और स्पेशली जब से ये सोशल मीडिया आया है विशाल, आई थिंक सो जो डिसएग्रीमेंट की परिभाषा है ना, वो ही बदल गई है। अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ तो उसी वक्त जो है तलवारें खिंच जाती हैं। भाई नहीं सहमत हूँ, मेरे अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, बट उसके बावजूद हम दोनों में दोस्ती तो रह सकती है ना।
1: बिल्कुल रह सकती है।
0: बट दिस इज समथिंग दैट हैज कम्प्लीटली चेंज विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज वी हैव प्रॉब्ली फॉरगॉटन व्हाट डिस्कशन मींस एंड वी ओनली आर्ग्यू।
1: मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
0: एब्सोल्युटली।
1: और सरकारों की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे लोगों की सुरक्षा करें और हिंसा करने वालों को सजा भी दिलाएं। धार्मिक नेताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि वे नफरत और हिंसा के खिलाफ साफ साफ आवाज उठाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने प्लेटफॉर्म का गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल न होने दें और उत्पीड़न, बदनामी तथा किसी को बलि का बकरा बनाने जैसी गतिविधियों का अड्डा न बनने दें।
0: That's very right, Vishal. And even Nelson Mandela said that no one is born hating another person. Hatred is acquired. It is something that we learn after gaining consciousness. And if hatred can be learned, perhaps compassion can be taught as well. In fact, अगर यूँ देखा जाए कि इंसानी फितरत में compassion होता है, उसको आपको सिखाना नहीं पड़ता।
1: जी, करुणा होती है।
0: हाँ, तो इंसान, we are actually born as pure souls, so we already have positive traits. What we acquire is the negative traits. तो वो इन ख़ास से अगर आप जो उसको unlearn कर दें, जो आपने नफरत और difference सीखें, तो automatically जो अंदर छुपी हुई आपके करुणा और positive चीज़ें वो अपने आप आ जाएंगी। And well, perhaps our role begins with something very simple, that seeing the person before seeing the label, because behind every statistic is a human being, someone with a family, someone with hopes, someone who deserves to pray, celebrate, gather, and live without fear.
1: जी, और इस दिन हम धर्म या आस्था के आधार पर सताए गए लोगों को याद करते हैं और उसका डटकर सामना करने वाले लोगों के साहस का भी सम्मान करते हैं। हम उनकी गरिमा और उनके अधिकारों को फिर से मान्यता भी देते हैं। आज का दिन ये याद करने का भी है कि हमारे मतभेद हमें बांटते नहीं हैं, बल्कि वे हमारी साझा पहचान

0: को और भी समृद्ध बनाते हैं।
1: That's right, and we all deserve a world where every person can say that my faith is respected and so is yours. And well, that is a very important topic जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अच्छा, इससे पहले हम ये टॉपिक क्लोज करें, यू वोंट बिलीव, कुछ दिन पहले, क्योंकि आज़ादी का जश्न हम लोग ने मनाया और एक सोशल मीडिया के जरिए कुछ रील्स बड़ी फेमस हो रही थी। आई केम अक्रॉस अ रील, इसमें एक इन्फ्लुएंसर जो है दूसरे मुल्क के लोगों पास जा रहा है और कह रहा है कि मेरे पास, वो एक नोट की गड्डी निकालता है और कहता है मैं ये आपको दूंगा, पर जो मैं आपसे कहूँगा नेक्स्ट वो आप करेंगे, आपको एक चीज़ जलाना है, कहेंगे आप बताइए। तो वो निकालता है किसी मुल्क का परचम, तो वो कहते नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे मुल्क का परचम कोई और जलाए तो मैं क्यों दूसरे मुल्क का परचम जलाऊँ। तो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, जो कहने को वो दो मुल्क आपस में दुश्मन है, लेकिन जो आम जनता है उसने यही कहा कि अगर हम खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वी शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट दी अदर्स ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से जो जोश मलियाबादी का शेर है ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक फैले,
0: बहुत खूब।
1: तो आम जनता तो मेरे ख्याल से यही करना चाहिए हम लोगों को कि जितना हो सके सिर्फ मोहब्बत ही फैलाएं, एंड डिफरेंसेस होने के बावजूद जो दिलों में आपने कहा ना मन भेद नहीं हो, वो नहीं होना चाहिए। एंड दैट कम्स टू, वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विशाल, व्हिच इज
0: दूसरा टॉपिक जो है आज हमारा डेडलाइन का सायरा श्रीफल से संबंधित है।
1: yes.
0: जैसे हम कोकोनट भी कहते हैं, नारियल भी कहते हैं।
1: यस, एब्सोल्युटली, इंडियाज़ कोकोनट सेक्टर, एंड दिस इज वन फ्रूट विशाल, आई थिंक, जिसका अगर आप तसव्वुर कीजिए कि कोई भी चीज एसोसिएटेड है उस पेड़ से, वो काम में आती है।
0: जी, बिल्कुल।
1: यू नो, वेदर इट्स लीव्स, वेदर द फ्रूट, वेदर यू नो एवरीथिंग ऑफ अ कोकोनट इज यूज्ड, सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट, एंड ऑफकोर्स इंडियाज़ कोकोनट सेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड today the iconic boat race in Keralam has begun, because we all know that Keralam is now steeped in Onam festivities. We'll take you through all the excitement through in our regional correspondent section jab hum desh ki parikrama pe niklenge, but with Onam around the corner, Keralam is already gearing up for a season of color, celebration, and of course delicious food. So what better time to talk about one ingredient that is almost inseparable from the flavors, culture and landscape of South India, that is the humble coconut.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, दक्षिण भारतीय व्यंजनों की जब बात होती है तो उसमें अगर नारियल नहीं है तो वो दक्षिण भारतीय व्यंजन नहीं है माना जाएगा। और नारियल सिर्फ रसोई में पसंद की जाने वाली खाद्य वस्तु नहीं है, बल्कि ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की आजीविका का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है।
1: Very rightly said, and India ranks second in the world in coconut production, contributing about 22.44% of global production. In 2024-25, India produced around 13.97 million tons of coconut from 2.19 million hectares of land.
0: और जब हम नारियल की बात करते हैं वो भी भारत में, तो फिर केरलम का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सायरा। केरलम नारियल के लहराते पेड़ों की एक धरती है। देश में नारियल की खेती का सबसे बड़ा इलाका भी केरलम में ही है, जो लगभग 7.54 लाख हेक्टेयर में फैला है, और यहाँ करीब 35.44 लाख टन नारियल का उत्पादन होता है।
1: However, Tamil Nadu leads India in overall coconut production, while Andhra Pradesh records the highest productivity. So when it comes to coconut, different states bring different strengths to the table.
0: और इन दक्षिण भारतीय राज्यों में, जिसमें कि केरलम सबसे ऊपर भी है, 2024-25 में लगभग 4,349 करोड़ रुपए मूल्य के नारियल और नारियल से बने उत्पादों का भारत ने निर्यात किया, और पिछले साल की तुलना में इसमें 25% की उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की गई है।
1: And Vishal, what's even more fascinating is how dramatically this sector has evolved. Back in 2001-2002, coconut exports were worth only around 25 crore rupees, and they were largely centered around traditional products such as raw coconut, coconut oil and desiccated coconut.
0: और आज के दिन दुनिया में नारियल उत्पादों की मांग पहले से कहीं अधिक हो गई है। जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिए, कुछ उत्पादों के नाम लिए, तो मैं भी कुछ आपके सामने उत्पाद बताना चाहूँगा। वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल कोकोनट मिल्क जिसे हम कहते हैं, नारियल का दूध, नारियल पानी, और नारियल से बने कई तरह के मूल्य संवर्धित वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी हैं। तो क्या नारियल अब सिर्फ एक फल रह गया है,

0: spirit, many voices, one Bharat, Mr. Radhakrishnan urged the youth to become custodians and ambassadors of India's civilizational heritage. He also encouraged them to take the country's classical music and cultural traditions to communities across the world. Shiva Mishra for Parikrama.
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल जेम्स ऑफ इंडिया 2026 के पायलट चरण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया है और इसके तहत द्वीपों की अनूठी संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और अनकही कहानियों को डिजिटल माध्यम से राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पी हरेकृष्णा।
2: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने देश के रचनात्मक क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इसके तहत जमीनी स्तर के डिजिटल रचनाकारों की पहचान, उन्हें निखारने और प्रोत्साहित करने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 का पायलट चरण शुरू किया गया है। इस पायलट चरण के लिए चुने गए 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। अब द्वीपों की अनूठी संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और अनकही कहानियों को डिजिटल माध्यम से देश भर तक पहुंचाने की तैयारी है। इसी उद्देश्य से अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा द्वीपों में जागरूकता सह उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से छात्रों, युवाओं और उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को चैलेंज के उद्देश्यों और इसमें मिलने वाले अवसरों की जानकारी दी जा रही है। पर्यटन विभाग के संसाधन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारी विरासत को दस्तावेजित करें, हमारी कहानी बताएं, द्वीपों का रत्न बने संदेश के साथ युवाओं को अपने समुदाय की विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन स्थलों और उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन रचनात्मक प्रस्तुतियों के जरिए अंडमान एवं निकोबार के एमराल्ड आइलैंड्स की विविध और समृद्ध पहचान को राष्ट्रीय मंच पर नई आवाज मिलेगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपादक पी हरिकृष्णा के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद।
1: और अब डालते हैं नजर खेल के मैदानों पर, आज क्या हलचल हो रही है। तो BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से हो रहा है। और उधर अम्स्टरडैम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम 7:30 बजे भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
3: On this day in 1907, Madam Bhikaji Kama raised India's first national flag at 2nd International Socialist Conference at Stuttgart in Germany. Bhikaji Kama was born on September 24, 1861 in an influential Parsi family. An outstanding lady of great courage, integrity and passion for freedom, Bhikaji spent most of her time in social work. Madam Kama's intense love for nation made her sacrifice her family life and worked tirelessly for the cause of the nation. In October 1896, when the Bombay Presidency was hit by famine and shortly thereafter by bubonic plague, Bhikaji provided care for the afflicted. In 1905, Madam Kama relocated to Paris, where she co-founded the Paris Indian Society. While living in exile in the Netherlands and Switzerland, Kama wrote and published revolutionary literature for the movement, including Bande Mataram and later Madan's Talwar, which was published in response to the execution of Madan Lal Dhingra. On this day in 1907, Kama attended the Second Socialist Congress at Stuttgart, Germany, where she described the devastating effects of the famine that had struck the Indian subcontinent. In her appeal for human rights, equality and freedom from the Great Britain, she unfurled what she called the flag of Indian independence. For this act, she came to be known as the Mother of the Indian Revolution. Kama's flag was a modification of the Calcutta flag. It was co-designed by Kama and Vinayak Damodar Savarkar and would later serve as one of the templates from which the current national flag of India was created. Madam Bhikaji Kama was a pioneer amongst those who worked for the freedom of the country.

0: जी, और जिस फिल्म का आप अभी गीत सुन रहे हैं ये 1967 में आई थी, हमराज और बी आर चोपड़ा के निर्देशन में और सुनील दत्त के साथ डेब्यू किया था इसमें, और ये फिल्म बहुत हिट रही थी और अपने दौर की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार। विमी की मृत्यु 22 अगस्त 1970 को मुंबई के नानावटी अस्पताल में लिवर की बीमारी से हुई, और आज ही पुण्यतिथि है यू आर अनंत मूर्ति की भी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद यू आर अनंत मूर्ति को नव्या आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रही है संस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 8 कन्नड़ साहित्यकारों में से वे 6ठे साहित्यकार थे। और अब समय हो रहा है कार्यक्रम परिक्रमा में आपसे यहीं अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए सायरा और विशाल को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफरीन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने रचनात्मक ढंग से अपने मुद्दे रखे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी संबंधित मुद्दों पर अपने विचार और प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसमें 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स देशों के युवा मंत्रियों की बैठक आज शाम विशाखापट्टनम में होगी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल है। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था के मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्र क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
3: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
4: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
2: अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कैनेडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच एम्स्टरडेम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के साथ भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया। उधर BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैंडिंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today at a resort in Sukna, Siliguri. After the meeting, the Home Minister announced that a high-level committee to resolve the issues would be formed under the chairmanship of interlocutor Pankaj Singh, former BSF Director and Deputy National Security Advisor. Briefing media after the meeting, Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bista said, "The meeting was very fruitful and all Gorkha leaders constructively presented their issues." After hearing the leaders, the Chief Minister Shubhendu Adhikari also expressed his views and commitment regarding concerned issues. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations, FDCs, containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry in a notification mandated a clear warning that these medicines shall not be used for children below 4 years of age in a significant step to safeguard the health and safety of young children. The government directed manufacturers to clearly display the warning, "Fixed-dose combination shall not be used in children below 4 years of age," on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. The government said the use of such combinations may pose risks to children below 4 years of age and that safer alternatives are available. The central government has notified the removal of the 12-minute advertisement duration cap for television channels. The decision has come into effect with notification of the amendment in the Cable Television Networks Rules 1994 in the Gazette. Earlier, the Information and Broadcasting Ministry said in a statement that in view of the changes that have occurred in the TV broadcasting sector, a need was felt to revisit the stipulations relating to advertisement duration. The BJP today passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In a social media post, BJP President Nitin Naveen said the party strongly condemned and unequivocally opposed the Congress Working Committee's decision to sing only the first two stanzas of Vande Mataram in the party programmes. He added that the BJP is resolved to reject every attempt to subordinate the national song to communal pressure, political appeasement or narrow vote bank considerations. The BRICS Youth Ministers' Meeting will be held in Visakhapatnam this evening. The meeting, chaired by Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, will discuss ways to strengthen cooperation in youth development and empowerment, with a focus on education, skill development, entrepreneurship, well-being and sustainable development. The BRICS Sports Ministers' Meeting will be held in Visakhapatnam tomorrow, with discussions expected to focus on strengthening cooperation in sports. India has raised with Somalian authorities the issue of the hijacking of two foreign-flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate incidents off Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said all Indian seafarers are reportedly safe. It said India attaches the highest importance to the safety and welfare of its seafaring community. The mission said they have taken up the matter with the concerned authorities in Somalia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will undertake a two-day visit to Russia beginning tomorrow. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. In Madhya Pradesh, heavy rain is continuing in several districts. Heavy rain has been lashing the eastern parts of the state for the past 2 days and several rivers are in spate. The weather department has issued an orange alert for extremely heavy rain in Sivani and Balaghat today. A heavy rain alert has also been issued for 12 districts including Datia, Bhind, Niwari, Tikamgarh and Chhatarpur. Light to heavy rain is also expected in several other parts. In the BWF Badminton World Championships, India's women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will take on top seeds Liu Shangshu and Tan Ning of China in the semi-final in New Delhi in a short while. And with that, we end this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 5:10 हुए हैं और वक्त हुआ है लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंजनी का।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर के। और आज इस कार्यक्रम में हम सावन के गीतों के साथ साथ अपने श्रोताओं को बताएंगे कि ग्रामीण जीवन में लोक उत्सव और त्योहारों का कितना महत्व होता है। वैसे भी ये सावन का महीना है और कुछ ही दिन इस महीने में बचे हैं और बहुत सारे तीज त्यौहार जा भी चुके हैं और आने वाले भी हैं, खास करके जो रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो कहीं ना कहीं जो तीज त्यौहार होते हैं हमारे जीवन में उत्साह लेकर के आते हैं, खुशियाँ लेकर के आते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं एक सावन गीत, कलाकार हैं राम सिंह।

0: श्रोताओं सुन रहे थे आप ये सावन का गीत, कलाकार थे राम सिंह।
1: नीलमहन, ग्रामीण जीवन में लोक उत्सव और त्योहार सामाजिक एकता, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और दैनिक श्रम की थकान मिटाने का मुख्य साधन होते हैं। ये उत्सव जाति और वर्ग के भेदों को मिटाकर सामूहिक भावना को मजबूत करते हैं और प्रकृति और कृषि चक्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
0: बिल्कुल शशि भाई, प्रकृति और देवत्व का उत्सव, ऋतुओं का बदलना, अच्छी फसल से जुड़ी खुशियाँ, लोक उत्सवों में ये सब कुछ शामिल है। ये उत्सव समुदायों को एकजुट करते हैं और भेदभाव की सीमाओं से उठकर अनोखे तरीकों से धार्मिक खाई को पाटते हैं। एक तरफ ये निरंतरता लाते हैं, वहीं रोजमर्रा के जीवन और श्रम से जुड़ी मुश्किलों के बीच राहत के दो पल भी देते हैं। ग्रामीण भारत के विविध समुदायों के कारीगरों के बिना ये सब संभव नहीं होता, जिनकी मेहनत और शिल्प कलाओं के जरिए त्योहारों का संगीत, नृत्य, पूजा और भोज संभव हो पाता है।
1: बिल्कुल, तो नीलमहन इसी क्रम में अपने यह श्रोताओं को सुनवाते हैं एक और सावन गीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।
2: ओ झूला

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे थे पुष्पा गोसाई से ये सावन का गीत।
1: नीलम बहन, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण जीवन में त्योहार उत्सवों की, और त्योहार उत्सवों के दौरान हम देखते हैं कि पूरा गांव मिलकर काम करता है, जिससे भाईचारा बढ़ता है, जाति वर्ग और जो भी भेदभाव की सीमाएं होती हैं उनसे ऊपर उठकर सब लोग एक साथ आते हैं, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जिससे भेदभाव और जो ऊंच नीच वाली भावना है वो मिटती है। एक दूसरे के साथ लोग सुख दुख साझा करते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, और वैसे भी ये एक दूसरे के सहयोग करने का अवसर भी होता है, जिससे सामूहिक आनंद मिलता है।
0: बिल्कुल शशि भाई, लोक उत्सवों से लोकगीत, नृत्य और कलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। स्थानीय भाषा, कथाएं और वेशभूषा जीवित रहती हैं, जिससे रीति रिवाजों की रक्षा होती है।
1: बिल्कुल, तो आपने बताया कि देखिए जो लोकगीत हैं या जो भी कलाएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं, और वैसे ही नीलम बहन हमारे लोकगीत हैं, चाहे वो सावन के गीत हों, चाहे वो मल्हार हों, और जो हमारी माताएं बहनें पहले गाया करती थीं वो भी आज की जो माताएं बहनें वो भी गाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं। तो इसी क्रम में अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक मल्हार, और कलाकार हैं राज रानी वर्मा।

0: सभी सुन रहे थे राज रानी वर्मा से ये मल्हार।
1: नीलम बहन, जो लोक उत्सव होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई हैं, खेती में काम कर रहे हैं, जो मजदूर भाई हैं, वो रोजमर्रा का कुछ काम कर रहे हैं, बड़े परिश्रम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ रसहीनता आ जाती है, तो उसको दूर करने में भी लोक उत्सव बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेलों और आयोजनों से जीवन में नया उत्साह आता है। और देखिए, जब मेला होता है तो पहले ऐसा होता था कहीं ना कहीं जो कला संस्कृति है या जो हुनर है उसका आदान प्रदान होता था और नई नई जानकारियां एक दूसरे से मिलती थी।
0: बिल्कुल शशि भाई, मेलों में दस्तकारों और कारीगरों की कला बिकती है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है।
1: बिल्कुल। तो नीलम बहन, ये तो बात रही ग्रामीण जीवन में लोक उत्सव और त्योहार की। इसी के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: या जैसे ही घड़ी की सुइयां करती हैं इशारा कि बज गए 5:30, शुरू होता है आपका मनपसंद खेलों पर आधारित कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। और आज के इस अंक में बहुत कुछ है खास।
1: मैं हूं आपके साथ सिमरन सरवान, मेरे साथ हैं साथी हेमंत कुमार। नमस्कार आप सभी का।
0: और आज के इस खेल खिलाड़ी के अंक में रहेगा बहुत कुछ खास। आज बात होगी हॉकी वर्ल्ड कप की और साथ ही साथ बात करेंगे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में जो आयोजित हो रहा है, और बहुत ही कड़ा मुकाबला अभी भारतीय जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चल रहा है ल्यू शेंग शू और टेंग निंग की जोड़ी के साथ, जहां अभी मुकाबला जो है 18-16 की मुकाबला चल रहा है। काफी अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में। साथ ही साथ बात करेंगे लोजेन डायमंड लीग की और बात होगी वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर भुवनेश्वर में जो आयोजित हो रही है।
1: साथ ही साथ बात होगी हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की, Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को भी साथ लेते चलेंगे, साथ ही साथ दुरंड कप 2026 और सुब्रतो कप पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो BWF पर आज मैच हो रहा है उस पर हम बात करते हैं।
2: The defending champions, the Olympic silver medalists, and a pair who this year have been in 7 finals from 9 tournaments. But the two tournaments where they didn't reach the final, they withdrew or retired injured. Led out by Liu Shangshu, the youngest player who will be on court here for this semi-final. Listen to the roar. This is the match that the fans have come to see. Teresa Jolly and Gayatri Gopichand Pulela. Only the second women's doubles pair from India to contest a World Championship semi-final 15 years after the first.
0: बिल्कुल सिमरन, और ये म्यूजिक बता रहा है कि किस तरह का ओपनिंग हुई इस मैच की, और मैच भी काफी रोमांचक अभी हो चुका है जहां पर त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद पुलेला का जो मुकाबला हो रहा है ल्यू शेंग शू और टैंग निंग के खिलाफ हो रहा है, जिसमें 18-16 का ये मुकाबला है जहां न्यू शेंग शू की जोड़ी और टैंग निंग की जोड़ी जो है 18 के पहले गेम में 18 के मुकाबले 16

0: दूसरा मिक्स डबल मुकाबला जो हुआ, थॉम ग्यूक्वेल का मुकाबला डेल्फ फिने डेल रियू से हुआ फ्रांस की, और वहीं मुकाबला चाइना की जिंग जेंग बैंग से हुआ, विंग यान जिंग का मुकाबला चाइना की इस जोड़ी के साथ हुआ, जो मुकाबला जीता फ्रांस की इस जोड़ी ने जीता 21-19 और 21-13 और 21-11 से ये मुकाबला जीता। वहीं विमेंस डबल्स सेमीफाइनल के मुकाबले की बात करें तो कोरिया की टीम ने चाइना की टीम को हराया, बैक हाना ली सो ही का मुकाबला हुआ था, ली यी जिंग और लुआन जुंग मिन का, जो मुकाबला दो गेमों में ही समाप्त हुआ, और ये 21-17 21-12 से ये जो कोरिया की टीम है इसमें अपनी बाजी मार चुकी थी। वहीं बात करते हैं मेंस सिंगल सेमीफाइनल मुकाबले की, विक्टर लाई कनाडा का मुकाबला हुआ फ्रांस के एलेक्स लारियर के बीच में, ये मुकाबला जीता फ्रांस के एलेक्स लारियर ने 12-16 13-21 और 14-21 से। वहीं विमेंस सिंगल्स की बात करें तो पोर्न पावी चोकोबुंग का मुकाबला थाईलैंड की का मुकाबला हुआ इकाने यामागुची से, जापान की इकाना यामागुची काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ये मुकाबला जो है 12-21 17-21 से जीता। और अभी जो मुकाबला भारतीय जो चुनौती है चाइना के साथ मुकाबला चल रहा है, पहला गेम जो है भारतीय जोड़ी ने त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद पुलेला ने पहला गेम जो है 21-18 से अपने नाम कर लिया है। और साथ ही बात करते हैं, ये तो बात रही आज खेले जा रहे मुकाबलों की, साथ में बात करते हैं कल के मुकाबलों की जो बता रही हैं सिमरन
1: जी। कल के मुकाबलों की बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं पुरुष कैटेगरी में, जो सात्विक और चिराग की जोड़ी थी वो हार चुकी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मेंस डबल कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में हार गई है। उसे चीन के लियांग वेकिंग और वांग चेंग की जोड़ी ने 36 मिनट में 21-18 21-9 से हराया। सात्विक चिराग ने पहले गेम में अच्छी शुरुआत की, वो 18-16 से आगे थे, लेकिन चीनी जोड़ी ने लगातार 5 अंक लेकर गेम 21-18 से जीत लिया। दूसरे गेम में लियांग और वांग ने शुरुआत से ही नियंत्रण बनाए रखा, इंटरवल तक चीनी जोड़ी 11-5 से आगे थी, उसने लगातार बढ़त बनाए रखी और गेम 21-9 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और इस हार के बाद क्या कहा इस भारतीय जोड़ी सात्विक और चिराग की जोड़ी ने, आइए सुनते हैं।
2: पहला गेम काफी अच्छा था, 18 तक हम लीड भी कर रहे थे, जो गेम प्लान हमने सेट किया था वो काफी अच्छा वर्क भी कर रहा था। आफ्टर वी लॉस्ट द फर्स्ट गेम दे केम बैक अ लॉट मोर हार्डर इन द सेकंड गेम, वी प्लेड डिसेंट आई वुडंट से वी प्लेड बैड, बट जहां पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा मिल नहीं पाया क्योंकि दे वर प्लेइंग क्वाइट अ सॉलिड गेम, अ लॉट ऑफ द पॉइंट हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश नहीं हुआ और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज। इन द सेकंड गेम स्पेशली दे वर लाइक इट्स नॉट दैट वी डिडंट गेट एनी लिफ्ट्स, वी गॉट quite a few lifts but we weren't able to finish it as much as we would have wanted to. They were defending quite well, also dominating the front court, and even when we were getting those lifts we tried playing soft drops and then eventually kill it, but they were able to convert it quite well.
3: They were quite good in the first four shots, whoever controlled the first four shots in the first set, we were controlling it, they got confident after one or two points. So if it is rally game it's anybody's game, it's 50-50 because both have the attack, the Chinese can attack as well, we can attack as well, but the difference was only the service and service return. They got that spin, so he got little bit confident in that towards the end, he started spinning differently rather than the first one. So first I think 15 points he was spinning in different way, then later he changed his service action, like it took us one or two points to adjust it, 15 after 15 or one or two points, 17-15, 18-15. So it's just brave from that side. They played those strokes, and it's always first game with them is very important. First game, especially with them, and we played the first game is really important. I think after second game, I think they got pretty much confident. They are everywhere, wherever we are hitting, they're just playing their game. So I think yeah, kudos to them. But yeah, we could have put a little bit more tighter from our side. But yeah, I think we'll go back and learn what we did miss. It's not in Japan, it's there from very long time for me. I just managing myself. So sometimes I feel very good in the one tournament. The next day I feel very tight. The next day I feel very worse. The next day I feel like 100%. So it's kind of complicated with my shoulder. But I just need to manage myself and play. So I got good 6 weeks of rehab and strengthening. Right now I felt pretty much good after a stress play. I was worried because I played more than 80 minutes. So after that, how my shoulder will respond. It's less than 24 hours we are playing again. So it's difficult to recover and play again. But today I felt pretty much okay. So it's a good sign for me, like coming back from injury. Maybe we weren't expecting that because they always want to block and get that lift. Whenever we saw the match video analysis, they want to block and come. They want their lift.

0: अब बात करते हैं हॉकी विश्व कप की। तो हेमंत, क्या क्या जानकारी हॉकी के बारे में हम सुनते हैं, ये हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट। भारतीय महिला हॉकी टीम हॉकी वर्ल्ड कप के राउंड टू का पहला मैच हार गई है। उसे वर्ल्ड नंबर वन नीदरलैंड ने 2-0 के अंतर से हराया। इसी के साथ मेजबान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस हार के बाद इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगला मैच जीतना जरूरी हो गया है, जो कि 23 अगस्त को रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में शुक्रवार को भारतीय टीम 0-1 से पिछड़ रही थी, उसके बाद टीम वापसी नहीं कर सकी। मेजबान टीम से यिबी यानसन और फ्रेडरिक माल्टा ने 1-1 गोल किए। नीदरलैंड की महिला टीम ने तेज शुरुआत की। सर्कल के अंदर सुशीला के पैर पर गेंद लगने के बाद नीदरलैंड्स को पेनल्टी कॉर्नर मिला। यिबी यानसन ने इस मौके को गोल में बदल दिया। यानसन ने जोरदार ड्रैग फ्लिक लगाई, जो पोस्ट डिफेंडर के पैरों के बीच से निकलकर गोल में चली गई। ये टूर्नामेंट में यानसन का 7वां गोल है और उसके सभी गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए हैं। हाफ टाइम तक भारतीय टीम 0-1 से पीछे चल रही थी। हालांकि टीम ने शुरुआती मिनट में गोल खाने के बाद नीदरलैंड्स के हमलों का मजबूती से सामना किया। बिचू देवी और सविता ने दोनों क्वार्टर में कुछ शानदार बचाव किए। 19वें मिनट में नीदरलैंड्स के 5 मीटर फाउल के कारण भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने ड्रैग फ्लिक लगाई, लेकिन गेंद डिफेंडर के पैर से टकरा गई। भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। अगले प्रयास में गेंद नीदरलैंड्स की फर्स्ट रनर की स्टिक से लगकर बाहर चली गई। 38वें मिनट में नीदरलैंड्स को पेनल्टी कॉर्नर मिला। बाएं छोर से सर्कल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही सैंडर्स का शॉट भारतीय डिफेंडर के पैर से टकराया। पेनल्टी कॉर्नर पर फ्रेडरिक माल्टा ने जोरदार ड्रैग फ्लिक लगाकर अपनी टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में दूसरा गोल किया है। तीसरे क्वार्टर के बाद स्कोर 2-0 रहा। 59वें मिनट में भारतीय टीम ने गोल का अच्छा मौका मिलाया। नवनीत कौर ने सेंटर से पास लिया और जोरदार हिट लगाई, लेकिन नीदरलैंड्स की गोलकीपर विनेदाल ने शानदार बचाव किया। गेंद विनेदाल के हेलमेट से टकराकर बाहर चली गई। इस बचाव के दौरान विनेदाल को चोट लगी। वे कुछ समय के बाद दोबारा गोलकीपिंग करने लगी और आखिरी क्वार्टर फाइनल गोल रहित रहा। और इसी तरह नीदरलैंड्स ने भारत के ऊपर अपनी जीत हासिल की।
1: सिमरन, अब बात करते हैं FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में। शनिवार को भारतीय टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होना है। मैच शाम 7:30 बजे से वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। नीदरलैंड मौजूदा ओलंपिक चैंपियन है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के नजरिए से बेहद अहम इस मैच में भारतीय टीम को नीदरलैंड से कड़ी चुनौती मिलेगी। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने वेल्स और पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे राउंड में भारत इंग्लैंड नीदरलैंड और अर्जेंटीना के साथ पूल ई में रखा गया है। भारत पहले राउंड में इंग्लैंड से खेल चुका है। नए फॉर्मेट के अनुसार टॉप 8 में शामिल टीमें अगर पहले राउंड में खेल चुकी हैं तो उनका मैच दूसरे राउंड में नहीं होगा। पिछले मैच का रिजल्ट दूसरे राउंड में जोड़ा जाएगा। इसके हिसाब से भारत पूल ई में 1 हार के साथ तीसरे स्थान पर है। दूसरे राउंड में नीदरलैंड और अर्जेंटीना के खिलाफ टीम इंडिया को खेलना है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को दोनों मैच जीतना जरूरी है। आज भारतीय टीम पूल ई के अपने पहले मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ जीत और सेमीफाइनल के करीब जाने के इरादे से उतरेगा। नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से पहले भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। इसकी वजह डच टीम के खिलाफ हुए आखिरी मुकाबले में मिली जीत है। इसी साल जून में खेले गए हॉकी प्रो लीग के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने नीदरलैंड को 3-2 से हराया था। इस मैच में जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए थे। ये तीनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा है। टीम इंडिया उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए नीदरलैंड को एक बार फिर से मात देने की कोशिश करेगी। इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह पर नजर रहेंगी। हरमन इस विश्व कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और 3 मैचों में अब तक वो 5 गोल कर चुके हैं।
0: जी हेमंत, बिल्कुल उम्मीद है कि भारतीय टीम ये मैच जीते और अगले दौर में पहुंचे। और अब बात करते हैं कल खेले गए ग्रुप ए और एफ के कुछ मुकाबलों पर। पुरुष वर्ग के दूसरे दौर के पूल एफ में ऑस्ट्रेलिया ने बेल्जियम को हराकर टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया को 3 अंक मिले। दिन के दूसरे मुकाबले में जर्मनी ने स्पेन को 1 गोल के अंतर से हराया। जर्मनी ने भी 3 अंक हासिल कर लिए हैं। इसके बाद पूल एफ में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया

0: रुपए के खाते में तीन तीन अंक हैं, जबकि बेल्जियम और स्पेन अभी एक भी अंक नहीं जोड़ पाए हैं। महिला वर्ग के पूल ई में भारत और नीदरलैंड के मुकाबले से पहले चीन और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। दोनों टीमों के बीच के मुकाबला ड्रॉ रहा। चीन को एक अंक मिला जबकि ऑस्ट्रेलिया को भी एक अंक हासिल हुआ। इसके बाद नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हराकर तीन अंक हासिल किए और पूल ई में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।
1: बिल्कुल सिमरन, ये तो बात थी कल खेले गए मुकाबलों की। अब बात करते हैं आगे खेले जाने वाले मुकाबलों की। पुरुष वर्ग के पूल ई में आज भारत और नीदरलैंड सामने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे होगा। इसी दिन इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच भी मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 24 अगस्त को भारत का सामना अर्जेंटीना से होगा, जबकि नीदरलैंड्स और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। पुरुषों के पूल एफ में अगला मुकाबला 23 अगस्त को जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। इसी दिन बेल्जियम और स्पेन भी आमने सामने होंगे। महिला वर्ग के पूल ई में 23 अगस्त को मेजबान नीदरलैंड्स का मुकाबला चीन से होगा। इसके बाद भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारतीय समय के अनुसार मैच 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं महिला वर्ग के पूल एफ में आज बेल्जियम और जर्मनी आमने सामने होंगे, जबकि अर्जेंटीना और स्पेन के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 24 अगस्त को स्पेन बनाम जर्मनी और बेल्जियम बनाम अर्जेंटीना का मुकाबला खेला जाएगा। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में अब मुकाबले और भी रोमांचक होते जा रहे हैं। भारतीय महिला टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होगा। वहीं भारतीय पुरुष टीम की नजर नीदरलैंड्स को हराकर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी।
0: ये तो थी हॉकी की जानकारी। अब बात करते हैं अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की, जो कि स्लोवाकिया में हो रहा है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: सिमरन, अब बात करते हैं कुश्ती की। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आयोजित 2026 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 21 अगस्त को खेले गए मुकाबलों में भारतीय जूनियर टीम ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें विशेष रूप से भारतीय महिला पहलवानों ने ऐतिहासिक परिणाम दिए। महिला फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में भारत ने कुल 133 अंक हासिल कर जापान 167 अंक के बाद टीम रैंकिंग में दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में 18 वर्षीय भारतीय महिला पहलवान काजल धोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल चीन की जिंगरू सुन को 7-0 से एक तरफा शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ काजल लगातार दो बार अंडर 20 विश्व खिताब 2025 में 72 किलोग्राम और 2026 में 76 किलोग्राम जीतने वाली अंतिम बंगाल के बाद दूसरी भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को एक भी अंक नहीं लेने दिया। काजल के स्वर्ण पदक के अलावा भारतीय दल ने महिलाओं के वर्ग में 3 रजत पदक भी हासिल किए। 72 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में भारत की तनु शर्मा को जापान की चिसेटो योशिदा के खिलाफ कड़े संघर्ष में 3-5 से हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने रजत पदक हासिल किया। वहीं महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मुकाबले में भारत की सबिता को जापान की सकुरा ओनिशी ने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर पराजित किया, जिससे सबिता को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं 68 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की मानसी लाथर चीन की चेनलिंग सोंग से 1 अंक से हार गई। अंतिम स्कोर 2-1 रहा। पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 21 अगस्त को अमेरिकी और रूसी पहलवानों का दबदबा देखने को मिला। 21 अगस्त को हुए फाइनल मुकाबले में अमेरिका के ओरोन सीडेल ने कजाकिस्तान के बेकासिल असाम बेग को 7-0 से हराकर 61 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त पुरुषों के 86 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अमेरिका के एओडेन सिंक्लेयर ने रूस के अहमद मुकुतोव को 8-4 से मात देकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट के अंतिम चरण के तहत 22 अगस्त को पुरुषों के फ्रीस्टाइल के शेष 4 भार वर्गों 70 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, 97 किलोग्राम और 125 किलोग्राम के क्वालिफिकेशन और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। इन भार वर्गों में भारतीय पुरुष पहलवान पोडियम पर जगह बनाने के लिए अपनी चुनौतियां पेश कर रहे हैं, जिनके अंतिम परिणाम और पदक विजेताओं का निर्धारण आज देर रात तक पूरा हो जाएगा। इससे पहले आयोजित हुई ग्रीको रोमन स्पर्धाओं में भारतीय टीम केवल 16 अंक के साथ 17वें स्थान पर रही थी, जबकि रूस ने 142 अंकों के साथ ग्रीको रोमन टीम खिताब जीता था। जी हाँ सिमरन, ये तो बात रही कुश्ती की। अब बात करते हैं लुसेन डायमंड लीग की, जहां सिमरन आप बता रहे हैं ये रिपोर्ट।
0: लुसान डायमंड लीग 2026 में कई प्रतिस्पर्धाएं देखने को मिली, लेकिन फैंस को सबसे ज्यादा आकर्षित किया जेवलिन थ्रो में, जहां मेंस कैटेगरी में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर इस लीग में दूसरे स्थान पर रहे। वो इस खिताब में 0.09 मीटर से चूक गए। नीरज ने सीजन का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे स्थान पर रहे। श्रीलंका के रुमेश थरंगा ने एक बार फिर सबको पछाड़ते हुए 88.14 मीटर के थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया। वही के एंडरसन पीटर्स काफी लंबे समय बाद टॉप 3 में जगह बनाने में सफल रहे और 86.69 मीटर थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा के लिए मुकाबले की शुरुआत कुछ खास नहीं

0: ही रही और वो अपने पहले प्रयास में 83.54 मीटर का ही थ्रो कर सके थे। वहीं श्रीलंका के रुमेश थरंगापति रागे ने पहले प्रयास में ही जैवलिन को 85.99 मीटर दूर फेंकते हुए पहले नंबर पर पहुंच गए। हालांकि दूसरे प्रयास में नीरज ने जबरदस्त वापसी की और 88.05 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल कर लिया। वहीं रुमेश दूसरे प्रयास में 87.06 मीटर का थ्रो ही कर सके। भारतीय एथलीट का तीसरा प्रयास उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और उन्होंने 83.72 मीटर का थ्रो किया। हालांकि श्रीलंकाई खिलाड़ी रुमेश ने तीसरे प्रयास में 88.14 मीटर के थ्रो के साथ एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया। नीरज अपने चौथे प्रयास में फाउल कर बैठे जबकि रुमेश का थ्रो भी ज्यादा दूरी तय नहीं कर सका। नीरज ने अपने पांचवें प्रयास में थ्रो नहीं किया जबकि छठे प्रयास में वो 82.15 मीटर का ही थ्रो कर सके। वहीं रुमेश अपने पांचवे और छठे प्रयास में फाउल कर बैठे। हालांकि रुमेश का तीसरा थ्रो उनके लिए निर्णायक साबित हुआ। अब अगर अन्य प्रतियोगिताओं की बात करें तो पुरुष वर्ग में 200 मीटर दौड़ में पेरिस ओलंपिक चैंपियन बोत्सवाना के लेत्सिली तेबोगो ने 19.87 सेकंड के समय के साथ आसानी से रेस जीती। दक्षिण अफ्रीका के सिनेसिपो डेम्बिल भी दूसरे स्थान पर रहे। 800 मीटर दौड़ में केन्या के इमैनुअल विन्योनी ने पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने अल्जीरिया के डेमल सेद जाती को कड़े मुकाबले में पछाड़ा। लॉन्ग जंप में ग्रीस के ओलंपिक चैंपियन मिल्टियाडिस टेंटलोग्लू ने 8.24 मीटर की छलांग लगाकर जीत दर्ज की। वहीं विमेंस कैटेगरी में 800 मीटर दौड़ में स्विट्जरलैंड की आंड्रे वेरो ने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया और मीटर रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज की। 200 मीटर दौड़ में अमेरिका की कायला व्हाइट ने 22.18 सेकंड में रेस जीत कर पहला स्थान हासिल किया।
1: बिल्कुल सिमरन, ये तो बात थी डायमंड लीग की। और एक और खास मुकाबला जो भारत की जोड़ी का मुकाबला चाइना की जोड़ी के साथ चल रहा है, जो कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जहां भारत की जोड़ी ने पहला जो गेम है वो 21-18 से जीता था, तो दूसरा गेम और भी शानदार होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों पेयर्स के बीच में ये मुकाबला 11-11 की बराबरी पे है। देखना ये है कि आप ये गेम कहां जाता है।
0: जी, गेम कहाँ जाता है इस पर तो नजरें हैं। साथ ही साथ बात करते हैं हम डूरन कप की, जो कि 23 अगस्त को होने वाले फाइनल पर। ये है संक्षिप्त रिपोर्ट।
1: जी हाँ, बात करते हैं फुटबॉल की। डूरन कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारतीय फुटबॉल के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का ये 135वां संस्करण अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। कोलकाता के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में 23 अगस्त 2026 को होने वाले इस खिताबी मुकाबले में देश के दो सबसे बड़े और पारंपरिक चिर प्रतिद्वंदी क्लब मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल FC एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता का भारतीय खेल जगत में कोलकाता डर्बी के नाम से जाना जाता है, जिसने पूरे देश के फुटबॉल प्रशंसकों के बीच उत्साह और दीवानगी को चरम पर पहुंचा दिया है। डूरन कप के समृद्ध इतिहास में यह पहला मौका है जब दोनों क्लब इस प्रतिष्ठित चमचमाती ट्रॉफी को जीतने के लिए इस फाइनल में आमने सामने खड़े हैं, जिससे इस मैच का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इस साल टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय सेना और डूरन फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा बेहद भव्य स्तर पर किया गया, जिसमें देश विदेश की कुल 24 शीर्ष टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों में इंडियन सुपर लीग और आई लीग के शीर्ष क्लबों के अलावा भारतीय सशस्त्र बलों की टीमें और पड़ोसी देश श्रीलंका की डिफेंडर्स FC भी शामिल थी। 25 जुलाई से शुरू हुए इस टूर्नामेंट की लीग मुकाबले देश के 5 प्रमुख शहरों कोलकाता, रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले गए। कड़े मुकाबले और ग्रुप स्टेज की बाधाओं को पार करते हुए नॉकआउट चरणों में दोनों दिग्गज क्लबों ने अपनी श्रेष्ठता साबित की और सेमीफाइनल के रोमांचक सफर को तय करते हुए इस फाइनल का टिकट कटाया। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल FC ने स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के खिलाफ मैदान पर अपनी रणनीतिक सूझबूझ का बेहतरीन प्रदर्शन किया। निर्धारित 90 मिनट के खेल के दौरान दोनों टीमों की रक्षा पंक्ति ने शानदार खेल दिखाया, जिसके कारण मुकाबला गोल रहित गतिरोध पर समाप्त हुआ। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए किया गया, इसमें ईस्ट बंगाल ने दबाव को बेहतर तरीके से संभालते हुए 5-3 से शानदार जीत दर्ज की। ईस्ट बंगाल के गोलकीपर प्रभु सुखन सिंह गिल इस मैच के सबसे बड़े नायक साबित हुए, जिन्होंने न केवल नियमित समय में बल्कि पेनल्टी शूटआउट में भी कुछ अविश्वसनीय बचाव किए। अंत में टीम के कप्तान मोहम्मद बासिम राशिद ने निर्णायक पेनल्टी शॉट को बेहद शांति और सटीकता के साथ गोल पोस्ट के जाल में भेजकर अपनी टीम की फाइनल में जगह पक्की की। इस जीत के साथ रेड एंड गोल्ड ब्रिगेड अपने 17वें डूरन कप खिताब की तलाश तलाश में मजबूती से आगे बढ़ी है। दूसरी ओर रिकॉर्ड 17 बार की चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट ने शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में गत चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एक बेहद करीबी और सांस रोक देने वाले मुकाबले में

0: मात दी। ये मैच में निर्धारित समय तक बिना किसी गोल के 0-0 की बराबरी पर छूटा। पेनल्टी शूटआउट के रोमांच में मोहन बागान के अनुभवी गोलकीपर विशाल कैथ एक बार फिर टीम के लिए संकट मोचक बनकर उभरे। उन्होंने विरोधी टीम के दो महत्वपूर्ण पेनल्टी शॉट्स को रोककर अपनी टीम को 4-3 से जीत दिला दी। विशाल कैथ के इस बेजोड़ प्रदर्शन ने न केवल मोहन बागान को फाइनल में पहुंचाया बल्कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लगातार तीसरी बार फाइनल खेलने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। साल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले इस महाफाइनल में सिर्फ डूरेंट कप की ट्रॉफी दांव पर नहीं होगी बल्कि कोलकाता की फुटबॉल विरासत का गौरव भी दांव पर लगा होगा। मोहन बागान जहां अपने रिकॉर्ड्स को और बेहतर करते हुए 18वीं बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरेगी, वहीं ईस्ट बंगाल भी 17वीं बार खिताब जीतकर अपने इस पुराने प्रतिद्वंदी की बराबरी करना चाहेगी। दोनों टीमों के पास बेहतरीन घरेलू और विदेशी खिलाड़ियों का संतुलन है जो इस मैच को रणनीतिक और शारीरिक रूप से बेहद उच्च स्तर का बनाने का वादा करता है। बिल्कुल सिमरन, अब बात डूरेंट कप की थी तो बात अब करते हैं सुब्रतो कप की। जो 65वां एडिशन जो चल रहा है अंडर 17 गर्ल्स के मुकाबले जो चल रहे हैं उसमें उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा का जो मुकाबले हुए आज उसमें हरियाणा ने 1-0 से उत्तराखंड को हराया। वहीं बात करें गुजरात और एनसीसी की तो गुजरात और एनसीसी का ये मुकाबला 3-3 के हिसाब से ड्रॉ रहा। वहीं बात होती है बिहार और वेस्ट बंगाल की तो बिहार ने ये मुकाबला वेस्ट बंगाल को हराया 3-1 से। वहीं सिक्किम और एनसीएस के बीच में मुकाबला हुआ 15-0 से सिक्किम ने ये मैच जीता। और अभी भी और भी मैच खेले जा रहे हैं उनका जो जानकारी वो देते रहेंगे।
1: जी अब बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जो कि भुवनेश्वर में चल रहा है उस पर, सुनते हैं ये रिपोर्ट। भुवनेश्वर में आज वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर 2026 में भारत के दिग्गज एथलीट अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। इसमें स्प्रिंट के धुरंधर गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर, हर्डल में ज्योति अराजी और शॉट पुटर तजिंदर पाल सिंह तूर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भाग लेंगे। एक दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 23 देशों के कुल 198 एथलीट भाग लेंगे जिनमें 12 एशियाई देश शामिल हैं। प्रतियोगिता में 18 स्पर्धाएं होंगी जिनमें पुरुष और महिला वर्ग में 9-9 स्पर्धाएं शामिल हैं। पुरुष वर्ग में 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 5000 मीटर और 110 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट और जेवलिन थ्रो होगा। महिलाओं के वर्ग में 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर और 100 मीटर हर्डल्स होगा। वहीं लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो होगा। पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेलों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर में वापसी करने की कोशिश करेंगे। एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता ज्योति अराजी 100 मीटर हर्डल्स में हिस्सा लेंगी। उन्होंने जून में आयोजित नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंटीरियर क्रूजिएट लिगामेंट सर्जरी से वापसी करते हुए जीत हासिल की थी। दो बार के एशिया गेम्स चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर, समरदीप सिंह गिल के शॉटपुट प्रतियोगिता में वो मुख्य आकर्षण होंगे। उन्होंने नाइजीरिया के ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन चुकुवे बुका एनेक्वेची से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना उन्हें करना पड़ेगा। जैवलिन थ्रो में राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता यशवीर सिंह, एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता किशोर जैना और रोहित यादव अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। लॉन्ग जंप में दो बार के राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मुरली श्री शंकर के साथ लोकेश सत्यनाथन और विश्व अंडर 20 कांस्य पदक विजेता शहनवाज खान भी शामिल होंगे। महिला वर्ग में लॉन्ग जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक एसी सोजन और एशियाई चैंपियनशिप की पदक विजेता शैली सिंह भाग ले रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की मौजूदा चैंपियन समंथा हॉल, भारत की निधि रानी और सीमा कली रामना के साथ मिलकर डिस्कस थ्रो में अंतर्राष्ट्रीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। तो ये थे कुल मिलाकर वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर 2026 के प्रतिस्पर्धाएं। ये सभी प्रतिस्पर्धाएं आज शाम से लेकर देर रात तक खेले जाएंगे और इसके फाइनल प्रतिस्पर्धा भी आज रात होंगे।
0: तो ये तो बात सिमरन कर रहे थे हम वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल की। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां दिल्ली प्रीमियर लीग में खेले गए पुरुषों के मुकाबले में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया। ईस्ट दिल्ली के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जो बिल्कुल सही रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए आउटर दिल्ली की टीम ने शुरुआत से ही मुश्किल में दिखी। उनके शुरुआती बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हो गए। ईस्ट दिल्ली के गेंदबाजों ने इतनी अच्छी और सटीक गेंदबाजी की कि विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं मिला। पूरी टीम लगातार संघर्ष करती रही और 19.1 ओवर में केवल 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस दिल्ली राइडर्स की तेज गेंदबाज मयंक यादव ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उसके साथ आशीष मीना ने कमाल का प्रदर्शन किया, 25 रन देकर 3 विकेट लिए।

0: 135 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम ने बहुत तेज बल्लेबाजी की और उनके ओपनर बल्लेबाज ने आते ही चौके छक्के लगाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। उसके बाद काव्या गुप्ता ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंद में 48 रन बनाए। तो ये तो बात रही क्रिकेट की, अब बात करते हैं वर्ल्ड BWF की, जहां पहला गेम भारतीय जोड़ी ने जीता था, अब दूसरा गेम में पलटवार करते हुए चाइना की जोड़ी 20-12 से आगे चल रही है।
1: तो ये तो थे आज के प्रोग्राम की सारी जानकारियां। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी सिमरन सारवान और मेरे साथी हेमंत को दीजिए अनुमति। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हैं शहनवाज खान। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन अनेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान PJ मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दो श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
4: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में

0: leadership across the country. According to the report, the abuses also include abductions, forced conversions, and child marriages alongside the misuse of the country's blasphemy laws. Shahbaz Bhatti was assassinated in Islamabad on March 2, 2011 for his vocal opposition to Pakistan's blasphemy laws. In Odisha, the flood situation is showing signs of improvement, but large pockets of north and coastal Odisha remain inundated, with about 14 lakh people affected across several districts. Heavy rain is continuing in several districts in Madhya Pradesh due to the monsoon trough, cyclonic circulation, and a low pressure area. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में दस्तकार मॉनसून मेला और कैबिनेट निर्णयों के संदर्भ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन। छह अगस्त से 17 अगस्त तक अनुव्रत मार्ग स्थित नेचर बाजार परिसर में मॉनसून मेला 2026 का आयोजन किया गया। इस मेले के संदर्भ में आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में नेचर बाजार के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शैली जैन ने बताया,
2: मकसद यही है कि जो हमारे देश के कारीगर हैं, उनको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सके, वो उसके प्रति उसके साथ अपनी लाइवलीहुड चला सके। उसके चलते ही नेचर बाजार दिल्ली टूरिज्म के सहयोग से हमें यहाँ मिली है, जिसमें हम साल में कुछ 9 इवेंट करते हैं। अगस्त से लेके अप्रैल तक हमारे हर महीने इवेंट रहते हैं 12 दिन के। अभी मानसून मेला है, उससे हमारा अगला सितंबर में होगा, जो कि 10 तारीख से 21 सितंबर तक है। उसका नाम नेचर है। ये मानसून मेले की यदि मैं बात करूं तो तकरीबन 100 हमारे यहाँ पर क्राफ्ट ग्रुप्स आए थे, जो कि अलग अलग प्रांतों से थे और उनके पास अलग अलग क्राफ्ट भी था। बहुत से अलग अलग फोक आर्ट हैं, पेंटिंग है, ज्वेलरी है, पॉटरी है, गारमेंट्स भी अलग अलग हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हैं, वीविंग है, बहुत वैरायटी है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हैं, खान पीन की व्यवस्था भी है। और हमने वीकेंड्स में बच्चों के लिए कुछ वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज की थी, क्राफ्ट वर्कशॉप, जिससे वो समझ सकें कि क्राफ्ट क्या है, क्राफ्ट की अवेयरनेस क्रिएट हो सके। और हमने फर्स्ट वीकेंड में कल्चरल परफॉर्मेंस की थी, गोतीपुआ परफॉर्मर्स आए थे उड़ीसा से। हमारे हर बाजार में ये सभी कंपोनेंट्स रहते हैं। जिन लोगों ने ये मॉनसून मेला मिस किया, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अगला जरूर देखें, क्योंकि सितंबर वाला बाजार जो है वो, जैसे कि जो नाम बताता है कि वो नेचर के अराउंड रिवॉल्व करता है, नेचर से इंस्पायर चीजें, नेचर में उगी चीजें, नेचर को किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करती है, उनसे कलर्स की इंस्पिरेशन, फूल पत्ती पौधे, उस तरह की इंस्पिरेशन और कलर्स की इंस्पिरेशन, हमारा बाजार उन सब चीजों के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है।
1: नेचर बाजार में आमंत्रित प्रदर्शकों ने बताया,
3: मेरा नाम असम है, हम मणिपुर उकृतिस से आया हुआ है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आए हूँ। इसको लोम्पी ब्लैक पॉटरी पॉट है, इसका कुकिंग पॉट, फ्लावर वास सब कुछ मिलेगा, या मोल्डिंग हुआ है इसमें, फाइनल वो यूज करने के लिए, फिर आग में जैसे फाइनल प्रोडक्ट्स, लोम्पी ब्लैक पॉटरी स्पेसिफिकली ये मणिपुर लोम्पी विलेज में होता है और किसी जगह में नहीं मिलेगा। हेल्थ और ट्रेडिशन में अच्छा होता है, ये 2022 से इसका एफिलिएट है, इससे सब ठीक है।
4: मेरा नाम शाजिया है। जैसे कि दस्तकार में सबसे पहले मुझे मेरी आंटी ने इंट्रोड्यूस कराया, जो मैं काम करती हूँ कशीदाकारी का, डिफरेंट तरह के स्टिचेज होते हैं, जो कि मैंने अपनी वालिदा से सीखा था और फिर स्कूल में भी अपनी पढ़ाई के दौरान उनको एक्सप्लोर करा, फिर उससे ट्रेनिंग भी ली, तो मैंने उसी में ही अपना फ्यूचर देखा, मैं किस तरह से इसे अपने काम मैं कर सकती हूँ। तो दस्तकार में जब मैंने अपनी सैंपल्स दिखाए तो यहाँ मैडम ने बहुत इंकरेज करा हम लोगों को, और फिर हमने स्टार्टिंग करी यहाँ 2017 में फर्स्ट टाइम, और उसके बाद 8 साल हो गए। डे बाय डे लोग यहाँ पर आते हैं कस्टमर, तो मोटिवेट भी करते हैं हम लोग को सजेस्ट भी करते हैं, भी हम लोगों को इतना सब कुछ करने का मौका मिला अलग से, मतलब हर चीज हम क्रिएट कर सकते हैं और लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स भी बहुत बहुत अच्छे हैं, मतलब एक ऐसी एनवायरमेंट है कि लोग सजेशन भी देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतना अप्रिसिएशन मिलना इस काम को। मेरी अम्मी ने पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन शायद उनको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला होगा इस काम में जितना मुझे मिला, तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इंटायर टीम ऑफ द दस्तकार। मुझे अपना पैशन परस्यू करना था कि मैं क्या चीज नहीं कर सकती।

0: हूँ, किस तरह की डिजाइनिंग खुद अपनी नई बना सकती हूँ। एक बहुत बड़ा एक टीम ने ही खड़ी करी, यही था कि जो ना मैं हमेशा सिर्फ अब जो मैं चाह रही हूँ उसको एम्ब्रॉयडरी के अंदर बनाऊं।
1: मेरा नाम है पवार पायल, मैं हूँ महाराष्ट्र की रहने वाली। हम तो दस्तकार में आए हैं नेचर बाजार में। ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि चोकर है, नेकलेस है, तो होता ना वॉल हैंगिंग, फ्रेम, बहुत अलग अलग चीज बनाते हैं।
2: 19 अगस्त बुधवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन मीडिया सेंटर सभागार में किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में बताया।
3: आज बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजन हैं। एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एकदम नेपाल के बॉर्डर तक, ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए। वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस अगर हम समझें तो हावड़ा से चेन्नई बहुत इम्पोर्टेंट मेन लाइन है। इसमें दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से लेके चेन्नई तक डायगनल और मुंबई से लेके हावड़ा तक डायगनल और उसके बाद में गुवाहाटी तक जाने वाला नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन, सात लाइन्स हैं। दीज सेवन लाइन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसीलिए इन लाइन्स को एक फोकस्ड वे में एक के बाद एक इनको डबलिंग, क्वाड्रुपलिंग, थर्ड लाइन, बेसिकली सबको क्वाड्रुपलिंग किया जा रहा है, फोर लाइन किया जा रहा है। हावड़ा से लेके चेन्नई तक पूरे रूट में अप्रूव हुए हैं। खड़गपुर से भद्रक अगर हम देखें तो दिस गोज वाया बालेश्वर और नीचे रूपसा, रूपसा के बाद भद्रक, पूरा उड़ीसा के कोस्ट के साथ है। इस कोस्ट के साथ जाने वाली ये लाइन है, इस लाइन को फोर लाइन कर रहे हैं अब खड़गपुर से भद्रक के बीच में। कोलकाता से लेके चेन्नई तक सेक्शन अप्रूव हुआ है। ट्रैफिक का फ्लो कोल एरिया से है, आयरन ओर एरिया से है। हावड़ा से लेके चेन्नई तक जो कंप्लीट मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट पैसेंजर इन सब गाड़ियों का ट्रैफिक का फ्लो इस तरफ है। बीच में धामरा पोर्ट एक इम्पोर्टेंट पोर्ट आता है, पैरादीप पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है। ओवरऑल कम्प्लीट कॉरिडोर, ईस्ट और साउथ को लिंक करने वाला कॉरिडोर है। काफी जगह तो थर्ड लाइन अभी ऑलरेडी बन रही है, अब उसके साथ ये फोर्थ लाइन हो जाने से कंप्लीट आर्टरी, कंप्लीट ये मेन ट्रंक कॉरिडोर ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दो मेगा ब्रिज बनेंगे, एक तो सुबर्णरेखा पे बनेगा और इसके अलावा कई सारे 41 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 169 माइनर ब्रिजेस बनेंगे। ये सारे के सारे मेन लाइन से जुड़ जाएंगे अच्छे कनेक्टिविटी के साथ। दूसरा प्रोजेक्ट है आगे भद्रक से हरिदासपुर, थर्ड लाइन का काम काफी तेजी से चल रहा है, कई जगह हो चुका है, वहाँ पे ये फोर्थ लाइन बनाएंगे। ये 75 किलोमीटर की लाइन है। ट्रैफिक के फ्लो में आप भद्रक से हरिदासपुर के बीच में एक जगह देखेंगे, जखापुरा। जखापुरा इज कलिंगानगर, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टील का हब है। फिर आप कटक देखेंगे, कटक कनेक्टेड है तालचेर से, संबलपुर और झारसुगुड़ा से, बहुत बड़े पावर, कोल, स्टील, आयरन, लाइमस्टोन, इन सब के मूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्प्लीट ये कॉरिडोर है। कटक को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो इसके लिए इस पूरे प्रोजेक्ट में रेल ओवर रेल, रेल फ्लाईओवर की डिजाइन की गई है। रेल फ्लाईओवर डिजाइन होने से काफी जो कटक के अंदर कंजेशन होता था ट्रेन्स का वो फिनिश हो जाएगा। इसमें भी मेजर मेगा ब्रिजेस बनेंगे, 18 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 106 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, ROBs, RUBs, 1,583 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। 29 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इस प्रोजेक्ट से आएगा जो कि हाईवे से शिफ्ट होएगा टुवर्ड्स रेलवे, एंड दैट विल सेव अबाउट 19 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 78 लाख ट्रीज। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की सेव होगी 433 करोड़ रुपीज एवरी ईयर, एंड 26 लाख ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सेम लाइन का आंध्रा तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में एरिया है गुम्मिदपुंडी से लेके गुद्दूर तक, ये 90 किलोमीटर का है। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ लाइन, अभी डबल लाइन है, इसको थर्ड एंड फोर्थ लाइन। अब मैं आता हूँ बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट पूरे बिहार के लिए एक बहुत मेजर लाइफ लाइन बन रहा है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है, नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा ट्रांसपोर्ट की, बहुत बड़ी ये मेन रोड बनेगी जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में, 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। 30 मंथ्स में कंस्ट्रक्शन रहेगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट यानी ब्लैक टॉप पेमेंट रहेगा इसमें। सेवन मेजर ब्रिजेस है, 3 ROBs है, 6 अंडरपास

0: ब्रिजेस है, और बागमती रिवर पे 340 मीटर्स का बड़ा ब्रिज एक बनेगा, इसको हैम मोड में किया जाएगा। एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, बहुत तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, माता जानकी के टेंपल को भी कनेक्ट करेगा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में।
1: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सिलिगुड़ी नगरे वरिष्ठैः गोरखा नेतृभिः सह मेलनम् अकरोत्। वार्ताकारस्य पंकज सिंहस्य अध्यक्षतायां समाह्वानानां समाधानाय उच्चस्तरीय समित्याः घोषणा अपि जाता। सर्वकारेण चतुर्वर्षेभ्यः न्यून बालकानां कृते क्लोरफेनिरामीन मेलिएट तथा फिनाइले फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इत्येतैः युक्तानां सर्वाणि निश्चित मात्रा संयोजनानि निर्माणे, विक्रयणे, वितरणे च प्रतिबन्धं स्थापितम्। अद्य सायंकाले आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनं नगरे ब्रिक्स युवा मन्त्रिणां सभा आरभ्यते। भारतः सोमालियादेशेन सह द्वाविंशतिः भारतीय नाविकैः सह विदेशीय ध्वजयुक्तयोः वाणिज्यिक नौकायानयोः अपहरणस्य विषये चर्चां करोति। अपि च BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय महिला डबल्स युग्मस्य त्रिसा जाली गायत्री गोपीचन्दयोः तथा चीनदेशस्य लियू शेंगशू टेन निंग इत्येतयोः मध्ये उपान्त्यचक्रीय स्पर्धा सम्प्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति। वार्ताः विस्तरेण। पश्चिमबंगस्य पर्वतीयक्षेत्राणां सर्वैः पक्षधारकैः सह केन्द्रीयमन्त्रिणा अमितशाहेन सिलिगुड़ी नगरे उपवेशनम् एकं कृतम्। अद्य विषये अस्मिन् निर्णयो अयं जातः यत् तत्रत्य पर्वतीयक्षेत्राणां समाह्वानानां स्थायीय समाधानार्थं पूर्व IPS अधिकारिणः पंकजसिंहस्य नेतृत्वे एकस्याः मध्यस्थसमित्याः संरचना जाता। समितिरियं केन्द्रीयकार्यालयं प्रति प्रतिवेदनं प्रेषयिष्यति। सिलिगुड़ी नगरस्य सुकारक्षेत्रे अनुष्ठिते अस्मिन् उपवेशने पश्चिमबंगस्य विपक्षिनेतारः सुवेन्दु अधिकारी, अन्ये च गणमान्यजनाः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् भारतदेशेन लाइसेंस राज इत्यस्य कालावधौ उत्पादनदण्डितकरणस्य स्वीयदृष्टिकोणे आधारभूतपरिवर्तनं विहितमस्ति। साम्प्रतं तत्स्थाने प्राशासनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव ILPI इत्यनया योजनया माध्यमेन पुरस्कृतः क्रियते। प्रवर्तमान वर्षीय इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्यस्मात् मंचात् संबोधने प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् पुरातनी पद्धतिः सांप्रतिकी पद्धतितः भिन्ना वर्तते। प्रधानमंत्रिणा PLI योजनायाः सफलता अपि चर्चिता, यत्र 2.5 लाख कोटि रूप्यकाणां निवेशः जातः। 22 लाख कोटि रूप्यकाणां उत्पादनं क्रयणं, 15 लाख कोटि रूप्यकाणां निर्यातः अपि जातः। 14 लाखाधिकानि वृत्त्यवसराणि अपि सृजितानि।
3: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट

0: ऐतिहासिक रिक्त संरक्षणस्य विषये एकः प्रस्तावः पारितः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय सन्देशे भाजपादलीय अध्यक्षः नितिन नवीनः प्रोक्तवान् यत् दलं केवलं प्रथमश्लोकद्वयं गायन् इत्यस्य कांग्रेस कार्यसमित्याः निर्णयस्य विरोधः करोति। BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय महिला डबल्स युग्मस्य त्रिसा जाली गायत्री गोपीचंदयोः तथा चीन देशस्य लियू शेंगशु टेन निंग इत्येतयोः मध्ये उपांत्य चक्रीय स्पर्धा संप्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज शनिवार है, तो आपको सुनने को मिलेगा लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। बहन भाइयों, हमारे देश में 65% से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं, इसीलिए सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें एक योजना है आयुष्मान भारत और दूसरी योजना है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
1: बिल्कुल शशि भाई, आयुष्मान भारत योजना ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल दी है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है और गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक बनाकर लोगों के घर के पास ही जांच और दवाइयां भी दी जाती हैं।
0: बिल्कुल, आयुष्मान भारत के मुख्य भागों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिनको के हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर बनाए गए हैं, जहां पर गर्भवती महिलाओं की जांच, बच्चों के टीके और आम बीमारियों की मुफ्त दवा दी जाती है। साथ ही साथ 12 प्रकार की जांचें यहां पर निशुल्क की जाती हैं।
1: बिल्कुल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो ग्रामीण इलाकों के पात्र परिवारों को बड़े अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर देती है।
0: बिल्कुल, अब ग्रामीण बहन भाई, देश के सूचीबद्ध किसी भी बड़े सरकारी या निजी अस्पताल में अपना मुफ्त में इलाज करा सकते हैं और अब गरीब परिवारों को इलाज के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता, क्योंकि सारा खर्च योजना के तहत सरकार उठाती है।
1: बिल्कुल, और गाँव में ही ब्लड प्रेशर, शुगर, डेंगू, मलेरिया और अन्य गंभीर बीमारियों की शुरुआती जांच होने से समय पर इलाज संभव हो जाता है।
0: बिल्कुल, और अब नीलम बहन, बात करें ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे की, तो सरकार ने गाँव के लिए 3 स्तरीय सिस्टम बनाया है। पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो हर 5 से 7 हज़ार लोगों पर एक है, और दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको PSC कहते हैं, जो हर 30 हज़ार लोगों पर होता है, जहां पर एक डॉक्टर साहब होते हैं और यहां पर लैब की सुविधा भी होती है, और 24/7 डिलीवरी रेफरल सुविधा भी यहां पर दी जाती है, और तीसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको CSC कहते हैं, जहां पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब होते हैं, यहां पर ऑपरेशन की सुविधा भी होती है, डिलीवरी की सुविधा भी होती है, एक्सरे भी यहां पर होते हैं, और यहां पर 30 बेडों की सुविधा होती है।
1: बिल्कुल शशि भाई, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए अन्य योजनाओं की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें ANM और आशा कार्यकर्ता और 108 एम्बुलेंस, जननी सुरक्षा योजना इसी के तहत आती हैं।
0: और दूसरा नंबर आता है नीलम बहन, टेलीमेडिसिन का। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल मोबाइल फोन का जमाना है और कोई मोबाइल के जरिए

0: घर बैठे ही डॉक्टरी परामर्श चाहता है तो वो ई संजीवनी जो एप्लीकेशन है सरकार का, उसका उपयोग करके वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं। और अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा लोग सलाह भी ले चुके हैं।
1: बिल्कुल। और तीसरा आता है जन औषधि केंद्र, जहाँ सस्ती दवाइयाँ गांव में उपलब्ध कराई जाती हैं। और चौथा आता है मिशन इंद्रधनुष, जिसमें

0: कर्ज नहीं लेना पड़ता और इलाज के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ता, गांव में ही उनका इलाज शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल, और आयुष्मान भारत का लक्ष्य है सबको स्वास्थ्य, गांव में ही इलाज, गांव में ही रोकथाम।
0: बिल्कुल, और हमारे जो भी बहन भाई जिनका कि अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं है, वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी PSC, CSC या आयुष्मान जो मित्र होते हैं वो आपको मिल जाएंगे CSC में, तो उनसे आप संपर्क कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी जो जन सुविधा केंद्र हैं वहाँ पर भी आप पात्रता जान सकते हैं। अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो आप बड़ी आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी है उनको लिस्ट में नाम की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधे अपना आयुष्मान कार्ड जन सुविधा केंद्र से बनवा सकते हैं, या खुद जानते हैं बनाना तो खुद भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बना सकते हैं और सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है उनका लाभ उठा सकते हैं। तो नीलम बहन, ये तो बात रही आयुष्मान भारत योजना और ग्रामीण स्वास्थ्य की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: शशि बाबू को नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ब्रह्मपाल नागर को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: सत्यदेव सागर, ग्राम सरवन्ना, थाना चतारी, जनपद बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर।
0: सागर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: मास्टर ब्रह्मपाल नागर गुरु जी की आवाज में कोई रागिनी भजन अच्छा सा सुनवाइए सर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और ये दो तीन नाम है, पत्नी संतोष देवी, बेटा शिवदत्त सागर, सुधीर सागर, अंकित सागर।
0: हेलो ग्राम संसार।
4: शशि भैया नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ब्रह्मपाल नागर को सुना सकते हैं के सौदक विवेक सृजन।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: मैं सोनू का डाला से बोल रहा हूँ जी।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज ब्रह्मपाल नागर को सुना जाएंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: देखना मैं
0: जी,
5: मेरे पिताजी है मनपालवाज, मेरी मम्मी फुलवती कोटा वोटा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मैं जी गांव धोंगड़ा जिला मेंद्रा हरियाणा से पंडित यादराम पटवारी बोल रहा था जी।
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज सुनाओ जी, ब्रह्मपाल नागर जी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: पोता पोती है जी, शिवानी शर्मा है, भव्य भारद्वाज है, यश भारद्वाज।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं ब्रजपाल बोल रहा सर, गांव राम सावड़ा, जिला सहारनपुर से।
0: ब्रजपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: ब्रह्मपाल नागर को सुना दियो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: एक नाम लूंगा सर, हमारे बड़े भाई ने डेडी से बस सर बता, राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
8: मैं रामचंद बागपत डोला से बोल रहा हूँ जी। आज के कलाकार है भाई ब्रह्मपाल नागर जी, नाम लूंगा जी।
0: जी
8: मेरी लड़की है साया, बड़ा लड़का प्रदीप कुमार, हमारे पुत्र वधु मंजू और रोहन नंदिता।
0: हेलो ग्राम संसार।
9: हेलो शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
9: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गांव बढ़ाने जिला बुलंदशहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
9: ब्रह्मपाल नागर को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
9: और मेरे साथ आरती भारती साथी मुझे करता रहेगी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ब्रह्मपाल नागर से ये देशभक्ति रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है। किस कलाकार को सुनना चाहोगे आज?
1: ऋषिपाल खदाना जी गाई हुई रागनी सुनवा देना
0: जी।
1: कुछ नाम लेने चाहूँगा।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: सुमित तेवतिया, प्रिंस छोटू, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, हमारी बुआ जी राजवीरी, और गुलाब की से बैद जी सतीश चंद्र बंसल, और ईशपाल हेरी, और गांव खुशियापुर से हैं मास्टर शेर सिंह और पंडित रतन लाल।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्ते जी, मैं खजान सिंह जौहरीपुर से बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहूँ?

0: करोगे?
1: रिसिपाल खजाना को अच्छी सी रागिनी सुनवा दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
1: खजान सिंह, रामबती, चंद्रकांता, अजय कुमार, मोहन, विद्यान, आरव। धन्यवाद, थैंक यू जी।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं हरि सिंह सैनी, पशुपनंगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी।
0: हरि सिंह जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ऋषिपाल खजाना को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: और कुछ नाम है जी? देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश, डॉक्टर गीता और मेरे पोती पोता नीतीश, हेमपाल, पुष्पंदर, जीतू, ललित, चंदन, भूमेश, छवि, निशा, कंचन, टीना और रिश्तेदार संजीव, ज्योति, शिवचरण, मनोहर।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ऋषिपाल खजाना को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: बच्चों के नाम है सर जी?
0: जी,
3: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: हवलदार जयप्रकाश, ग्राम पाचौता, बुलंदशहर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ऋषिपाल खजाना को सुनवा दीजिए साहब। नाम नोट कर लो
0: जी। कराएं।
4: करण, खुशी, नंदनी, राधिका, प्रतिज्ञा। राम राम साहब।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: अशोक कुमार शर्मा, कुठावली कोर्ट, बुलंदशहर।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज ऋषिपाल खजाना को सुनना चाहेंगे और मेरे साथ में हैं
0: जी
5: त्रिशूल, लव शर्मा, देव शर्मा, गौरव शर्मा।
6: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मैं जगदीश सिंधारिया बोल रहा हूँ जी, डाणा नरसान जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: ऋषिपाल खजाना को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: बच्चों के भी नाम है जी?
0: जी,
6: राजवीर सिंधारिया, सतीश सिंधारिया, रितिक सिंधारिया, केड़ा देवी जी।
0: हेलो ग्राम संसार।
7: हाँ नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी।
0: विश्वकर्मा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज सर ऋषिपाल खजाना जी को सुनना चाहेंगे सर।
0: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल खजाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: सचिव भाई जी, राम राम। जिला
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: हापुड़ गढ़गंगा भगवान से बोल रहा हूँ, घनश्याम। सर
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: प्रसाद जी को नाम
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: ले लूँ दो है। मेरी
0: हाँ बोल दीजिए।
1: बहन है ज्ञानवती है नंदी, और वो है प्रधान जी ज्ञान दास, सबको राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, सचिव जी, इसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: जय प्रकाश को सुनना चाहूंगा, साथ में बनवारी लाल यादव, गामड़ी वाले विजय लखेरा जी, राहुल सैनी, हिसार से राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ये जयप्रकाश शर्मा जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बादलपुर, मास्टर संतन सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी जी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: सुरेश चौहान जी बोल रहे हैं, नजफगढ़ से जी।
0: सुरेश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: काफी दिन हो गए जयप्रकाश शर्मा जी को नहीं सुना है हमने।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और हमारे राजकुमार छावला से और तेजराम कौशिक जी सुकराली से, ये भी आपका प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनते हैं। जय सिंह लखेरा खेड़ी तलवाना से, वो भी आपका प्रोग्राम हर दिन सुनते हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर जयप्रकाश शर्मा से ये मल्हार।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112347331 और दूसरा नंबर है 0112347332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम।
0: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस तथा प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम हो सकता है, इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की कल विशाखापट्टनम में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 2 श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे, तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। ये अपील POJK में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर के बाद आई है। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी है और संचार बंद है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की ली यू शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। सीमा, हमारे सभी किसान भाई बहन जानते हैं कि कार्यक्रम किसान वाणी में जहां हम उन्हें वैज्ञानिकों और डॉक्टर के अनुसंधान की सोच के साथ परिचित कराते हैं, वहीं बातचीत करते हैं किसी न किसी ऐसी योजना के विषय में जो सरकार ने किसानों के पूर्ण लाभान्वित होने की दृष्टि से चलाई है।
4: बिल्कुल।
3: वहीं अपने श्रोताओं के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते हैं और वही मौसम की जानकारी भी अपने सभी साथियों को देते हैं।
4: बिल्कुल।
3: इस मौसम में यदि हम देखें, बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में जहां खेत खलिहान खिलखिलाते हैं, फसलों के लिए वृद्धि का बहुत अच्छा समय होता है, लेकिन वहीं हमारी फसल में लगने वाले कीट रोग, हमारे पशु स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य को भी यह मौसम प्रभावित करता है।
4: बिल्कुल सही कहा अमित आपने। और जैसे कि बरसाती मौसम का समय है, पशुधन का तो हमें ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ अपना और अपने परिवार का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
3: बिल्कुल। और पशु पालकों के लिए तो ये मौसम विशेष हो जाता है कि ऐसे में हमें ध्यान रखना है पशुओं का कि कहीं वो ऐसे स्थान पे ना बंधे हों कि जहां जल भराव की समस्या हो। कई बार ऐसा होता है कि हम रात में पशुओं को एक स्थान पे बांध के सो गए और रात में बहुत तेज बारिश हुई और उस बारिश में हमारे पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो गया, कीचड़ हुई। ऐसे में बहुत सारे रोगाणु भी हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है मित्रों कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं का ध्यान रखें, उनके पीने का जो पानी है वो बिल्कुल ताजा हो, ताकि हमारे घर में होने वाले दूध उत्पादन से संबंधित कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।
4: जैसे बरसाती मौसम चल रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या आती है वो आती है मच्छरों की।
3: बिल्कुल।
4: और अगर हम मच्छरों की बात करते हैं और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की बात करते हैं, तो खासतौर पर हम बात करें कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जीका वायरस इस समय बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है।
3: और वहीं ध्यान रखें अपनी फसल पर होने वाले कीट के हमले के विषय में। और किसान वाणी कार्यक्रम में हम इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए समसामयिक चर्चा करते हैं और वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित करते हैं।
4: बिल्कुल अमित। और हमारी जो सरकार है, समय समय पे वे बहुत सारी योजनाओं के ऊपर कार्य कर रही होती है और इसी तरह से आज भी हम कुछ एक योजना के ऊपर बात करने वाले हैं।
3: बिल्कुल मित्रों, यानी कि बरसात के मौसम में जहां एक और हमारे किसान भाई बहन तालाब बना सकते हैं, तालाब में मत्स्य पालन कर सकते हैं, वहीं हमारे देश में मछली पालन करने वाले महत्वपूर्ण योजना है सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके माध्यम से मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार यह बड़ी योजना लेकर के आई है।
4: और खासतौर पे मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं, मछुआरों की आय को दोगुना करना इसका सबसे पहला जो कदम है वो यही है। और साथ ही साथ मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक बार फिर हम नीली क्रांति किस प्रकार ला सकते हैं।
3: तो बिल्कुल मित्रों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अवश्य लाभ उठाएं। जिस प्रकार से हमारे युवा रोजगार की तलाश में अपने ग्रामीण अंचल को छोड़कर शहरों की ओर दौड़ रहे हैं, सरकार की योजना मत्स्य संपदा निश्चित रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है और ना हमारे युवा

0: साथियों को स्वयं के लिए अपितु अपने आसपास काम करने वाले अन्य श्रम वर्ग के लिए भी इसमें रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और कार्यक्रम में बात होती है तिलहन की, खाद्यान्न की, अन्य कृषि उत्पादों की, पशुपालन की, मछली पालन की। वहीं जब बात आती है बागवानी की तो इसमें भी हम बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो नए बाग लगाना चाहते हैं या जिनके पहले से बाग लगे हुए हैं उनका किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल हाँ। और आज जो विषय रहेगा ना कि अधिक उत्पादन के लिए आम बागों का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है।
0: और भाई ये जानकारी आपको दिलवाएंगे डॉक्टर जय प्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से।
2: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
3: राजा होने के पीछे कई कारण है। आप देखें कि आम का जब मौसम आता है तो उसके बाद बाकी फलों की उपलब्धता भले हो लेकिन उसको खाने वाले कम हो जाते हैं। हर कोई आम खाना चाहता है।
2: हाँ।
3: और पूरी दुनिया में करीब 40% आम जो है हमारे देश में ही पैदा होता है। और आम जब एक बार आता है तो गरीब से लेके अमीर तक हर कोई आम खाता है। और आम की अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जो च्वाइस है हमारे उपभोक्ताओं की वो सब इसमें तृप्त होती है।
2: और ये स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा
3: निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए इसलिए है कि जो कैरोटीन है, विटामिन ए, हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिनको विटामिन ए की कमी होती है और खास करके जब गर्मी से आप बारिश के मौसम में आते हैं तो यहाँ इन्फेक्शन होता है। अगर आपके पास विटामिन ए पर्याप्त शरीर में है तो हमें आँख से जुड़ी हुई समस्या जो है वो बहुत कम हो जाती है। और जो नए नए रोग होते हैं उनके प्रति रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है। इसमें फिनोलिक्स होता है, फ्लेवोनॉइड्स होता है, विटामिन बी भी होता है। इसके अलावा इसमें रिड्यूसिंग ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ये सारे रोग से लड़ने में हमको सहायता करते हैं, इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए आम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप कच्चा आम खाएं तो अलग है फायदा, आपको ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, पक्का खाते हैं ज्यादा आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है।
2: तो डॉक्टर साहब आम के बाग से अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी जो प्रबंधन कार्य होते हैं वो कौन कौन से हैं?
3: जैसे ही हम एक फसल खत्म करते हैं उसके अगले सप्ताह से हमें अगले सीजन की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। तो सबसे पहली तैयारी ये होती है कि आपने जो आम का पौधा जिससे आपने फल लिया हुआ है वो सारे आम के पौधों से थोड़ी सफाई कर लीजिए, क्योंकि इस दौरान हम ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करते, कोई कटाई नहीं करते हैं, लेकिन यही मौसम है कि जहाँ से आम का बौर निकलता है और आप आम तोड़ लेते हैं डंठल रह जाता है। तो पहला काम ये है। अब यह है पिछले 5-6 महीने से लगातार पौधे के ऊपर लोड था तो हमें उसको कुछ पोषक तत्व देने हैं। और अगले 3 महीने ही हैं जब ये पौधा रिकवर करेगा कि जिसको उन्हीं के बल पर वो अगले साल फल देगा, क्योंकि 3 महीने के बाद फिर आपका हल्का ठंडा का मौसम आ जाएगा, पौधा फिर अपनी एक्टिविटी को, अपनी गतिविधि को कम कर लेता है। तो इसलिए उत्पादन इसलिए महत्वपूर्ण है। औसत जो उत्पादन है देश का वो 9 से 10 टन के आसपास रह रहा है और जो क्षमता है हमारी 18 से 20 टन तक की क्षमता है।
2: तो डॉक्टर साहब जो इसकी किस्में हैं अलग अलग, किसान भाइयों को बता दें कि वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका वो चुनाव कर सकें।
3: देखें दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, अल्फांजो है, बंगनपाली है, तोतापरी है, नीलम है, हिमसागर है। इन किस्मों को तो किसान अलग अलग क्षेत्रों में उगा रहे हैं। जैसे पश्चिम में केसर बहुत पॉपुलर है गुजरात में, हिमसागर बंगाल में है, जरदालू बिहार में है। तो इन किस्मों के साथ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ समस्याएँ भी हैं। ये एक समस्या होती है कि बहुत बड़े आकार में हो जाती है। अब समय ऐसा है कि आप नहीं चाहते तो आपके पास 8 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर बड़ा पौधा हो, क्योंकि उसकी जो प्रबंधन है वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए अब जो नई किस्में आई हैं इसमें अलग अलग क्षेत्रों की किस्मों को मिलाकर वैज्ञानिकों ने किस्में बनाई, जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, अंबिका है, अर्का उदया है, अर्का सुप्रभात है बंगलोर की, और हमारे पूसा संस्थान की किस्म पूसा अरुणिमा है, पूसा सूर्या है, पूसा श्रेष्ठ, पूसा लालिमा है या पूसा प्रतिभा है। ये जो किस्में आई हैं ये छोटे आकार की होती हैं और आप इनको 3 साल के बाद इनमें आराम से फल आप ले सकते हो। तो सबसे अच्छी बात होती है कि इनका जो प्रबंधन है वो आसान है, और एक सबसे अच्छी बात है कि इनमें हर साल फल आता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 साल अधिक फल आएगा, 1 साल कम फल आएगा। इन किस्मों के साथ है कि ये इस तरह से बनाई गई हैं कि इसमें फल हर साल आने हैं। अगर आप पहले साल पौधा लगाते हैं तो उसके 6 महीने बाद भी इसमें फल आ सकता है, लेकिन चूंकि थोड़ी बढ़वार आवश्यक है इसलिए हम पहले 3 साल तक कहते हैं कि आप इससे फल मत लीजिए, फूल दिखाई पड़े तो हटा दीजिए।
2: डॉक्टर साहब जैसे कि अभी आपने कहा कि जो शंकर किस्में हैं और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है नए नए शोध के द्वारा नई नई किस्में भी निकालते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है?
3: शंकर किस्मों को बनाने का उद्देश्य होता है कि दशहरी है, जल्दी पकती है, लेकिन

0: अगर आप उसको घर पर रखें तो बहुत जल्दी ख़राब होती है, लेकिन उसमें हर साल फल नहीं आता, एक साल आएगा, अगले साल थोड़ा बहुत आएगा बाग में, नहीं तो पूरा बाग खाली रहेगा। अब ऐसे में कोई किसान, कोई बागवान 2 साल तक एक फसल का इंतजार आज के महंगाई के मौसम में वो कैसे सर्वाइव करेगा। अब इसके लिए नीलम किस्म जो दक्षिण भारत में हर साल आती थी, नीलम और दशहरी इनको मिला के 2 किस्में बनाई गई, एक आम्रपाली आई और दूसरी मल्लिका आई। ऐसी वेराइटीज को बनाते हैं तो उद्देश्य था, पहला हर साल फल आए, दूसरा है कि पौधे का आकार छोटा हो जाए, तीसरा है कि फल ज़्यादा आए। आम्रपाली की खासियत है कि वो 20 से 22 टन तक का कैपेसिटी में हर साल दे सकती है, जबकि दशहरी जो है वो आपको 12 से 15 टन इससे ऊपर नहीं जा सकती है। जब आपकी उपज बढ़ जाएगी और इन किस्मों का रेट अच्छा मिलता है, क्योंकि इनका जो कैरोटीन लेवल न्यूट्रिएंट है वो बहुत अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब, जो किसान भाई बहन नए बागान लगाने जा रहे हैं तो क्या उनको मृदा परीक्षण भी कराना बहुत ज़रूरी है जिस खेत में वो लगाने जा रहे हैं उसका?
0: निश्चित रूप से, खास करके जब आप फल के पौधे लगाते हैं तो ऐसे में हमारी जो योजना है बड़ी महत्वपूर्ण है, और वहाँ पे मिट्टी की जांच शुरुआत में ही करा लें और ये देख लें कि क्या आपके क्षेत्र का जो मिट्टी है, और इसके साथ पानी की भी जांच करा लें, क्योंकि अब हम बोरवेल से बहुत पानी निकालते हैं और सारे क्षेत्रों में जो नीचे का पानी आता है वो उतनी अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, जहाँ कहीं क्लोराइड ज़्यादा होगा, जहाँ कहीं सोडियम ज़्यादा होगा, ऐसी मिट्टी और ऐसा पानी आम के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि आम इनके प्रति सहनशीलता नहीं रखता है, बहुत जल्दी ही पत्ते जलने शुरू हो जाएंगे, तो अच्छी बागवानी नहीं हो पाएगी।
1: तो किसान भाइयों, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। और डॉक्टर साहब, आम के पौधों की रोपाई के लिए दूरी जो है वो बहुत मायने रखती है, तो कितनी दूरी होनी चाहिए हर पौधे की?
0: अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमारी पुरानी किस्में थी दशहरी, लंगड़ा, चौसा, जर्दालू, ये सब 8 मीटर 10 मीटर पे लगती थी, कहीं कहीं बागवानों ने 12 मीटर पे भी लगा रखा। लेकिन एक तो अब हमारी जोत का आकार घट रहा है और हमें अधिक उत्पादन चाहिए कम क्षेत्र में, और ऐसी किस्में जैसे आम्रपाली है या पूसा प्रतिभा है, ये किस्में बौनी किस्में कही जाती हैं, इनको आप किचन गार्डन में लगा सकते हैं। और सघन बागवानी में कम से कम 3 मीटर पौध से पौध की दूरी रखें, और अगर आप ऐसे प्रदेश में हैं, ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ नमी थोड़ी कम रहती, बारिश कम होती है, तो आप 3 मीटर कतार से कतार की दूरी, पौध से पौध दूरी कर सकते हैं, अन्यथा आप 4 मीटर और 5 मीटर भी रख सकते हैं, जो कतार से कतार की दूरी है। जैसे गुजरात का जो सूखा वाला क्षेत्र है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, वहाँ लोग 3 मीटर पे भी लगाते हैं और थोड़ी प्रूनिंग करके मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नमी अच्छी है तो बढ़वार तेज होती है, तो यहाँ पर हम किसानों को कहते हैं, अगर आप बहुत उन्नतशील किसान नहीं है कि आप रेगुलर प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप 5x5 मीटर पे लगाइए, हर साल फल आएगा और 20 साल तक इनकी आपस में मिलन नहीं होगा।
1: तो सबके आम के पेड़ों में खाद और उर्वरक और पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, और उसके लिए सही समय क्या होता है?
0: अगर आप नया बाग लगा रहे हैं तो मई के महीने में 1 मीटर गहरा चौड़ा ऐसा गड्ढा खोद लें और उसमें कम से कम 30 से 40 किलो सड़ी गोबर की खाद पहले मिला लें, ऊपर की मिट्टी को अलग करके रखें, फिर बाद में मिट्टी के साथ उसको मिला लें। अगर आपके क्षेत्र में दीमक की समस्या है तो क्लोरोपाइरीफास जैसे रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो उससे बेहतर तरीका है कि आपको रसायन का प्रयोग ना करके अगर आपके पास नीम की खली मिल जाए तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप नीम की खली 500 ग्राम एक गड्ढे में मिला लें, पर्याप्त है, तो कोई दीमक की समस्या नहीं आएगी और कोई भी कीट है वो भी नहीं आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर मिट्टी का पीएच थोड़ा ज़्यादा है तो आप डाइअमोनियम फास्फेट का चुनाव ना करें, फर्टिलाइजर के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट का चुनाव करें, और पहले साल 200 ग्राम मात्रा पर्याप्त है। हालांकि ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए मात्रा अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा जो उर्वरकों का पहले साल ना डालें, वजह यह है कि पौधा भी इतना बड़ा नहीं उसका प्रयोग कर पाएगा। लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर होता है, तो इसीलिए अधिक पीएच वाली ज़मीनों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप नीम की खली डालेंगे उसके 12 से 15 दिन बाद डाल सकते हैं। अमोनियम सल्फेट का चुनाव करें अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो, अगर सामान्य पीएच है तो आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, और पहले साल यूरिया किसी भी कीमत पर आप 100 ग्राम से अधिक मत जाइए। इसको हर साल हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी 20 साल के पौधे की ज़रूरत देखेंगे तो हो सकता है हम कहें आप 2 kg आप वहाँ पर यूरिया डालिए। अगर कई बार अगर पौधा बहुत हल्का है और आपकी मिट्टी अच्छी है तो 50 ग्राम यूरिया ही पर्याप्त है उसके लिए। जब पौधे में बढ़वार हो जाती है तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से हमको विशेष है, इसका एक चार्ट है कि 1 साल से 10 साल तक हम कैसे कितना फर्टिलाइजर डालें।
1: तो ये चार्ट जो है डॉक्टर साहब, क्या ऑनलाइन अवेलेबल होता है?
0: ये ज़्यादातर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा या किसी भी इंस्टीट्यूट

0: जाएंगे, आपको मिलेगा कि ये 10 साल तक कैसे है। यहाँ खास बात है, जहाँ जहाँ सोडियम और क्लोराइड की मात्रा अधिक है, वहाँ पर हम आम की फसल में पोटेशियम क्लोराइड, जो म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से एक फर्टिलाइजर पोटास के लिए प्रयोग होती है, उसका प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि क्लोराइड टॉक्सिसिटी आएगी आपके पौधे में, बहुत छोटे पौधे में ज़्यादा होती है, जैसे पौधा बड़ा हो जाता है तो कम हो जाती है, वहाँ पर हम पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। और इसकी भी मात्रा आप ध्यान रखें, 100 ग्राम से ऊपर आपको नहीं जाना है।
1: तो किसान भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसे नोट कर लें। और डॉक्टर साहब, ये तो रही बात हमारे उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना है, कीट और बीमारियों का भी खास तौर पर हमारे जो नन्हे पौधे होते हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उससे कैसे देख रेख करनी है किसान भाइयों को?
0: आप देखें, जब भी कापरी रंग का नया पत्ता आता है तो आपको किचन गार्डन में बहुत लोगों को तजुर्बा होगा कि, या बाग में जिनके पास, उनको तो तजुर्बा है, आजकल के मौसम में आ रहा है, कोई कीड़ा ऐसा आएगा ऐसा लगेगा जैसे कैंची से काट के चला गया। इसको कहते हैं लीफ कटिंग बीबिल। वो कीड़ा इतना सातिर है कि इसी स्टेज पे काटता है, जैसे ये कापरी रंग से हरा हो जाएगा फिर उसका जो माउथ पार्ट है वो इसको काटने में सक्षम नहीं होगा, जब बिल्कुल कोमल सा होता है उसी समय काटता है उसको। जब भी हम कोई रसायन का प्रयोग करें या इस कीट को नियंत्रण करने का प्रयोग करें तो हमेशा समय का ध्यान रखें। जब नए पत्ते आपको आते दिख गए हैं उसी समय सबसे आसान और सबसे सेफ केमिकल है नीम आयल का, अगर आप प्रयोग कर लें तो उसका असर 8 से 10 दिन तक पत्ते पर रहता है। और इतने दिन में ये कापरी रंग का पत्ता है ये कापरी रंग से हरे में हो जाएगा, फिर ये कीड़ा नुकसान नहीं करेगा। और उसकी मात्रा होगी 3 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। लेकिन ध्यान रखें, अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है, अन्यथा आपके केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, कीड़े की जब बात कर रहे हैं तो आम के फुदके और मिली बग भी बहुत ज्यादा लगते हैं, तो उनसे भी कैसे ध्यान रखा जाए?
0: मिली बग सामान्य रूप से आम में आएगा, आपको जनवरी के बाद आना शुरू होता है और अप्रैल में जाके उसका पीक होता है, और ये नुकसान ज्यादातर फलों को करता है, फूलों को करता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि जो आपका तना है, तना 1 मीटर नीचे से बिल्कुल जमीन के थोड़ा ऊपर से भी, और उसके ऊपर करीब 1 मीटर चौड़ी ऐसी बैंड बना लें, नया प्लास्टिक हो, उसको चारों तरफ से लपेट दें, ऊपर नीचे दोनों हिस्से पे आप हल्का सा ग्रीस होता है उसका प्रयोग करें। ये कीड़ा उड़ता नहीं है, ये कीड़ा जमीन में, इसकी मादा अंडे देती है, वहीं से बड़ा होके ऊपर आएगा, वहाँ जो फल और जो फूल उनको चूस के फिर वापस लौटेगा। सेफ तरीका है और सबसे प्रभावी है। अगर आपने इसको दिसंबर और जनवरी 15 तक कर लिया तो आपका पौधा इन कीड़ों से सुरक्षित रहेगा और इनकी संख्या बढ़ भी नहीं पाएगी।
1: तो क्योंकि और कौन कौन से ऐसे रोग हैं या बीमारियां हैं जो आम के पेड़ों में या नन्हे पौधों में लग सकती हैं?
0: एक आता है मैंगो फ्लोरल मालफॉर्मेशन, एक होता है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन, गुम्मा रोग कहते हैं। छोटा सा पौधा आएगा, ऊपर से सारे पत्ते इकट्ठा से हो जाएंगे, या फूल आएगा तो वो फूल बड़ा नहीं होगा, फल नहीं आएगा, गुम्मा बन जाता है। ये दोनों तब आता है जब हमारा नया पत्ता आता है या फूल आता है, उस समय तापक्रम हमारा रात का 25 डिग्री से नीचे हो जाता है। अच्छा। और दिन का तापक्रम 30 डिग्री से नीचे जाता है। जैसे अभी जो मौसम आने वाला है, नया पत्ता आएगा, देखेंगे उसमें मालफॉर्मेशन काफ़ी आएगा। इसका सबसे बेहतर तरीका है जहाँ आपको दिखाई पड़े इसकी आप प्रूनिंग कर दें, जिसको कटाई छटाई कहते हैं ना, और कटाई छटाई आपको वहाँ से नहीं करना है, जहाँ पे वो गुम्मा बन रहा है वहाँ से 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे से करना है। और जब भी ऐसा करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बॉबिस्टीन है उसका आप थोड़ा सा पेस्ट बना लें और कटे हुए हिस्से पे जरूर लगा दें, ताकि वहाँ से कोई दूसरा इन्फेक्शन ना आए। और इनको इकट्ठा करके खेत से दूर कहीं मिट्टी में नीचे दबा दें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके चलते हमारी उत्तर भारत की जो किस्में हैं, इवन की कुछ जो हाइब्रिड किस्में हैं उनमें भी आता है ये, इसके चलते हमारी उत्पादकता घट जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ आम के पेड़ों में एक साल तो फल आया और अगले साल नहीं आया
0: जी,
1: ये क्या कारण होता है?
0: इसको अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं, और इसका दो कारण है। एक है कि उत्तर भारत में ठंड का मौसम लंबा होता है, जिसके चलते पौधे का पूरा विकास नहीं हो पाता, मतलब जो अभी नए पत्ते आएंगे इनको मैच्योर होने के लिए 3 से 4 महीने चाहिए। दूसरा है कि ये अनुवांशिक गुण है ये, तो वो दशहरी जैसी किस्मों में होता है, और उन्हीं कमी को दूर करने के लिए आम्रपाली, मल्लिका, पूसा अरुणिमा या अंबिका, ये सब किस्में आई है जिसमें अल्टरनेट बियरिंग की समस्या नहीं है और हर साल फल आता है। इसीलिए हम नए बागों के लिए नई किस्मों को सजेस्ट करते हैं, और उनके लिए हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग या सघन बागवानी की रिकमेंडेशन करते हैं, तो आपको फलत अच्छी मिलेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा और हर साल मिलेगा।
1: और डॉक्टर साहब, जो सिंचाई हम बागानों में करते हैं तो उसमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए जिससे कि अच्छा उत्पादन मिल सके?
0: कि सामान्य रूप से हमारे किसान भाई परंपरागत सिंचाई करते हैं, फ्लड इरिगेशन।

0: इरीगेशन करते हैं, कहीं कहीं फरो करते हैं। आजकल जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सघन बागवानी में हम लोग कर रहे हैं वो टपक सिंचाई पद्धति है, जिसको ड्रिप इरीगेशन सिस्टम कहते हैं।
1: हाँ
0: एक सतह पे होता है, दूसरा है अगर आपने पहले से मेड़ बना के उसके ऊपर रोपाई करी है तो वहाँ पे सतह के नीचे भी पाइप चला जाता है, वो सब सरफेस इरीगेशन होता है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा उर्वरकों की सप्लाई का भी होता है, उसकी डोज अलग होती है। उसमें क्या है कि सीधा पानी के साथ ही जो ड्रिप पड़ता है हमारे शरीर में जरूरत पड़ने पे, वैसे ही एग्जैक्टली वैसे नहीं, लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में पानी के साथ सारे पोषक तत्व तो आम के पौधों को जड़ क्षेत्र में ही मिल जाएंगे, तो उससे न्यूट्रिएंट की बचत होती है, पानी की भी बचत होती है, और कुल मिला के अगर दोनों 12 महीने मिल रहा है तो पौधा बहुत अच्छे से वृद्धि विकास करता है और उत्पादन अच्छा आता
1: अधिक
0: है।
1: मिलता है। और डॉक्टर साहब, अंत में किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के लिए क्या बताना चाहेंगे कि कैसे उनको बेहतर उत्पादन और अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है आम के बागानों से?
0: नया बाग है तो सघन बागवानी की तरफ जाएं और आम को सिर्फ आम के मौसम में ना देखें, बाग को बाग को मौसम के अतिरिक्त कि कैसे हमको थोड़ी प्रूनिंग पे जाना है, रसायन का प्रयोग करना है, पत्ते आपके सुरक्षित रहें, गुम्मा रोग अगर आ रहा तो उसको काट के हटाएं, और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें ताकि पोषक तत्व तो पौधों के पास अच्छा रहे, तो इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा।
1: तो किसान भाई बहनों, अधिक उत्पादन के लिए आम के बागानों का सही प्रबंधन विषय पर आज डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से हमारे साथ आए और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अभी हम जानकारी ले रहे थे अधिक उत्पादन के लिए आम के बागों का प्रबंधन, जहां हम एक तरफ अपने किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी देते हैं तो साथ ही साथ सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लोकगीत।

0: मित्रों अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। और यदि मौसम की बात करें, नई दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं आसमान में मुख्य रूप से बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है, क्योंकि जो मौसम का पूर्वानुमान है कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई बहनों के लिए तो ये बहुत ही हितकर है। यदि हम बात करें, वैज्ञानिक परामर्श ही किसान हित में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस मौसम में धान की फसल में ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है
1: और साथ ही इस समय वनस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, और ऐसे में फसल में कीटों की निगरानी करें।
0: बिल्कुल सीमा, और इस मौसम में किसानों को सलाह है कि स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न की वो बुवाई मेंढों पर कर सकते हैं।
1: और साथ ही इस मौसम में किसानों को ये भी सलाह दी जा रही है कि यदि टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी व पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेड़ों पर करें।
0: ये तो रही कृषि सलाह हमारे सभी किसान भाई बहनों को।
1: तो आज का किसान वाणी कार्यक्रम कैसा लगा? हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com पर आप सुझाव और प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही अगर किसी विषय पर आप चर्चा चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं।
0: बिल्कुल मित्रों, समय हो चुका है आपसे अनुमति लेने का। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वास्थ्य चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल। और आइए अब सुनते हैं चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गज़ल चंदन दास की आवाज़ में। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार।

0: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की। सरकार ने 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की और नई दिल्ली महिला डबल्स सेमीफाइनल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 2100 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 106 इकाइयां निर्धारित पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 78 फैक्ट्रियां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वैध संचालन सहमति के बिना ही चल रही थीं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 44 इकाइयों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है, जबकि 33 गैर अनुपालन वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार सहयोग देगी। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम को सकारात्मक सुशासन का एक अच्छा उदाहरण बताया है। उन्होंने परियोजना को समय पर पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए इसकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस कॉरिडोर पर रेलगाड़ियां 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो एक समय देश में अकल्पनीय था। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जो परियोजना शुरू हो उसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे, तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं, जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया।
3: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक

0: में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद तथा सेवा और श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। विशेष लोक अदालत की 16 पीठों के समक्ष 600 से अधिक मामले सूचीबद्ध किए गए थे। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत उत्तर पश्चिम क्षेत्र के प्रशांत विहार में आज मेगा मार्च का आयोजन किया। श्री वाही ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित मार्च में लगभग 2 किलोमीटर चलकर श्रमदान किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस दौरान महापौर प्रवेश वाही ने सड़क किनारे लगे पेड़ों की छटाई करने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने और गड्ढों को भरने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। मार्च के दौरान मच्छर मारने वाली कीटनाशक दवा का भी छिड़काव किया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। श्री वाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। महापौर ने कहा कि स्वच्छता दिल्ली नगर निगम का प्राथमिक कार्य है, लेकिन दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की इस मुहिम में हमें जनता का भी साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाकर और घर से निकलने वाले कूड़े को सही तरीके से पृथक कर तथा कूड़े को कूड़े की गाड़ी में डालने का संकल्प लेकर हम इस मुहिम को सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को स्वच्छ, कूड़ा मुक्त और हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महापौर प्रवेश वाही ने आज उत्तर पश्चिम क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 8 में आयोजित एंटी डेंगू माह जागरूकता कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आने वाले हफ्ते में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी धार्मिक स्थलों में मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग करने के आदेश भी दिए। श्री वाही ने मच्छरों की रोकथाम के लिए और उनसे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए 011-2705-0132 और 011-2705-0133 हेल्पलाइन नंबर जारी किया। महापौर ने कहा कि नागरिक इन नंबरों पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जोन के उपायुक्तों ने एक वार्ड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में नगर निगम ने कहा कि संबंधित अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे और शहर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें विकास की प्राथमिकताओं, असरदार तालमेल और बेहतर सर्विस डिलीवरी जैसे विषय शामिल थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अच्छे कानूनों के लिए अच्छे तथ्य, विश्वसनीय शोध और जमीनी स्तर के प्रमाण आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को ये ज्ञान विधायिकाओं और सरकारों तक पहुंचाने में सक्रिय भागीदार बनना होगा। ये बात विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज फरीदाबाद स्थित मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज में आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है। चाहे

चैनल पेड हो या फिर फ्री टू एयर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिले की टीम ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की है। अभियान के अंतर्गत आर्म्स एक्ट के तहत 29 मामले, विभिन्न आपराधिक और निवारक कार्रवाइयों के अंतर्गत 151 लोगों को तथा आबकारी अधिनियम के मामलों में अवैध शराब के 501 पाउच और लगभग 1800 बोतलें बरामद की हैं। इसके अलावा डकैती और झपटमारी के लिए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये प्रवर्तन अभियान इस महीने की 17 तारीख से 20 तारीख तक चलाया। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने अवैध शराब की आपूर्ति में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 778 क्वार्टर और आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाले 2 वाहन भी बरामद किए हैं। दिल्ली के मधुबन चौक पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्काई वॉक और फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा आउटर रिंग रोड पर 9 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार की जा रही इस परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है और इसे 30 नवम्बर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये स्काई वॉक FOB पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन और रोहिणी जिला न्यायालय के बीच सुरक्षित पैदल संपर्क उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। दिल्ली विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस की छात्राओं ने विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के ऐतिहासिक महत्व और इसकी गहरी लोकतांत्रिक विरासत को करीब से जाना और समझा। दिल्ली विधानसभा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा सार्थक लोकतांत्रिक आउटरीच पहल के जरिए युवाओं की भागीदारी को लगातार मजबूत बना रही है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत पावन माटी कलश वंदन और वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन सोमवार को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स में भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है। आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी को चीन की ली यू शेंगशु और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। और बात मौसम की, राजधानी दिल्ली में आज लोगों को मजभरी गर्मी का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा भी हो सकती है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की। सरकार ने 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की और नई दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कानों में
1: में
0: उल्टी
1: दोनों
0: देखी,
1: चीजें देखी।
0: गूंजती देखी, यकीन खत्म था फिर भी गुमा तो होता
1: वाह
0: रहा,
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
0: यकीन खत्म था
1: फिर
0: फिर
1: भी
0: भी
1: गुमा
0: गुमा तो होता
1: होता रहा।
0: रहा, बहुत अजीज था मेरा, मुझी पे मरता था,
1: बहुत अजीज था
0: बहुत
1: मेरा,
0: अजीज था मेरा,
1: मुझे भी मरता
0: मुझी पे
1: था।
0: मरता था, खबर करी ना मुझे बदगुमा तो होता रहा,
1: वाह वाह वाह
0: खबर करी ना
1: वाह,
0: मुझे
1: बदगुमान तो
0: बदगुमा
1: होता
0: तो
1: रहा।
0: होता रहा, गुजर रही थी मेरी उम्र दिन ब दिन, लेकिन
1: वाह, गुजर रही
0: गुजर
1: थी
0: रही
1: मेरी
0: थी
1: उम्र
0: मेरी उम्र
1: दिन ब
0: दिन
1: दिन
0: ब दिन,
1: बदिन,
0: लेकिन
1: लेकिन
0: मेरा ख्याल अभी भी जवां तो होता रहा,
1: वाह वाह
0: मेरा
1: वाह वाह,
0: ख्याल
1: अभी
0: अभी
1: भी
0: भी
1: जवां
0: जवां तो
1: तो
0: होता
1: होता
0: रहा,
1: रहा।
0: अजब था तर्ज़े अमल देखता रहा मैं भी,
1: वाह, अजब
0: अजब
1: था
0: था
1: तर्ज़े
0: तर्ज़े
1: अमल
0: अमल
1: देखता रहा
0: देखता
1: मैं भी
0: देखता
1: कभी।
0: रहा मैं भी, मिजाज सबका ही बदला बयां तो होता रहा,
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: मख्ता अर्ज कर रहा हूँ,
1: शाद।
0: कभी रहा ही नहीं है ताल्लुके खातिर,
1: कभी
0: कभी
1: रहा
0: रहा
1: ही
0: ही
1: नहीं
0: नहीं
1: है
0: है कभी
1: ताल्लुके
0: रहा ही
1: खातिर,
0: नहीं है
1: ताल्लुके
0: ताल्लुके खातिर,
1: खातिर
0: अजीम जिक्र तुम्हारा वहां तो
1: वहां
0: होता
1: तो होता
0: रहा।
1: रहा।
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: शाद,
0: वाह। और एक गजल और अर्ज है,
1: जी फरमाए।
0: कहाँ से चलते हैं हम और कहाँ निकलते हैं,
1: वाह, कहाँ से
0: कहाँ से
1: चलते
0: चलते
1: हैं
0: हैं
1: और
0: हम
1: कहाँ
0: और
1: निकलते
0: कहाँ
1: हैं।
0: निकलते हैं, हमारे साथ कई कारवां निकलते
1: वाह
0: हैं,
1: बहुत अच्छा है, वाह वाह,
0: हमारे साथ कई
1: कई कारवां
0: कारवां
1: निकलते
0: निकलते हैं,
1: हैं।
0: वो महताब थे या आफ्ताब थे लेकिन, वो
1: माहताब थे
0: महताब
1: या
0: थे या आफ्ताब
1: आफ्ताब
0: थे
1: थे,
0: लेकिन, चिराग फिर भी सरे आसमां निकलते
1: निकलते थे।
0: हैं, अजियतों से गुजरने की ठानते हैं वो, अजियतों से गुजरने
1: गुजरने की
0: की ठानते
1: ठानते
0: हैं
1: हैं
0: वो,
1: वो।
0: तभी तो साथ मेरे मेहरबान निकलते हैं,
1: वाह वाह वाह
0: तभी
1: वाह
0: तो
1: वाह,
0: साथ मेरे
1: मेहरबान
0: मेहरबान
1: निकलते
0: निकलते
1: हैं।
0: हैं, कदम कदम पे कठिन मरहले नजर आए,
1: वाह,
0: कदम कदम पे कठिन मरहले
1: निकल आए
0: नजर आए,
1: नजर आए।
0: सफर की रह में कई इम्तिहान निकलते हैं,
1: वाह
0: और सदाए दिल की नुमाइंदगी मुबारक हो,
1: वाह वाह,
0: शायद
1: सदाए
0: सदाए दिल
1: मुबारक,
0: की
1: वाह
0: नुमाइंदगी
1: मुबारक हो,
0: मुबारक हो, ये रह गुजर भी नहीं है जहाँ निकलते
1: निकलते। वाह
0: हैं।
1: वाह, जनाबे इमरान अजीम साहब आपसे मुखातिब थे, मैं जुल्फकार बाकर गज़ल का मतला हाज़िर कर रहा
0: जी
1: हूँ।
0: फरमाए।
1: पता समात फरमाए, मतला कुछ इस तरह अर्ज़ किया कि कुछ कहूँ आपसे इजाज़त है,
0: कुछ
1: वाह
0: कहूँ
1: क्या
0: आपसे
1: कहना,
0: इजाज़त है,
1: अच्छा
0: कुछ
1: कहता
0: कहूँ
1: है, कुछ
0: आपसे
1: कहूँ
0: इजाज़त है, आपसे
1: आपसे इजाज़त है, फिर मुझे आपकी ज़रूरत है। वाह
0: वाह वाह
1: वाह,
0: वाह
1: कलमाती
0: वाह
1: अंदाज़ है, वाह।
0: वाह वाह
1: कुछ
0: वाह।
1: कहूँ आपसे इजाज़त है, फिर मुझे आपकी
0: आखिर
1: ज़रूरत
0: जरूरत की
1: है।
0: जरूरत,
1: शेर देखें कि अपना दावा है वो हमारे हैं,
0: अपना
1: क्या
0: दावा है
1: कहें,
0: वो
1: दावा
0: हमारे
1: है,
0: हैं
1: अपना
0: वो
1: दावा
0: हमारे हैं।
1: है वो हमारे हैं, हमसे भी क्या उन्हें मोहब्बत है।
0: वाह क्या कहना,
1: अपना दावा है
0: वो
1: वो
0: हमारे
1: हमारे
0: हैं।
1: हैं,
0: हाँ,
1: हमसे भी क्या उन्हें मोहब्बत
0: मोहब्बत है,
1: है। शेर देखें कि नींद उसने उड़ाई है मेरी,
0: नींद उसने
1: नींद
0: उड़ाई है
1: उसने
0: मेरी,
1: उड़ाई है
0: नींद
1: मेरी, उसने उड़ाई है मेरी, वो बला की जो खूबसूरत है।
0: क्या
1: वाह
0: कहना,
1: वाह, नींद उसने उड़ाई है मेरी,
0: वो बला की
1: वो
0: जो
1: बला की जो
0: खूबसूरत है,
1: खूबसूरत है। शेर देखें कि उसका महफिल में गैर की जाना,
0: उसका महफिल में गैर की
1: उसका
0: जाना,
1: महफिल में
0: जाना
1: गैर की जाना, मुझको शिकवा नहीं शिकायत है।
0: शिकायत है। हाँ अच्छा है,
1: उसका
0: वाह
1: महफिल
0: वाह
1: में
0: वाह,
1: गैर की जाना, मुझको
0: शिकवा
1: शिकवा
0: नहीं
1: नहीं
0: शिकायत है,
1: शिकायत
0: शिकायत है, वाह
1: शिकायत
0: वाह
1: है।
0: वाह।
1: और आज भी कह गए वो दीवाना,
0: आज भी कह
1: आज
0: गए वो
1: भी कह गए वो
0: दीवाना,
1: आज भी कह गए वो दीवाना, खैर जाने दो उनकी आदत
0: उनकी
1: है।
0: अच्छा है, बहुत
1: क्या
0: अच्छा, क्या
1: कहना, जरा नवाजी,
0: अच्छा है, बहुत
1: वाह
0: अच्छा, वाह
1: वाह
0: वाह वाह
1: वाह,
0: वाह वाह,
1: मोहब्बत आपकी के आज भी कह गए वो दीवाना,
0: ये रोज़मर्रा, वाह
1: खैर जाने
0: वाह
1: दो उनकी
0: उनकी
1: आदत
0: आदत
1: है।
0: उनकी आदत,
1: और गुफ्तगू आपने सुनी उसकी,
0: वाह गुफ्तगू आपने
1: गुफ्तगू
0: सुनी उसकी,
1: आपने सुनी उसकी, उसके लहजे में क्या हलावत है।
0: क्या
1: क्या
0: कहना, वाह वाह
1: गुफ्तगू
0: वाह,
1: आपने सुनी उसकी,
0: उसकी लहजे, उसके लहजे में
1: उसके
0: क्या
1: लहजे में
0: हलावत
1: क्या
0: है,
1: हलावत
0: हलावत
1: है।
0: है,
1: मक्ता देखें कि दोस्त जैसा भी है मेरा वाकिफ,
0: बहुत
2: दोस्त
0: अच्छा,
2: जैसा भी है
1: दोस्त
2: मेरा
1: जैसा भी है मेरा, बाकिर
2: बाकी।
1: बात अच्छी है पाक तीनत है।
0: वाह अच्छा, क्या
1: दोस्त जैसा
0: कहना।
1: भी है
0: हाँ
1: मेरा, बाकिर बात अच्छी है
2: पाक तीनत
1: पाक
2: है,
1: तीनत है। कुछ कहूँ आपसे इजाज़त है,
0: बहुत अच्छा,
1: फिर
0: क्या
1: मुझे
0: कहना।
1: आपकी ज़रूरत है।
0: वाह क्या कहना
1: और देखिए एक और गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ।
0: जी, फरमाए
2: इस
0: सर।
2: तरह
1: अर्ज किया कि उल्फत में उनकी वैसे गिरफ्तार भी नहीं,
0: वाह,
2: वाह
0: उल्फत
2: फिक्र
0: में
2: नहीं ना,
1: उल्फत में उनकी वैसे
0: गिरफ्तार भी
1: गिरफ्तार
0: नहीं,
1: भी नहीं, लेकिन ये कब कहा है मुझे प्यार भी
2: प्यार भी
1: नहीं।
2: नहीं।
0: वाह
2: अच्छा
1: मोहब्बत आपकी के
0: अच्छा
1: उल्फत
0: निकला,
1: में उनकी वैसे गिरफ्तार
2: गिरफ्तार
1: भी
2: भी नहीं,
1: नहीं,
0: ये क्या
1: लेकिन
0: कहना।
1: ये कब
0: लेकिन
1: कहा है मुझे प्यार
0: प्यार
1: भी
0: भी
1: नहीं,
0: नहीं, क्या कहना।
1: लेकिन ये कब कहा है मुझे प्यार भी नहीं। और वो भी था एक ज़माना, मसाहिब थे बेशुमार,
0: क्या
2: बहुत अच्छे,
0: कहना।
2: वो भी
0: वाह
2: था एक
0: वाह,
2: ज़माना मसाहिब थे
1: वो भी
2: बेशुमार,
1: था एक ज़माना
0: बहुत
1: मसाहिब
0: अच्छा,
1: थे बेशुमार, और आजकल तो यारो मददगार भी
0: मददगार
1: नहीं।
0: नहीं। वाह
1: ज़रा
0: कहना, वाह
1: नवाजी।
0: वाह वाह वाह,
1: वो भी था एक ज़माना मसाहिब थे बेशुमार, और आजकल तो यारो मददगार
0: मददगार
1: भी
0: भी नहीं।
1: नहीं। और शेर देखें कि ईमान बेचने को हैं तैयार जितने लोग।
0: ईमान बेचने
1: एक
0: को
1: तलख
0: हैं तैयार
1: हकीकत पेश
0: जितने
1: कर रहा हूँ कि
0: लोग,
1: ईमान
0: बहुत अच्छा,
1: बेचने को हैं
2: तैयार
1: तैयार जितने लोग, हद हो गई है इतने खरीदार भी
2: खरीदार भी
1: नहीं।
2: नहीं।
0: क्या
2: वाह
0: कहना,
2: क्या
0: क्या
2: शुक्रिया, वाह
1: मोहब्बत
2: वाह वाह वाह,
1: आपकी।
2: बहुत अच्छा, वाह वाह
1: ईमान बेचने को हैं तैयार जितने लोग,
0: क्या
1: हद
0: कहना,
1: हो गई है इतने खरीदार
2: खरीदार,
1: भी
2: बहुत
1: नहीं।
2: अच्छा है, वाह
1: ज़रा नवाजी। हद
2: वाह
1: हो गई है इतने खरीदार भी नहीं। शेर देखें कि मरते थे लोग जिसकी झलक के लिए कभी,
0: मरते थे लोग जिसकी झलक के लिए
1: मरते थे
0: कभी,
1: लोग जिसकी झलक के लिए कभी, हैरत है आज तालिबे दीदार
0: दीदार
1: भी
0: भी
1: नहीं।
0: नहीं। क्या कहना,
1: हैरत है आज
0: तालिबे
1: तालिबे
0: दीदार,
1: दीदार भी नहीं।
0: क्या कहना।
1: और ये बात सच है उनसे मोहब्बत है आज भी,
0: मेरे
2: ये बात सच है
1: ये बात सच है
0: उनसे मोहब्बत है,
1: उनसे
0: अच्छा,
1: मोहब्बत है आज भी। वो हैं किसी के उनसे सरोकार भी नहीं,
0: क्या कहना, क्या
1: वो
0: कहना,
1: हैं किसी के उनसे
0: उनसे
1: सरोकार भी
0: सरोकार।
1: नहीं।
0: वाह
1: मक्ता हाजिर खिदमत है कि
0: अच्छा,
1: बाकिर की आंखें सुर्ख ही रहती हैं किस लिए,
0: बाकर की आंखें सुर्खी
1: बाकिर
0: रहती
1: की
0: हैं, सुर्खी
1: आंखें
0: रहती
1: सुर्ख
2: हैं।
1: ही रहती हैं किस लिए, मैं जानता हूँ उसको वो मैखार भी नहीं,
0: वाह अच्छा,
2: अच्छा
0: बहुत
2: है,
0: अच्छा,
1: मैं
0: बहुत
1: जानता
0: अच्छा,
1: हूँ उसको वो
0: मैखार
1: मैखार
0: भी
1: भी
0: नहीं,
1: नहीं। उल्फत में उनकी वैसे गिरफ्तार भी नहीं,
0: बहुत अच्छा है,
1: लेकिन ये कब कहा है मुझे प्यार भी नहीं। और
0: वाह
1: एक गज़ल हाजिर कर रहा हूँ,
0: इरशाद,
1: देखिए
2: बताइए
1: मतलब अर्ज किया कि हर कस को तो ये बात बताई नहीं जाती, हर कस को तो
2: हर कस को तो ये बात
1: ये
2: बताई नहीं
1: बात
0: जाती, बताई
1: बताई
0: नहीं
1: नहीं
0: जाती,
1: जाती, इस दिल से तेरी याद मिटाई नहीं
2: मिटाई
1: जाती,
0: नहीं जाती,
1: इस दिल से तेरी याद
0: मिटाई नहीं जाती।
1: मिटाई नहीं जाती। और क्या उसने बनाया है मुझे बातें बनाकर, शेर
2: क्या उसने
1: देखें
0: बनाया
1: बनाकर
0: मुझे
1: बनाया
0: बातें
1: है, क्या
2: बातें
1: उसने
2: बनाकर,
1: बनाया है
0: मुझे
1: मुझे
2: बातें
1: बातें
2: बनाकर,
1: बनाकर, मुझसे तो कोई बात बनाई नहीं जाती।
0: क्या कहना, क्या कहना,
2: क्या तकरार
1: क्या
2: लिखती
1: उसने
2: हैं आप।
1: बनाया है मुझे बातें बनाकर,
0: वाह वाह
1: मुझसे
0: वाह
1: तो
0: वाह,
1: कोई बात बनाई नहीं जाती। और महफूज है जो दिल के निहां खाने में अब तक,
2: महफूज है,
1: महफूज है जो दिल के निहां खाने में अब तक, वो जाने तमन्ना तो भुलाई नहीं
0: भुलाई नहीं जाती, क्या
1: जाती,
0: कहना,
1: वो जाने तमन्ना तो भुलाई
0: भुलाई
1: नहीं
0: नहीं जाती।
1: जाती। और वैसे तो बहुत कस्में थीं वादे थे मगर क्यों,
0: वैसे तो बहुत
2: वैसे
0: कस्मत
2: तो
0: थी,
2: बहुत
0: वादे थे
1: वैसे तो बहुत कस्में थीं वादे थे
0: मगर
1: मगर क्यों,
0: क्यों,
1: अब रस्में वफा उनसे निभाई
2: निभाई
1: नहीं
2: नहीं। बहुत
1: जाती,
0: अच्छा, वाह
1: अब रस्में वफा उनसे निभाई नहीं जाती। अब माना के खड़े हम भी हैं सरहद पे जुनू की, शेर देखें हसन
0: बहुत
1: साहब,
0: अच्छा है,
1: माना के खड़े हम भी हैं सरहद
0: सरहद पे
1: पे
0: जुनू
1: जुनू
0: की,
1: की,
0: क्या
1: हमसे
0: कहना,
1: तो मगर खाक उड़ाई नहीं
0: उड़ाई।
1: जाती।
0: वाह
2: वाह
0: बहुत अच्छा, बहुत
2: वाह
0: अच्छा,
2: वाह,
1: माना के खड़े हम भी हैं सरहद पर जुनू की,
0: बहुत अच्छा है,
1: हमसे तो मगर खाक
2: खाक
1: उड़ाई
2: उड़ाई नहीं
1: नहीं
0: जाती।
1: जाती। और ये कौन पसे पर्दा है मसरूफ़े शरारत,
0: ये कौन पसे
2: पसे
0: पर्दा है
1: पर्दा है
0: मसरूफ़े
1: कौन पसे
2: शरारत,
1: पर्दा है मसरूफ़े शरारत, यूं ही तो कहीं आग लगाई
2: लगाई
1: नहीं जाती,
0: नहीं, बहुत
1: ये कौन पसे पर्दा है मसरूफ़े शरारत, यूं
0: अच्छा
1: ही
0: है,
1: तो कहीं आग लगाई नहीं जाती। और आ जाओ के घर के दरो दीवार हैं सुने,
0: हाँ अच्छा है,
2: आ
0: आ
1: जाओ
0: जाओ
1: के
0: कि घर के
1: घर
0: दो
1: के
0: दीवार हैं
1: दरो
0: सुने,
1: दीवार हैं सुने, तन्हाई में अब जीस्त बिताई नहीं
2: बिताई
1: जाती,
0: बहुत
1: तन्हाई
0: अच्छा है,
1: में अब जीस्त
0: बिताई
1: बिताई
0: नहीं
1: नहीं
0: जाती,
1: जाती।
0: नहीं।
1: मक्ता देखें, और कहते हैं जिसे दौलत गम دیکھ لو باقر

0: कहते
1: लड़की
0: हैं,
1: जैसी
0: जिसे
1: लगती
0: दौलते गम
1: देख
0: देख
1: लो
0: लो बाकिर,
1: बाकी।
0: आंखों से छलकती है छुपाई नहीं जाती।
1: क्या
0: बहुत
1: कहने,
0: अच्छा,
1: क्या कहने
0: जरा
1: भाई।
0: नवाजी। अब मैं बहुत ही अदब से गुजारिश गुजार हूँ जनाब जमाल अब्बास फहमी की खिदमत में, वो अपना कलाम पेश करें।
2: शुक्रिया जनाब। गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ
0: जी
2: कि
0: प्रसाद,
2: लबे खामोश से इजहार भी हो सकता है,
0: क्या कहना भाई।
1: वाह,
2: लबे खामोश से
1: इधार भी हो सकता है,
2: इजहार
1: क्या
2: भी हो सकता है, जो है मजबूर वो मुख्तार भी हो सकता
1: कहना भाई,
2: है।
1: वाह क्या
0: बहुत
1: कहना।
0: अच्छा।
2: ये जमाना ही अजब है कि जरा ध्यान रहे, ये
0: हाँ वाह, ये
1: जमाना ही अजब है कि
2: जमाना ही अजब है कि
1: जरा
2: जरा
1: ध्यान
2: ध्यान
1: रहे।
2: रहे। तेरा गमखार अदाकार भी हो सकता
1: वाह बहुत
2: है,
1: अच्छा है, बहुत अच्छा
2: तेरा
1: है, वाह।
2: गमखार
1: अदाकार
2: अदाकार
1: भी
2: भी
1: हो
2: हो
1: सकता
2: सकता है,
1: है।
2: जिसने कल जान बचाई थी तुम्हारी भाई,
0: आहा,
1: वाह।
0: जिसने
2: जिसने कल जान बचाई थी
1: तुम्हारी
2: तुम्हारी
1: भाई
2: भाई, कल को जान लेने पर तैयार भी
0: भी
2: हो
0: हो
2: सकता
1: सकता है,
2: है,
0: वाह
2: कल
0: हो
2: को
0: सकता
2: जान
1: है,
2: लेने पे तैयार भी हो
0: हो
2: सकता
1: सकता
2: है।
1: है।
2: एक और मुख्तसर सी गज़ल के अशआर
1: जी
2: हाजिर करता
1: फरमाए।
2: हूँ कि गोयाई का एक ऐसा हुनर छोड़ जाऊंगा,
0: क्या कहने,
2: ऐसा
0: क्या
2: हुनर छोड़
1: कहने,
2: जाऊंगा, गोयाई का
1: एक ऐसा
2: एक
1: हुनर
2: ऐसा हुनर
0: छोड़
2: छोड़
0: जाऊंगा,
2: जाऊंगा, नेजे पे बोलता हुआ सर
0: सर
2: छोड़
1: छोड़ जाऊंगा।
2: जाऊंगा,
0: वाह
2: वाह।
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा,
2: नेजे पे बोलता हुआ सर छोड़
0: सर छोड़
2: जाऊंगा, और शेर
0: जाऊंगा।
2: मुलादा कीजिए कि तकमीले जात के लिए तरसेगा उम्र भर, तकमीले जात के
0: तरसे
2: लिए
0: का उम्र भर,
2: तरसेगा उम्र भर,
0: तरसे
2: तरसेगा उम्र भर, मैं
0: का
2: जाते जाते इतनी कसर छोड़ जाऊंगा,
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
2: मैं जाते जाते इतनी कसर
1: इतनी
2: छोड़
0: कसर, बहुत
2: जाऊंगा,
0: अच्छा, बहुत
2: और
0: अच्छा,
2: मेरे ही जाविये से वो देखेगा कायनात,
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है,
2: मेरे ही जाविये से
0: वो
2: वो
0: देखेगा
2: देखेगा
1: कायनात।
2: कायनात, मैं उसके पास अपनी नजर छोड़
0: वाह, अरे
2: जाऊंगा,
0: वाह वाह वाह,
2: मैं
0: बहुत
2: उसके
0: अच्छा है,
2: पास अपनी
0: अपनी
2: नजर
0: नजर
2: छोड़
0: छोड़ जाऊंगा
2: जाऊंगा। और
0: जरा।
2: नसीहती शेर मुलाहजा कीजिए कि सदमे से एक बाप ने दुनिया ही छोड़ दी,
0: वाह वाह,
2: सदमे से
0: एक बाप
2: एक
0: ने
2: बाप ने दुनिया ही
1: दुनिया ही
2: छोड़
1: छोड़
2: दी,
1: दी।
2: बेटे ने कह दिया था कि घर छोड़
0: वाह क्या कहने,
2: जाऊंगा,
0: क्या कहने, बहुत
2: बेटे ने कह
0: वाह,
2: दिया था कि
0: इतने
2: घर
0: घर
2: छोड़
0: छोड़ जाऊंगा।
2: जाऊंगा।
0: अच्छा
2: और एक गज़ल के कुछ और अशआर हाजिर करता हूँ कि तुम्हारी बात न माने हराम थोड़ी है,
0: वाह, तुम्हारी
2: तुम्हारी बात
1: बात
2: न
0: ना
2: माने
0: हराम थोड़ी है,
2: हराम थोड़ी है, हमारा दिल है किसी का गुलाम
0: हम
2: थोड़ी
0: गुलाम,
2: है,
1: क्या कहने, क्या अच्छा
2: वाह
1: मित्र है, बहुत अच्छा है,
2: हमारा
0: वाह,
2: दिल है
0: किसी का
2: किसी
0: गुलाम
2: का
0: थोड़ी
2: किसी
0: है
2: का
0: भाई,
2: गुलाम थोड़ी है। और शेर
0: अच्छा
2: मुलाहजा
0: लग गया,
2: कीजिए,
0: वाह।
2: जो तुझको देख के गर्दन झुकी है लोगों की,
1: जो तुझको देख के
2: जो
1: गर्दन
2: तुझको
0: झुकी
2: देख
0: है,
2: के
0: गर्दन झुकी है
2: गर्दन
0: लोगों
2: झुकी
0: की,
2: है लोगों की, सितम का खौफ है, ये एहतराम
0: एहतराम थोड़ी
2: थोड़ी
0: है,
2: है,
0: बहुत
2: अच्छा
0: अच्छा, बहुत
2: अच्छा
0: अच्छा
2: है,
0: बहुत अच्छा,
2: सितम का खौफ
0: बहुत अच्छा,
2: है,
0: बहुत
2: ये
0: अच्छा,
2: एहतराम थोड़ी है।
0: वाह
2: और जरा सी बात पे इज्जत उछाल देते हैं,
0: वाह,
2: जरा सी बात पे
0: इज्जत उछाल देते
2: इज्जत
0: हैं,
2: उछाल देते हैं, तुम्हारा होगा हमारा ये काम थोड़ी
0: क्या कहने,
2: है,
0: बहुत अच्छा, बहुत
2: तुम्हारा
0: अच्छा,
2: होगा
0: तुम्हारा ये
2: हमारा
0: काम
2: ये
0: थोड़ी
2: काम थोड़ी है, इधर उधर से ही लेते हैं खैरियत उनकी,
0: है,
2: इधर
0: बहुत
2: उधर
0: अच्छा,
2: से ही लेते हैं खैरियत
0: खैरियत
2: उनकी,
0: उनकी
2: हमारा उनसे सलामो कलाम थोड़ी
0: थोड़ी है, क्या
2: है,
0: कहने, क्या कहने, वाह
2: हमारा
0: वाह
2: उनसे सलामो कलाम थोड़ी
0: वाह
2: है,
0: वाह,
2: कई दिनों से नसीमे सहर नहीं आई,
0: कई दिनों से
2: कई
0: नसीमें
2: दिनों
0: सर,
2: से नसीमे सहर नहीं आई, कई दिनों से वो महवे खराम थोड़ी
0: वाह
2: है,
0: क्या कहने,
2: कई दिनों से वो महवे खराम थोड़ी
0: थोड़ी
2: है। और
0: है,
2: से देखे कि तुम्हारे पास जरा जी बहल सजावे है,
0: क्या है, वाह,
2: तुम्हारे पास
0: जरा जी
2: जरा
0: बहल
2: जी बहल
0: सजावे,
2: सजावे है, बस आ गए हैं कोई खास काम
0: काम थोड़ी
2: थोड़ी
0: है, क्या
2: है,
0: कहने, बहुत
2: वाह
0: अच्छा,
2: वाह,
0: बहुत
2: बस आ
0: अच्छा,
2: गए हैं
0: कोई खास
2: कोई
0: काम
2: खास
0: थोड़ी,
2: काम
0: क्या अच्छी
2: थोड़ी
0: तमन्ना आ
2: है,
0: रही, वाह वाह
2: और कोई
0: वाह,
2: सुरूर बचा ही नहीं है जीने में,
0: हाँ
2: कोई सुरूर
0: बचाई नहीं
2: बचा
0: जीने
2: ही
0: में,
2: नहीं
0: वाह
2: है जीने में, ये सादा पान है इसमें क़िवाम थोड़ी है, ये सादा
0: वाह,
2: पान है इसमें क़िवाम
0: इत्तेमाम
2: थोड़ी
0: थोड़ी
2: है।
0: है,
2: और इजाज़त हो तो ये गज़ल के कुछ और अशआर हाजिर करता
0: जाने
2: हूँ। जाने क्या दस्ते कदा चाहता है,
0: क्या कदा चाहता है,
2: जाने क्या दस्ते कदा चाहता
0: चाहता
2: है, रोज़ एक फूल नया चाहता
0: वाह
2: है,
0: क्या कहने,
2: रोज़ एक फूल नया चाहता है, ख़ार भी मश्क़े सितम की खातिर,
0: वाह,
2: ख़ार भी
0: मश्के सितम
2: मश्क़े
0: की,
2: सितम की खातिर, नए फूलों की कबा चाहता
0: बहुत
2: है,
0: अच्छा है, क्या
2: नए
0: कहने,
2: फूलों की कबा चाहता है, कैसा मकतूल है अपने हक़ में, लबे कातिल से दुआ चाहता
0: वाह
2: है,
0: क्या कहने, वाह
2: लबे कातिल से दुआ
0: वाह
2: चाहता है,
0: वाह,
2: कितना मासूम है कातिल मेरा,

0: मुझसे बख्शिश की दुआ चाहता है, उससे बख्शिश दुआ चाहता है, उससे भी पूछते हो दीन धर्म, उससे भी पूछते हो दीन धर्म, जो कि भूखा है गिजा चाहता है,
1: क्या
0: जो कि भूखा है गिजा
1: बहुत
0: चाहता
1: अच्छा
0: है, जो कि भूखा है गिजा चाहता है।
1: जनाबे जमाल अब्बास फहमी साहब आपसे मुखातिब था। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब हसन फतेहपुरी साहब से। जनाबे हसन फतेहपुरी साहब,
2: गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ, मौलाना
0: जी
2: फरमाए।
0: अता
2: अच्छा, खिजां के साए में गुलशन है, क्या किया
1: वाह,
2: जाए।
0: खिजां के साए में गुलशन
1: गुलशन
0: है,
1: है, क्या
0: क्या
1: किया
0: किया
1: जाए।
2: खिजां के साए में गुलशन है, क्या किया जाए।

0: दिलो दमाग में उलझन है,
1: क्या किया
0: जाए। शेर मुरादर फरमाए, करीम तेरी नवाजिश का शुक्रिया, लेकिन
1: करीम तेरी
0: करीम

0: चैन ब्रदर फरमाए, कभी मैं जान से ज़ियादाज़ीज़ था जिसको,
1: कभी मैं जान से

0: को आठ खेलियों की सूझी
1: वाह क्या है मिसाल,
0: है,
1: वाह वाह
0: नमस्ते।
1: वाह, अटखेलियों
0: वहीं पे बर्क को अठ
1: की लियों की सूझी।
0: खेलियों की सूझी है, जहां पे
1: नशे मन
0: मेरा
1: है, नशे मन है,
0: नशे
1: वाह
0: मन
1: वाह वाह,
0: है।
1: क्या किया
0: क्या
1: आपने,
0: किया
1: क्या किया, वाह
0: जाए,
1: वाह
0: शेर
1: वाह,
0: मुरादा फरमाए,
1: क्या
0: वो रू बरू थे मगर गुल के ले लिए
1: वाह,
0: बोसे,
1: गुरु थे।
0: वो रू बरू थे।

0: बन है
1: किया
0: क्या
1: जाए।
0: किया
1: वाह वाह
0: जाए,
1: वाह,
0: बस
1: बहुत अच्छे,
0: इतनी बात
1: वाह वाह वाह,
0: पे अर बन है
1: क्या किया जाए।
0: हसन।

0: तू ही बदजन है,
1: क्या
0: किया
1: वाह
0: जाए। यादव तो है गजल के शेर मुलादा फरमाया, और के मेरी हयात का हर लम्हा राज रहने दे, मेरी हयात का हर लम्हा
1: राज रहने दे,
0: खुशी नहीं मेरे गम का जवाज
1: रहने दे,
0: रहने दे, खुशी नहीं मेरे गम का जवाज रहने दे। शेर सुने कि खुशी के बाद जो गम आएगा तो दुख देगा, खुशी के बाद जो गम आएगा तो दुख देगा, खुशी न दे मुझे बंदा नवाज रहने दे, खुशी न दे मुझे बंदा नवाज रहने दे। शेर सुने कि वो जिसमें खौफ तो शामिल हो और खुलूस न हो,
2: अच्छा
0: वो जिसमें खौफ तो शामिल हो और खुलूस न हो, खुदा के वास्ते ऐसी नमाज
1: रहने
0: दे, खुदा के वास्ते ऐसी नमाज रहने दे। शेर बतौर खास देखें कि ये तजुर्बात बहुत काम आएंगे आगे, ये तजुर्बात बहुत काम आएंगे आगे, मेरे सफर में नशेब व फराज रहने दे, मेरे सफर में नशेब व फराज रहने दे। और ये सख्त सख्त मजामीन किस लिए है दोस्त, ये सख्त सख्त मजामीन किस लिए है दोस्त, गजल में कुछ अभी सोजो गुदाज रहने दे। और गजल का मकता मुलादा फरमाए कि हसन ये शाम को सूरज भी डूब जाता है, हसन ये शाम को सूरज भी डूब जाता है, बुलंदियों पे न कर इतना नाज रहने दे, बुलंदियों पे न कर इतना नाज रहने दे। बहुत शुक्रिया नवादिश,
3: बहुत खूब। आकाशवाणी के आज के मुशायर में जिन शोरा इकराम ने शिरकत फरमाई उसमें मोहतरम जनाब इमरान अजीम साहब, मोहतरम जनाब जमाल अब्बास फहमी साहब, और मोहतरम जनाब हसन फतेहपुरी साहब और खाकसार ज़ुल्फ़िकार बाकर ने इस खूबसूरत मुशायरे को अपने कलामत बलागत निज़ाम से चार चांद लगाए। ये मुशायरा अब यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। बहुत शुक्रिया।
4: समईन अभी आप मुशायरे से महजूज हो रहे थे, निज़ामत की फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे सैयद ज़ुल्फ़िकार बाकर। इसी के साथ अब मुझे यानी नगमा को इजाज़त दीजिए। तरतीब व पेशकश इंतज़ार सैफ़ी की थी। खुदा हाफिज़।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर अब प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम।
1: वेलकम टू सऊदी अरेबिया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने विशेष कार्यक्रम सुना और आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी रूपरेखा बता दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे देश और दुनिया की खबरें समाचार संध्या में। ठीक 9 बजे आप सुन पाएंगे इवनिंग न्यूज़ और 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का।

ठीक 10 बजे समय होगा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का, जिसमें आप सुनेंगे आज कर्नाटक की संगीत, और इसमें आप सुनेंगे श्रेयस नारायण को। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस फरमाइशी कार्यक्रम में आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। ईमेल करने के लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर अपनी फरमाइश। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहाँ तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुँचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहाँ हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
1: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
3: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतरधार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉक्टर सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉक्टर सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
2: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारू भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस

0: हल करने के लिए आलसता की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी सरबराही बीएसएफ के साबिक डायरेक्टर और कौमी सलामती के नायब मुशीर राबताकार पंकज सिंह करेंगे। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क की मशरकी सरहद से मुत्तसिल हिस्से में सिक्योरिटी से मुतालिक बंदोबस्त के जायजे के लिए एक मीटिंग भी की, जिसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नेक भी कहा जाता है, यहां सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने पर खासतौर से तवज्जो मरकूज की गई। जनाब शाह ने रियासत के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन सिलीगुड़ी के मजाफात में सुकना में मगरबी बंगाल के सीनियर अहदेदारान और मरकजी सिक्योरिटी अफवाज के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सरहद पर निगरानी को मुस्तहकम करने और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस, खुफिया एजेंसियों, रियासती पुलिस और इंतजामिया के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने और मुजवजा से रुखी सिक्योरिटी ग्रिड की खातिर तरीक़ाकार तैयार करने पर खसूसी बातचीत हुई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी होने चाहिए। आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स आलमी लीडर्स फोरम में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के रिश्ते के फरोग के लिए इसे बाहमी मफाद की कसौटी पर खरा उतरना होता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ मस्बत, तामीरी और दूरंदेशी पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, जिसमें एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखा जाए। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान दुनिया का एक अलग ही तरह का मुल्क है, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जो हमसाया मुल्क पर हमला करने और दबाव डालने के लिए दहशतगर्दी को इस कदर मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल करता हो। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज यूनान के अपने हम मनसब जॉर्जियोस गेरापेट्रिट से टेलीफोन पर बात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तरफ़ैन ने मौजूदा जुग्राफियाई और सियासी वाक़यात पर तबादला ख्याल किया और रबते में रहने से इत्तेफाक़ किया। ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर से मुतालिक वुज़रा के एलामिये को इख्तियार किए जाने के साथ ही आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स ममालिक के नौजवानों के उमूर के वुज़रा की मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई। इस मीटिंग में ब्रिक्स ममालिक के दरमियान नौजवानों के इश्तराक के सिलसिले में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और तालीम, हुनरमंदी, एंटरप्रेन्योरशिप, इख्तरा और समाजी तरक्की में नौजवान अफराद की खातिर इम्कानात में वसअत पैदा करने के तौर तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका एलामिये में तालीम, तरबियत, हुनरमंदी, साइंस और टेक्नोलॉजी, सेहत और खेल, माहौलियात और पायदारी, समाजी और सकाफती शिरकत, रजाकाराना तौर पर काम करने, गरीबी को कम करने, बैन अकायद बातचीत और नौजवानों की शमूलियत जैसे अहम शोबों का अहाता किया गया। मीटिंग की सदारत करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि नौजवानों को मुस्तकबिल की को समत देने में शराकतदार बनना चाहिए। विकसित भारत 2047 के लिए भारत के नज़रिए का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस विजन को हकीकत की शक्ल देने में मदद करने की खातिर ऐसे 1,00,000 नौजवान रहनुमाओं को तैयार करने पर जोर दिया है जिनका कोई सियासी पसे मंजर ना हो। इस मौके पर डॉक्टर मांडविया ने जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें कीं ताकि नौजवानों के उमूर और खेल, खासतौर से हुनरमंदी, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल राबते और नौजवानों के तबादले से मुतालिक प्रोग्रामों में इश्तराक को मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग ब्रिक्स ममालिक के दरमियान नौजवानों के इश्तराक और शराकत दारियों की जानिब एक अहम कदम भी साबित हुई। उड़ीसा में एक मरतबा फिर दूर दूर तक बारिश होने का इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में सैलाब का पानी अब भी पूरी तरह कम नहीं हुआ है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में रियासत भर में बारिश की पेशगोई की है और शिमाली उड़ीसा के हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। एक बार फिर बारिश की पेशगोई से सैलाब से मुतासर अजला में तशवीश बढ़ गई है, जहां 13,00,000 से ज़्यादा अफराद पहले ही सैलाब से मुतासर हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: खलीज बंगाल में एक बार फिर मौसम में तब्दीली के पेश नज़र बारिश में इजाफा होने का इम्कान है और उड़ीसा में फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। IMD भुवनेश्वर ने मुख्तलिफ अजला में कई मकामात पर हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है।

0: झज्जर, मयूरभंज, कालाहांडी और नबरंगपुर में शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट, जबकि इस माह की 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान सैलाब की सूरत हाल रफ्तार रफ्तार बेहतर हो रही है, लेकिन शुमाली उड़ीसा में चैलेंज बरकरार है। सात अजला में 13 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हैं, जबकि 4 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचाया गया है। राहत बचाव और बाजाबादकारी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह पहल के तहत मुनक्किदा 3 रोज़ा खसूसी लोक अदालत के पहले दिन 400 से ज़्यादा केस निपटाए। इनमें शादी ब्याह और जायदाद के तनाज़ियात, मोटर गाड़ियों के हादसों से मुतालिक दावे, ज़मीन तहवील में लिए जाने, मुआवजे के मामलात, टैक्स तनाज़ियात और अदालत आलिया में ज़ेर इल्तवा सर्विस और लेबर केस शामिल हैं। खसूसी लोक अदालत की कार्रवाई कल तक जारी रहेगी। सरकार ने एक सरमायाकारी स्कीम को प्रमोट करने से मुतालिक ऑनलाइन सर्कुलेट होने वाले मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के एक फर्जी वीडियो को खारिज कर दिया है। छेड़छाड़ करके बनाए गए इस वीडियो में लोगों से 22,000 रुपये की इब्तदाई सरमायाकारी के साथ हर हफ्ते 5.5 लाख रुपये की यकीनी आमदनी का वादा किया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के हकायक का पता लगाने से मुतालिक यूनिट ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है और ये AI की मदद से तैयार किया गया है। उसने ये वजाहत भी की कि वजीर खजाना ने इस तरह के किसी भी सरमायाकारी प्लेटफॉर्म या स्कीम की तायीद नहीं की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अमरीकी डॉलर और भारतीय रुपये के ताल्लुक से गैर मुल्की जर्रे मुबादला के एक दूसरे से तबादला करने की उसकी खसूसी सहूलत के तनाजुर में इस महीने की 21 तारीख तक 72 अरब 85 करोड़ अमरीकी डॉलर का गैर मुल्की जर्रे मुबादला मौसूल हुआ है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतकर तारीख में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वो आलमी चैंपियनशिप में तमगा जीतने वाली खवातीन डबल्स में ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पुनप्पा के बाद दूसरी जोड़ी बन गई हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी सेमीफाइनल में आला दर्जे की दिफाई चैंपियन चीन की लियू शेंग और तान निंग की जोड़ी से हार गई। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से जीता, लेकिन बाद में चीन की जोड़ी ने उसे अगले 2 गेम्स में 21-13, 21-8 से हरा दिया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में BJP के नए अहदेदारों के साथ गुफ्तगू की और तंजीम को मुस्तहकम बनाने और अवाम के साथ रबते बढ़ाने पर जोर दिया। मरकज़ ने सिलीगुड़ी में सरकर्दा गोरखा रहनुमाओं के साथ वजीर दाखिला की आला सतह की मीटिंग के बाद गोरखा मामले को हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाए जाने का ऐलान किया है। वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश ताल्लुकात बाहमी मफादात पर मबनी होने चाहिए। BJP वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर पूरे मुल्क में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान चलाएगी ताकि अवामी खिदमत के तई उनके अहद को उजागर किया जा सके। ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के वुजरा ने तालीम, हुनरमंदी, अपने कारोबार, इख्तरा और समाजी तरक्की में नौजवान अफराद के लिए मौक़ों को वसत देने की खातिर मुश्तरक बयान मंजूर किया है। उड़ीसा में खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के जेर असर बारिश का जोर बढ़ने से सैलाब से मुतासर ज़िलों के लिए तशवीश पैदा हो गई है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैम्पियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की डबल्स जोड़ी ने कांसे का तमगा जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: श्रोताओं नमस्कार, माह अगस्त की विज्ञान पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान, जिज्ञासा से समाधान तक की यात्रा। श्रोताओं, अगस्त का महीना हमारे लिए स्वतंत्रता, संकल्प और नव निर्माण का संदेश लेकर आता है। आज जब हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये आवश्यक है कि वैज्ञानिक सोच केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और समाज का अभिन्न हिस्सा बने। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक, विज्ञान की दुनिया तेजी से बदल रही है। इन उपलब्धियों के साथ नई संभावनाएं तो जन्म ले ही रही हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है। आसमान को देखकर कभी न कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, इन तारों के पार क्या है। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाया और इसी माह अगस्त की 23 तारीख को हम मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस, जो कि केवल भारत के नहीं विश्व के समस्त वैज्ञानिक हलकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अंक में हमारा प्रयास है कि विज्ञान के जटिल विषयों को सरल, सहज और रोचक भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हमारा विश्वास है कि वैज्ञानिक चेतना का विस्तार ही एक जागरूक, तर्कशील और आत्मनिर्भर समाज की मजबूत नींव है। रेडियो की आवाज दूर दराज के गांवों को लेकर महानगरों तक पहुंचती है, इसलिए विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए सवाल पूछें, तथ्यों को परखें और अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, क्योंकि विज्ञान केवल भविष्य की खोज नहीं बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण का माध्यम भी है। आज की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे। हम आपको सुनवाएंगे एक और बातचीत, रोबोटिक्स और कृत्रिम मानव, हमारे कृत्रिम प्रतिरूप और भविष्य की संभावनाएं। इसमें प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर रविन्द्र धर। एक और भेंट वार्ता श्रोताओं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, चुनौतियां, संभावनाएं, नैतिकता और हमारी सीमाएं। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की तकनीकी क्रांति, ये विषय होगा एक और बातचीत का। इसमें हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला। इसके अलावा हम बातें करेंगे विज्ञान जगत की और अगस्त माह क्यों विशेष है हमारे इस संपूर्ण विज्ञान जगत के लिए, इस पर भी बातें करेंगे और कुछ विज्ञान समाचार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं हमारी विशेष बातचीत, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे और आपसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप झा।
3: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
4: जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषियों का राज था, उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्र ज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं वो उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्र ज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी उन्हें काफी दुख हो रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत पूरे दुनिया से पिछड़ जाए क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे रिनायसा कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग, ये एक बंगाल रिनायसा जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, मेडिकल डॉक्टर थे। और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहाँ पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी स्वदेशी भावना से महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और आज तो 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं, और बहुत ही गौरवशाली समय ये रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का।
3: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है, और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों के जो लेबोरेटरी थे उसकी अपेक्षा, और बाद में इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए इस खोज के बाद।
4: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रमन जी ने जी डी बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा बनाऊंगा और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और जी डी बिरला जी ने रामन पे विश्वास किया और सीवी रामन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रामन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रामन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रामन इफेक्ट आजकल अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रामन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रामन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो लेने जा रहे हैं साथ में।
3: स्कैटरिंग
4: स्कैटरिंग तो

0: अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो आज इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि जो अगर प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता है, तो विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
1: काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो ऐसी फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबोकुलोसिस हो या फ्लू हो, अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था, वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं, जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमेटिस कहते हैं, उसे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो कम होते जा रहे हैं भारत में, और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
0: अंत में क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
1: मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो, और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को, उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
0: प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता हूँ, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि विभागाध्यक्ष हैं मटेरियल साइंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय। श्रोताओं नमस्कार, आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स की। विकास की ये दौड़, ये हमको कहाँ तक लेकर के जाएगा, किस तरह से हमको, संसार को, मानवता को प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि अध्यक्ष हैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर रविन्द्र धर, आपका प्रयागराज आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या, और एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
3: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, एवं आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस, जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेन्द्रिय, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो सेंसर्स में हमारे हो गए आँख, नाक, कान, टच भी कर सकते हैं हाथ से,
2: अच्छा
3: वो भी हो गया, ये सेंसिंग का काम करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स होंगे, उसमें सेंसर होना चाहिए, जिससे हम आसपास की प्रॉब्लम्स को सेंस कर सकें। सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स होना चाहिए, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो जब सेंस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या करना है, ठंड लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को, और उचित निर्णय भी लेना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा इनके लिए? मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है, उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
2: अपनी भाषा में, जिसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं? ये इतना आसान है क्या?
3: बिल्कुल, हम भी क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको कलेक्ट करते हैं और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक आप कह रहे हैं, वो निर्णय लेता है। वही विवेक एल्गोरिथम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट बात होती है। प्रोसेसिंग वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
2: एक प्रश्न सर और आता है, आज का जो अगर हम यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ

0: यही है डिप्रेशन, अकेलापन या अवसाद। क्या कोई ऐसा रोबोट हमने तैयार अभी तक किया है, कर पाए हैं या कर पाएंगे क्या, कि जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को भी एक सांत्वना या एक साथ प्रदान कर सके जिसको साथ की जरूरत है।
1: अभी एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल मदर का सब्स्टिट्यूट हो सके, फादर का सब्स्टिट्यूट हो सके, वो तो जगहें अभी भी आवश्यक हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन रिमूवल बॉक्सेस फॉरेन में तैयार होने शुरू हुए हैं। कई बार आदमी जब फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलिग पर गुस्सा उतारता है,
0: जी
1: तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे।
0: अच्छा
1: तो तमाम तरीके की चीज़ें डेवलप की गई हैं वहाँ पे,
0: जी।
1: लेकिन अभी ये बहुत कम है। अभी तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल बना है, तो वन साइडेड है। दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अभी काफी दूर।
0: चलते चलते प्रोफेसर रविंद्र धर हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें।
1: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है, तो पहली बात तो ये यह है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीज़ें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पे सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह पर अगर हम ये सिखा ले जाएँ कि नहीं भाई, ट्रैफिक का ऑनर करिए, जो विदेशों में होता है, खूब होता है। मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है,
0: जी
1: अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं, या रोबोटिक से कुछ वहाँ पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं, तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को। तो हम रोबोट्स के पॉजिटिव साइड देखें।
0: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविंद्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। आइए, इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को दो कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं? इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
1: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है, और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें, तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसेस का है। 3 बिलियन बेसेस का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3,000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं, तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का। अलग अलग जीवाणियों का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है। किसी भी जीव के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, बहुत मुश्किल है, और केवल एटीजीसी से कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा, कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं। वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है, और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है, तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
0: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
1: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।
0: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता है?
1: देखिए, जीन एडिटिंग यूज़ करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हीमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज़ करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के ऊपर जो आप सुधारते हैं, जिनको ये होती कैसे हैं?
1: देखिए, दो तरह के ये चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो है फैमिली में ही है, जैसे कि आपने रॉयल फैमिलीज के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, कि उसमें एक हीमोफीलिया करके एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करता है, तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चेंजेस हो सकते हैं। जो बॉडी है उसमें जो सेल्स हैं वो भी डिवाइड करते रहते हैं, सेल डिवीजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन सीक्वेंस है, इन तीनों बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो जो डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है, पहले से उसमें चेंज आ गया। तो अब वो चेंज, अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इंपॉर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन, अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
0: तो श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर शमी श्रीवास्तव जो जानकारी दे रहे थे जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
0: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक यूपीएस होता था।
2: हाँ, बिल्कुल।
0: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
0: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
0: जरूरत क्या पड़ी इसकी? क्या सामान्य जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे?
2: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है, और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
0: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
2: बहुत अच्छी बात की आपने, पर उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वॉल्यूम के मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा इंटेंगल्ड क्यूबिट्स

0: यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन, जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा कुशलता से हो जाता है।
1: आज का दौर एक एआई का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर कहें हमने एक कृत्रिम बुद्धि तैयार कर ली है, क्या इसका एआई का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिश्रण है ये भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है? इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में सामने आ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मैं दोनों आपसे जानना चाहूँगा।
0: बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सामने रखा है। देखिए, असली बात जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों क्षेत्रों के बीच में एक बेहतर तालमेल की बात है, तभी जो है हमको जो अपेक्षित फायदा है, जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने वाला है।
1: जी
0: क्वांटम कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और डिवाइस डिजाइन से लेकर एप्लीकेशन तक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें उपयोगी क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
1: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
0: बिल्कुल
1: हम
0: बिल्कुल
1: इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
0: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो न बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे, तो ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है। विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
1: बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आइए अब बातें करते हैं विज्ञान जगत की और विज्ञान समाचारों की। अगस्त माह में ऐसे कौन से विशिष्ट वैज्ञानिक व्यक्तित्व थे जो जन्मे, जो दिवंगत हुए, और प्रमुख वैज्ञानिक घटनाएं?
2: श्रोताओं, अगस्त 2026 में भारत और विश्व से विज्ञान की दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रगति पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। भारत से भारतीय वैज्ञानिकों ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की असामान्य रूप से अधिक मात्रा वाली परत का पता लगाया। ये परत एक दिन से अधिक समय तक बनी रही। अध्ययन के अनुसार इसका संबंध ओजोन समृद्ध हवा के क्षैतिज परिवहन और नीचे की ओर वायुमंडल गति से था। इसमें एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार सहित रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और वायुमंडलीय मॉडलों का प्रयोग किया गया। अगली खबर न्यूक्लिक एसिड्स रिसर्च में प्रकाशित। भारत में वैज्ञानिकों ने ACSC-END नाम का मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है जो ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा से कैंसर स्टेम लाइक सेल्स की अवस्थाओं की पहचान में मदद करता है। 25,000 से अधिक ट्यूमर प्रोफाइल्स के विश्लेषण में इन कोशिकाओं की अधिक उपस्थिति को कम डिजीज फ्री सर्वाइवल, ट्यूमर रिकरेंस और इम्यूनोथेरेपी के कमजोर रिस्पॉन्स से जोड़ा गया। ये AI स्वयं कैंसर का उपचार नहीं बल्कि जेनोमिक डेटा सेट्स में महत्वपूर्ण जैविक संकेतों की पहचान का माध्यम है। ये प्रिसिशन मेडिसिन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्व से बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने MOMBH1 नाम की अत्यंत दूरस्थ वस्तु का अध्ययन किया जिसका प्रकाश उस समय का है जब ब्रह्मांड लगभग 66 करोड़ वर्ष पुराना था। इसके केंद्र में घने गैस आवरण से घिरे एक बहुत बड़े ब्लैक होल के संकेत मिले हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल्स के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो विज्ञान जगत की इन खबरों में कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कभी जेनोमिक एनालिसिस है, कहीं सूर्य और स्पेस वेदर का अध्ययन तो कहीं ब्रह्मांड के आरंभिक ब्लैक होल्स। विज्ञान की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, हर नई खोज हमारी जानकारी बढ़ाती है और नए प्रश्न भी सामने लाती है। अब अगस्त माह से जुड़े उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। 2 अगस्त 1861 को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के अग्रदूतों में का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी। 7 अगस्त 1925 को MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ। प्लांट जेनेटिक्स और क्रॉप ब्रीडिंग में उनके कार्यों ने भारत की हरित क्रांति और खाद

0: रक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया। बाद में उन्होंने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर भी काम किया। इनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 8 अगस्त 1902 को पॉल डिराक का जन्म हुआ। उनकी डिराक इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को जोड़ने तथा एंटी मैटर की सैद्धांतिक संभावना समझने का मार्ग दिया। 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में दिए जाने वाला डायरेक्ट मेडल भी सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है। और हाल ही में वर्ष 2026 का ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एवं IIT कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी में उनके मौलिक योगदान के लिए प्रदान किया गया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 1919 को डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में उनका अग्रणी स्थान है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को संचार, मौसम, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की दूरदृष्टि प्रदान की और इनको भी भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया, उससे सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1995 को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का देहावसान हुआ। तारों की संरचना और विकास पर उनके मौलिक कार्य तथा चंद्रशेखर लिमिट ने व्हाइट ड्वार्फ्स के अध्ययन को नई दिशा दी। 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, तारकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स, अगस्त हमें विज्ञान के इन विविध क्षेत्रों के महान वैज्ञानिकों को स्मरण करने का अवसर देता है। इन सभी वैज्ञानिक यात्राओं में एक भावना समान थी, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा प्रश्न पैदा करती है, प्रश्न अनुसंधान को जन्म देते हैं और अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये अंक। ये अंक आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र का अंशदान था। वाचन अंजलि श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञ पांडे। प्रस्तुति अभिनव प्रज्ञ पांडे।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री श्रेयस नारायणन द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री श्रेयस नारायणन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। वे अपने प्रभावशाली आवाज, गहन संगीत ज्ञान तथा कर्नाटक संगीत परंपरा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रारंभिक संगीत शिक्षा मुत्तुस्वामी दीक्षितर की परंपरा से जुड़े स्वर्गीय ए अनंतरामन अय्यर के मार्गदर्शन में प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने प्रोफेसर एम ए वेणुगोपाल तथा स्वर्गीय पी एस नारायण स्वामी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनके मार्गदर्शन ने उनके संगीत जीवन को आकार दिया। कई दशकों के संगीत सभाओं के अनुभव के साथ श्री श्रेयस नारायणन ने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों एवं सांस्कृतिक मंचों पर व्यापक रूप से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा वे संगीत समीक्षकों और संगीत प्रेमियों दोनों के बीच अत्यंत सम्मानित हैं। अपने सफल संगीत जीवन के अतिरिक्त उन्होंने शिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम

0: अप्रस्तुत है मुत्तु स्वामी दीक्षितर की रचना कामाक्षीम कल्याणी, जो राग कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू कामाक्षीम कल्याणी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तु स्वामी दीक्षितर इन द रागा कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री श्रेयस नारायणन अब प्रस्तुत कर रहे हैं पेरिया स्वामी तूरन द्वारा रचित ताये त्रिपुर सुंदरी, जो राग शुद्ध सावेरी पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: The next item is ताये त्रिपुर सुंदरी in the राग शुद्ध सावेरी set to खंड चापू ताल, composed by पेरिया स्वामी तूरन।

0: श्री श्रेयस नारायणन अपने गायन का समापन संत त्यागराज की एक रचना दाशरथी से कर रहे हैं, जो कि राग तोड़ी पर आधारित है और आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विथ दाशरथि, कंपोज्ड बाय त्यागराजा इन द रागा तोड़ी सेट टू

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: That was Taniyavartanam played on the mridangam by Shri A. Balakrishna Kammath and on the ghatam by Shri Vaikam N. Gopalakrishnan.
0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री श्रेयस नारायणन का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that we conclude the vocal recital by Shri Shreyas Narayanan in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shrimati S.R. Rajashri on the violin, Shri A. Balakrishna Kammath on the mridangam, and Shri Vaikam N. Gopalakrishnan on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Thiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओ, अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। 11 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी

0: को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थंकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपये की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और तैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honor, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today in Siliguri, West Bengal. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. External Affairs Minister S. Jayshankar has

0: जी ए रात जरा थम थम के गुजर। और जब रात को थम थम के गुजरवाना होता है तो उसके लिए बहुत सारा सामान इंसान जमा करता है। वो जमा करता है कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ गपशप और कुछ ऐसी किताबें जिसे वो पढ़ना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस वक्त के लिए रखते हैं कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में वो सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और उसको इस हद तक सोचते हैं कि एक अंडे से वो शुरू करते हैं, चूज़ा और फिर मुर्गा और फिर वो प्लेट में, मतलब इतना ज़्यादा किसी एक बात के बारे में सोचते हैं। आरती आप क्या कहती हैं?
1: तलक जो कहना चाह रही है उसे आज के ज़माने में ओवर थिंकिंग कहा जाता है। और सच में ये ओवर थिंकिंग ना सिर्फ मैं करती हूँ, तलत करती है, बल्कि आप सब भी करते होंगे। और ज़्यादातर ये काम करते हैं हम रात में। पूरे दिन की थकान के बाद बहुत सारे ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आने शुरू होते हैं जिनका कोई अंत होता ही नहीं है। कभी उन सवालों से हम अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं और कभी उन्हीं सवालों में उलझ के रह जाते हैं। तो कोई ऐसा ख्याल आपको भी परेशान कर रहा है, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं लिखकर ipradiodelhi@gmail.com पर। फिलहाल हमारे पास संदेश आने शुरू हो गए हैं।
0: बिल्कुल आरती, और हमारे पास जो मैसेज आया है ये आया है चंडीगढ़ सिटी से, और लिखने वाले हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। और आप इतनी सारी मोहब्बतें और तमन्नाएं आकाशवाणी के लिए भेज रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस गीत की फरमाइश की है कोशिश रहेगी कि पूरी ज़रूर की जाए।
1: फिलहाल हम अपने अगले संदेश की तरफ बढ़ते हैं और ये संदेश हमारे पास आया है आशु चुग, अश्वनी गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ढींगरा, पंचकुला सेक्टर 11, अतुल शर्मा। और ये भी कहते हैं आपका दिल से शुक्रिया। गीत की फरमाइश इन्होंने भी रखी है, कोशिश यही रहेगी कि आप सबकी तमन्नाएं पूरी हो जाएं। और बहुत से संदेश हमेशा की तरह हमारे पास रिपीट भी हो रहे हैं, तो हम उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: और मैसेज हमारे पास आया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का। आप हमें कालका से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और आप कह रहे हैं कि रात कली एक ख्वाब में आई। अच्छा, आप ये गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी
0: तो जी
1: हाँ,
0: बिल्कुल, रात को कलियां भी ख्वाब में आती हैं, और वो कलियां कभी तो फूलों की होती हैं और कभी खूबसूरत ख्यालों की होती हैं। क्या हुआ आरती?
1: जी हाँ, बिल्कुल तलत आपने सही कहा। फिलहाल हम भी एक कली चुन के लाए हैं जो गीत के रूप में आप तक अपनी सुगंध पहुंचाने जा रही है।

0: दोस्तों, जो भी हो गया है वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे पास अपने मेल के जरिए। जैसे बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को हम तक पहुंचा रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये गीत सुनाया जाए, ये बात की जाए, तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले संदेश की तरफ बढ़ते हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं
1: वो हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर और खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर। और आपने कहा है कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लें।
0: जी हाँ, गीत तो एक से बढ़कर एक हम आपकी खुशामद के लिए ला रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, अगले जो श्रोता हम तक अपना संदेश लेकर आए हैं वो हैं फालेमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: अगला मैसेज हमारे पास आया है गुरनूर यूपी से। लिखने वाले हैं फारूक अली खान, फैजी फराज और फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा। और आप कह रहे हैं कि आरजे और आप
0: हाँ
1: दोनों की जोड़ी खूब है। अच्छा, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये कार्यक्रम पसंद आया और आपने हमें मैसेज करके भी बताया। इसके लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रिया कहते
0: जी
1: हैं।
0: हाँ,
1: और आपकी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है, कोशिश रहेगी कि पूरी जरूर की जाए।
0: जी हाँ, कोशिश तो ये रहेगी कि आपकी भी फरमाइश पूरी हो, लेकिन फिलहाल क्यों ना एक और खूबसूरत सा गीत हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: रात को कली एक ख्वाब में आई थी, लेकिन उसके बारे में इस कदर सोचा, इस कदर सोचा कि वो सुबह होते होते गले का हार बन गई। और आपको हम बता दें कि आप क्या सुन रहे हैं और कहाँ सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये कार्यक्रम आ रहा है आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर, जो है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। जी हाँ दोस्तों, आप हमें कहाँ सुन रहे हैं और हम दोनों कौन हैं? मैं हूँ आरती और मेरे साथ जुड़ी हैं
1: तलत।
0: जी हाँ। और चलिए बढ़ते हैं आपके संदेशों की तरफ। ये है किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईंराज और विशाल सपकाल, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले जो श्रोता हमारे साथ हैं वो भी यही हैं, क्योंकि बार बार संदेश भेजने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है और हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि इतने संदेश आप बैक टू बैक जो भेजते हैं वो मत कीजिए, क्योंकि बाकी सारे जो श्रोता है वो हमसे खफा हो जाते हैं आप सबकी वजह से। तो एक या दो से ज़्यादा ना भेजिए। आगे बढ़ते हैं, ये संदेश हमारे पास आया है।
1: ये मैसेज हमें मिला है मुल्तानी ढांडा से, लिखने वाले हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। अगला मैसेज जो है वो है हमारे पास एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से, और आपके साथ हैं ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक, संजना परी और स्वाति, प्रयाग चौधरी, लड्डू चौधरी, देविका चौधरी, और आपने कहा है कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लें।
0: जी हाँ, तो किसी भी गीत में हम आपको ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि अगला जो गीत होगा समझ लीजिए वो आपके लिए ही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही बार बार वही संदेश हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम एक नया गीत आपको सुनाने जा रहे हैं।

0: यानी तो
1: ये जो हमारा पास अगला संदेश है वो है कस्बा गुन्नौर से, और ये कह रहे हैं कि अपने पसंद का गीत सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आपको भी आपकी पसंद का गीत ज़रूर सुनवाएंगे। आगे जो संदेश आया है वो है संभल से, छोटे अंसारी अलम अंसारी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो अपना संदेश बार बार हम तक पहुँचा रहे हैं। अगला जो संदेश हमारे पास आया है,
0: वो भी वही मैसेज आया है जो कि बार बार बार बार लगातार आए चला जा रहा है। बस बस बस कीजिए जनाब, बस कीजिए, आप सबके नाम शामिल हो चुके हैं। अगला मैसेज हम ले लेते हैं अभ्युदय सिंह का, और आप हमें मैसेज कर रहे हैं कहाँ से? ये ज़रा लंबा मैसेज है आरती, तसल्ली से पढ़ा जाएगा। अगला मैसेज हम ले लेते हैं स्वर्ण सिंह का, आप हमें ठाकुरावाला से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर और गुरलाल और अवीरराज। आपने कहा कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। जीतू प्रसाद ने हमें मैसेज किया है, अरे वाह, आपने बक्सर से हमें मैसेज किया है, और आपके साथ हैं आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता। और इतने सारे गुलाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस मौसम में गुलाब देख के वाकई दिल गुलाब गुलाब हो गया है। अगला मैसेज जो है हमारे पास वो आया है सुदर्शन मुखी का, और आप हमें शांति नगर सोनीपत से मैसेज कर रहे हैं, और आपकी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है, तो कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश भी पूरी की जाए। आपके साथ हैं अनीता मुखी, सिमरन और सुदर्शन मुखी।
1: और ये हमारे पास जो अगला संदेश आया है वो है चिरमरी कुरासिया कालरी से, इंद्रभान से।

अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदी लहरे का। तो बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच गए हैं, अब आप तक पहुंचेगा एक खूबसूरत सा गीत।

0: और जी मिलते मिलाते हम पहुंच गए हैं इस पड़ाव पर कि हमारे पास बचे हैं तकरीबन 11 मिनट, और जल्दी से ले लेते हैं अगला मैसेज। मऊ से हमें ये मैसेज मिला है, लिखने वाले हैं मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर रिजवाना और अब्दुल्ला आज़ाद ने हमें मैसेज किया है, और इत्तेफाक से आरती ही ये रिपीट मैसेज है।
1: ज़्यादातर मैसेज ऐसे ही हैं, क्योंकि शायद बैक टू बैक भेजते हैं, जिसकी वजह से जो सही मैसेज और भी होते हैं वो बीच में
0: जो
1: ही
0: सिर्फ
1: कहीं,
0: एक मैसेज
1: हाँ
0: करने वाले लोग
1: वो
0: हैं वो
1: ये
0: कहीं
1: भी
0: रह
1: देखिए,
0: जाते
1: जितने
0: हैं।
1: भी हम देख रहे हैं ये बार बार आ रहे हैं। ये हमारे पास आया है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का, कहते हैं तलत और आरती जी बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। अगला जो संदेश हम तक आया है वो 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी, बबिता, शोभा, कुमारी वंदना, मराठा भाऊ, मराठा ललिता, जगदीश चौहान और चंदा, युवराज बानखेड़े, और ये भी कोई गीत सुनना चाहते हैं। अगला जो संदेश हम तक आया है वो भी बार बार इन्हीं का आया है। और आगे जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं वो बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो अपने संदेशों को हम तक पहुंचा चुके हैं।
0: और ऐसी ही मैसेज हमारे पास आ चुके हैं बहुत सारे। इसमें एक अलग मैसेज मुझे मिला है, देखिए ये मैसेज है हमारे पास बबलेश पंवार का, और आप हमें मैसेज कर रही हैं कहाँ से? आप हमें मैसेज कर रहे हैं बाड़मेर से, राजस्थान से। आपके साथ हैं डैनी पवार, मनीष पवार और खलीफों की बावड़ी से खुदा पक्ष खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डागरी से बाबूराम जयपाल। आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज लिखा है और आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कह रहे हैं कि सकारात्मक ऊर्जा, उनका बात करने का सलीका और सादगी, जिंदा दिली दर्शकों को, दर्शक नहीं हमारे आप हैं श्रोता, आप सुनते हैं हमें। और आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम के दौरान सकारात्मक ऊर्जा भर दी है और आपको कार्यक्रम इतना पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बबलेश जी आपका। हम बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, और अगला मैसेज जो है हमारे पास वो आया है मीरा सिंह का। आप हमें बिहार से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं सोनम सिंह, अनामिका सिंह, मीरा सिंह और ज्योति सिंह। आपने हमें समस्तीपुर से मैसेज किया है। मैसेज एक और ले लेते हैं हम आरती, क्योंकि वक्त भी कह रहा है कि अब खुदा हाफिज़ कहा जाए, टाटा बाय बाय कहा जाए, लेकिन लेकिन लेकिन आपके मैसेज जो बहुत कीमती है हमारे लिए वो भी लेने ज़रूरी है। रजी शर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं मलोट पंजाब से, आपके साथ है मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान मेंडी शर्मा और सौरभ शर्मा। शाइना शर्मा ने हमें मैसेज किया है। दारा सिंह का हमारे पास मैसेज आया है चौटाला हरियाणा से, आपके साथ हैं संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। और अब सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सबके संदेशों को एक बार फिर से शामिल करते हैं, लेकिन ये भी बता दें कि अब वक्त हमारे पास थोड़ा कम बचा है। और ये संदेश आया है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, ये हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं मुकेश भट्टा और नीलम निहारिका वंश, ये कनेरा मोहल्ला पटियाला से हमारे साथ ही बने हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से पिंटू थॉमस, पिंकी लवली आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू हमारे पास अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ साथ जुड़े हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हेमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू, इन्होंने भी गीत की फरमाइश की है। अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आप सबको थैंक यू बोलते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। लेकिन अब आपको जाते जाते एक और खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं।

0: श्रोताओं, ऐसे ही खूबसूरत गीत के साथ आप सबको छोड़े जा रहे हैं मैं, आपकी दोस्त आरती
1: और तलत, और इस वायदे के साथ फिर अगली मुलाकात जल्द ही होगी। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: शुभ रात्रि।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे सुनेंगे आप हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कल ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग और नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सहयाद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित युद्धाभ्यास उदारा शक्ति 2026 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक पूरी की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन दोनों देशों में भारतीय वायुसेना की तैनाती, उसकी संचालन की पहुंच, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारियों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के संगीत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो कुछ नाम ऐसे होंगे जिनके बिना वो कहानी अधूरी रहेगी, क्योंकि कुछ संगीतकार फिल्म के लिए संगीत तैयार करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका संगीत फिल्म के बाहर निकलकर अपने आप में एक पहचान बन जाता है। हिंदी सिनेमा में ऐसी ही एक पहचान थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। दो नाम लेकिन ऐसी रचनात्मक साझेदारी जिसने लगभग चार दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत के बदलते मिजाज के साथ काम किया। एक तरफ लक्ष्मीकांत को संगीत को महसूस करने और उसे आम श्रोता तक पहुंचाने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी और दूसरी तरफ प्यारे लाल की वाद्य संगीत और ऑर्केस्ट्रेशन पर गहरी पकड़। दोनों मिले तो बना एक ऐसा संगीत का सफर जो करीब चार दशकों तक हिंदी फिल्मों के साथ साथ चलता रहा और इनके खाते में सिर्फ लोकप्रिय गीतों की लंबी फहरिस्त नहीं है, इनके संगीत में लोक का रंग है, शास्त्रीयता की छाप है, पश्चिमी संगीत की चमक है, रोमांस की नज़ाकत है और बड़े पर्दे के लिए ज़रूरी भव्यता भी। यानी कहानी बहुत लंबी है तो क्यों ना शुरुआत करें एक ऐसी मोहब्बत से जिसमें रूठने की थोड़ी थोड़ी अदा है और मनाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश।

खूब अंदाज है ना रूठने का। ना कोई शिकायत बहुत बड़ी है और ना ही नाराजगी इतनी गंभीर की बात बन ना सके। बस थोड़ी सी नोकझोंक है और उसके पीछे पीछे छुपा हुआ बहुत सारा प्यार। और शायद यहीं से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को समझने की शुरुआत भी की जा सकती है। भावनाओं को भारी किए बिना उसे खूबसूरत बना देना, यही तो थी उनकी खासियत। लेकिन लेकिन दोस्तों, इस जोड़ी की कहानी शागिर्द फिल्म से नहीं हुई थी शुरू। इससे कुछ साल पहले दो नौजवान संगीतकार हिंदी सिनेमा में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म थी पारस मणि और उस फिल्म ने आते ही बता दिया कि इन दोनों में कुछ तो अलग है। तो अब चलते हैं 1963 में, उस समय के मासूम, चुलबुले और बेहद लोकप्रिय गीत के संग, जिसने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सफर की पहली बड़ी दस्तक दी।

हंसता हुआ नूरानी चेहरा। इस गीत में दोस्तों जिस तरह की ताजगी है वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के शुरुआती सफर की खास पहचान बनी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उनकी रेंज और भी वाइड और भी बड़ी होती चली गई। अब जरा उसी 60 के दशक के एक ऐसे गीत की तरफ चलते हैं जिसमें प्रेम का रंग थोड़ा और गहरा है लेकिन माहौल बहुत अलग है। माहौल बिल्कुल भारतीय है। सावन आए और हवा में ठंडक घुले, पेड़ों पर झूले पड़े और दो लोग उस मौसम को अपने प्यार के साथ जोड़ लें। हिंदी फिल्मों में सावन को इससे खूबसूरत तरीके से भला कौन और बयां कर सकता है।

70 का दशक आते आते हिंदी सिनेमा की कहानियां बदल रही थी, किरदार बदल रहे थे और प्रेम को देखने का अंदाज भी बदल रहा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस बदलाव को बहुत सहजता से अपनाया। आपको सुनवा रहे हैं हम एक ऐसा गीत जिसमें रिश्ते, अपनापन और जिंदगी को देखने का एक बहुत सीधा सा, बहुत साफ सा नजरिया है। शब्द बहुत सरल हैं लेकिन बात बहुत बड़ी।

तनकीद के साथ हमने ज़िंदगी को एक बहुत खूबसूरत और बहुत सरल अंदाज में महसूस किया। कुछ पल साथ के, कुछ बातें और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियाँ। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की खासियत यही थी कि उनके यहाँ एक मूड के बाद अपना जो भी अगला गीत होता था उसका मूड भी बिल्कुल अलग हो जाता था। माहौल थोड़ा शांत और सहज, और उसके बाद अचानक से एकदम रौनक, ताल और शरारत वाला। 70 का दशक दोस्तों अपने पूरे रंग में था। फिल्मों में नाच गाने की सीक्वेंसेस का अपना अलग आकर्षण था, और सरगम ने तो संगीत और डांस को कहानी का खास हिस्सा ही बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सरगम की। ऋषि कपूर और जया प्रदा की जोड़ी, सामने एक यादगार म्यूजिकल सीक्वेंस और साथ में लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़। तो अब एक प्यार का नगमा है कि सादगी से निकलकर चलिए चलते हैं एक ऐसी धुन की ओर जहां माहौल थोड़ा और खुलता है, कदमों में थोड़ी सी तेज़ी आती है और महफिल में कुछ और रंग भर जाते हैं।

गीत में अभी आपने जो सुना उसमें थी मस्ती और शानदार ऑर्केस्ट्रेशन एक साथ। श्रोताओं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सबसे बड़ी ताकत ही यही थी कि दोनों ने कभी भी अपने आप को एक ही तरह के संगीत तक सीमित नहीं किया। इनकी वर्किंग स्टाइल की एक खास बात थी। लक्ष्मीकांत की मेलोडी की जो समझ थी और प्यारेलाल की ऑर्केस्ट्रेशन

करना, इसमें इनकी अपनी अपनी भूमिका होती थी। और यही कारण है कि इनके खाते में रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं, डांस नंबर्स भी हैं, क्लासिकल टच वाले गीत भी हैं और बड़े स्केल के सेलिब्रेशन सॉन्ग्स भी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसी सफ़र में थोड़ा सा और आगे एक ऐसे गीत की तरफ जिधर रोमांस को भी बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन बहुत खूबसूरत और लोकप्रिय अंदाज में पेश किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सदाबहार जोड़ी ने।

दोस्तों, अमर अकबर एंथनी का ये गीत अपने आप में एक बहुत दिलचस्प बात बताता है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत में बड़े नामों और बड़ी आवाज़ों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता कितनी शानदार थी। इनकी जर्नी में सिंगर्स की भी एक पूरी दुनिया दिखाई देती है। लता जी और रफ़ी साहब के साथ इनकी शानदार साझेदारी रही, किशोर कुमार के साथ भी लगातार यादगार काम किया और बाद में आने वाली पीढ़ी के सिंगर्स के साथ भी इन्होंने खुद को बदला। यानी सिर्फ समय नहीं बदला, आवाज़ें बदली, कलाकार बदले, फिल्मों का स्केल बदला और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी की ने हर बदलाव के साथ अपना म्यूजिकल वोकैबुलरी भी बदली। और यही वजह है कि जब उनकी बात करते हैं तो ऐसे कई गाने सामने आते हैं जिनमें मेलोडी के साथ साथ एक ख़ास तरह की लोकप्रियता भी सुनाई देती है। तो चलिए सुनवाते हैं फिर आपको एक ऐसा ही बेहद मशहूर गीत जिसमें थोड़ी सी शरारत, थोड़ा रोमांस और है पूरा पूरा फिल्मी फ्लेवर।

और दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कहानी में एक और बेहद दिलचस्प पहलू है, उनकी लॉन्गेविटी। 60 के दशक में जिन लोगों के साथ उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद आने वाले सितारों के साथ भी उन्होंने उतनी ही मजबूती से काम किया। और यही वजह है कि जब हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक जेनरेशन याद नहीं आती। राज कपूर से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, जितेंद्र, अनिल कपूर, हिंदी सिनेमा के कितने ही बड़े सितारों के करियर के अलग अलग पड़ावों पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत मौजूद रहा। और 80 का दशक आते आते फिल्म संगीत की दुनिया में एक और बदलाव दिखाई देने लगा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, सिंथेसाइजर और नए इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स का इस्तेमाल बढ़ रहा था और डांस म्यूजिक को लेकर दर्शकों की पसंद भी बदल रही थी।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस बदलाव को अपनाया और 1980 में कर्ज के साथ एक ऐसा म्यूजिकल स्टेटमेंट दिया जो आज भी उस दौर की पहचान माना जाता है।

0: ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना सिंग हो।
1: श्रोताओं, इस गीत के साथ हमने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के सफर के एक और रंग को आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की 4 दशकों से भी अधिक लंबी संगीत यात्रा को कुछ समय के एक कार्यक्रम में समेट पाना अब इतना तो आसान नहीं। उनके खाते में इतने गीत हैं, इतने अलग अलग दौर हैं, इतने अलग अलग रंग हैं कि हर दशक अपने आप में एक पूरा कार्यक्रम बना सकता है। फिर भी हमने कोशिश की और हमारी कोशिश रही कि आज की इस छोटी सी संगीत यात्रा में 60 के दशक से लेकर 90 के दशक तक उनके सफ़र की एक झलक हम आपके सामने रख सकें। कहीं रोमांस, कहीं मस्ती, कहीं लोक रंग, कहीं पड़े पर्दे की भव्यता, कहीं बदलते हुए दौर के साथ बदलता हुआ उनका म्यूजिकल अंदाज। और शायद यही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दशक बदलते रहे, संगीत का मिजाज बदलता रहा, लेकिन इस जोड़ी की पहचान हर दौर में कायम रही।

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajno ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो अब इस लंबी और यादगार यात्रा को किसी धीमे सुर पर नहीं बल्कि उसी जोश मस्ती और अंदाज के साथ हम विराम देंगे जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत की एक खास पहचान रहा। तो चलिए इस कार्यक्रम में सुनवाते हैं हम आपको ये वाला गीत, छोड़ के जाते हैं इस गीत के साथ में और इस संगीत के साथ इस खूबसूरत मुलाकात को यहीं विराम देते हैं। बने रहिए AIR Live News 24x7 चैनल के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अब से कुछ ही समय में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हित की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कल ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ सम्पन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र और जर्मनी के हिस्से राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार और रोजगार तथा कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन एगुलेरा ने कल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ जिसमें उनके साथ प्रथम सचिव और क्यूबा के अन्य राजनयिक भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने संग्रहालय के विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों की विरासत और उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है। श्री एगुएरा ने कहा कि भारत और क्यूबा के बीच 66 वर्षों से अधिक समय से राजनयिक और द्विपक्षीय संबंध हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की तिरसा जौहरी और गायत्री गोपीचंद को चीन की ल्यू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत की जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम चार में पहुंचने के लिए मुकाबला हर हाल में जीतना था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरे दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's National Vice Presidents and General Secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers. The BJP President said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday held a telephonic conversation with his Greek counterpart Georgios Gerapetridis. In a social media post, Dr. Jaishankar said that during the conversation, the two sides discussed current geopolitical developments and agreed to remain in touch. National Testing Agency, NTA, has issued a show cause notice to Messrs. Adequity Courier Technologies Private Limited for lapses in the conduct of the All India Ayush Postgraduate Entrance Test AIA PGET examination at a centre in Jaipur. NTA has informed that pending resolution of the notice, the empanelment of Messrs. Adequity with the agency stands suspended with immediate effect. Earlier, due to a power supply failure at a centre in Jaipur, 49 candidates could not complete the examination. NTA has informed that the re-examination of AIA PGET for affected students will be conducted on 1st of next month at 10 a.m. in Rajasthan College of Engineering for Women, Jaipur. It added that further details will be shared through the revised admit card issued for such candidates. The agency has expressed regret for the inconvenience caused. The AIA PGET examination was conducted yesterday in two shifts across nearly 205 centres. Of 51,482 registered candidates, 49,867 appeared in the examination. The resumption of

रात्रि के 1:10 हुए हैं। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति पाठक और आपका स्वागत है गीत सुनहरे यानी गोल्डन एरा में। दोस्तों, आज का ये सफ़र उन गीतों के नाम है जिनके लिए किसी तारीख की ज़रूरत नहीं पड़ती। गीत जब भी बजते हैं अपना समय खुद साथ लेकर आ जाते हैं। और इस सफ़र की शुरुआत हो रही है 1955 की उस फिल्म से जिसमें राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को एक और यादगार पहचान दी। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये फिल्म है श्री 420। फिल्म का संगीत था शंकर जयकिशन का, गीत लिखे थे शैलेंद्र ने और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की। दोस्तों, ये जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ ये सिर्फ एक रोमांटिक डुएट नहीं है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें प्रेम को, प्यार को बहुत सहज तरीके से पर्दे पर रखा गया। मुंबई की बारिश, एक छतरी और साथ साथ चलते दो लोग, और देखते ही देखते ये दृश्य हिंदी सिनेमा की सबसे पहचान वाली तस्वीरों में शामिल हो गया। तो चलिए आज की गोल्डन एरा गीत सुनहरे की पहली पायदान पर चलते हैं, जहाँ थोड़ी सी बारिश भी है, रोमांस भी है, राज कपूर और नरगिस की जोड़ी भी है। सुनवाते हैं आपको उस दशक का ये बेहद खास गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे मेरे यानी दीप्ति पाठक के संग। प्यार हुआ इकरार हुआ के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, या ये कहें शुरुआत की हमने उस दौर से जब हिंदी सिनेमा में कहानी, संगीत और सितारों की लोकप्रियता तीनों अपने असर को एक साथ बनाने की जद्दोजहद में थे, कोशिश कर रहे थे, या यूं कहें कि बना चुके थे। अब ज़रा 1955 से बढ़ते हैं आगे, 1955 के बाद हम चलते हैं सीधे 1969 में। दोस्तों, इन 14 सालों में हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया बहुत बदल चुकी थी। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी से लेकर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जैसे नए दौर के सितारे सामने आ चुके थे। सिनेमा का अंदाज बदल रहा था और संगीत भी नए दौर की तरफ कदम बढ़ा रहा था। और इसी बदलाव के बीच आई फिल्म आराधना। इस फिल्म ने राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों की कतार में पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। संगीत था सचिन देव बर्मन का, गीतकार थे आनंद बख्शी और आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब की।

कोरा कागज था ये मन मेरा। इस गीत के साथ हम पहुंचे 1969 के उस दौर में जब राजेश खन्ना का सितारा तेजी से चमक रहा था और आराधना ने हिंदी सिनेमा में एक नया अध्याय खोल दिया था। लेकिन दोस्तों, गोल्डन एरा की खूबसूरती ही यही है कि इस सफर को हम सिर्फ आगे की तरफ नहीं ले जाते, बल्कि कभी कभी कुछ कदम पीछे जाकर भी उस दौर के बेहद खूबसूरत गीतों को फिर से अपनी महफिल में शामिल कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे, 1960 की तरफ। फिल्म थी काला बाजार, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और संगीतकार एक बार फिर सचिन देव बर्मन। देवानंद पर फिल्माया ये गीत उस दौर के उस खास अंदाज की मिसाल है जब रोमांटिक सॉन्ग्स में मेलोडी के साथ हल्की सी शरारत और खूबसूरत शब्दों की मौजूदगी हुआ करती थी। हमारे आज के गोल्डन एरा में अब बारी है उस चांद की जो आसमान में कम और गीतों में ज़्यादा दिखाई देता है।

दोस्तों, उस दौर के गीतों की एक खास बात थी कि रोमांस को ना बहुत सहज, बहुत सिंपल रखा जाता था। कभी दो लोगों की नोकझोंक, कभी छेड़छाड़ और कभी बस एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताने की इच्छा। और अभी इसी सिलसिले को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं। जरा सा सोचिए, रात का शांत सा माहौल, चांदनी सामने, अपना हम सफर और साथ चलने की एक सीधी सी सिंपल सी चाहत। 1956 की फिल्म चोरी चोरी में शंकर जय किशन ने रोमांस को इसी बेहद खूबसूरत अंदाज में इस रोमांस को पेश किया। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी और आवाज़ें लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब की। तो चलिए, हल्की सी शरारत के बाद अब उसी दौर के रोमांस को थोड़ा सा और खूबसूरत, थोड़ा सा और सुरमई बनाते हैं।

श्रोता, अभी आपने सुना सिनेमा के उस दौर का एक ऐसा रोमांटिक अंदाज जब प्रेम गीतों में नरमी हुआ करती थी और एक खास तरह से शराफत भी। और चलिए बढ़ाते हैं इसी गोल्डन एरा को के सफर को और चलते हैं 60 के दशक से निकलकर 70 के दशक की शुरुआत में। समय बदला, फिल्में बदली, सितारों की नई पीढ़ी आई और गीतों का अंदाज भी थोड़ा सा और खुल गया, थोड़ा और प्लेफुल हो गया। और इस बदलाव के साथ किशोर कुमार की आवाज़ ने भी हिंदी फिल्म संगीत को एक बिल्कुल अलग रंग दिया, कभी शरारती, कभी रोमांटिक और कभी बिल्कुल बेफिक्र। तो अब किसी खास वजह की तलाश नहीं करते हैं, बस ये खूबसूरत सा अगला गीत सुनते हैं।

रात कली एक ख्वाब में आई। इस गीत के साथ हमने महसूस किया किशोर कुमार की आवाज़ में 70 के दशक का वो हल्का फुल्का रोमांटिक अंदाज़, जिसमें शरारत भी होती थी और बेफिक्र सा अंदाज़ भी। और चलिए अब चलते हैं इसी सफ़र में थोड़ा सा वापस पीछे, यानी कि 60 के दशक की तरफ। ये वो दौर था दोस्तों, जब हिंदी फिल्मों में रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए रात, चांद और सितारे बेहद लोकप्रिय इमेजिनरी हुआ करते थे। लेकिन हर गीतकार और हर संगीतकार इन शब्दों को अपने अलग तरीके से इस्तेमाल करता था। और इसी दौर का एक खूबसूरत गीत है जिसमें गाने वाला जैसे रात से ही थोड़ी सी और मोहलत मांग रहा है। आपको सुनवा रही हूँ दिल एक मंदिर की फिल्म से, संगीत दिया है शंकर जयकिशन साहब ने, गीत लिखा है शैलेंद्र साहब ने और आवाज़ लता मंगेशकर की। आइए इस चंचल रात से अब चलते हैं थोड़ी सी खूबसूरत, थोड़ी सी शांत रात की तरफ। मांगते हैं थोड़ी सी और मोहलत।

दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल से आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे, यानी गोल्डन एरा के गीत। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति पाठक, और हम सुन रहे हैं वो गीत जो कभी भी कहीं भी सुनाई दे जाए तो बस दिल उन्हीं में खोकर रह जाता है।

दोस्तों, इस गीत में प्यार का अंदाज कितना बेबाक था ना, जहां दिल की बात कहने के लिए जैसे किसी की इजाजत की जरूरत ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसी प्यार को थोड़ा और संजीदा बनाते हैं, थोड़ा ठहरा हुआ सा अंदाज देते हैं। क्योंकि क्या है ना कि कभी प्यार का इजहार खुल के होता है, तो कभी बस इतना कहना काफी होता है कि तुम साथ रहो, रास्ते तो खुद ब खुद बन जाएंगे, आसान होते जाएंगे। तो इसी खूबसूरत एहसास को आप तक पहुंचा रही हूं मैं, यानी दीप्ति। महेंद्र कपूर साहब की आवाज में।

दोस्तों मुझे क्या लगता है ना कि इस गीत में साथ की बहुत खूबसूरत सी चाहत थी, बहुत सीधी सी, बहुत सच्ची सी चाहत। और जब किसी का साथ इतना अच्छा लगने लगे तो फिर दिन का कोई एक वक्त ऐसा नहीं होता, सुबह हो या शाम हो, ख्याल तो उसी का आता रहता है। अच्छा, ये चाहत के सिलसिले भी ना अलग अलग हो सकते हैं। इसमें प्यार मोहब्बत सिर्फ साथ ही हमसफ़र नहीं बल्कि दोस्ती का भी सिलसिला यूं ही आगे बढ़ सकता है ना, जैसे आपका और हमारा। आइए सुनवाते हैं ये गीत फिल्म दोस्ती से और बढ़ाते हैं इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे।

तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत संगीत यात्रा को बस यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि समय सीमित है। हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें बार बार इशारा दे रही है कि अब इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की घड़ी आ गई है। उम्मीद है पुराने नगमों की ये छोटी सी महफिल आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अब चलते चलते सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें विदाई भी है और अगली मुलाकात का वादा भी। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम से मुझे यानी दीप्ति पाठक को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, फिर सुनेंगे कुछ पुराने कुछ सुनहरे नगमे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
3: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश के पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ग्रीक के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरा पेट्रिटिस से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने मौजूदा भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। दोनों ने एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। उन्होंने मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दिलट्टी से भी टेलीफोन पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा के तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत MV ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में से 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन एगुइलेरा ने कल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रम की अंतर्गत हुआ जिसमें उनके साथ प्रथम सचिव और क्यूबा के अन्य राजनयिक भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं और ये हो गए पूरे 10 सेकंड भी। और हमेशा की तरह हम हाजिर हैं लेकर नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम गीत बहार। दोस्तों, आज कार्यक्रम में आपके साथ रहूंगी मैं, आपकी साथी, आपकी मितवा, आपकी अपनी दीप्ति, और हम मिलकर लुत्फ लेंगे और सुनेंगे कुछ सुने कुछ अनसुने नगमों का नॉन स्टॉप कार्यक्रम। तो चलिए मिलकर एंजॉय करते हैं।

और बस इसी गीत के साथ मुझे यानी दीप्ति पाठक को इजाज़त दीजिए नॉन स्टॉप फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम से। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इनके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद GRSE भवन में MSME के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बगान सुपर जायंट्स के बीच फुटबॉल ड्यूरेंड कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत MV ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में 20 चीनी, 3 म्यांमा और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा।

लीना बोरगोहाइन इन द 75 kg कैटेगरी, नरेंद्र बरवाल इन द ओवर 90 kg कैटेगरी एंड जदुमणि सिंह इन द 55 kg कैटेगरी. एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस न्यूज़ बुलेटिन.

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत और गजल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4 बजने को है और अब आप सुनेंगे भक्तिमय संगीत का कार्यक्रम आराधना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

त्रिशिव पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आज सुनते हैं कार्यक्रम नादरम, कर्नाटक म्यूजिक के। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शीर गाजी S. गोविंद राजन का

कर्नाटक म्यूजिक के कार्यक्रम नादब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे शीर गाजी एस गोविंदराजन का गायन। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिनी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 45 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आज आप कौन कौन से कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे, आइए उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा आपको बता दें। अब से थोड़ी देर में यानी 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। उससे पहले 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। के बारे में 5:20 पर देशभक्ति गीत होगा और 5:30 पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे मोहम्मद अलीम खान का वायलिन वादन राग अहीर भैरव।

0: श्रोताओं, 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में भूप बुद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं आज आप सुनेंगे। हर रोज की तरह आज भी 6:45 पर आपके लिए लेकर आएंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 6:55 पर संस्कृत में समाचार। संगीत का कार्यक्रम होगा 7:10 पर और गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आज आप सुनेंगे फिल्मी गाने थॉट के साथ 7:30 पर। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज उर्दू में समाचार होंगे 8:30 पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5:00 को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव

0: सचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जेआरएसई भवन में एमएसएमई के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश उद्योग नवाचार रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस रायन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर से ये दुर्घटना हुई। जहाज एमवी ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक था। जहाज उड़ीसा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर रवाना हुआ था। मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में नागरिकों पर पाकिस्तानी बलों द्वारा किए गए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। संगठन ने इस घटना को राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया। भीषण शक्तिशाली तूफान मोक हवाई की ओर बढ़ रहा है। इससे बिग आइलैंड में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां के लोग अभी भी तूफान लाला के कारण आई भीषण बाढ़ और तेज हवाओं से हुए नुकसान से जूझ रहे हैं। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंगशू और टैंग निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरे दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's National Vice Presidents and General Secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers.

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांति कारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखंद। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमर दर्द की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन पर टिकाए रखें। अब हाथों को धीरे

धीरे वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास लेकर आएं और ध्यान रहे कि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई हों, यानी आसमान की ओर उठी हुई हों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को समांतर रखें और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। इस अभ्यास को भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और मकरासन की स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह आसन करें तब पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कमर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो। भुजंग आसन का अभ्यास एक सेशन में कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। यदि आपको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है और पेट की कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो यह आसन अवॉइड करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कुछ हद तक तनाव को भी दूर भगाता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 6:30 और पूरे 15 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग अहीर भैरव में मोहम्मद अलीम खान का वायलिन वादन।